0: अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं आपकी कम्युनिटी सदस्य अर्चना आपके साथ और स्वागत करती हूं आप सभी का इस खास कार्यक्रम योग शक्ति में। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति शांति, खुशी और मानसिक संतुलन की तलाश में है, लेकिन अक्सर इसे हम बाहर ही खोजते हैं जबकि यह हमारे भीतर ही होता है। उसी आंतरिक शांति तक पहुंचने का एक सरल और प्रभावी माध्यम है ध्यान। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ध्यान क्या है, इसके क्या लाभ हैं और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन और एक्सरसाइज आवश्यक है, वैसे ही अपने मन को शांत और मजबूत बनाए रखने के लिए ध्यान आवश्यक है। दोस्तों, ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं बल्कि स्वयं से जुड़ने की एक सुंदर प्रक्रिया है। ध्यान का अर्थ है मन को एकाग्र और शांत करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को अनावश्यक विचारों से हटाकर किसी भी एक बिंदु पर, अपनी श्वास पर, किसी भी मंत्र पर या अपनी आंतरिक चेतना पर केंद्रित करता है। दोस्तों, आइए अब ध्यान के लाभ की चर्चा करते हैं। तो अगर हम ध्यान नियमित रूप से करते हैं तो यह हमारे मन को शांत करता है, हमारे भीतर जो नकारात्मक विचार पनपते हैं उसको समाप्त करता है, व्यक्ति अधिक संतुलित महसूस करता है, तनाव और चिंता को कम करता है। अगर हम नियमित ध्यान का अभ्यास करते हैं तो यह अगर हमारे सामने कोई तनाव वाली बातें आती है तो यह उसे संभालने में मदद करती है, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने में सहायता करती है। लेकिन कब? जब हम नियमित ध्यान करते हैं तब इसका लाभ हमें मिलता है। यह एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार करता है। पढ़ाई हो, जॉब हो या दैनिक कार्यों में ध्यान केंद्रित करना बहुत ही आसान होता है। भावनात्मक संतुलन बनता है। क्रोध, ईर्ष्या, भय जैसी भावनाओं पर नियंत्रण विकसित होता है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बढ़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य, अच्छी नींद आने में भी मदद करती है। दोस्तों, अगर हम लोग नियमित ध्यान करते हैं, अपने जीवन में ध्यान का महत्व देते हैं तो यह हमारे शरीर को आराम का अनुभव कराता है, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा मिलती है, आत्म जागरूकता होती है, व्यक्ति अपनी आदतों, विचारों और व्यवहार को बेहतर समझ पाता है, आत्मविश्वास और आत्म स्वीकृति बढ़ती है। दोस्तों, रिश्तों में भी सुधार होता है। ध्यान से धैर्य और सहनशीलता बढ़ने से परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के साथ संबंध बेहतर हो सकता है। इसके संवाद अधिक शांत और सकारात्मक होता है। दोस्तों, और खास चीज़, इसके नियमित अभ्यास से हमें आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है, जैसे स्वयं को समझने और जीवन के उद्देश्यों पर विचार करने का अवसर मिलता है, आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव गहरा हो सकता है। दोस्तों, ध्यान करना कोई जादू नहीं है। अभी हम लोगों ने इतना लाभ देखा कि ध्यान करने से कितने सारे फायदे हैं, लेकिन यह तब है जब यह हमारे जीवन में नियमित रूप से है। अगर हम लोग प्रतिदिन 10 से 20 मिनट का ध्यान भी करते हैं तो यह हमारे विचारों, व्यवहार और जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यदि हम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं तो हम अधिक शांत, संतुलित और जागरूक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। श्रोताओं, ध्यान के बारे में बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

फिर से स्वागत है श्रोताओं आपका मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं आपकी कम्युनिटी सदस्य अर्चना, आपके साथ इस खास कार्यक्रम योग शक्ति में। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूं ध्यान के बारे में, ध्यान के लाभ के बारे में और इसे कैसे करें। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ध्यान कैसे करें। तो दोस्तों, ध्यान एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से अपनी अंतः चेतना को परमात्म चेतना के साथ जोड़ने, एक रूप करने का प्रयास किया जाता है। भाव भूमिका बनने पर परमात्म चेतना साधक के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को शुद्धता, तेजस्विता जैसे अनेक अनुदान वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, भाव करेंगे कि हम सब जागृत तीर्थ में बैठे हैं। भावना करें कि आपके चारों ओर दिव्य चेतना, गुरु सत्ता और परमात्म सत्ता का प्राण भरा स्नेह लहरा रहा है। आपका शरीर, मन, बुद्धि, चित्त सब उसमें डूबे हुए हैं। सो आइए, जो निर्देश दिया जा रहा है वैसी ही मनोभूमि बनाएं। कोई दृश्य दिखे या ना दिखे, इंद्रियों को कोई अनुभूति हो या ना हो, आप ध्यान का प्रयास करें। आइए अब शांत भरे मन से, श्रद्धा भरे मन से ध्यान करेंगे। तो दोस्तों, आइए किसी भी शांत जगह पर सावधान होकर बैठ जाएंगे। शांत चित, स्थिर शरीर, कमर सीधी रखेंगे, दोनों हाथ को गोद में रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, एकाग्रचित ध्यान मुद्रा भाव समाधि में जाएंगे। ध्यान करेंगे उगते हुए सूर्य का, सूर्य की लालिमा का ध्यान करेंगे। सूर्य के जो प्रकाश है, उनकी ऊर्जा है, वो हमारे शरीर को प्रकाशवान, ऊर्जावान बना रहे हैं। उनके प्रकाश सीधी हमारे शरीर को प्रकाशमय, ऊर्जामय बना रहे हैं। हमारा अंग अंग उनके प्रकाश से प्रकाशवान हो रहा है। भाव करेंगे कि हमारे श्वास के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की तेजस्विता, ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, भरते हुए भाव करेंगे कि हमारे भीतर सूर्य का प्रकाश हमारे नश नारियों में प्रवेश कर रही है। हमारा पूरा भीतर सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के ऊर्जा से ऊर्जावान, प्रकाशवान हो चुका है। अपने भीतर के एक एक अंगों को, एक एक ऑर्गन्स को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपने पैर के दसों उंगलियां, दसों नाखून को देखेंगे। सूर्य के प्रकाश की किरणें हमारे उंगलियों को, दसों नाखूनों को प्रकाशवान, ऊर्जावान बना रहे हैं। धीरे धीरे पैर के ऊपर का भाग, तलवा, एड़ी, टखने, हमारे पिंडलियां, घुटने, हमारी जंघाएं सब उस प्रकाश से प्रकाशवान, ऊर्जावान हो रहा है। अपने पूरे मूलाधार क्षेत्र को देखेंगे। हमारा पूरा मूलाधार क्षेत्र उस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है। हमारा नाभि, नाभि के चारों ओर सूर्य के प्रकाश का, उनके ऊर्जा का तेजस्विता महसूस करेंगे। नाभि से भीतर की ओर प्रवेश करेंगे। हमारे भीतर बरियात, छोटियात, किडनी, लीवर, फेफड़ा सब उस दिव्य प्रकाश से प्रकाशवान, ऊर्जावान हो रहा है। हमारा हृदय उस दिव्य प्रकाश से प्रकाशवान, ऊर्जावान हो रहा है। हमारे दोनों हाथ, हाथ के दसों उंगलियां, नाखून सब उस दिव्य प्रकाश से प्रकाशवान, ऊर्जावान हो रहा है। हमारा गला, नाक, कान, आँख,
सब उस दिव्य प्रकाश से प्रकाशवान, ऊर्जावान, तेजोमय हो रहा है। हमारा मस्तिष्क, मस्तिष्क के सारे न्यूरॉन्स उस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जावान, प्रकाशवान हो रहा है। एक बार पुनः अपने शरीर के भीतर निरीक्षण करेंगे कि कहीं कोई कष्ट, परेशानी, आधी व्याधि तो नहीं है। अगर है तो जब हम श्वास छोड़ते हैं तो भाव करेंगे हमारे शरीर के जितनी आधी व्याधि सब बाहर की ओर जा रहा है। अगर मन में कोई नकारात्मक विचार है तो श्वास के माध्यम से वो विचार बाहर की ओर जा रहा है। श्वास भरेंगे तो भाव करेंगे सूर्य के प्रकाश की किरणें, तेजस्विता, ओजस्विता हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है और छोड़ते हुए हमारे नकारात्मक विचार, आधि व्याधि बाहर की ओर जा रहा है। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, भाव करेंगे हमारा शरीर स्वस्थ, मन शांत हो चुका है। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। इसी के साथ तीन बार हम लोग ओमकार करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए

सर्वरिष्टेषु शांतिर्भवतु। दोस्तों अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे अच्छे से ताकि दोनों हाथों में गर्माहट आ जाए। अब अपने दोनों आँखों पर लगाएंगे, स्पर्श करेंगे। हमारा शरीर स्वस्थ, मन शांत हो रहा है ऐसा भाव करेंगे। ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें ऐसा सौभाग्य दिया कि हम सब ने आज ध्यान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। श्रोताओं आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम योग शक्ति में। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव। तुम

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रांगा और लेकर के आ गई हूँ प्रोग्राम आत्मबोध। ये खूबसूरत सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इसी के साथ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपके पास चले आते हैं और हमारे साथ में मैं अकेली नहीं होती हूँ, स्टूडियो में होते हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। तो आज भी ये स्टूडियो में मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनसे हालचाल जानते हैं और उसके बाद बताती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में।
2: ओम शांति। मैं बीके ज्योति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रियंका, आपको भी से मिलके भी बड़ा अच्छा लगता है जब हम आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस अध्यात्म की बातें करते हैं तो और ही वातावरण के अंदर भी बहुत एक पॉजिटिविटी हो जाती है और जो लोग सुनते हैं उनके भी मन में पॉजिटिविटी जरूर होती होगी। यही हमारी शुभकामना
1: जी। और पूरे दिन में सुबह सुबह का जो वक्त होता है ना, वो बहुत ही ऐसा जिंदगी को जीने वाला वक्त होता है, क्योंकि उसके बाद तो भाग दौड़ शुरू हो जाती है।
2: बिल्कुल।
1: तो सुबह सुबह ऐसी वाणी सुन लेना ही अपने आप में दिन बनाने वाली बात है। बीके प्रिया जी, आप कैसे हैं?
3: बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है हमारे जो भी लिसनर्स हैं, श्रोतागण हैं, वो भी बहुत ही खुश होंगे, बहुत सुखी होंगे। और इसी खुशी और सुख को बढ़ाने के लिए ही हम सभी आप सबके बीच में आज राम चरितमानस जी का शुरुआत कर रहे हैं। और प्रियंका, आप कैसे हैं?
1: जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप लोगों से मिलती हूँ और इतनी सुबह मिलती हूँ तो और बढ़िया हो जाती हूँ, एक अलग सी पॉजिटिविटी। और आप दोनों से मिलती हूँ तो मैं और अच्छी हो जाती हूँ, और साथ ही आप लोगों का साथ हमें मिलता है। शुक्रिया, अपना साथ आप ऐसे ही बनाए रखें। और आप जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और अभी सुनना शुरू किया है या कुछ समय से सुनना शुरू किया है और आपको नहीं पता कि अपनी बातों को रेडियो तक पहुंचाना कैसे, यानी कि हमारे तक पहुंचाना कैसे, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा नंबर है। नंबर है 8010781078। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी बातें, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि प्रोग्राम है आत्मबोध और हम श्री रामचरितमानस शुरू कर चुके हैं, यानी कि पिछले ही हफ्ते हम लोगों ने श्री रामचरितमानस को शुरू किया और उसकी विशेषताएं जानी। इसी के साथ आज भी बहुत कुछ होने वाला है प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले चलिए हम एक प्यारा सा भजन सुन लेते हैं। और उसके साथ ही बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं जो मैं शेयर करने वाली हूँ बीके प्रिया जी और ज्योति जी से। अच्छा बीके ज्योति जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, श्री रामचरितमानस हम आगे शुरू करें, उससे पहले मैं नमन वंदना देख रही थी। इसमें श्री रामचरितमानस में शुरू होते ही नमन वंदना है, जिसमें मैंने जितना पढ़ा तो मुझे यही समझ में आया कि देवताओं को तो नमन किया ही गया है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, असुरों को भी नमन किया गया है।
2: जी।
1: जिनको धिकारा जाता है, यहाँ पर उनको नमन करने की मतलब क्यों ऐसा किया गया है और ये पूरी नमन वंदना क्या है, आप इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए।
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और

0: ये बहुत गहराई से जानने की बातें हैं कि तुलसीदास जी ने इस पूरे रामचरितमानस में बहुत सुंदर ढंग से हर एक चीज की बड़ी अच्छी क्लेरिफिकेशन की है। उन्होंने सबसे, जैसा कि हमने अगर श्रीमद् भगवद गीता आपको याद हो तो हमने किया था
1: जी,
0: उसके अंदर परमात्मा की जो बात कही थी कि परमात्मा सभी जो पुष्पों में सबसे सुंदर पुष्प है, नदियों में जो सबसे उत्तम नदी है, उसकी संज्ञा दे करके और उनको नमन किया गया था, उनकी महिमा की गई थी परमात्मा के बराबर। ऐसे ही यहाँ तुलसीदास जी ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी कुल का है, लेकिन उनमें अगर अच्छे आचरण हो जाते हैं तो वो वंदनीय हो जाता है, वो भी पूजनीय हो जाता है। और इसी चीज को उन्होंने कहा कि जो भी, चाहे वो उत्पत्ति करने वाले हैं, क्योंकि वो चाहे पालना करने वाले, चाहे विनाशकारी, तीनों ही चीजें, क्योंकि ये जरूरी है। तो इस सृष्टि में हम जो लोग हमारी कमियों को निकालते हैं, या जो लोग हमें निग्लेक्ट करते हैं, या जो लोग हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, तो हम कई बार उनसे नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि वो भी कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं, उनका वो व्यवहार भी कहीं ना कहीं हमें कुछ शिक्षा दे जाता है और हमें आगे बढ़ाता है। और जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने सबको नमन किया, चाहे वो यक्ष हैं, देव हैं, अक्षर हैं, या फिर राक्षस हैं, उन्होंने उनमें बताया, जैसे कि राक्षसों की बात कही गई तो रावण में, रावण के भाई विभीषण राक्षस कुल में थे, लेकिन उनके अंदर परमात्म चिंतन था, परमात्मा को वो याद करते थे और परमात्मा से उनका कनेक्शन रहा, उसके नाम में वो डूबे हुए थे, इसीलिए उनको उच्चतम बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया और उनकी वंदना की गई है। ऐसे ही अगर हम यक्षों की बात करें, या हम जैसे हम गाते भी हैं कि वो अंधन को आंख देते हैं, कोढ़िन को काया देते हैं, तो अर्थ इसका क्या है? कोई आंखों के अंधों की बात यहाँ नहीं है, यहाँ जो अहंकार में अंधे हुए पड़े हैं उनको भी वो आंखें खोलते हैं कि आप खोलो आंखें ज्ञान की रोशनी से, अज्ञानता के अंधकार को मिटाओ। कोढ़िन को काया अर्थात जो शरीर होते हुए भी अपने शरीर से कार्य नहीं लेते हैं, जो शरीर को बैठा देते हैं, उनको कहा गया कि उनमें वो बल भर देता है परमात्मा का नाम, उनमें वो ताकत भर देता है। कोई भी तरह की शरीर की विक्षिप्तता भी, अगर शरीर में हमारे कोई कमी है, तो हम सब ये बात जानते हैं कि परमात्मा ने अगर किसी की पांचों इंद्रियों में एक भी इंद्री कमजोर है तो उसकी छठी इंद्री बहुत मजबूत होती है। तो परमात्मा ने उसको कहीं ना कहीं चीज दी हुई है जिसको हम समझ नहीं रहे और हम उसको वीकनेस समझ लेते हैं। तो यहाँ जो महिमाएं की गई हैं, यहाँ जो भी चीजें कही गई, जैसे कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा भी, जो सुमिरत सिद्धि हुई गण नायक करिबर बंदन, करूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। बस याद करें मेरा साथी कौन है, परमात्मा, और मेरे सारे कार्य हुए पड़े हैं, माना मेरे अंदर वो सारी ताकत, वो सारी एनर्जी, वो चार्ज हो जाती है और उसी से हम जो है, जिसके अंदर बताया भी उन्होंने, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करो। गणेश जी को भी आवाहन कर रहे हैं, चाहे वो श्याम वर्ण वाले नील कमल पर विराजित क्षीर सागर में सोए हुए श्री विष्णु जी की बात कहें, चाहे वो शिव की बात करें, चाहे वो पार्वती जी की बात करें, सबकी उन्होंने वंदना की है। और वंदना के पीछे ये है कि सब मेरे लिए सम्माननीय है, चाहे वो फूल है, चाहे वो पशु है, चाहे वो देव है, चाहे वो मनुष्य है, सब मेरे लिए वंदनीय है। और उसी वंदना के शिखर को ये लेकर के श्री रामचरितमानस का शुभारंभ किया गया है और सबको नमन किया गया है। और इसके शुभारंभ हम भी कर रहे हैं, तो हम भी आप सबको नमन करते हैं, जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी हमारा नमन वंदन है कि वो सुने और अपने बुद्धि विवेक को इस्तेमाल करके इसके अर्थ को जाने
1: जी। और जब हम कोई चीज सुनते हैं तो उससे जुड़े कई प्रश्न भी आते हैं, तो अगर आपके जहन में कोई प्रश्न है, कोई बात जो आप हम तक पहुंचाना चाहें, तो हमारा नंबर है, जो कि बहुत ही आसान है, नंबर है 8010781078। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। और जब आप मैसेज करें तो नीचे अपना नाम और अपनी जगह जहां से आप भेज रहे हैं वो लिखना ना भूलें। बीके ज्योति जी ने नमन वंदना बताया कि किस तरीके से तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस शुरू करने से पहले नमन वंदन किया है, जिसमें देवताओं को भी नमन किया गया है, असुरों को भी नमन किया गया है, यहाँ तक कि जो पशु हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनको भी नमन किया गया है। अब जो एक चीज मेरे दिमाग में आई है, जो मैंने इसी में ही देखी, और मैं जानना चाहूंगी बीके प्रिया जी से। प्रिया जी, एक लाइन में मैंने पढ़ा था कि किसी के लिए अगर उसे सिद्धि पानी है या किसी को अपना जीवन तारना है तो उसके लिए राम नाम ही काफी है
2: जी।
1: इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे राम नाम काफी है और किस तरीके से एक आदमी अपने आप को सिद्ध कर सकता है या फिर अपने आप को उतार सकता है संसार से।
2: जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस जो लिखी गई है तुलसीदास जी द्वारा, तो उसमें अगर आप शुरू के ही अर्थ को समझेंगे तो वहाँ दो शब्द विशेष करा रहे हैं, जिसका हम आगे चलकर भी और आपको और अच्छे से बता पाएंगे कि नाम और रूप, यहाँ दो चीजों की चर्चा हो रही है। तो दोनों ही अलग बताए जा रहे हैं। जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने IQ लेवल, जो उस समय उनका लेवल था, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और जो सज्जन अर्थात जो समझदार है, जो समझ सकते हैं वो समझें, और जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ उस चीज को वो करेक्ट करें। तो मैं समझती हूँ कि उनका IQ लेवल हमारे लेवल से तो काफी समय से हाई है। तो उन्होंने वहाँ इस चीज को बहुत स्पष्ट कहा है कि नाम अलग है और रूप अलग है। रूप वो है जो हम देख पा रहे हैं, अर्थात तीर धनुषधारी जो है वो राम जी को देख पा रहे हैं। और नाम जो राम है वो बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा है, बहुत फलदायी है, लेकिन ये राम अलग है। और यहाँ राम नाम जो बताया गया है, इसकी संज्ञा किसी देहधारी पुरुष को नहीं दी गई है। यहाँ राम नाम में अग्नि, सूर्य और चंद्र का समावेश दिखाया है, जो र, आ और म को संबोधित कर रहा है
1: जी।
2: यहाँ र, आ और म ब्रह्मा, विष्णु और शंकर अर्थात महेश को भी संबोधित कर रहा है। अर्थात ये राम नाम इतना बड़ा है कि प्रकृति के जो तीन जो विशेष बताए, जैसे अग्नि, सूर्य और चांद, ये उनसे भी पावरफुल है। और जो पूरी सृष्टि का ही, जिसको कहे स्थापना, पालना और विनाश के लिए निमित्त बताए जाते हैं, ये उनसे भी बड़ा है। तो ये वो राम जो नाम लिया जा रहा है, ये इतना पावरफुल है, इतना सृष्टिकर है, कि अगर इसको हम, जो तुलसीदास जी कहते हैं कि इसको अगर हम उल्टा भी पढ़ते हैं कि मरा मरा मरा मरा भी अगर हम बोलते हैं तो भी ये बाद में आकर आपको सुनाई राम राम राम देगा। तो ये इतना सृष्टिकर है कि अगर आप इसे उल्टा भी पढ़ते हो तो भी आपको इसका फल प्राप्त होता है,
1: इतना पावरफुल है।
2: लेकिन अगेन कि हमें नाम और रूप को पूरी बारीकी से समझना होगा, क्योंकि अगर मैं नाम लेते वक्त रूप किसी और दिशा की तरफ चली जाती हूँ, बुद्धि मेरी उधर चली जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं सेब, दिल में मेरे सेब खाने की चाहत है, पर मुंह, मतलब दिख मुझे सेब ही रहा है, पर मुंह से मैं आम बोल रही हूँ, तो वो चीज फिर क्लैश होती है। तो वो चीज मुझे मेरे अंदर को संतुष्टता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी। फल वो भी है आम और फल वो भी है सेब, लेकिन मैं चाहती सेब खाना हूँ पर मांग में आम रही हूँ, तो फिर वो पूर्ति नहीं होती है। उसी प्रकार से तुलसीदास जी इसको बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट कर रहे हैं कि जो नाम है वो बहुत ऊंचा है और बहुत श्रेष्ठ है, बहुत पावरफुल है, लेकिन जो रूप जब हम नाम लेते हुए अपने मनस पटल पर धारण करते हैं, अगर मेरी बुद्धि उस रीति या उस दिशा में चली जाती है, तो फिर मेरे को उतनी पावर की जो मेरे को होनी चाहिए प्राप्ति, वो नहीं होती है। तो यहाँ इन दोहों में बहुत स्पष्टता है, लेकिन उस स्पष्टता को जानने के लिए हमें उतने ही सरल भाव से, उस नजर से हमें देखना होगा कि यहाँ दो चीजों का वर्णन है, किसी एक का वर्णन नहीं है। और ये हमारे पूरी की पूरी शुरुआत में ही ये दिया गया है, इसीलिए श्रोताओं गणों से भी मेरा अनुरोध है कि जब भी हम श्री रामचरितमानस को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, तो इस बात को हम जरूर ध्यान दें कि यहाँ पर दो चीजों का ही बहुत सुंदर रीति से वर्णन है। तो राम नाम बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है, जिसका देवता भी, जैसे आपने अभी जो शुरू में देखा कि सभी को वंदना की गई है, तो सभी ने रिटर्न में राम नाम की वंदना भी की है। यानी देव गण, असुर गण, दानव गण, पशु गण, जो भी समस्त है, वो सब राम नाम को याद कर रहे हैं। लेकिन चोला जो रूप बोला गया है, वहां वो शब्द यूज नहीं हो रहा है। अर्थात हमें ये चीज लेनी होगी, जब रूप वर्ड आ रहा है तो हम राम जी जो धनुष वाले हैं उनको समझेंगे, और जहां नाम लिया जा रहा है वहां उस रूपधारी राम जी को नहीं बोला जा रहा है, इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है।
1: जी, यानी कि राम नाम जो है वो इतना पावरफुल और इतना स्ट्रांग है कि अगर आप अपने मन में अगर कोई चीज चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे ये नाम पाना है, मुझे अपने मन में वो चीज रखनी होगी, ये बहुत ही पावरफुल ये कहें कि नाम है। और जैसे कि हम सब भी कहते हैं कि अगर मन में कोई चीज आपके है और अगर आप दिल से वो चीज करते हैं तो डेफिनेटली पूरी होती है, तो वही इस नाम के साथ में है। अच्छा, आप राम नाम की बात हुई है तो मुझे याद आ गया, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चार राम की बात की थी। मैं दोबारा से इस पर आना चाहूंगी, बात करना चाहूंगी। और हमने पिछले अध्याय में बात की थी चार राम की, हमने चार राम की इम्पोर्टेंस बताई थी। तो ये चारों राम जो है, मैं ज्योति जी आपसे जानना चाहूंगी, किस तरीके से अलग है और इनमें भी सबसे ज्यादा महिमा किनकी है? क्या ये एक ही रूप है या ये अलग अलग रूप है, और अलग अलग रूप है तो महिमा सबसे ज्यादा किसकी है?
0: जैसा कि चार राम की बात कही गई है तो इसमें तो विदित ही है कि चार राम है तो अलग अलग बताए गए हैं, तो नेचुरली उसमें डिफरेंस तो होगा ही। तो जैसे साधारण और महत्वपूर्ण जो राम की बात कही गई, तो जो कहा गया कि एक राम जो सकल पसारा, जो दुनिया में बच्चों का नाम रख देते हैं राम श्याम, और एक राम जो घट घट लेता, माना जो हम सबके अंदर आत्मा राम विराजमान है, उसके लिए कहा जाता है, तो इसके बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं। लेकिन जो दो राम की बात कही गई कि एक राम जो जग से न्यारा और एक राम जो त्रेता युगी श्री रामचंद्र जी हुए, इन दो राम में कौन महत्वपूर्ण है? तो तुलसीदास जी ने इसके लिए भी बहुत सुंदर इसके अंदर चित्रण किया है कि जो त्रेता युग के श्री रामचंद्र जी थे, उनकी जो बात कही गई है वो एक दैहिक रूप में व्यक्ति आए और उन्होंने आकर के अपने कर्मों से श्रेष्ठता दिखाई कि कैसी भी जटिल परिस्थितियों में उन्होंने अपने गुणों को नहीं छोड़ा, अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। लेकिन यहाँ नाम और रूप दो बातें कही गई हैं, और तुलसीदास जी ने उन्होंने बहुत अच्छा बताया भी है, कहा गया कि एको छत्रु एको मुकुटमणि सब बरनिन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। माना तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप और एक जो है मोर मुकुटधारी, जिसमें आगे भी समझाया कि समझुत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई इस उपाधि, अखत अनादि सुसा मुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, लेकिन दोनों में एक स्वामी है और एक सेवक के समान है। अब स्वामी और सेवक की दोनों की प्रीति है, इसको अगर हम समझना चाहें तो इस विधि से भी समझ सकते हैं। मान लिया हम कोई परेशानी में हम फंसते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद करते हैं, मुझे कोई हेल्प चाहिए, और मेरे को जैसे ही मैं भगवान को याद कर रही हूँ तब तक परमात्मा ने आपको भेज दिया, आपने मेरी मदद की। तो यहाँ पर आप मेरे लिए उस समय भगवान का रूप बन गए, भगवान को याद किया लेकिन मदद मुझे आपसे मिली है। यहाँ दो हैं, आप डिफरेंट हैं लेकिन जिसको याद किया वो डिफरेंट है, लेकिन मदद मुझे क्योंकि आपसे मिली है तो मैं आपको भी डिनाई नहीं कर सकती हूँ। तो आपकी भी इम्पोर्टेंस है, प्लस में उसको जिसको याद किया उसकी भी इम्पोर्टेंस है। तो नाम और नामी, माने जो मदद कर रहे हैं वो दैहिक रूप के व्यक्ति हैं, क्योंकि परमात्मा मदद करने नहीं आते, वो निराकार हैं, वो किसी ना किसी के माध्यम द्वारा हमारे को मदद कराते हैं। तो दो चीजें हैं, ऐसे ही रामचंद्र जी जो है वो दैहिक रूप है, लेकिन जो नाम है उनका, जो राम नाम की बात कही गई, वो निराकार की बात कही गई है। इसी को इसमें कई बार कई लोग सोचते कौन बड़ा कौन छोटा, तो कहीं हम ऐसा ना हो कि अपराध कर ले किसी को डिनाई करके। तो हमें किसी को हम छोटा बड़ा कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर परमात्मा को याद किया और आपको नहीं भेजते तो मेरा कार्य तो नहीं हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो आप भी मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं और परमात्मा भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट, इसीलिए वहाँ सबसे पहले सबकी वंदना की गई है। तो परमात्मा ने यहाँ पर बताया भी है कि कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। अब अगर मैंने नहीं वो किया और मदद मिल रही है तो मैं नहीं पहचानूंगी, लेकिन मैंने अगर याद किया है और उसको तुरंत मुझे मदद मिली तो मेरा माइंड तुरंत जाएगा भगवान ने देखो मेरे को इनको मेरी मदद के लिए भेज दिया है। तो दोनों को याद करना, नाम को भी और रूप को भी। लेकिन हमें दिखता रूप है तो हम ज्यादा फंस किस में जाते हैं,
1: रूप में,
0: रूप में, नाम को भूल जाते हैं। और इसको सबसे ज्यादा जो आगे भक्तों की बात कही गई या जो भी हम भक्त में शिरोमणि, तो उनके बहुत से ऐसे भक्तों की बातें की गई जिन्होंने जाना है और आगे बताया भी है कि ये सिर्फ समझदार ही समझ सकते हैं। प्रभु श्री राम अपने नाम ना का ही अनुगमन करके चले आते हैं। जैसे ही राम नाम लिया तो हमारी बुद्धि में तुरंत आया कि राम जी मेरी मदद के लिए आ गए। तो वो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, लेकिन परमात्मा जो निराकार है, उस निराकार परमात्मा ने ही हमारे लिए बहुत से लोगों को मददगार रूप में। तो हमें दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों राम डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। इसके अंदर जो बात कही गई है कि जैसे दोनों का, तो एक अंधकार साइड है और एक उजाला है, लेकिन हम अंधकार वाली चीजों को तो देख पा रहे हैं
1: उजाले,
0: लेकिन जो उजाला है जो अंधकार को दूर करने वाला है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। मान लीजिए कमरे में रोशनी दिख रही है लेकिन वो बल्ब नहीं हमें दिखाई दे रहा है, कहाँ से रोशनी आ रही है। तो सेम यही चीज आगे भी बताई गई है जिसको हम आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अंधकार क्या है और रोशनी क्या है, नाम और रूप का और क्या डिफरेंस है, इसको बहुत अच्छे से तुलसीदास जी ने आगे बताया है।
1: जी, हम ये जरूर जानेंगे और जानेंगे बीके प्रिया जी से। बीके ज्योति जी ने चार राम के बारे में बताया, लेकिन हाँ एक चीज और बताई अंधकार और उजाले की। तो राम नाम यहाँ पर क्या काम कर रहा है, या अंधकार और उजाला क्या इसके मायने हैं, किस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है राम की इम्पोर्टेंस, ये हम जानेंगे बीके प्रिया जी से। तो प्रिया जी आप बताइए कि जो ज्योति जी ने अंधकार और उजाले की बात की गई है वो किस तरह से की है और क्या वजह है और किस तरीके से राम की इम्पोर्टेंस वहाँ पर है।
2: जी, जैसे कि उन्होंने बताया कि हथेली पर अगर कोई चीज, दो चीज सिमिलर पड़ी है लेकिन आपको नाम नहीं पता, तो दोनों सेम मना होते हुए भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या लेना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसे बुलाना कैसे,
1: बुलाना कैसे।
2: लेकिन अगर वही हमें नाम पता है और सामने कोई भी चीज नहीं पड़ी है तो भी हम बता सकते कि मुझे क्या चाहिए। क्लियर। तो उसी प्रकार से अंधकार और यहाँ प्रकाश की बात हुई है कि प्रकाश ये वो भौतिक प्रकाश की बात नहीं है, या आध्यात्मिकता की प्रकाश कह सकते हैं, या आंतरिक जगत जो आत्मा का उजाला हम कह सकते हैं, कि ये वो उजाला है जो हम भौतिकवाद में नहीं देख सकते या फिजिकल लेवल पर हम इसको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए भी हमें एक समझ की आंख चाहिए या बुद्धि रूपी एक आंख नेत्र हमें चाहिए, और वो हमें ये दर्शाने की कोशिश में तुलसीदास जी है कि यहाँ पर राम को सिर्फ एक नहीं लेकर के चलना है। जो बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल ज्योति जी ने अपने व्याख्यान में दिया है कि अगर हम भगवान को याद करते हैं उसकी मदद के लिए और सडनली कोई एक व्यक्ति आकर के मुझे मदद करता है, तो मैं ना तो उस व्यक्ति को नकार सकता हूँ और ना मैं उस परमात्मा का तिरस्कार कर सकता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने ही अब मेरी हेल्प के लिए उस व्यक्ति को मेरे पास भेजा है। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से हमें श्री राम चरित्र मानस को भी समझना है कि एक निराकार परमात्मा जो सुप्रीम है, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी भी बोल देते हैं, जिसे हमने ब्रह्म भी शब्द शास्त्रों में लोगों ने लिखा है, तो वो परमात्मा अलग है जिसका नाम हम याद कर रहे हैं और रूप जिसके द्वारा कार्य कराने के लिए परमात्मा ने भेजा है, क्योंकि वो तो बिन पग बिन हाथ के हैं, तो वो तो शरीरधारी ना है, इसीलिए उन्होंने हमारे कार्य करने के लिए, क्योंकि कार्य भौतिक है तो उसको भौतिक रीति यानी शरीर से किया जाएगा। तो यहाँ एक शरीरधारी राम नाम के जो देवत्व देवताई गुणों वाला जो व्यक्तित्व दिखाया गया है तो वो अलग है। तो यहाँ जैसे बात हुई कि किसको बड़ा माने और किसको छोटा माने, तो हम इस द्वंद में ना जाएं तो भी अच्छा है, क्योंकि ना तो मेरे लिए वो व्यक्ति कम है जिसने मेरी मदद करी, और ना ही मेरे लिए वो परमात्मा कम हो सकता है जिसकी वजह से मदद
1: भेजी
2: जी। तो यहाँ पर हम इस चीज को लेकर के श्री रामचरितमानस को ना पढ़ें, लेकिन ये बात हम जरूर ध्यान रखें कि दोनों का अपना महत्व है, और हमने इनमें से किसी एक को भी हटाया तो फिर हमारी श्री रामचरितमानस की जो

0: प्राप्ति है, उपलब्धि है, वो हमारी इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो एक बहुत सुंदर दोहा है जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुन सगुन बीच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, यानी इन दोनों को एक्सप्लेन करना ये इतना ज्यादा माना इजी नहीं है। अकथनीय यानी वो बोल नहीं पा रहे, उनके पास शब्द नहीं है उस चीज को अच्छे से क्लियर करने के लिए। वो समझने में सुखदायक है, आप इस चीज को अगर समझ जाएंगे कि यहाँ दो चीजों की बात हो रही है, लेकिन दो चीज में टेक्निकली अगर आप जाएंगे तो शायद कंफ्यूज होंगे। लेकिन अगर दिल से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ एक उस निराकार की बात हो रही है और एक साकार शरीरधारी की बात हो रही है, तो ये सुखदायी लगेगा। तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि निराकार को एक्सप्लेन हमारे शास्त्रों में उस रीति से करने में हमारे जो उस स्तर के लेवल के जो महाऋषि रहे या ऋषिगण रहे, उन्होंने कहा है ये बात को कि हम नेति नेति, अर्थात हम पूरी तरह से नहीं जानते। तो जितना हमें बताया गया है उस निराकार के बारे में, तो यहाँ तुलसीदास जी भी वही कह रहे हैं कि वो अकथनीय है, उनके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषीय है। यानी वो कह रहे हैं यहाँ परमात्मा को उन्होंने निर्गुण कहा, तो निर्गुण को शब्द वाचक हम ना लें, निर्गुण माना जिसमें कोई गुण ना हो, लेकिन यहाँ निर्गुण वो बोला गया कि जिसमें भौतिकता का कोई गुण नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, यहाँ वो निर्गुण बोला गया। कि वो गुण और अवगुण सगुण जो भी शब्द आते हैं ये उनसे बियॉन्ड है, पार है। तो परमात्मा को उन्होंने निर्गुण कैटेगरी यानी किसी भी तुलना से भी अतुलनीय बताया है। और जो राम जो फिजिकल हम देख पाते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि वो जो सगुण है, जिनके गुण हमें दिख रहे हैं कि भाई मधुर भाषी है, बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत उनका हृदय जो है कोमल है, तो जो हमने उनके गुण पढ़, ये सगुण बोला गया है। तो यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं कि दोनों को एक्सप्लेन करना, ये दुभाषी यानी जो समझाने वाला भी बहुत इंटेलिजेंट है, जो इन चीजों को समझ पाए या समझा पाए, तो उन्होंने अपने पूरा लेवल जोर लगा करके बताया है कि यहाँ पर दो चीजों का वर्णन है और हमें उन दोनों को अपनी बुद्धि में रख करके अगर हम पढ़ते हैं तो इसका संपूर्ण प्राप्ति है। और परमात्मा के अंत में वो ये कहते हैं कि जो परमात्मा के गुण या रहस्य को जानना चाहते हैं, यहाँ पे राम जी का नाम नहीं यूज हुआ है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, यहाँ वो स्पष्ट कहते हैं कि जो परमात्मा के गुण रहस्य को यानी यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। यानी अगर हम अगर उस निराकार की तरफ जाना चाहते हैं, तो अगर मैं उस निराकार को अपने माइंडसेट में रखता हूँ और मुंह से उनका नाम भी लेता हूँ तो भी मैं स्पष्ट समझ सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे मनसपटल में वो चीज नहीं आ रही है और सिर्फ मैं जप रहा हूँ, जो हम करते हैं नॉर्मली, हम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे हैं, लेकिन मेरा आई जो बुद्धि का जो मनसपटल है, जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ इस चीज पर तुलसीदास जी जोर देते हैं कि आपके मन बुद्धि में क्या है, तो फिर जीभ से भी जो आप बोलेंगे वो ठीक है
1: बिल्कुल।
0: और अगर आपके मन बुद्धि में वो चीज नहीं है, तो जो जीभ से आप बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से सटीक नहीं होगा।
1: तो यानी कि अगर उनको पाना है और उनसे किसी प्राप्ति की अगर हमें कहें कि उम्मीद है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर भी वो चीज रखनी होगी, राम नाम रखना होगा, तभी वो जबान से निकलेगा और उसकी कहें कि फल की प्राप्ति हो सकती है। और यही हम लोग प्रैक्टिकली देखते भी हैं, अगर मन में ही वो चीज नहीं है तो वो आपको, आप चाहे जितने भगवानों का नाम ले लें, आपको वो नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके लिए मन में संकल्प लेना जरूरी है। और राम नाम या जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके बारे में एक वो सोच रखना, एक वो अच्छी कहें कि कामना रखना बहुत जरूरी है, बहुत खूब। ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है, लेकिन ये सारी बातें हम करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल आज दीजिए हमें इजाजत, और चलते चलते बस आपसे यही कहूंगी कि अपना ध्यान रखिए, और आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, जिस माहौल में हैं, खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और अगर कठिन परिस्थिति में फंसे भी हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली है। तो बस इसी के साथ और इसी अच्छे विचार के साथ में हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों और कथाओं को हम आपके लिए लेकर आते हैं और स्टूडियो में होती हैं रागले खदासी जी, चरणाशी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदान नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी श्रोताओं, आजकल हम बात कर रहे हैं महाभारत ग्रंथ के अंदर समाहित बहुत सारी कथाओं के बारे में, और शायद इन कथाओं को आपने महाभारत जो सीरियल टीवी पर प्रसारित होता था उसमें देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन हम आपको रागलेखा दासी जी से पूरी व्याख्या, पूरी कथा सहित ये बता रहे हैं बहुत सारे प्रसंग। और पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी हमें उस कथा के बारे में बता रही थी जहाँ पर भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी, और बहुत सुंदर ये वृतांत जो है रागलेखा दासी जी हमें बता रही थी। तो आगे इसमें आज इस कथा को आगे जारी करते हुए आगे की कहानी जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी,
1: इस प्रकार जो भीम थे वो आगे बढ़कर कैलाश पर्वत के समीप कुबेर के राजभवन के पास एक सरोवर के निकट पहुँचे। भीमसेन ने वहाँ पहुँचकर उसका निर्मल जल जी भर कर पिया। महात्मा कुबेर इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करते थे। उस सरोवर और सुगंधित वन को देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा कुबेर की ओर से हजारों क्रोधवश नाम के राक्षस तरह तरह के शस्त्र पहनावे से सुसज्जित होकर इस स्थान की रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहु भीम के पास आकर उनसे पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं? आपका वेश तो मुनियों का सा है, परंतु आप हथियार भी लिए हुए हैं, कहिए आप किस उद्देश्य से आए हैं? राक्षसों, मेरा नाम भीमसेन है, मैं धर्मयाद युधिष्ठिर का छोटा भाई हूँ और महाराज पांडु का पुत्र हूँ। राक्षसों ने कहा, ये यक्षराज कुबेर का प्रिय क्रीड़ा स्थान है, यहाँ मरणाधर्म मनुष्य विहार नहीं कर सकता। आप महाराज की आज्ञा ले लीजिए, फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे, क्योंकि द्रौपदी के कहने पर भीमसेन यहाँ पे सुगंधित कमल लेने आए थे। द्रौपदी जी ने कहा कि मैं कमल महाराज युधिष्ठिर को भेंट करना चाहती हूँ और मैं इसको काम्यवन ले जाऊंगी। तो उसी को ढूंढते ढूंढते भीम यहाँ पर आए हैं और यक्षों से उनका सामना हुआ, कुबेर के जो अनुचर थे।
0: जी जी,
1: और नहीं तो आप कमलों के तरफ झांक भी नहीं सकते। भीमसेन बोले, राक्षसों, राजा लोग मांगा नहीं करते, यही सनातन धर्म है। ऐसा कहकर भीमसेन और राक्षसों की उपेक्षा कर स्नान करने के लिए सरोवर में उतर पड़े। जब वे राक्षसों ने उन्हें रोका, वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उन पर टूट पड़े। भीमसेन ने भी अपनी यमदंड के समान सुवर्ण मंडिता भारी गदा को उठाकर ठहरो ठहरो ऐसे चिल्लाते हुए उन पर आक्रमण किया। इससे राक्षसों का रोष भी बढ़ गया और वे चारों ओर से घेर कर उन पर तोमर कटी शादी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उनके शस्त्रों के खंड खंड करके सरोवर के पास ही सैकड़ों वीरों को बिछा दिया भीम ने। उन्होंने यक्षराज कुबेर के पास जाकर बहुत डरते डरते युद्ध में भीमसेन के बल और पराक्रम का वर्णन किया। राक्षसों की बात सुनकर कुबेर बड़े हंसे और बोले, मुझे इन सब बातों का पता है, द्रौपदी के लिए भीमसेन को जितने कमल चाहिए उतने ले जाएं। राक्षसों का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे भीमसेन के पास आए। भद्रिका आश्रम में भीमसेन के युद्ध की सूचना देने वाला बड़ा वेगवान तीखा और धूल बरसाने वाला वायु चलने लगा। अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। ऐसी विचित्र स्थिति देख के धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली भीम कहाँ है? मालूम होता है वह कहीं कुछ भयंकर कर्म करना चाहता है अथवा कुछ भी कर बैठा है, क्योंकि अकस्मात होने वाले उत्पात किसी महान युद्ध की सूचना दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से कहा कि जिस ओर भीम गया है उसी ओर हम सबको शीघ्र ही शीघ्र रास्ता चलना चाहिए। राक्षस लोग तो ब्राह्मणों को ले चले और घटोत्कच तुम द्रौपदी को ले चलो। उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुंदर वन में कमल की सुवासित अत्यंत मनोहर सरोवर को देखा। उसी के तीर पर परम तेजस्वी भीमसेन दिखाई दिए, जिनके पास अनेकों मरे हुए यक्ष भी देखे। इस प्रकार भीमसेन को समझाकर उन्होंने सौगंधित कमल ले लिए और देवताओं के समान उस सरोवर में क्रीड़ा करने लगे। अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समय वहाँ पर गंध मादन के शिखर पर ही निवास किया। फिर उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ये मार्ग बहुत दुर्गम है, इसलिए कुबेर के आश्रम से आगे ना बढ़कर तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से नर नारायण के स्थान बद्रिकाश्रम को लौट जाए, क्योंकि ये सब देवताओं के स्थान है, तो इसके आगे जाना उनके अनुमति नहीं थी।
0: जी जी।
1: अब हम जटासुर के वध की बात करते हैं। एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया, बोला मैं समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ। ऐसा कहकर वे सर्वदा पांडवों के धनुष और तरकश और द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे, वो मशादी महर्षि गण स्नान करने चले गए। उसी समय जटासुर भयानक रूप धारण करके तीनों पांडव द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस ने अपनी की कौशिकी नामक तलवार छीन कर जिस और भीमसेन गए थे उस और आवाज लगाने लगे। युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए और उनके भार से दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम उस मूल राक्षस से डरो मत, मैंने उसकी गति को कुटिल कर दिया है। अकस्मात इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने कहा, राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाता है। भीमसेन ने ललकारा, हे रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसीलिए मैं तुझे कैसे मारता। ये राक्षस से ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं है, और जो बिना अपराध के मारता है नरक में जाता है। तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा सकता, बट तुझे बक और हिडिन के रास्ते में जाना होगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। फिर इन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे को चोटे करने लगे। उन्होंने वज्र के समान वेग वाली शिलाओं से लड़ना आरंभ किया। अंत में वे आपस में एक दूसरे को घूसों की वर्षा करने लगे। जिस समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा, उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका हुआ देख कर भीमसेन ने उसे पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए। कोहनी की चोट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया।
0: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हम जान रहे हैं लागलिखा दासी जी से, अभी किस तरह से जो भीमसेन हैं वो पहुंचे थे कमल पुष्प लाने के लिए, और अब हमने जटासुर के वध की भी कथा लागलिखा दासी जी से जान ली है। अभी हमने जटासुर के वध की कथा को जाना और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लागलिखा दासी जी से अगली कौन सी कथा वो सुनाने वाली है। जी
1: जी। जटासुर के वध के बाद महाराज युधिष्ठिर फिर नर नारायण के आश्रम में जाकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया है, क्योंकि अर्जुन तो 12 वर्ष के उसमें अज्ञातवास में गए थे, तो वो अभी अर्जुन को स्मरण कर रहे हैं। अर्जुन ने मुझसे कहा था कि मैं 5 वर्ष का स्वर्ग में अस्त्र विद्या सीखने के बाद यहाँ मृत्यु लोक में लौट आऊंगा। वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं वो राक्षस लोग उन्हें कंधे पर बैठा कर ले जाते पांडवों को। 7वें दिन हिमालय की पवित्र पृष्ठ पर पहुंचे, वहाँ उन्हें राजऋषि विश्वकर्मा का पवित्र आश्रम देखा। पांडवों ने शास्त्र में पहुँच कर परम धार में राजऋषि विश्वकर्मा को प्रणाम किया। राजऋषि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया और उनसे सत्कृत हो पांडवों ने वहाँ 7 दिन रात-रात निवास किया। क्रमशः उन वीरों ने परम पवित्र गंधमादन के वन में प्रवेश किया। फिर उन्होंने फल फूल वाले वृक्ष से सुशोभित राजऋषि अरिष्टसेन का आश्रम देखा। राजऋषि बड़ी तपस्वी थे, उनका शरीर अत्यंत कृष्ण था, शरीर की नसें दिखाई देने लगी थी। अरिष्टसेन ने कहा, पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि में इस पर्वत पर केवल जल या पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगण आकाश मार्ग से आते हैं। उस समय यहाँ भेरी पनव शंख और मृदंगों का शब्द भी सुनाई देता है। आप लोगों को यहीं बैठ बैठ कर उसे सुनना चाहिए। यहाँ से आगे तुम्हारे लिए जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है और उसमें मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। इस कैलाश के शिखर को नाम कर केवल परम सिद्ध और देव ऋषि ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की पर्चियों से मारते हैं। अतः जब तक अर्जुन आए तब तक आप यही निवास कीजिए। इस प्रकार वहाँ रहते हुए उनके वनवास का 5वां वर्ष भी बीत गया। तब हम एक प्रसंग लेते हैं भीम का सर्प के चंगुल में फंसना और युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्न का उत्तर। एक समय भीमसेन स्वेच्छा अनुसार वन की शोभा

0: देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनकी कमर पर तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था। भीमसेन धीरे धीरे चले जा रहे थे, इतने में उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। भीमसेन को सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उनके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, तो भी उस सर्प के चंगुल से में फंस कर वे बेकाबू हो गए। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देख कर घबरा उठे। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए बहुत देर हो गई। भीमसेन के पैरों का चिन्ह देखते हुए वे उस वन में उनकी खोज करने लगे। ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गए हैं। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान, तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। सर्प बोला, ये राजकुमार मेरे मुख में स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकने में कल्याण नहीं है, अगर रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, सर तुम कोई देवता हो या दैत्य हो या वास्तव में सर्प ही हो, सच बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। जंगम बोलो तो सही, कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो, तब भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? सर्प बोला, राजन, मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था। मैंने अनेकों यज्ञ की, तपस्या की, स्वाध्याय किया और अपने मानव इंद्रियों को विजय प्राप्त करी
1: जी।
0: उस समय सत्कर्मों से और अपने पराक्रम से मुझे तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उसी ऐश्वर्य को प्राप्त कर मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने मन मदोन्मत होकर ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित होकर महर्षि अगस्त ने मुझे उस अवस्था में पहुँचा दिया। महाराज अगस्त की ही कृपा से आज तक मेरे पूरी जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। ऋषि के शाप के अनुसार दिन के छठे भाग में ये तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ, अतः मैं ना तो इसे छोड़ूंगा और ना ही इसके बदले दूसरा आहार लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो इसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। सर्प ने पूछा, राजा युधिष्ठिर, बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले, नागराज, सुनो, उसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या, दया, ये सद्गुण दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण है। जानने योग्य तत्व हो तो पर भ्रमी है और सुख दुख से परे है, यहाँ पहुँच कर भी उसे जाना मनुष्य के शोक से पार हो जाता है। अहिंसा, दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं, किंतु अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। तुमने सुख दुख से रहित पद बतलाया है, इसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार से तो सुख दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्रों में सत्य उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मणों में नहीं है, तो वे शूद्र शूद्र नहीं है और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए और जिसमें इसका अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। किंतु जिस प्रकार शीतल जल में उष्णता नहीं रहती और उष्ण स्वभाव वाले अग्नि में जल की शीतलता नहीं होती क्योंकि उसमें परस्पर विरोध है, इसी प्रकार जो वेद पद है उसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करने के लिए अपने से अभिन्न समझना है, उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख और दुख से संपर्क नहीं होता। सर बोला, राजन, यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है क्योंकि इस समय सभी वर्णों में सम्मिश्रण हो रहा है, सभी मनुष्य सभी जाति के स्नेह से संतान उत्पन्न कर रहे हैं, बोलचाल, मैथुन, मित्रवृत्ति, जन्म मरण ये सब मनुष्यों को एक से देखे जाते हैं। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील सदाचार को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल फेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है। उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है। उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसके वेद का स्वाध्याय नहीं कराया जाता तब तक वे शूद्र के समान है। यदि वैदिक संस्कार करके वेद अध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आया तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो उसे ही मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया। सर बोला, युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो। तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया उसे मैंने भली बात ही सुन लिया। अब तुम मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ? युधिष्ठिर ने कहा, सर्वराज तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता हो, बताओ किन कर्मों के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है। अब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं और सर्व उत्तर दे रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, दान और सत्य में कौन बड़ा है? अहिंसा और प्रिय भाषण इसमें किसका महत्व अधिक है किसका कम? सर बोला, प्रिय भाषण इनका गौरव लाघव कार्य की महत्ता के अनुसार देखा जाता है। किसी दान से तो सत्य का महत्व बढ़ जाता है और किसी सत्य भाषण से दान बड़ा होता है। इस प्रकार कहीं तो प्रिय बोलने की अपेक्षा अहिंसा का अधिक गौरव है और कहीं अहिंसा से बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व है। इस प्रकार इनके गौरव और लाघव का विचार कार्य की अपेक्षा से ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मृत्यु काल में मनुष्य अपना शरीर तो यही त्याग देता है, बिना देह के वे स्वर्ग में कैसे जा सकता है और कर्मों के अवश्यंभावी फल को कैसे भोगता है? सर्प ने कहा, राजन अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव की तीन प्रकार की गति देखी जाती है। स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म और पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होना। यदि आलस्य और प्रमाद को त्याग कर वह अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है तो उसे पुण्य की अधिकता के कारण स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में और पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, हिंसा में तत्पर होकर जीव मानवता से भ्रष्ट हो जाता है और अपनी मनुष्य होने की योग्यता को भी खो बैठता है। वही प्रिय योनि में जन्म लेता है, फिर सत्कर्म का आचरण करने के निमित्त मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर उसकी प्रिय योनि से उद्धार होता है। युधिष्ठिर बोले, सत शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इसका आधार क्या है, इसका यथार्थ रीति से वर्णन करो। तुम सब विषयों को एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते? विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा ये मन किसी एक ही विषय में लगाया जाता है, इसलिए एक साथ इसके द्वारा अनेकों विषयों का ग्रहण करना संभव नहीं है। जिसे हम बुद्धि इंद्रिय और मन से युक्त होने पर भोक्ता बताया है वही माया अनात्मा के चिंतन में लगी हुई उत्तम अदम बुद्धि को रूप आदि विषयों की ओर प्रेरित करता है। ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है और वही सबका आधार है। युधिष्ठिर ने कहा, हे सर मुझे मन और बुद्धि का ठीक ठीक लक्षण बताओ। सर बोला, बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती है। अन्यथा वह आधार के बिना टिक नहीं सकती। विषय और इंद्रियों के संयोग से बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहले ही उत्पन्न है। बुद्धि स्वयं वासना वाली नहीं है, वासना वाला तो मन ही है। युधिष्ठिर बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम तो जो कुछ जानना है जान चुके हो। तुम्हारी दुर्गति के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। सर्प ने कहा, ये धन और संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यों को भी मोह में डाल देते हैं। मेरा तो ये अनुभव है कि सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मंदोन्मत्त हो गया था और मोह के कारण जब मेरा अधपतन हो गया तब श्वेत हुआ। अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुमसे वार्तालाप करने से मेरा वह कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया। पूर्व काल में मैं जब स्वर्ग का राजा था दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था। इसमें अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। जो भी इस त्रिलोकी में निवास करते थे सभी मुझे कर दिया करते थे। उस समय मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर आंख उठाकर देखता उसका तेज छीन देता था। मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया था कि 1000 महर्षियों ब्रह्म ऋषियों ने मेरी पालकी धोई। चट्टाचार ने मुझे राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। मुनिवर अगस्त पार्टी धो रहे थे, मैंने उन्हें लात मारी और तब एक रोज में भर कर मैंने कहा, अरे वो शर्ट तू नीचे गिर। तब मेरे राज सिंह गुप्त हो गए और मैं उत्तम विमान से गिर पड़ा। मुझे मालूम हुआ मैं सर्फ होकर नीचे मुख किए गिर रहा हूँ। अगस्त ने से याचना की, भगवान मैं प्रमाद व शिवेक्षण में हो गया था, इससे आप घोर अपराध हुआ है, आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें जिससे मैं शाप का अंत हो जाए। तब धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें शाप से मुक्त करेंगे और इस अहंकार और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा, इस समय तुम्हें फिर पुण्य का फल प्राप्त होगा। महाराज तो ये है तुम्हारी भाई महाबली भीमसेन, तुम्हारा कल्याण हो और मुझे विदा दो, मैं पुनः स्वर्लोक को जाऊंगा। ये कहकर राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया, दिव्य देह धारण करके वे पुनः स्वर्लोक में चले गए।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जाना कि किस तरह से युधिष्ठिर जी ने जो है एक अजगर को उनके श्राप से मुक्ति दिलाई। राजा नहुष थे वो स्वर्ग में विचरण करते थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उनको ये योनि मिली और किस तरह से युधिष्ठिर ने उनको उनके श्राप से मुक्त किया, ये कथा हमने जानी आज रागलेखा दासी जी से। तो श्रोताओं, आगे और भी कथाएं हैं, प्रसंग हैं जो हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबादवासियों, बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, यानी कि डेली आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे। जी हाँ, यहाँ पर आपके साथ रहती हूँ, अपने प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग लेकर के आती हूँ और हम करते हैं बहुत सारी बातें। जी हाँ, आज क्या कुछ खास है बताने वाली हूँ आपको, लेकिन उससे पहले ना अभी एक छोटा सा मैं ब्रेक लेने वाली हूँ, क्योंकि देखिए सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आप जल्दी जल्दी से उठ जाइए और अपनी मॉर्निंग वॉक शुरू कर दीजिए, मेडिटेट करना शुरू कर दीजिए और बहुत सारी जानकारी जो मैं लेकर के आ गई हूँ बस उसे सुनिए और गाने एंजॉय कीजिए। जी हाँ, तो चलिए अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। सेगमेंट का टाइम जो है ये हो चला है और सेगमेंट है दिल धड़कने दो, दिल धड़कने दो। ये जो सेगमेंट है इसमें लेकर के आती हूँ बातें हेल्थ और फिटनेस की। देखिए आज बहुत सारी आपकी बात जो है, देखिए आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ हेल्थ से जुड़ी हुई। और देखिए हम जब भी हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि भाई हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर होनी चाहिए, एक अच्छी नींद होनी चाहिए, उसमें एक अच्छी डाइट में खाना होना चाहिए और साथ ही साथ देखिए आपकी एनर्जी होनी चाहिए। अब बात आ जाती है अगर नींद पूरी नहीं होती है ना, जो पहले ही है, जो नींद पूरी नहीं होती है तो देखिए आप ना ही खाने में मन कर पाता है और ना ही आपकी बॉडी में रहती है एनर्जी। अब आजकल लोगों की लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है और इस वजह से लोग कई सारी बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। मोटापा, डायबिटीज़, दिल की बीमारी तो जैसे आम हो गई है। अब इसका असर जो है हमारी मेंटल हेल्थ पर दिखने को मिलता है। इस वजह से लोगों में नींद ना आने की समस्या जो है वो भी दिखने को मिलती है। अब बात आ जाती है ऐसे में लोग गलत तरीका जो है अपना लेते हैं। अच्छा कई लोग जो हैं वो अलग अलग सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, स्लीपिंग पिल्स का जो है सहारा लेते हैं या फिर ड्रिंक तक करने लगते हैं, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। अगर आप भी नींद ना आने की समस्या से परेशान हैं, उन लोगों में से हैं जो परेशान हो रहे हैं या फिर उन लोगों को जानते हैं जो परेशान हैं, तो आज कुछ आपको बेहतरीन चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आपको जो है ख़ास 7 से 8 घंटे की नींद के लिए आपको ज़रूर करना ही करना है। और वो क्या है, किस तरह से आप इस अनिद्रा की समस्या से परेशान अगर हैं आप तो किस तरह से आप निजात पा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना और 7.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ रोजाना सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मैं, मंडे टू संडे। जी हाँ, अब हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ। अब बात एक बहुत ही खास कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही थी जिसे नींद नहीं आती वो क्या करे। तो देखिए, एक बहुत ही खास एक्सरसाइज है जो आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, एक बहुत ही खास तरीका जो है 4-7-8 जो है, ये एक तरीका है। इससे आप जो है अपनी जो नींद है ना उसे आप जो है वापस ला सकते हैं। अब 4-7-8 क्या है, देखिए मैं आपको बता दूँ। 4-7-8 एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसे जो है भाई काफ़ी ज़्यादा कारगर माना गया है। ये सांस की गति को कंट्रोल करके शरीर के नर्वस सिस्टम को शांत करती है। और इसमें जो है 3 मेन स्टेप होते हैं, यानी कि 4 सेकंड तक सांस लेना, इसके बाद 7 सेकंड तक सांस रोकना और 8 सेकंड तक धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ना। और इसे जो है कम से कम 4 बार दोहराना होता है, जिससे आपको जो है 1 राउंड इसका मिल जाता है। तो इस तरीके से 4-7-8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जाती है। अब ये 4-7-8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज बड़ी कारगर है। अब कैसे, क्योंकि देखिए ये जो काम है, टेक्निक जो है काफ़ी ज़्यादा कारगर है। जब हम 4-7-8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ हमारी सांस पर होता है, जिससे दिमाग में चल रही जो काफ़ी सारी बातें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं, वो धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। ये मन को शांत करता है और इसके अलावा ये हार्ट रेट को धीमा करता है, तनाव को और चिंता को ये दूर करता है। और एक बेहतरीन ये एक्सरसाइज है, इससे आपको नींद ना आने की समस्या जो है ना वो दूर हो जाएगी। और इसको करने से आपका दिमाग जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेहतरीन तरीके से काम करेगा, क्योंकि दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, ये नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। और यही कारण है कि कई लोग मानते हैं कि 4-7-8 जो टेक्निक है ये आप ज़रूर अपनाइए और इससे मिनटों में नींद जो है वो आने लगती है। बहुत ही कारगर ये तरीका है। अब ये एक्सरसाइज आपको जो है वो किस तरह से करनी है, कब करनी है, कितनी बार करनी है और कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती है, सारी जानकारी आपको दूंगी। लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेस्टोरेंट 7.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 7.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। जी हाँ, बातें हमारी चल रही हैं कि जब नींद नहीं आती है ना, तो किस तरीके से वापस लाया जाए। तो मैंने आपको बताया है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में। ये एक्सरसाइज जो है किस तरह से आपको करनी है, सबसे पहले बिस्तर पर आपको लेट जाना है या फिर किसी शांत जगह पर आपको बैठ जाना है। जब आप अपनी आंखों को बंद करें और शरीर को ढीला छोड़ें, तो देखिए आपको क्या करना है। इसके बाद आपको मुंह बंद करके 4 सेकंड तक नाक से धीरे धीरे सांस लेनी है। याद रहे, सिर्फ 4 सेकंड। इसके बाद आपको क्या करना है, मुंह बंद करके जब आप 4 सेकंड धीरे धीरे सांस लेंगे, अब इस सांस को 7 सेकंड के लिए रोक के रखना है। गिनती आप कीजिए मन में, 7 सेकंड के लिए आपको अपनी श्वास को रोक के रखना है। इसके बाद आपको मुंह से धीरे धीरे 8 सेकंड तक सांस छोड़नी है। 4-7-8 यही ये तरीका है, एक्सरसाइज जो है ये ब्रीदिंग टेक्निक है जिससे आपको नींद आ सकती है। यही जो प्रक्रिया है आपको कम से कम 4 बार दोहरानी है, और 4 बार दोहराने का मतलब है कि आपका 1 राउंड हो चुका है। शुरुआत में अगर सांस रोकने में आपको कठिनाई आ रही है, तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, लेकिन आप इतनी जल्दी हड़बड़ाइए मत। आराम आराम से इसको जो है एक्सरसाइज को जरूर कीजिए। इसे सोने से ठीक पहले आपको इसकी प्रैक्टिस जो है वो करनी है, चाहे आप 2 चाहे 3 दिन के लिए। देखिए, आप अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, थोड़ी मुश्किलात आ रही है, लेकिन धीरे धीरे आदत इसको आप बना लीजिए। और देखिए, दिन के समस्या में भी, अगर आपको दिन में भी अगर सोने में आपको लग रहा है कि दिन में एक नींद होनी चाहिए, छोटा सा नैप होना चाहिए, तब भी आप कर सकते हैं। ऐसे कोई इसमें नहीं है कि आप नहीं करेंगे। तो देखिए, नींद जो है अगर आपको कभी भी चाहिए होती है ना, जैसे मेन होती है रात की नींद, तो रात में ज़रूर कीजिए। और अगर आप इसका डेली प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, तो एक गहरी आपको नींद ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि आपको अभ्यास जो है वो अच्छा हो गया। इसी के साथ साथ देखिए क्या होता है ना, कि एक क्वालिटी नींद के लिए ना ज़रूरी है कि अपनी श्वास पे, अपने सांस पे आपको ध्यान रखना। तो इससे कोई खराब तो नहीं है। देखिए, अगर आप अपनी सांसों पे फोकस कर रहे हैं, तो आपको सुकून ही पहुंचता है, मानसिक रूप से आपको सुकून मिलेगा, तो आपको कुछ बुरा नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको जो है फोकस पार आपका बढ़ेगा, ये प्रैक्टिस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक परफेक्ट तरीका है जिससे आपकी नींद जो है ये आ सकती है। तो अगर आप भी नींद की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, आपको भी दिक्कतें आ रही हैं, तो अब सोचने वाली कोई बात नहीं बची है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है जिसका नाम है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। जी हाँ, 4 मतलब यानी कि 4 सेकंड तक सांसें लेनी है, 7 सेकंड तक रोकनी है, और 8वें सेकंड आपको जो है धीरे धीरे सांस रिलीज कर देनी है। ये आपको 4 बार एक्सरसाइज करनी है। इसका मतलब है 1 राउंड हो गया, 4 का सेट ये बन गया है, 1 सेट हो गया। ऐसे आप जितनी बार करेंगे, उतनी बार जैसे आपको नींद आ जाती है, बस आप सो जाइए। तो चलिए, इसी के साथ अब लेती हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी खूबसूरत बातें, क्योंकि अब इसके बाद सेगमेंट ले आती हूँ मैं आपके पास, स्ट्रेच प्लीज। रिया सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज, जिसमें हम बात करते हैं योगा और मेडिटेशन की। आज क्या कुछ खास है बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. और बात करते हैं हम बहुत सारी. देखिए, अभी हमने बात करी सेगमेंट दिल धड़कने दो में, हमने हेल्थ और फिटनेस की हम बात तो करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अब आ जाता है सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज. स्ट्रेच प्लीज में मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए कमाल की योगासन. आपको बताती हूँ आज बहुत ही जरूरी योगासन के बारे में आपको बताने वाली हूँ. जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन योगा आसन के बारे में जो कि अभी इस मौसम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जी हाँ, देखिए ऐसे योगा आसन जो कि गर्मियों के सीजन में आपको आराम यानी कि ठंडक दे सकते हैं, कूलिंग इफेक्ट दे सकते हैं, और एक बेटर जो ब्रीदिंग है ये भी दे सकते हैं, साथ ही पीसफुल माइंड भी देंगे. अब ऐसे कौन से योगा आसन है तो चलिए जल्दी से आपको बता दूं. सबसे पहले बात करते हैं एक ठंडक भरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि शीतल प्राणायाम की. इसमें टंग को स्ट्रॉ जैसे शेप में आपको रोल करना है और उसके बाद इसको जो है आपको हवा को अंदर आपको लेना है. जल्दी से करके देखिए, आपको एक ठंडक एहसास जो होगा ना वो आपको मिलेगा, और गर्मी को आप इससे बाय बोल सकते हैं. और शीतल जो प्राणायाम है ये, इसको जो है आपकी बॉडी से जो फायर है ये बिल्कुल बाहर निकाल देगा, क्योंकि इससे ठंडक आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी. तो पहला प्राणायाम है शीतल प्राणायाम, जिससे आपको ये जो कूलिंग इफेक्ट है गर्मी के मौसम में ये मिल सकता है. दूसरा है अनुलोम विलोम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जी हाँ, देखिए बात जो है वो अनुलोम विलोम की, एक क्लासिक और पावरफुल प्राणायाम की मैं बात कर रही हूँ. इस ब्रीदिंग टेक्निक से आपके अंदर की जो हीट बैलेंस है ना ये हो जाता है, स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल में रहता है, और इम्यूनिटी वो भी बूस्ट होती है. तो माइंड को काम करो, गर्मी को शांत करो अनुलोम विलोम के साथ. इसी के साथ साथ तीसरा आसन आ जाता है हमारा, जो है वो है विपरीता जो करानी है, यानी कि लेग्स अप द वॉल पोज. ये जो है काफ़ी ज़्यादा आसान तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो अगर आप करेंगे तो ये ज़रूर आपको फ़ायदा देगा. यानी कि अगर थके हुए पैर और हैवी बॉडी फील हो रही है आपको इस गर्मी के मौसम में, तो आप ये जो आसन है ट्राई कर सकते हैं. यानी कि विपरीता जो आसन है, यानी कि करानी है, विपरीता करानी आसन जो है ट्राई कर सकते हैं. पैर वॉल के ऊपर आपको जो है बैक फ्लोर पर रखना है आपको, यानी कि आपको सपोर्ट जो है वॉल की लेनी है, पैरों से उल्टा आप पैरों को ऊपर रख के बस ऐसे रिलैक्स करना है आपको 5 मिनट तक के लिए. ये जो पोज है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और गर्मी से रिलीफ देता है. रात को अगर आप इसे करते हैं तो ज़बरदस्त नींद आपको मिल सकती है. काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा जो है आसन है, काफ़ी हेल्पफुल आसन है. इसकी मदद से आप अपनी बॉडी की गर्मी को शांत कर सकते हैं. जिस गर्मी की वजह से हम इतना परेशान रहते हैं वो गर्मी जो है वो शांत रह सकती. तो चलिए ये आसन जो है जरूर कीजिए और मुझे जरूर बताइए क्या क्या फायदे आपको इससे मिले. लाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. जी हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ हफ्ते के 7 दिन. बातें हमारी चल रही हैं सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में. योगासन आपको बता रही हूँ गर्मी से किस तरह से राहत पा सकते हैं. देखिए, अगर आप भी कोई बात साझा करना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं हमारे सभी लिसनर्स तक, जल्दी से पहुंचा सकते हैं. नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078. इसी के साथ साथ देखिए, अब आप जो है हमारे और ज़्यादा करीब आ सकते हैं क्योंकि इंटरनेट रेडियो के साथ आप जुड़ सकते हैं. अब सिर्फ बात फरीदाबाद की नहीं रहेगी. फरीदाबाद शहर से अगर आप बाहर जाते हैं, यानी कि कहीं भी जाते हैं, कहीं भी कभी भी जाते हैं, तो आप सुन सकेंगे और जुड़ सकेंगे रेडियो मानव रेशम 107.8 FM के साथ. वो भी कैसे, आपको क्या करना है, अपना एंड्रॉयड या अपना iOS मोबाइल फोन लेना है, अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है, लिखना है रेडियो मानव रचना और हमारी ऐप को यानी कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है. और उसके बाद आप ढेर सारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं अपने फेवरेट आरजेस के, और साथ ही साथ कमाल की जानकारी, एक्सपर्ट एडवाइस जो है ये आप प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बस मिनटों में, बस एक क्लिक दूर. और आप सोचिए कितनी जल्दी से आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी. और बहुत सारे जो देखिए प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारे जो जानकारियाँ हैं वो भी आपको मिलेगी. अगर आपका कोई पॉडकास्ट छूट जाता है, कहते ना कि अरे क्या बोला अभी समझ नहीं आया, या अच्छा हम भूल गए ना क्या बात हुई थी, तो अब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि ये सारे पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे हमारी रेडियो मानव रचना की एप्लीकेशन पर पॉडकास्ट सेक्शन में. चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में हम बात कर रहे हैं सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में, और स्ट्रेच प्लीज में बहुत सारी बातें लेकर के मैं आ जाती हूँ आपके पास। गर्मी में ठंडक कैसे मिले ये आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसे योगा आसन जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जी हाँ, देखिए ये हमारा जो समर है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, क्योंकि अब देखिए क्या होता है ना कि मज़ा तो आता है ना, आप जो है गर्मी का ये जो मौसम है ना, हर मौसम अपनी अपनी, किसी को गर्मी का मौसम पसंद है, किसी को सर्दियों का मौसम पसंद है, किसी को पसंद है कि नहीं गर्मियों में जो है भाई हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहन सकते हैं, जल्द जल्दी अपने कपड़े जो है रिपीट कर सकते हैं और अलग अलग कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन सर्दियों में हो जाता है कि सेम जैकेट जो है वो हम पहन रहे हैं और बड़ा ही जो है कपड़े ढेर सारे हो जाते हैं, हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक फील करती है, लेकिन गर्मियों में हम काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं। अब बात आती है कि अगर एनर्जेटिक ऐसी बने रहना है तो मैं आपको बता रही हूँ इस गर्मी के मौसम में कैसे आप बने रह सकते हैं एनर्जेटिक, क्योंकि गर्मियों के मौसम में आपको चाहिए ठंडक भरे योगासन जिससे आप अपनी बॉडी को ठंडा रख सकें। अब बात मैं कर रही हूँ, देखिए हमने कुछ आसन के बारे में बात करी जिससे कूलिंग इफेक्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे चौथे पोज की, जो है चाइल्ड्स पोज यानी कि बाला आसन। जी हाँ, बाला आसन जो पोज है ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा है, असरदार है और गर्मी से ये जो है आपको बचाता है। किस तरह से बताऊंगी कुछ ही देर में, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, यानी कि मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ और बातें बहुत सारी लेकर के आती हूँ. सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में हम बात करें गर्मी से राहत पाने वाले कुछ ऐसे योगासन के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा कारगर हैं. जी हाँ, बात मैं कर रही हूँ बालासन के बारे में अब. और ये जो आसन है इसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है. जब आप इस पोज में देखिए आप फोल्ड होते हैं तब बॉडी ऑटोमेटिकली रेस्ट मोड पर चली जाती है. ये गर्मी में ओवर हीटिंग से आपको बचाता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही मेंटल पीस भी बढ़ा देता है. बाला आसन जो है हर स्ट्रेस का फुल स्टॉप है, यानी कि कोई भी अगर स्ट्रेस हो आपको, आप इस पोज में लेट जाइए, चाइल्ड पोज में लेट जाइए और काफी आपको फायदा मिलेगा. इसी के साथ साथ आ जाता है मत्स्य आसन, यानी कि फिश पोज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहूँगी यहाँ पर जो गर्मी के पोज के लिए काफ़ी ज़्यादा, गर्मी के इस मौसम के लिए काफ़ी अच्छा है, वो है फिश पोज. यानी कि समझ में अगर थ्रोट या साइनस इश्यूज आपको हैं तो आप जो है ये आसन की जो है ये सुपर हेल्पफुल रहेगा फेस और थ्रोट की हीट को कम करने में, साथ ही ब्रीदिंग बेटर करने में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और साथ ही फ्रेश ग्लो भी इससे जो है वो मिलता है. मत्स्य आसन जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसको आप कर सकते हैं, इससे ठंडक मिलती है और वो भी बिना एसी के, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. तो देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो 5 गर्मियों में करने वाले आसन हैं, यानी कि ये हीरोज़ हैं गर्मियों के समझ में जो आसन है, शीतल प्राणायाम, इसी के साथ अनुलोम विलोम और विपारिता करानी, इसी के साथ बालासन और मत्स्य आसन, आज इन्हें आप डेली रूटीन में आज से ही इंक्लूड कर लीजिए और देखिए गर्मी जो है वो बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी, क्योंकि आप अगर ये आसन करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा. चलिए इसी के साथ अब और भी होंगी बहुत सारी बातें, क्योंकि अब लेकर के आ रही हूँ सेगमेंट पावर प्ले विद आर जे साक्षी, जिसमें हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की. तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ. सेगमेंट का टाइम हो चला है जिसका नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी. जी हाँ, हम बात करते हैं स्पोर्ट्स जगत की. देखिए, बातें हमारी चल रही है स्पोर्ट्स की, जहाँ पसीना बनता है जुनून और वहाँ हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है, और वही है हमारा इंडिया, हमारा भारत. देखिए, आज का भारत सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में दुनिया को चैलेंज कर रहा है. एथलीट से लेकर बॉक्सिंग, रेसलिंग से लेकर शूटिंग तक, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो ग्लोबल पोडियम पर खुद को साबित कर रहे हैं. और नीरज चोपड़ा का ओलंपिक्स गोल्ड हो, अविनाश सांबले का रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेस हो, या फिर अन्नु रानी का जावलिन थ्रो, हर परफॉर्मेंस देश को गर्व से बढ़ा देता है. आपको बता दूं, और सबसे इंस्पायरिंग बात जो है ये क्या है कि हर प्लेयर, ये जो प्लेयर्स हैं, छोटी जगहों से निकलकर लिमिटेड रिसोर्सेस के बावजूद इंटरनेशनल स्टार्स बन रहे हैं. उनका जुनून, उनकी मेहनत और उनका विजन, यही है असली भारत का खेल वाला जो रूप है. और देखिए, ऐसे ही होता है ना, छोटी छोटी जगहों से इतने बड़े स्टार्स जो बन गए, और यही जो है आगे आने वाली जनरेशन को प्रेरित करता है. यही लोग हैं आइडियल्स. आजकल हम इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो देख रहे हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर, लेकिन असली इन्फ्लुएंसर्स जो हैं ये लोग हैं, यानी कि जो स्पोर्ट्स जगत में हैं, जो इतने अच्छे से जो है अपने देश को आगे ले जा रहे हैं, गोल्ड दिलवा रहे हैं, ब्रॉन्ज मेडल दिलवा रहे हैं, सिल्वर मेडल दिलवा रहे हैं. आज देखिए हम कितने ज़्यादा आगे जो है वो बढ़ जा रहे हैं. हर एक देश के साथ हम कंपीट कर सकते हैं. आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश पीछे बिल्कुल भी नहीं है. चलिए, इसी के साथ और भी बहुत सारी करूंगी बातें, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना यानी कि डेली आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे. और बहुत सारी हम करते हैं बातें. फिलहाल हमारी बातें चल रही हैं स्पोर्ट्स की. जी हाँ, आज के इस टाइम में जहाँ महिलाएं जो हैं भाई वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं पुरुषों के साथ, आज के समय में महिला खिलाड़ी सिर्फ मेडल्स नहीं जीत रही हैं, वो स्टीरियोटाइप भी तोड़ रही हैं. पीवी सिंधु बैडमिंटन के कोर्ट में ग्लोबल आइकन है, बल्कि वहीं देखा जाए तो भाई मैरी कॉम बॉक्सिंग रिंग की असली टाइग्रेस है और निखत जरीन नए जमाने की पावरफुल पंच. सिर्फ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ही नहीं, वुमेन्स क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें वो भी दुनिया भर में अपना इम्पैक्ट छोड़ रही है. हरमनप्रीत कौर की हम बात करें या फिर हम स्मृति मंधाना की बात करें, जैसे ये जो स्टार्स हैं इन्होंने गेम का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, बदल कर रख दिया है. और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी सफलता से इंस्पायर होकर हजारों लड़कियां गांव से, शहरों से और कस्बों से ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुँच रही है. वेमेन स्पोर्ट्स इज नॉट जस्ट अ मोमेंट, इट्स अ मूवमेंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे भारत के लिए. आज देखिए, जब हम देखते हैं ना, मतलब हम जब स्पोर्ट्स देखते हैं, जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं, पहले होता था कि सिर्फ मेंस क्रिकेट में ही इंटरेस्ट आता था, लेकिन आजकल आप देखिए कि वेमेन्स क्रिकेट में भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है जितना कि मेंस क्रिकेट में आता है. वही जो जोश है वो रहता है क्योंकि हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं. और आप सभी से दरख्वास्त रहेगी कि अपनी टीम को, वुमेन्स क्रिकेट टीम को ज़रूर आप सपोर्ट कीजिए. सिर्फ क्रिकेट टीम ही नहीं, बल्कि वो हर महिला जो कि देश को रिप्रेजेंट कर रही है, वो हर महिला जो कि एक नई इंस्पिरेशन बन रही है, उनको सपोर्ट कीजिए. और उनको तो ये हम जो है आइडियल समझें और ज़्यादा लड़कियों को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो नई जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको हम जो है आगे लेकर बढ़ें. क्योंकि आजकल सिर्फ देखिए, ऐसा नहीं है कि हम जो है कुछ ऐसी डिग्रियों में जो है वो कोर्सेज में जो है सिर्फ और सिर्फ हम जो है कुछ हासिल कर पा रहे हैं, अपना करियर बना पा रहे हैं, बल्कि स्पोर्ट्स भी आजकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है करियर ऑप्शन हो गया है बच्चों के लिए. तो स्पोर्ट्स में आप जो है डरिए मत, अगर बच्चा जो है खेल कूद में आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत स्कोप है. चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना और 7.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ हफ्ते के सातों दिन, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, बहुत सारी करती हूँ बातें। फिलहाल सेगमेंट हमारा चल रहा है पावर प्ले विद RJ साक्षी, जिसमें बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। इसी के साथ ना, क्या हो रहा है आजकल, काफी ज्यादा लोगों में क्रेज है, यानी कि आज की जो जनरेशन है ये सिर्फ सोशल मीडिया की रील्स तक ही सीमित बिल्कुल भी नहीं है। उनका रील टैलेंट खेल के मैदान में भी चमक रहा है। स्कूल्स और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स कंपटीशन का क्रेज जो है ये बढ़ गया है। फिटनेस ऐप, ऑनलाइन कोचिंग और स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू नए बच्चे भी इंस्पायर हो रहे हैं। पेरेंट्स भी आज स्पोर्ट्स को एक करियर ऑप्शन की तरह देखने लगे हैं। चाहे साइकिलिंग हो, मैराथन हो, या फिर स्केटिंग या हो बास्केटबॉल, हर गेम में नया फेस जो है वो दिखाई, अब नए नए फेसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन, टीम वर्क और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए खेल रहे हैं। और इसी माइंडसेट से भारत बन रहा है एक सुपर स्पोर्टी नेचर। 21st century का स्पोर्ट सिर्फ मसल का गेम नहीं, माइंड और मशीन का भी कॉम्बो है। आज के एथलीट्स जो हैं वो स्मार्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, GPS ट्रैकर से रनिंग एनालाइज जो है ये होती है, AI से वीडियो रिप्लेज और मैच टैक्टिक्स बन रहे हैं, साथ ही हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में बायो मशीन्स जो है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और बायोमैकेनिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पोर्ट साइकोलॉजी और साथ ही न्यूट्रिशन पे भी फोकस किया जा रहा है। इन जो देखिए, अब मैं आपको बता दूँ, ये सब चीज़ें जो हैं आप नोटिस करेंगे कभी, आजकल हम बड़ी सारी चीज़ें सुनते हैं ना कि क्रिकेटर जो है या फिर कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है वो क्या क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं, इन पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या वो फिटनेस फ्रीक है या नहीं है, वो जिम में कितना टाइम जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो जो डाइट ले रहे हैं वो सही है, पानी कौन सा पी रहे हैं, ये सारी जानकारी जो है बच्चे भी आजकल आप देखिए कितना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये नया भारत है, ये एक नई तरीके से हम जो है काम कर रहे हैं, हम AI से लेकर हम जो है बायो मैकेनिक्स तक जो है वो यूज कर रहे हैं, जो इवन फैंस भी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि जैसे फैंटेसी लीग्स, लाइव मैचेस, स्टैट्स और वर्चुअल रियलिटी से एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो गया है। इसी के साथ टेक्नोलॉजी ने एक नए टाइप के एथलीट्स को जन्म दिया है, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के साथ स्मार्ट डेटा पे भी भरोसा करता है। जी हाँ, तो देखिए ये जो नया भारत है ये तो आपको बता ही रहा है, ये तो एक सभी को जो है संदेशा दे ही रहा है कि अब हम पीछे नहीं रहने वाले हैं, अब हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक। आप देखिए कि अब हर एक एज कैटेगरी में जो है बच्चे जो हैं या बड़े जो हैं वो खेल रहे हैं, और देखिए जीत भी सामने जो है वो आ रही है, जीत कर भी आ रहे हैं। तो आप देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी जो चीज़ें हैं बदलाव जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो अब ना बच्चों को रोकने या टोकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है अगर वो खेल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना भाई खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, क्योंकि पहले तो यही कहा जाता था लेकिन आजकल ये बदल गया है, अब हो गया है कि खेलोगे कूदोगे तो बढ़ोगे आगे, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे और ज़्यादा आगे। तो देखिए पढ़ाई लिखाई से साथ साथ आप खेल कूद में बच्चों को आगे बढ़ना है, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हैं कि खेल जो है यही से इम्पॉर्टेंट है, जीतना इम्पॉर्टेंट है, नहीं, खेल के साथ साथ एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए, जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी आजकल के इस दौर में बन गया है। इसी के साथ साथ तो देखिए याद रखिए, चाहे दिन हो या रात, खेल हमेशा आपको एक नई बात सिखाएगा। बात बस दिल में जो जुनून है इसकी हो या हाथों में कोई गेम हो, तो सफलता जो है आपके नेक्स्ट डोर पर होती ही होती है। तो अगर कोई भी आप गेम खेल रहे हैं तो सबसे पहले, कोई भी आप स्पोर्ट खेल रहे हैं तो सबसे पहले ये सोच लीजिए कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको ये गेम जो है सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि भाई अपने लिए खेलना है, अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस के लिए, अपने माइंड सेट के लिए, अपने देश के लिए खेलना है, ज़रूरी है आगे चलकर। बच्चों को आपको जो है यही आपको समझाना है कि आगे चल के इसमें भी करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। आप ये ना कहें उनसे कि आगे तो इसमें कोई मतलब फ्यूचर है ही नहीं, बच्चा ऐसा डर जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि आजकल फ्यूचर है इसमें और काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। तो उनको इनकरेज करें, उनको जो है डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना करें।
चलिए इसी के साथ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद क्योंकि एक बहुत ही खास सेगमेंट लेकर के मैं आ रही हूँ आपके पास, सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें बात करती हूँ आपके साथ कमाल की जानकारी तो लेकर के आती हूँ लेकिन क्विज आपसे पूछती हूँ। चलिए इसके बारे में भी आपको सारी जानकारी दूंगी, फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, बातें हमारी चल रही हैं और एक खास सेगमेंट लेकर के आ गई हूँ। सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें कमाल की पहेलियाँ लेकर के आती हूँ। पहेली को देते हैं अगर आप सही जवाब हर महीने। अगर देखिए, मैं आपके एक खास एक लिसनर को चुनूंगी, और वो कैसे, बस आपको क्या करना है, जब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ आपको जल्दी से झटपट से जवाब देना है। जो सबसे सटीक और सही जवाब देगा और सबसे पहले जवाब देगा वो आएगा रेडियो मानव रचना, यानी कि उनको मौका मिलेगा हमारे से यहाँ पर लाइव बातचीत करने का, रेडियो मानव रचना आने का और सभी आरजेस से भी मिलने का। इसी के साथ साथ आज की जो पहेली है बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं आपको बता दूँ, जल्दी से पहेली मैं आपको बता देती हूँ, तो पहेली ध्यान से आप सुनिए और मुझे फटाफट से आप जवाब दीजिए। अपने मोबाइल फ़ोन को आपको रेडी रखना है, नंबर बता देती हूँ पहले से ही, 8010781078। इसी के साथ पहेली है, मैं ना फल ना फूल, फिर भी सबको देता हूँ ऊर्जा की धूल, दिन की शुरुआत में खाओ तो दिन भर ताकत पाओ। जी हाँ, ये जो है हमारी आज की पहेली है। एक छोटा सा हिंट आपको देती हूँ, आप इसे अंकुरित करके खा सकते हैं। तो जल्दी से झटपट से इसका जवाब मुझे दीजिए, मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078, ये हमारा नंबर है। फटाफट से दीजिए जवाब और जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों. बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, यानी कि मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ. बहुत सारी हम करते हैं बातें. फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और आपको मैं बता दूँ यहाँ पर बात कर रही हूँ हमारे सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में. और आपसे सवाल मैंने पूछा है, यानी कि पहले आपसे पूछी है, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ. मैं ना फल ना फूल, फिर भी सबको देता हूँ ऊर्जा की धूल. दिन की शुरुआत में खाओ तो दिन भर ताकत पाओ. बस हिंट भी मैंने आपको साथ में दिया था इसके, और वो है मुझे अंकुरित करके अगर आप खाते हैं तो ज्यादा फायदा आपको मिलता है. यानी कि इसे अगर आप अंकुरित करके खाते हैं तो बहुत फायदा मिलेगा. क्या है ये, इसका जवाब जो है भाई बहुत सारे लोगों ने दिया है, क्योंकि आप हिंट से ना बिल्कुल समझ गए. अच्छा, हिंट से ना कई सारे जवाब मेरे पास आए हैं. अब यहाँ पर आज मैंने किस चीज की बात करी है ना, वैसे मैंने जो हिंट दिया था ना इसी में इसका जवाब छुपा हुआ है. आसान से पहली थी, देखिए आजकल मैं आसानी पूछ रही हूँ आपसे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं पूछ रही हूँ. अब बहुत सारे जवाब मेरे पास आ गए और बहुत सारे सही जवाब आए हैं, क्योंकि इतना आसान सा मैंने आपसे पहली जो है पूछी थी, हिंट मैंने आपको दिया था. तो सबसे पहले और सटीक जवाब जो है वो हमारे पास आया हमारे लिसनर मोहित जी का, जिन्होंने लिखा है स्प्राउटेड दाल या फिर चना. बिल्कुल, देखिए अंकुरित जो चना है या स्प्राउटेड दाल जो है ये इसका सही जवाब है. बहुत सारे और भी जवाब आए हैं मेरे पास. जवाब बबलू जी का भी आया है, जवाब मेरे पास यहाँ पर लक्ष्मी जी का भी आया है, पूजा ने भी जवाब दिया है और साथ ही साथ अंकित ने भी जवाब दिया है. आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है, सटीक है और बिल्कुल देखिए एकदम ऑन द पॉइंट बिल्कुल है, क्योंकि इसका जवाब जो है वो है अंकुरित चना या फिर अंकुरित दाल. बिल्कुल सही है. और देखिए ये जो है इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप देखिए चना जो है ये प्रोटीन, इसमें दाल में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, आयरन होता है और इन सभी से भरपूर होता है, जिससे हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है. और इसीलिए रोजाना सुबह आपको जो है वो जरूर खाना चाहिए, आपको जरूर इंटेक करना चाहिए, स्प्राउट्स का जो है इंटेक होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी बरकरार रहे और पूरे दिन के लिए आपको जो है वो एनर्जी मिलती रहे. चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, इंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मैंने 107.8 FM. फील गुड फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रेशमा 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, यानी कि मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूं और बहुत सारी करती हूं बातें। फिलहाल सेगमेंट चल रहा है हमारा कौन भरेगा सेहतमंद में, और कई सारी पहेलियां आपसे पूछती हूं। अगली हमारी पहेली है, देखिए इसका जो जवाब है आपको फटाफट से देना है। नंबर पहले दोहरा देती हूं एक बार फिर से, 8010781078 इसी नंबर पे आपको जो देना है जवाब, मैसेज द्वारा आपको जवाब देना है। और पहेली है, मुझे मत भूलना मैं सबसे जरूरी, मुझे मत भूलना मैं सबसे जरूरी, ताजगी लाऊं थकावट दूर करूं पूरी, सांस लेने से लेकर सोचने तक हर काम में मेरा ही दमक। जी हाँ, ये है ये पहेली। और संकेत यानी कि इसका जो हिंट है वो रहेगा कि शरीर की हर कोशिकाओं को चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारी श्वासों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आप इस पहेली का दीजिए जवाब, तब तक के लिए मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताने वाली हूँ किसका है सबसे पहले सटीक जवाब, और जो सबसे पहले सटीक जवाब देगा इस पूरे महीने वो बन जाएगा हमारा लेके विनर, और यहाँ पर आएंगे वो और लाइव हमारे साथ बातचीत होगी। तो लेट्स सी कौन देता है जल्दी जल्दी से जवाब जो है इस हमारी पहेली का। तो इससे पहले जो पहेली हमने पूछी थी उसका सही जवाब दिया था मोहित जी ने, तो देखते हैं क्या अब फिर से मोहित जी जवाब देते हैं या फिर बाजी कोई और मार के ले जाता है। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेशमा 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, यानी कि मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, बहुत सारी करती हूँ बातें. फिलहाल हमारा सेगमेंट जो है वो चल रहा है कौन बनेगा सेहतमंद, में आपसे सवाल जो है वो पूछ रही हूँ, आपसे पहली पूछ रही हूँ. और आज की हमारी जो दूसरी पहेली है वो है, एक बार मैं आपको दोहरा देती हूँ फिर से. अब पहेली जो है बड़ी वैसे तो आसान सी है और आपको जल्दी से झटपट से गेस करनी थी, और मेरे पास यहाँ पर जवाब तो बहुत सारे आए हैं, कुछ गलत भी हैं तो कुछ सही भी हैं. अब पहेली एक बार मैं आपको बताती हूँ. मुझे मत भूलना मैं सबसे जरूरी ताजगी लाऊं, थकावट दूर करूं पूरी, सांस लेने से लेकर सोचने तक हर काम में मेरा ही दमक. ये है पहेली हमारी, और ये बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर के लिए. शरीर की हर कोशिकाओं को चाहिए इस जरूरी है, जो चीज़ है बहुत ज़्यादा है, और हमारी बॉडी में अगर ये रहेगी तभी हम रहेंगे, और वो और कुछ नहीं बल्कि है ऑक्सीजन. जी हाँ, और इसका सही जवाब जो है हमारे लिसनर ने दिया है, जिनका नाम है बबलू जी. बहुत तेज़ी से, मतलब यहाँ मैंने पहली पूछी और यहाँ उनका जवाब आ गया. ऐसा लग रहा था बस भाई मोबाइल फ़ोन पर ये हाथ में लेके बैठे और तुरंत जवाब देने, इन्होंने इतना जल्दी टाइप किया है. बिल्कुल सही जवाब आया, बहुत सारे सही जवाब आए हैं मेरे पास, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ मैं. देखिए, ऑक्सीजन जो है ये हमारे शरीर की हर क्रिया के लिए आवश्यक होती है, खासकर हमारे ब्रेन और हमारे लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये है तभी हम हैं, नहीं तो हम नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ मैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़ रहिए और सुन रहिए रेडियो 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मैन रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ। और इसी के साथ एक बहुत ही खास जानकारी आपको दे दूँ, और अब आप जो है सिर्फ एक क्लिक में ही हमारे और ज़्यादा करीब आ सकते हैं, और वो भी सिर्फ फरीदाबाद शहर में नहीं बल्कि आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो अब हमारे करीब आ सकते हैं, या हम आपके साथ जुड़ सकते हैं कभी भी कहीं भी। वो कैसे? आपको क्या करना है, अपना एंड्रॉयड या अपना iOS मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है, और उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना है रेडियो मानव रचना की, और डाउनलोड करने के बाद आप सुन सकते हैं कमाल के पॉडकास्ट और ढेर सारी जानकारी जो है आपको मिल सकती है। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, और अब वक्त हो गया है RJ दीक्षा के आने का, तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा।

0: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम उन लोगों के साथ चलते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं या मानवता की राह पर चलते हैं, मानवता के अलग अलग किस्म के काम करते हैं। और आप जानते ही हैं कि ऐसे खास कहानियां, ऐसे खास एपिसोड्स मैं आपके लिए लेकर आती हूं, जिनमें कि मैं आपको उन शख्स से मिलवाती हूं, उन लोगों से मिलवाती हूं, उनकी कहानियां सुनवाती हूं जो मानवता के काम करते हैं। आज इस कड़ी में एक बहुत ही फेमस शख्सियत से हम मिलने वाले हैं, गुठली मैन ऑफ इंडिया यानी जसमीत सिंह अरोड़ा जी। भाई ये आम की जितनी भी गुठलियां है ना, वो आपसे मांगते हैं और ये कहते हैं कि गुठलियां मुझे भेजिए और उसके बाद मैं इनका पेड़ लगाकर लोगों को बांटूंगा। तो अब ये पूरा सफर कैसा था, कैसे बने ये गुठली मैन ऑफ इंडिया, और दरअसल काम करना कितना जोखिम भरा था, कितना मुश्किल था, कितना आसान था, ये सारी बातें हम इनसे करने वाले हैं और उसके लिए हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। जसमीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका कि आपने जनरसली यू नो आपके ऑडियंस के लिए मेरे को चुना है, एंड थैंक यू सो मच।
0: जसमीत जी सबसे पहला सवाल, गुठली मैन ऑफ इंडिया बनने का जो सफर था ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ?
1: देखिए कहाँ और कैसे का ये है कि थोड़ा इट्स एंड बिट्स है। 2016-17 में मैं मेरी टूरिंग के लिए, मैं बाय एजुकेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, तो उस टूरिंग के लिए मैं जब भी बी टाउन्स में जाता तो किसानों को देखता और किसान मुझे हर वक्त गरीबी दिखता, एंड मैं मतलब समझ नहीं पा रहा था कि लैंड लॉर्ड्स होकर ये गरीब क्यों है। तो जब और घुसा अंदर में तो देखा कि ये पैडी फार्मिंग करते हैं एंड 1500 से 2000 रुपये कमाते हैं महीने के, एंड बहुत पानी यूज होता है, बहुत केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है, इनकी सेहत खराब, सॉइल की हेल्थ खराब, एंड घर की जो वुमेन है उनकी भी हालात बहुत खराब, क्योंकि किसी भी घर में जब पैसा कम जाता है तो वुमेन सबसे पहले ब्रंट लेती है। तो सारा कुछ ये करते कराते ये एक सिचुएशन दिखी। उसके बाद ट्रेवल्स करने से क्या है कि एक्चुअल इन्वायरमेंट, एक्चुअल क्लाइमेटिक कंडीशंस फील करता था, तो वो फील भी दिख रही थी कि भी एक्चुअली हम सबसे।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। वक्त हुआ है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, जहां होती हैं सेहत की बातें, और इस प्रोग्राम को आप तक लेकर आए हैं एसएसबी हार्ट

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल. सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने. और हम बात कर रहे हैं बहुत सारी बच्चों में बढ़ रहे मोटापे के बारे में. इसके क्या नुकसान है, क्योंकि फायदे इसके खास है नहीं. बच्चा क्यूट लगता है वो बात अलग है, लेकिन एक्चुअली में अंदर से वो खोखला होता जा रहा है. क्योंकि आप बच्चे के वेट पर अगर ध्यान नहीं रख रहे हैं तो ये वेट आगे जाकर प्रॉब्लम दे सकता है. बड़े लोग तो जिम चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं फिजिकल एक्सर्शन कराना आज के समय में कम हो गया है. क्योंकि ज्यादातर समय बच्चे लैपटॉप्स, फोन्स या टैबलेट्स पर बिता रहे हैं, जिसके कारण उनमें बढ़ता हुआ मोटापा एक सबसे बड़ी समस्या बढ़ता चला जा रहा है. इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर अंजलि जैन, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. डॉक्टर अंजलि, अब मैं आपसे ओबेसिटी के बहुत इंपॉर्टेंट नुकसान जानना चाहूंगी. क्योंकि एक लिमिट तक तो बच्चा क्यूट लगता है, लेकिन एक उम्र के बाद वो बच्चा क्यूट नहीं लगता, वो बच्चा अलग सा लगने लग जाता है. पूरी क्लास में कहीं ना कहीं उसे बुलिंग का सामना भी करना पड़ता है, उसे बाकी चीज़ों में भी पीछे हो जाता है. जैसे वो ज़्यादा भाग नहीं पाता स्कूल में, स्पोर्ट्स डे में पार्ट नहीं ले पाता, डांस या इन चीज़ों में भी. ऐसे बच्चों को कई बार, अब तो नहीं हो रहा है लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि उन्हें आगे नहीं रखा जाता. तो एक थोड़ा सा बच्चे को कहीं ना कहीं असहज महसूस भी होता है. बट इस ओबेसिटी के नुकसान क्या हैं वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी. फिजिकली उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं?
1: ओबेसिटी से काफ़ी सारे नुकसान होते हैं. जो एक्चुअली बीमारियां हम 50-60 इयर्स की एज में देखते थे, वो आजकल जल्दी आ गई हैं. 30-40 इयर्स, 20 इयर्स के लोगों को फैटी लीवर, बच्चों में होने लग गए हैं फैटी लीवर ओबेसिटी की वजह से. हार्ट डिजीजेस वो होने लगे, जॉइंट पेन्स, कमर में दर्द. छोटे छोटे 13-14 साल के बच्चे आके बताते हैं कमर में दर्द हो रहा है जी, भाग नहीं सकते हैं, सांस फूल रहा है भागने पे. ये फिजिकल इफेक्ट्स हैं. मेंटल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने बताया ऐसे बच्चों को बुलिंग होता है, वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, स्कूल की परफॉर्मेंस खराब होती है. और प्लस प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी और जल्दी आना और लेट, दोनों ही चीज़ें देखी जा रही हैं आजकल. बहुत कॉमन हो गया है कि लड़कियों को पीरियड जल्दी आ जाते हैं, हाइट रुक जाती है. लड़कों में चीज़ें डिलेड हो रही है या जल्दी आ रही हैं, तो ये ओबेसिटी का कारण है. डायबिटीज़ होना, डायबिटीज़ इतनी कॉमन जो 30-40 साल में, उसका एक्चुअली जो कहते हैं शुरुआत तो यहीं से है, एडोलेसेंट एज की ओबेसिटी की वजह से है. हार्ट अटैक्स इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंट जो हो गए हैं वो इसीलिए है.
0: यानी फिजिकल एक्सर्शन ना करना मोटापा धीरे धीरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स ले आता है. क्योंकि जो आजकल हम खबरें देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी कहीं ना कहीं डराने वाली होती हैं कि छोटा बच्चा है, अभी कम उम्र है, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ गई है, लिवर में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं मोटापे की वजह से.
1: ट्रू, फैटी लिवर, फैटी लिवर आजकल बहुत 17-18 साल के बच्चों में फैटी लिवर दिखने लग गया है. जिसमें कि ये होता था 40-50 साल की उम्र में, क्योंकि बच्चा शुरू से ही ओबीस था, तो 14-15 साल में उसके लिवर के अराउंड फैट इकट्ठा होना शुरू हो चुका है. एडल्ट बड़े लोगों की बीमारियां आजकल हमको बच्चों में देखने लग गई हैं बिकॉज ऑफ ओबेसिटी.
0: यानी सिर्फ मोटापे की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ये सारी कहीं ना कहीं जानलेवा बीमारियां हैं. डॉक्टर साहब, बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं आजकल, कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे हैं. कोकोनट वाटर भी आजकल प्लास्टिक की बॉटल में पैक होकर आने लग गया है, लेकिन क्या ये भी उतना ही नुकसान पहुँचाते हैं जितना कोल्ड ड्रिंक्स नुकसान पहुंचा रही हैं, जितना पैकेज्ड जूस या ड्रिंक्स नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल. जिन भी चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स हैं, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. फ्रेश चीज़ ही अच्छी होती है.
0: प्रिजर्वेटिव्स हमें उनके पीछे जो लिखी होती है सारी लिस्ट, उसमें से पढ़ना चाहिए?
1: पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए क्या प्रिजर्वेटिव्स हैं. आप देखेंगे इनमें सोडियम कंटेंट बहुत होता है. प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये मोटापे का रीज़न होता है. मोनोसैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, ये सब जो चीज़ें लिखी होती हैं, ये सब मोटापे का को इनवाइट करती हैं.
0: यानी अगर बच्चा सारा दिन कुछ नहीं खा रहा और एक चिप्स का पैकेट खा रहा है, तो वो उतना ही नुकसान देगा कि आप बाहर से बर्गर पिज्ज़ा खा रहे हैं, तो उतने ही बराबर का नुकसान होगा वो 20 रुपये के, 10 रुपये के चिप्स के पैकेट से.
1: बिल्कुल. ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, सडनली शुगर स्पाइक्स करती हैं, तो आप बेसिकली डायबिटीज़ को इनवाइट कर रहे हो.
0: यानी कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं ये मोटापे को बढ़ा रही हैं, और मोटापे के साथ साथ बाकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही हैं. आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है, बच्चों का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, और अगर फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं बच्चे में तो अब क्या सोल्यूशन है. ऐसी कुछ बातें और इन बातों के साथ ढेर सारे सोल्यूशन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और हम बात करें हैं आज डॉक्टर अंजलि जैन से, जो कि एक जानी मानी पीडियाट्रिशियन है, एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं, हमारे शो में आज गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों में बढ़ रहा मोटापा कैसे कंट्रोल किया जाए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। क्योंकि बच्चा क्यूट लगता है मोटे होने की वजह से, वो एक अलग बात है, लेकिन यही मोटापा अंदर ही अंदर उसकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर अंजलि, मोटापे की जब हम बात करते हैं, ओबेसिटी की बात करते हैं, तो बच्चे ओबीस हैं, शायद उनका लाइफस्टाइल ठीक ना हो, वो तो एक रीजन है। क्या ये जेनेटिकली भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि बच्चा जो है वो पैदाइशी ही थोड़ा ज्यादा वेट का है, ऐसा हो सकता है, और वही बढ़ता हुआ वेट आगे भी जाके दिक्कत दे सकता है? क्या जेनेटिक्स का इसमें कोई रोल है?
1: जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं कुछ कुछ ओबेसिटी के, बट दे आर वेरी रेयर, लाइक 1 in million किसी को जेनेटिक्स की वजह से होगा। मोर ऑफ जेनेटिक्स नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ द फैमिली एनवायरनमेंट। जो फैमिली का एनवायरनमेंट है, जो फैमिली का लिविंग स्टाइल है, फैमिली की ईटिंग हैबिट्स हैं, वो रीजंस होते हैं ओबेसिटी के। इसलिए घर में सारे ही ओबीज होते हैं। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, इट इज बिकॉज आपका फैमिली का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो ही ओबेसिटी को प्रमोट करने वाला है।
0: यानी हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो पेरेंट्स का लाइफस्टाइल है, वो बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। सो डॉक्टर साहब, कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लाइफस्टाइल को ठीक करें? खासतौर पर मैं वर्किंग पेरेंट्स की बात करना चाहूंगी, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता कि हर चीज घर पे बना कर दें। दादी नानी हो घर में तो घर में नमकीन बनाई जा सकती है, घर में कभी हलवा बना के खिला दिया, शाम की भूख जो आपने कहा कि शाम को टी टाइम होता है तो बच्चों को अक्सर बिस्किट स्टिप्स दे दिए जाते हैं कि खा लो भूख लगी है। तो ऐसे में अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो क्या ऑप्शन निकालें, कैसे करें?
1: देखिए, पैकेट्स खोल के तो इज नॉट द सोल्यूशन। तो यही होता है कि वीकेंड्स पे आप अपने स्नैक्स रेडी कर सकते हैं। बेसिकली हमें ना अपनी सोच बदलनी है। ऐसा नहीं है कि टाइम लगता है, ऐसे स्नैक्स जो हेल्दी हो वो बनाए जा सकते हैं। जैसे काले चने दे दिए, भुने हुए चने दे दिए, मूंगफली दे दी, पापड़ घर में बना के दिए, व्हाइट चिप्स, आप राइस के पापड़ घर पे भी तो दे सकते हैं बना के, मखाने हैं। तो ये एक्चुअली सोच बदलनी है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ टाइम, जस्ट अ मैटर ऑफ थिंकिंग लिटिल, बट यू हैव टू थिंक अ लिटिल डिफरेंट। इसीलिए मैंने बताया कि ओबेसिटी एक्चुअली पूरे घर में होती है। जो गृहिणी होती है घर की, मदर, शी हैज टू थिंक डिफरेंटली कि हाउ कैन आई गिव न्यूट्रिशियस फूड एंड हाउ शुड आई ऑल्सो कंज्यूम। तो रेदर देन भाई घर पे आए हैं हम, चिप्स नहीं, भुजिया का पैकेट नहीं खोलकर क्यों ना हम सिवाई बना दें, क्यों ना हम मखाने पहले से रेडी कर लें सैटरडे संडे को, जिस दिन ऑफिस की छुट्टी होती है आप डेली के लिए कुछ बना के रख लीजिए, भुने हुए चने,
0: यानी कुछ घर पे करना पड़ेगा,
1: मुरमुरे का नमकीन बना के रखिए।
0: तो थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा।
1: जब बच्चे को भूख लगे, रेदर देन एक पैकेट के लिए पैसे देना या पैकेट देना, आप डब्बे में से उसको वो पकड़ा दीजिए।
0: सो बिजी पेरेंट्स, सैटरडे संडे आपको थोड़ा सा अपने किचन में ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि आप ये चीज़ों के सोल्यूशन निकाल सकें। या नहीं तो अगर आपके पास कोई कुक हैं या हाउस हेल्प हैं तो उनकी भी मदद ले सकते हैं। बट हाँ, अगर आप वीकेंड पे एक घंटा भी इन चीज़ों के लिए निकालती हैं तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, फ्रूट्स खाने का कोई नुकसान तो नहीं है बच्चों?
1: नहीं,
0: के
1: फ्रूट्स खाने चाहिए, जूसेस आर नॉट गुड।
0: ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो सुबह सुबह जूस निकाल के बच्चे को दे देते हैं।
1: एक्चुअली जूसेस में तो फाइबर चला ही गया, तो जो फ्रूट शुगर होती है वो सडनली आपकी शुगर स्पाइक करेगी। जूसेस आर नॉट गुड, फ्रूट इज गुड।
0: लेकिन हमने हमेशा देखा है कि फिल्मों में या टीवी में भी डाइनिंग टेबल पे एक बढ़िया सा जूस का जग रखा होता है और उस जूस को आराम से सब पीते हैं। अब वो सिर्फ देखिए दिखावे के लिए अच्छा लग रहा है, पर टेक्निकली अगर आज देखा जाए तो वो आज के समय में ठीक नहीं है। तो शुगर स्पाइक करता ही करता है, इसकी जगह अगर आप ऑरेंज जूस की जगह डायरेक्टली ऑरेंज खाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, खास तौर पर से मैं जानना चाहूँगी आपके लिए, जो बच्चे होते हैं 10 से 15 साल तक के जो बच्चे, जिनकी हाइट भी बढ़ रही है, प्यूबर्टी भी आ रही है और मेंटल स्ट्रेस भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कॉम्पिटिशन बहुत है पढ़ाई में, तो उन बच्चों के लिए एक अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छी डाइट क्या होनी चाहिए?
1: अच्छा, उसमें डाइट इज वन पार्ट, देन फिजिकल एक्टिविटी इज सेकेंड पार्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओबेसिटी को दूर रखने के लिए 8 hours ऑफ स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अच्छा खा रहे हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बॉडी को रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं तो दिस विल नॉट वर्क।
0: ओके,
1: तो इसलिए स्लीप अच्छी होनी चाहिए। हाँ, खाने में शुगरी ड्रिंक्स, रेडी टू ईट चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए एंड फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी 5 days a week तो होना ही चाहिए, 7 days है तो बहुत अच्छी बात है,
0: चाहे रनिंग हो चाहे साइकिलिंग,
1: कैसी भी 30 मिनट्स की जिसमें कि आपको पसीना आ रहा है,
0: यानी पसीना निकलना चाहिए, स्वेटिंग होनी,
1: कोई क्लास फिजिकल एक्टिविटी की क्लास ज्वाइन कर लीजिए, कोई स्पोर्ट्स कर लीजिए, कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो साइकिलिंग करो, रनिंग करो,
0: यानी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए। और डॉक्टर साहब कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें, जैसे अभी आपने चनों के बारे में बात करी कि चने और मखाने आप दे सकते हैं, कुछ ऐसी 5-6 चीज़ें जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं,
1: हाई प्रोटीन चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि अपनी डाइट में कोशिश करके बच्चे की डाइट में किसी भी तरीके से प्रोटीन बढ़ाना है तो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होता है चना, चना इन एनी फॉर्म, जैसे स्प्राउट्स कर दीजिए, नॉर्मल चना ना लेके किसी दिन स्प्राउट्स कर दीजिए और प्रोटीन कंटेंट बढ़ गया, नॉर्मल आटा ना लेके उसमें थोड़ा सा बेसन मिला लीजिए तो उसी रोटी का प्रोटीन कंटेंट बढ़ गया, मैदा आइटम्स ना दीजिए, ठीक है, सैंडविचेस ना दे के थोड़ा सा इनोवेटिव होइए, दाल के चीले वगैरह खिलाइए, बेसिकली प्रोटीन्स हमको ज्यादा देना है बच्चे।
0: और जो आजकल मार्केट में बहुत सारी प्रोटीन ब्रेड्स मिलती हैं, लोफ मिलते हैं, क्या वो ठीक है?
1: पैकेट पढ़िए, हमेशा पैकेट के पीछे जो कंटेंट है ना पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी रिफाइंड मैदा है, रिफाइंड फ्लोर है और कितना प्रोटीन है।
0: यानी पैकेट को पढ़ के खरीदेगा अगली बार से, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर एक बार आपने पढ़ लिया और आपको पता चल गया कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए और वो चीजें हैं तो फिर आप उस चीज को कभी नहीं खरीदेंगे। इंस्टेड कि आप घर पे एक अच्छा सा पराठा बना के बच्चे को दे दें वो ज्यादा बेटर है, उसी का टैको, उसी का एक रोल बना के दे दें, बीच में सब्जियां भर दें, थोड़ा सा पनीर और चीज डाल दें तो वो भी ज्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड कि आप बाहर की चीज खरीद के बच्चे को दे रहे हैं।
1: एक बहुत छोटी सी हैबिट है कि जब मदर बेबी को हॉस्पिटल लेके आती है, कहीं भी घुमाने लेके जाते हो, तो आप लोग टिफिन में ना कुछ कैरी नहीं करते हो। यूजली क्या होता है, अच्छा उसे भूख लग रही है, रो रहा है, 10 रुपए का जो भी उस समय उस फैसिलिटी में अवेलेबल होता है कुरकुरे का पैकेट वो दिलाते हो। एक्चुअली हैबिट तो आप ही डाल रहे हो ना, क्यों नहीं उस पैकेट में आप उस एक टिफिन में आप एक पराठा बना के लेके आए हो, जब बच्चा रो रहा है या जब बच्चा भूखा है तो उसे वो खिलाओ, तो हैबिट तो यहीं से पढ़नी शुरू हुई ना।
0: बिल्कुल, तो यानी बच्चे की हैबिट को समझना जरूरी है और
1: अपनी हैबिट्स को ठीक करना जरूरी है, उसको हेल्दी अल्टरनेटिव्स आप जल्दी दो।
0: यानी बच्चे की भूख का टाइम सब पेरेंट्स को पता होता है कि हाँ आप 2 घंटे बाद उसको भूख लगेगी, तो पहले से ही थोड़ा सा कुछ लेकर चलें। वैसे आजकल काफी पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं पर फिर भी इन जनरल अगर देखा जाए तो रेशियो बहुत कम है।
1: हेल्दी ऑल्टरनेटिव हमेशा घर में रेडी रखने चाहिए, नमकीन वगैरह को बर्नियों में रखो कांच की ताकि बच्चे को दिखे और वो खाए।
0: जी, यानी कुछ अच्छी सी चीज़ें बनाएं, टेस्टी चीज़ें बनाएं, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं हेल्दी स्नैक्स की, उस पर फोकस कीजिए इंस्टेड के आप बाहर से बना हुआ कोई सामान खरीद रहे हैं अपने बच्चे के लिए। सो डॉक्टर अंजलि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी बेसिक चीज़ें पेरेंट्स को आज बताई हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं, उनके बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
1: थैंक यू।
0: फिलहाल प्रोग्राम

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

का प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उससे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: दत्तात्रेय जैन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा।

0: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम उन लोगों के साथ चलते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं या मानवता की राह पर चलते हैं, मानवता के अलग अलग किस्म के काम करते हैं। और आप जानते ही हैं कि ऐसे खास कहानियां, ऐसे खास एपिसोड्स मैं आपके लिए लेकर आती हूं, जिनमें कि मैं आपको उन शख्स से मिलवाती हूं, उन लोगों से मिलवाती हूं, उनकी कहानियां सुनवाती हूं जो मानवता के काम करते हैं। आज इस कड़ी में एक बहुत ही फेमस शख्सियत से हम मिलने वाले हैं, गुठली मैन ऑफ इंडिया यानी जसमीत सिंह अरोड़ा जी। भाई ये आम की जितनी भी गुठलियां है ना, वो आपसे मांगते हैं और ये कहते हैं कि गुठलियां मुझे भेजिए और उसके बाद मैं इनका पेड़ लगाकर लोगों को बांटूंगा। तो अब ये पूरा सफर कैसा था, कैसे बने ये गुठली मैन ऑफ इंडिया, और दरअसल काम करना कितना जोखिम भरा था, कितना मुश्किल था, कितना आसान था, ये सारी बातें हम इनसे करने वाले हैं। और उसके लिए हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। जसमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका कि आपने जनरसली आपके ऑडियंस के लिए मेरे को चुना है, एंड थैंक यू सो मच।
0: जसमीत जी, सबसे पहला सवाल, गुठली मैन ऑफ इंडिया बनने का जो सफर था, ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ?
1: देखिए, कहाँ और कैसे का ये है कि थोड़ा इट्स एंड बिट्स है। 2016-17 में मैं मेरी टूरिंग के लिए, मैं बाय एजुकेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, तो उस टूरिंग के लिए मैं जब भी बी टाउन्स में जाता तो किसानों को देखता और किसान मुझे हर वक्त गरीबी दिखता। एंड मैं मतलब समझ नहीं पा रहा था कि लैंडलॉर्ड्स होकर ये गरीब क्यों हैं। तो जब और घुसा अंदर में तो देखा कि ये पैडी फार्मिंग करते हैं एंड 1500 से 2000 रुपये कमाते हैं महीने के, एंड बहुत पानी यूज होता है, बहुत केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है, इनकी सेहत खराब, सॉइल की हेल्थ खराब, एंड घर की जो वुमेन है उनकी भी हालात बहुत खराब, क्योंकि किसी भी घर में जब पैसा कम जाता है तो वुमेन सबसे पहले ब्रंट लेती है। तो सारा कुछ ये करते कराते ये एक सिचुएशन दिखी। उसके बाद ट्रेवल्स करने से क्या है कि एक्चुअल इन्वायरमेंट, एक्चुअल क्लाइमेटिक कंडीशंस फील करता था, तो वो फील भी दिख रही थी कि भी एक्चुअली हम सबसे ज्यादा पोल्यूटेड, वर्ल्ड के जो पोल्यूटेड सिटीज हैं उसमें इंडिया काफी नाम आगे है और हीट में भी हम बहुत आगे हैं। तो जो एक्चुअली फील करता था मैं, एंड जब देखा कि लोग क्यों नहीं इसको सॉल्व कर रहे, तो देखता कि लोग मीटिंग्स करते हैं इंटेलेक्चुअली साउंड करने के लिए ना, कप ऑफ टीज एंड इंटेलेक्चुअल मीटिंग्स, एनवायरमेंटल समिट्स, वहाँ बातें होती हैं, हाँ बहुत गर्मी है, पेड़ लगाने पड़ेंगे, इट्स टू मच हीट, वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम ये वर्ड बोलते हैं, तो जस्ट साउंड इंटेलेक्चुअल, बट द मोमेंट द कप ऑफ टी, द डिनर, द लंच इज ओवर, या मे बी वो समिट इज ओवर, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज का तो होता पता नहीं दिखा मुझे। तो सारा कुछ मिला के मुझे लगा कि शायद मे बी इंटेंशन की बात तो एक तरफ है, मे बी शायद हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सा पेड़, कैसा पेड़, कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, किधर करना है। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा करता हूँ, मैं बच्चों के पास चले जाता हूँ। एंड बच्चों से जब मैंने बातें की कि स्कूल्स के बच्चों को मैं अगर बता दूं पर्यावरण के बारे में, किसान के बारे में, भी किसान के आम अगर पेड़ लगा दें, तो बच्चों से जब मैं बात कर रहा हूं तो नीम के पेड़, जामुन के पेड़, तो बच्चे कहते भी नो ठीक है पेड़, बट नीम जामुन इज नॉट दैट सब्जेक्ट। एंड जब मुझे बताना पड़ा उनको कि डिफॉरेस्टेशन में आम के पेड़ भी कट रहे हैं और आम का भी आने वाले दिनों में आपके प्लेट पे आम कम हो सकता है, देन दे वेर वेरी कंसर्न्ड कि भाई मेरे आम के साथ क्यों ऐसा खतरा हो सकता है। तो वहां से पूरा मिशन का एक जन्म हुआ कि किसान राजी था मैंगो पेड़ लगाने के लिए, वो दूसरा कोई पेड़ लगाने के लिए रेडी नहीं था अपनी जमीन पर, पर्यावरण कहता था कि मुझे एक पेड़ ऐसा दे दो जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करे, मैंगो पेड़ इज अ पेड़ जो बायोडाइवर्सिटी को फुल्ली सपोर्ट करता है, एंड बच्चा कह रहा था कि कुछ मेरे सब्जेक्ट का लाओ तभी तो मैं एंट्री लूँ इस पूरे मिशन में, तो मैंगो इज अगेन द सब्जेक्ट। तो वहां से मैंने बातें लोगों को चालू की कि मुद्दा तो था पर्यावरण और किसान का भला करना, लेकिन सब्जेक्ट मैंने बना दिया गुठली को, एंड लोगों से कहना चालू किया भी मैंगो खाइए, गुठलियां दीजिए, मैं उसका पौधा बनाऊंगा, पौधा बना के मैं किसानों को फ्री में दे दूंगा। अब लोगों ने बोला कि सरदार पागल हो गया, भाई ये गुठलियां मांग रहा है, लोग आम मांगते हैं ये गुठलियां मांग रहा है, तो किसी ने गुठली मैन, किसी ने गुठली सिंह, किसी ने मैंगो सिंह, किसी ने गर्बेज सिंह, अलग अलग अलग नाम दिए। वो करते करते करते गुठली मैन का सफर कोविड आ गया, कोविड तक लोग गुठलियां उतनी दे नहीं रहे थे, देन फिर सोशल मीडिया का अपना प्लस पॉइंट 2021-22 के करीब स्लोली एंड स्टेडली सोशल मीडिया ने बस इस चीज को बहुत आगे बढ़ा दिया, एंड मोर देन 130 स्कूल्स अभी तक दे हैव कॉल्ड मी फॉर इंटरेक्टिव सेशंस, वो मेरे इस पूरे मिशन के साथ हैं, वो मुझे गुठलियां भेजते हैं, मुझे भी अपने स्कूल में बुलाते हैं, मिलिट्रीज अ पार्ट, एनसीसी इज अ पार्ट, प्रीति जिंटा इज अ पार्ट, रवि शास्त्री जी इज अ पार्ट, तो इस तरीके से मेरे पे फिर एक बस डॉक्यूमेंट्री बनी जिसका नाम ही गुटली मैन है, वो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर सत्येंद्र फिल्म इंस्टीट्यूट के थ्रू वो शूट की गई है, एंड विच हैज वन मेनी इंटरनेशनल अवार्ड्स आल्सो एज द बेस्ट इन्वायरमेंटल फिल्म, के एक गार्बेज से कैसे इन्वायरमेंट का कुछ काम हो सकता है इन द लैंड्स ऑफ फार्मर, कि फार्मर को भी अपग्रेड कर दिया जाए। सो यहाँ से ये सारा कुछ मिला के आप कह सकते हैं 16-17 से शुरू हुआ और अभी हम 26 में हैं।
0: वाओ, कितना इंटरेस्टिंग, लेकिन शायद बहुत ही कम शब्दों में जसमीत जी आपने अपना गुटली मैन का सफर सुनाया। सुनने में सच बताऊं बिल्कुल वैसा ही उन मीटिंग्स की तरह बहुत

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम जसमीत सिंह अरोड़ा जी के साथ हैं, जो बहुत ही फेमस भी कहलाते हैं गुटली मैन ऑफ इंडिया। जसमीत जी, अब एक बड़ा अहम सवाल, दरअसल मुझे इस प्रोसेस से लेकर जाइए ना, जहां आपके पास बहुत सारे आम की गुटलियां आती है और उसके बाद वो पौधा बनकर किसानों तक जाती है, कैसे करते हैं ये सारा प्रोसेस?
1: देखिए, ऐसा है कि ये गुटलियों का सफर जो ऐसा है कि पूरे इंडिया में, ऑल अक्रॉस इंडिया, कोई ऐसा जगह नहीं है जिसने मुझे गुटलियां नहीं दी है, चाहे दो, चाहे बीस, कोई 20,000, कोई 200, कोई 1,00,000 गुटली मुझे भेजते हैं, वो बाय पार्सल्स भेजते हैं एंड कोई बाय हैंड भी दे जाते हैं। अभी जैसे आज की डेट बात करते करते तंजानिया से किसी ने मुझे आम भेज दिए, बोलते आम खा लीजिएगा, उसकी गुटलियां आप रख लीजिएगा। सो दिस इज द वे थिंग्स आर हैपनिंग एंड मैं उनको, जब गुटलियां मुझे मिल जाती हैं तो मैं उनको अंकुरित करने के लिए, जर्मिनेशन के लिए, जर्मिनेशन प्रोसेस में डालता हूँ एंड ये जर्मिनेशन प्रोसेस इट टेक्स अराउंड 7 to 8 months। उसके बाद इसकी ग्राफ्टिंग होती है। ग्राफ्टिंग इसलिए की जाती है कि ऑल अक्रॉस इंडिया से मिक्स मेरे को गुटलियां आती हैं। टोटल गुटलियां जो है किसी अलग अलग ब्रीड्स की हैं। तो जब भी हम किसान को कोई पेड़ देते हैं तो किसान के लिए ब्रीड जानना बहुत जरूरी है। जस्ट रैंडमली मैं कोई पौधा उसको नहीं दे सकता, क्योंकि मैंगो का पेड़ 10 से 15 साल लेता है बड़ा होने में एंड इसीलिए, इसी रीजन से किसान उसको लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि इतना टाइम किसके पास है। तो मैं उसको ग्राफ्टिंग जब कर देता हूँ, ग्राफ्टिंग करने के बाद उसको हैंड ओवर करता हूँ, दैट इज अ लोकल हैबिटेट मैंगो ट्री विच टेक्स अराउंड 3 ईयर्स टू ग्रो। 3 साल में वो फ्रूट देना चालू कर देता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है। प्रोसेस में काफी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में उनको बताता हूँ, वर्मी कंपोस्ट के बारे में, मल्चिंग के बारे में, क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की। तो उस आदत से उनको निकालना, उस सॉइल को भी उस पूरी कंडीशन से बाहर निकालना भी बहुत जरूरी है। मतलब जस्ट रैंडमली हमने कल तक उस पैडी फार्मिंग में थे और आज हम पेड़ लगा लेंगे, वो नहीं है, देयर इज अ प्रोसेस।
0: तो भाई देखिए, आज हमने ये प्रोसेस समझ लिया और एक्चुअली जब जसमीत जी ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी आंखों के सामने देख पा रही थी कि 10-15 साल एक पेड़ को हम बढ़ते हुए देखते थे। इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमारे घर के गार्डन में आम के पेड़ होते थे और जब वो लगाए जाते थे तो हमसे कहा जाता था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम इन पेड़ के फलों को खाओगे। बट अगर देखा जाए तो आजकल के जमाने में हम वो फल खरीद कर खा रहे हैं। जसमीत जी, वाकई ये सफर और ये प्रोसेस काफी मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से आपने बहुत सारे किसानों के लिए ये आसान बना दिया है, बहुत सारे लोगों के लिए आप एक मोटिवेशन बन गए हैं। दोस्तों, मुझे जसमीत सिंह जी से बहुत बातें करनी है, तो जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। एक छोटा सा प्यारा सा गाना और आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइफ।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं जसमीत सिंह अरोड़ा जी यानी गुटली मैन ऑफ इंडिया के साथ। भाई देखिए, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व आम खाता है, और आम आदमी भी आम खाता है और खास आदमी भी आम खाता है, और आम तो सबका फेवरेट होता है। सो जसमीत जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इस प्रोसेस को रेप्लिकेट भी किया जा सकता है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सुनेंगे और खास तौर पर हमारे इंटरनेट रेडियो के जरिए तो आपको पूरे विश्व में लोग सुनेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इसे रेप्लिकेट किया जा सकता है, और अगर हाँ तो क्या आपकी ही इस मुहिम को कहीं और भी आगे ले जाया जा सकता है?
1: जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल किया आपने, और समहाउ पता नहीं आज मेरी मैनिफेस्टेशन है कि मैं सुबह ही आज इसके बारे में सोच रहा था कि कहीं ना कहीं ये मिशन जो है मैंने डूएबल है, ये मैंने बता दिया भाई, ये डूएबल है, ये हो सकता है। नाउ अगर हमें देखिए, आज की डेट में मोर देन मतलब पता नहीं कितने करोड़ मैंगोज ऑल अक्रॉस इंडिया एंड ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड खाए जाते हैं, और उसकी गुटलियां हम रॉट करने के लिए फेंक देते हैं। हमें लगता है कि हम गार्बेज क्रिएट कर रहे हैं, हमें इतना ही ह्यूमिलेशन, इतना ही गिल्ट फील होता है। बट द थिंग इज, मैं आपको बताऊं कि पेड़ तो हम लगा नहीं रहे हैं, उसके लिए हम अलग से अपने दिमाग में ड्रामा करते हैं, कभी अर्थ डे कभी इन्वायरमेंट डे। 5 तारीख को इन्वायरमेंट डे जो मना रहे हैं, दैट इज अ फार्स, कि एक दिन हम इन्वायरमेंट डे बना रहे हैं जिसके कारण हम आजू बाजू जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम रह रहे हैं उस भरी गर्मियों में कॉर्पोरेट के मेमोज आते हैं कि आप पेड़ लगाइए। अरे पेड़ लगाइए, पेड़ जिंदा रहेगा क्या इतनी गर्मी में? तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, ये जो गुठलियां हम भेज देते हैं मतलब फेंक देते हैं रॉट करने के लिए, उससे प्रोड्यूस होता है मिथेन गैस, एंड दैट इज अगेन हीट। मतलब हमने और हीट प्रोड्यूस करने के लिए गुठलियों को रॉट करने के लिए दे दिया। तो उससे बेटर है कि आप या तो उस गुठलियों को आप पौधे बनाइए अपने एंड पे पौधे बनाकर आप किसी को वो दान कर दीजिए। एक दूसरा, आपसे नहीं हो रहा, आप किसी भी क्या बोलते ना, किसी जगह पर जाके इसको रोपन कराइए गुठलियों को, वो भी नहीं हो रहा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आम खाइए, कोई भी ब्रीड का आम खाइए, उसकी पल्प साफ करिए, उसको सुखाइए, 2 से 1 दिन लगता है छाव में धूप में, सुखा के 9831459390 मुझे कॉल करके कनेक्ट करिए और मुझे गुठलियां भेज दीजिए, मैं इनसे पौधे बनाऊंगा और पौधे बना के किसानों को दे दूंगा। ये तो हो गया मेरा हिस्सा। अब मैं चाहता हूं कि आपके श्रोतागण सुने और इसको थोड़ा सा गौर भी करें कि मुझे ऑल इंडिया में कम से कम 100 से 200 नर्सरीज बनानी है। अगर कोई सोशल माइंड के बंदे जिनकी कुछ जमीनों पे भी थोड़ा सा होल्ड हो कोई, वो जमीनें मुझे सोशली चाहिए, और ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जिससे कि हम जैसे पंजाब में पंजाब की गुठलियां वहीं इकट्ठी करके वहीं पे लोकल किसानों को गाइड करके उनकी टीम बनाकर उनको सारा कुछ नेचुरल फार्मिंग के बताकर हम ये हैंड होल्ड कर दें उनको, उसी तरीके से गुजरात, उसी तरीके से दिल्ली, उसी तरीके से अलग अलग जगहें। तो उससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो मिशन है ये बहुत जल्दी रेप्लीकेट हो जाएगा। और मुझे रेप्लीकेट क्यों करना है, मैं आपको बताऊं, आने वाले दिनों में अगर हमने इंडिया को ही 2000 करोड़ पेड़ नहीं दिए तो इंडिया का टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री बढ़ने के पूरे आसार हैं, और 3 से 5% जीडीपी डाउन होने के पूरे आसार हैं। अब कोई बोले कि एनवायरनमेंट और जीडीपी का क्या लेना देना, तो मैं उसको यही कहूंगा कि आज की डेट में क्लाइमेट एक स्पेकुलेटिव क्लाइमेट बन चुका है, कभी भी हीट वेव, कभी भी बाढ़, कभी भी कुछ, तो उससे क्रॉप साइकिल्स पूरी डिस्टर्ब हो जा रही है। अचानक कहीं पे भी पानी आ जाने से डिस्टर्बेंस आ जाएगी। अब गरीब जो है सबसे पहले असर करेगा, क्योंकि वो गांव में है उसकी क्रॉप खराब हो गई, शहर वाला गरीब भी सबसे पहले असर में आ जाएगा, मिडिल क्लास का बंदा इन्फ्लेशन की मार में आएगा, गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो रीएलोकेट हो जाते हैं टू सॉल्व दीस काइंड ऑफ कैलमिटीज, सडन फोर्स मेजर कॉज जो अचानक से फ्लड आ गया उसको, तो उस जो फंड उनका रीएलोकेट हुआ जो सही जगह पर जाना था, उसके कारण जो जीडीपी पे असर आना आने वाले दिनों पे वो एक असर है। एंड द रिच क्लास जो बोलता है सानू की मैनू की, मैं तो एसी ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा क्या लेना देना एनवायरमेंट के साथ, ठीक है गर्म है तो गर्म है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी ही तो इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्री में, आप ही तो इंडस्ट्रिस्ट हैं, तो आने वाले दिनों में अगर वर्क फोर्स की एफिकेसी कम हो जाएगी, अगर साइकोलॉजिकली वो डाउन हो जाएंगे, टेम्परेचर इतना शूट अप करेगा, तो आज प्रोडक्टिविटी पे असर आएगा, और प्रोडक्टिविटी डाउन मतलब आपकी प्रॉफिट डाउन, आपकी प्रॉफिट डाउन मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर क्वेश्चन मार्क। सो थिंग इज, अगर कोई बोलता है एनवायरमेंट मेरा कोई लेना देना नहीं है, एवरी क्लास एवरी स्टार्टअप हैज अ कनेक्शन विथ एनवायरमेंट, एंड इसको रेप्लीकेट होना बहुत जरूरी है जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए गुटली ऑल अक्रॉस इंडिया में पाई जाती है, और हमें ऑल अक्रॉस इंडिया में पेड़ चाहिए, नॉट इन दी पॉकेट्स। मुझे किसी पर्टिकुलर पॉकेट्स में नहीं चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे आपका ऑडियंस के थ्रू ही मैं कहूँ कि मेरे को अगर कोई पूछे, जैसे कि मैं इधर उधर भी कहते आया हूँ, मैं भारत सरकार को, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री को, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को ये कहना चाहूंगा कि अक्रॉस इंडियन बोर्ड्स क्लास 10 में हम अगर 10 पेड़ के लिए क्लास 10 में 3 से 5 नंबर दे दे बच्चों को, तो माँ बाप भी मिलके ये पेड़ बढ़ाएंगे। कैसे होगा, कैसे ऑडिट होगा, क्या होगा, मैं बता दूंगा। नहीं मतलब अगर किसी ने मजाक में बोला तो तुम संभालोगे क्या मिनिस्ट्री, अगर ये सेवा मुझे करनी पड़ी तो ये सेवा करने को भी मैं तैयार हूँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री में या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में। तो वहां से क्या है कि पूरे ऑल इंडिया, अक्रॉस इंडिया में ये वेजिटेशन, ये फॉरेस्ट पूरा क्रिएट होगा, जिससे कि हमारा, हम कहते हैं ना, इंडिया पोल्यूटेड है, इंडिया हीटेड है, नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस। दिल्ली का पोल्यूशन हटाने से इंडिया की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, या चेन्नई की प्रॉब्लम इंडिया है, तो इंडिया को एज अ होल देखना पड़ेगा। सो ये आपने जैसे कहा, ये रेप्लिकेबल पूरा है अपने अपने लेवल पे, बंदा माइक्रो लेवल पे 4 गुठलियां 5 गुठलियां, उससे ज्यादा वो आगे बढ़ा दे, उससे ज्यादा नहीं हो पा रहा मुझे दे दे, एंड स्कूल्स की गुठलियां जो है 20,000 25,000 50,000 लाख वो मुझे भेज दे। सो दिस इज द वे वी हैव टू डू इट।
0: मैं देखो, मैंने बचपन में ना कहावत सुनी थी, आम के आम गुठलियों के दाम, लेकिन आज मुझे उन गुठलियों के दाम नजर आ रहे हैं और समझ भी आ रहे हैं। तो ये गुठलियां वाकई बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं, लेकिन इस बदलाव के लिए पहला कदम आप सबको उठाना पड़ेगा हमारे साथ। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं गुटली मैन ऑफ इंडिया यानी जसमीत सिंह अरोड़ा जी के साथ। जसमीत जी, अब एक बड़ा दिल को लगता हुआ सवाल, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। सुन तो लिया, समझ तो लिया, प्रोसेस भी जान लिया, लेकिन बहुत आसान तो नहीं है। मैं समझ पाती हूँ जब हम कोई काम करते हैं वो बहुत मुश्किल होता है, तो मुझे रियल टाइम चैलेंजेस बताइए कि क्या आते हैं।
1: रियल टाइम चैलेंजेस देखिए कि सबसे पहले तो जो आया था मेरे साथ के भी मेरे पे लोगों ने बिलीव ही नहीं किया था। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भी सीधा ही मुझे ब्लैंक पॉइंट ब्लैंक मेरे दोस्त यार मुझे मतलब कहीं पे अरे गुटली होगा पता नहीं, चलो चलो चलो कमरे छोड़ के चले जाते, बात ही नहीं सुनते गुटलियां देने में, क्योंकि गुटलियां उनको हैंड ओवर करनी है। आम खा लिया गुटलियां तो फेंकने की आदत है, उस आदत से निकलना है, मुझे गुटलियां देनी है। तो ये आदत, ये पूरा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में ये दिक्कत आ रही थी। करते करते कोविड तक तो मेरे हाथ में लोग गुटली देते थे, समझ लीजिए 20-25-50, वो भी दया करके कि अच्छा तू मांग रहा है रख ले। अब टेक्निकली मैं आपको बताऊं, मैंगो गुटली के एक जेनेटिक इशू है। आप अगर 1000 गुटली मुझे देंगे तो 10-15% ही गुटली अंकुरित होगी। दिस इज वन जेनेटिक इशू ऑफ मैंगो। वन सेकेंड, हमें आदत पड़ गई है अप्रैल के महीने में मैंगो खाने की। उस टाइम अभी भी आप देखिएगा कई पेड़ों में जो मैंगो है वो ग्रीन है, लेकिन मार्केट में आपको एकदम येलो ब्यूटीफुल मैंगो मिलेगा। ये सारा कार्बाइड का आर्टिफिशियल रैपन मैंगो है। ये आर्टिफिशियल मैंगो क्या कर रहा है, पल्प को आपके खाने लायक बना दे रहा है, लेकिन जो गुटली है वो जर्मिनेशन लायक तो बनी नहीं अभी तक, अभी भी वो कच्ची है, तो कच्ची गुटली जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगी। तो लोगों को इतना टेक्निकली तो मालूम नहीं, लोग बस बाजार में जाते हैं आम खा लेते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू कि प्लीज कार्बाइड का मैंगो मत खाइए। कार्बाइड को हटाने के लिए कितना धोना पड़ेगा मुझे मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं, और लेकिन हो क्या क्या सकता है, आपको स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको कैंसर के कोई रोग हो सकते हैं, आपको पेट के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो प्लीज अवॉइड ईटिंग मैंगो आउट ऑफ द साइकिल। आप थोड़ा सा वक्त देखें, जैसे अब जो टाइम आ रहा है ये टाइम मतलब मैंगो के पकने का टाइम है, तो यहाँ से मैंगो जो मिलेगा वो आर्टिफिशियल राइपन नहीं है। लेकिन अभी तक जो आप खा चुके हैं आपके पेट में, और आप कई बंदा बोलता भी होगा भाई मैंने मैंगो खाया मेरा पेट क्यों खराब हो जाता है, क्योंकि वो कार्बाइड जो है उसके पेट को खराब कर रहा है। अब रह गया कि ये सारा कनेक्ट करना, इतनी गुटली कट्टी कहाँ से करूं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो स्कूल्स को बोलता, स्कूल्स ने भी नहीं सुना। करते करते एक दिन अपनी बिटिया को मैंने बोला कि मेरी एक रील बनाओ, एंड रील बस मैंने फ्लोट की तो वो कई बंदे उसमें से जुड़ने लगे, फोन आना चालू हुआ। वहां से करते करते करते थोड़ा सा सूथिंग आउट हुआ है। अभी तक मुझे 21 लाख गुटलियां मिली है। मेरा टारगेट समझ लीजिए 200 करोड़ गुटलियां का है, टारगेट मेरा 20 करोड़ पेड़ लगाने का है। अभी तक मैंने 8 लाख पेड़ जो है वितरण किए अंडर ट्री का लंगर। मैं ट्री के लंगर लगाता हूं जिसमें कि मैं उसमें वितरण कर देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इच्छा है कि मैं 20 करोड़ पेड़ लगाऊं, क्योंकि भारत को चाहिए 2000 करोड़ पेड़, लेकिन 2000 करोड़ का टारगेट लेना इज इम्प्रैक्टिकल, बिना मतलब की बेवकूफ वाली बातें करनी नहीं है। जो प्रैक्टिकल है उसको पहले के एक स्टेप को लेके करें, एंड अगर ये रेप्लीकेट हो गया, मेरी बात किसी ने सही बंदे ने सुन ली, या मेरे को एक कोई सही पावरफुल पोजिशन मिल गई, तो उसको आराम से मैं उसको रेप्लीकेट कर दूंगा विद इन 5 ईयर्स। और स्कूल में अगर ये चालू हो गया तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। तो दिक्कतें नाम की थी, दिक्कतें जैसे मेरी वाइफ को नहीं समझ में आ रहा था शुरू में कि भाई क्या आम के घर घर में गुटली गुटली पूरी बदबू बहल गई, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, दोस्तों यारों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन विजन मेरे अंदर क्लियर थी। तो उससे यू नो जिन्होंने 2-4 बंदे जो साथ चले थे स्टार्टिंग में वो छोड़ गए, बोलते नहीं नहीं ये मतलब पता नहीं कचरा उठाता है, कहाँ कहाँ कचरा क्या करेगा। तो सारा कुछ मिला के दोज वेर हिकअप्स, लेकिन मैं उन हिकअप्स को ना ज्यादा अब दिमाग लगाना नहीं चाहता, क्योंकि इसके साथ मैं आपको बताऊं कि क्यों नहीं दिमाग लगाना चाहता। मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसकी 13 साल की उम्र में शादी हुई थी, अमृतसर से वो कैलकटा आई, मेरे फादर 30 थे, शी वॉज जस्ट क्लास 8 पास, सिर्फ गुरमुखी जानती थी। कैलकटा आके उन्होंने हिंदी बंगला इंग्लिश सीखी, क्लास 10 किया, 12 किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया, मास्टर्स इन इंग्लिश किया, बीएड किया, एक स्कूल की स्थापना की। 1971 वॉर में उन्होंने नर्सिंग कोर्स किया कि अगर वॉर एस्केलेट हो गई तो आई नीड टू बी रेडी एज अ नर्स। सो मैं उस माँ का बेटा हूँ, एंड देन शी डाइड ऑफ अ मोटर न्यूरॉन डिजीज बाय द एज ऑफ 54। मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने क्या ना कोई लिमिट देखी नहीं। जब मुझे लगता था कि और नहीं पढ़ेगी और पढ़ूंगी, जब मुझे लगता था कि और कुछ नहीं करूंगी मैं स्कूल की स्थापना करूंगी, तो एक लिमिटलेस सा पन मेरे अंदर है। तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं, ठीक है सी, कोई भी मिशन में अगर चैलेंज नहीं रहेगा, पागलपंथी नहीं रहेगी, तो किस बात का मिशन है वो? अगर आपके पास कोई स्टोरी नहीं है, हिकअप्स ही नहीं है, तो वो मिशन मतलब कैसे बनेगा? वो तो फिर कोई बिजनेस है, वो तो कोई धंधा है, उसमें भी बहुत सारे हिकअप्स आते हैं।
0: भाई बहुत ही खूबसूरत तरीके से जसमीत जी आपने समझाया है कि चैलेंजेस नहीं होंगे तो उन हर्डल्स को क्रॉस करने का जो कहना चाहिए सेटिस्फैक्शन है वो भी नहीं आएगा। एंड आज जसमीत जी एक सफर लेकर चल रहे हैं जहां ये कह रहे हैं भाई मेरा टारगेट तो बहुत बड़ा है 2000 करोड़ पेड़ों का, लेकिन भाई अगर रियल टाइम की हम बात करें तो हम इसे सच कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी सी है, आप और मैं, हम सब एक साथ आ जाएं और हम अपना अपना शेयर ले लें, तो शायद हम इस पूरी सच्चाई को एक रियल सच बना सकते हैं। और अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो बस करिएगा सिर्फ इस गाने का इंतजार। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्ट 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं जसमीत सिंह अरोड़ा जी के साथ, जो कि गुटली मैन ऑफ इंडिया हैं। जसमीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मुझे बताइए कि कोई आपके साथ कैसे जुड़ सकता है, क्या क्या तरीके हैं जो आपके साथ, चाहे कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वॉलंटियर करना चाहता है, या आपके इस इनिशिएटिव को रेप्लिकेट करना चाहता है, तो कैसे जुड़ सकता है?
1: देखिए, मैं सबको यही कहूंगा कि खुले हाथ से आप अगर सोशल मीडिया में हैं तो आप मेरी पोस्ट को आगे बढ़ाइए जितनी दूर तक। आप अगर व्हाट्सएप में मेरा मैसेज देख रहे हैं जितनी दूर तक भेज दीजिए। जैसे आप मीडिया जगत में है तो मैं सारे मीडिया जगत को कहूंगा कि हर मीडिया जगत अगर हर लैंग्वेज में इसको मतलब रिले करे, आगे एयर करे, तो बहुत जल्दी ये बात आएगी। एंड लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो सबसे पहले वो गुटलियां मुझे दे सकते हैं। उनको और भी आगे बढ़ना है तो मैंने जैसे बताया, उनके पास अगर कोई लैंड है, कोई अगर उनके पास सोशल बैंड ऑफ माइंड है, तो मैं चाहूंगा कि उसको एक नर्सरी बनाना, नर्सरी कन्वर्ट करके मैं उस इलाके को कवर करना चाहूंगा। उसके बाद अगर कोई स्कूल ओनर सुन रहा है अगर, तो मैं चाहूंगा स्कूल ओनर को कि मुझे अपने स्कूल में मुझे बुलाइए, मैं इंटरेक्टिव सेशन बच्चों के साथ बात करना चाहता हूँ और गुटली मिशन के साथ बनिए। अगर मिलिट्री है, एनसीसी कैडेट्स हैं, गवर्नमेंटल डिप्लोमेट्स हैं, तो अपनी अपनी पावर्स के साथ हर बंदा जुड़ सकता है। मैं तो किसी से कह रहा हूं कि जो कचरा आप फेंक दे रहे हो वो कचरा मुझे दे दो, बस साफ सुथरा करके गुटली को, अगर ब्लैक हो गई तो मुझे मत भेजिए, सफेद करके, क्योंकि ब्लैक गुटली फंगस लग गई, सफेद गुटली जो है वो जर्मिनेट होगी। तो मेरे साथ जुड़ना इज अ वेरी इजी टास्क। मेरे पास कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सफर नहीं है। मेरा नंबर मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 9831459390। मुझे कॉल करिए एंड बस हम जुड़ जाए, वन एक सेकेंड की तो बात है।
0: वाकई जसमीत जी, आपके साथ अब हमारे सभी लिसनर्स जुड़ गए हैं और आपके इस इनिशिएटिव में वो हाथ मिलाने वाले हैं। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सभी को?
1: बस जाते जाते मैं देखिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि एलपीजी की सिलेंडर्स की लाइनें और उसकी सिस्टम्स, उसकी तकलीफें तो शायद हम थोड़ी बहुत देख ही रहे हैं और कब खत्म होगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन दूसरा है कि ये जो पर्यावरण की प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए दो बातें बोलूंगा। किसी को लग रहा है ना कि अगर इन्फ्लेशन जो होता है वो मॉनेटरी होता है, तो मैं आने वाले दिन में बताऊं कि इन्फ्लेशन जो है वो इन्वायरमेंटल भी है। जैसे कि हमारे कानों में जाता होगा कि 150 रुपए का शेयर डॉलर हो जाएगा, तो रुपए पे प्रेशर कौन देगा? रुपए पे प्रेशर जिसने जो देना देगा, इन्वायरमेंट भी देगा। इन्वायरमेंट के अपने प्रेशर्स उस पे आएंगे, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि आज अगर हम स्पेकुलेटिव क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये इन्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा दुविधा देने वाला है। वन सेकेंड, एलपीजी के साथ ही वापस बोलता हूँ कि एलपीजी सिलेंडर पे हमने जो करना था कर लिया, लेकिन मुझे सिर्फ इतना मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, जो आपके लिसनर्स हैं, मैं ये बात उनको पूछना चाहूंगा कि अगर आपके हाथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर और एलपीजी का दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए कि एलपीजी से तो 1000 आदमी का खाना बन सकता है, खिचड़ी बन जाएगी, एलपीजी का काम हो गया। जो ऑक्सीजन सिलेंडर है एक हाथ में है, माँ बाबू जी, आपके बच्चे,

0: आपका स्पाउस, उस टाइम में वो सेल्फिश पता सॉल्व किसके साथ करेंगे? पेड़ ही तो ऑक्सीजन देता है, तो ये सॉल्व कैसे करेंगे? जिसके पास इसका आंसर हो मुझे जरूर कॉल करें 9831459390 पे कि हाँ इस सेल्फिश पने को ना मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। बस ये मेरा एक लास्ट लोगों को कहना है, नहीं तो खाइए गुठलियां मुझे भेज दीजिए।
1: भाई कितना आसान है, आई मीन एज सिंपल एज दैट, आम खाइए, गुठलियां गुठली मैन को भेज दीजिए और वो आपकी गुठलियों को पेड़ बना के वापस आप ही के देश में, आप ही के पर्यावरण में भेज रहे हैं, फिर और आम खाइए। सो जरूरी ये है कि आप इस इनिशिएटिव से इसलिए जुड़े क्योंकि इससे आपका डायरेक्टली फायदा है। तहे दिल से धन्यवाद जसमीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा कि अब हम आपके मिशन का एक हिस्सा है। जरूर जरूर जरूर।
0: देखिए ये पूरा पर्यावरण का काम मैं कर रहा हूँ किसानों के खेतों पे, किसानों के साथ। तो आज अगर किसी को लग रहा है कि किसान के बारे में मुझे क्यों सोचना है, मैं तो सिटी में बैठा हूँ, तो मैं बता दूँ कि इंडिया एज अ कृषि प्रधान देश, 45 करोड़ जनता जो है वो रूरल इकोनॉमी पे बिलोंग करती है, एंड हमारे शहर में जो वेजिटेबल और फ्रूट आप खा रहे हैं, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अ विलेज नॉट फ्रॉम अ फैक्ट्री। तो दिमाग में ये बंदे बात रखें कि किसान का कितना बड़ा महत्व है हमारी जिंदगी में।
1: वाकई दोस्तों, अगर हम आज अपनी प्लेट में खाना देख रहे हैं और जिन ग्रीन वेजिटेबल्स को आप हेल्दी कहते हैं ना अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, तो वो आ कहां से रहा है? तो अगर इस खाने को आप खाना चाहते हैं, यू वांट टू लिव हैप्पीली, तो उसके लिए आपको मोबाइल फोन्स की नहीं लेकिन किसानों की जरूरत होगी। तो ये अहमियत हमें समझनी बहुत जरूरी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच जसमीत जी हमारे इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू।
1: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, कहीं नहीं जाने वाले हैं आप, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड फील लाइव।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। सशक्त महिलाओं से आपकी मुलाकात करवाती हूँ और उनकी जिंदगी के कुछ पन्ने पलटने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगी से हम बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी सीख डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये जो महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, आप सभी को पता है कि ऐसा कार्यक्रम है, ना सिर्फ ये मेरे दिल के करीब है लेकिन साथ के साथ ये हमारे रेडियो मानवरचना 107.8 FM का सबसे लंबा चलता हुआ कार्यक्रम है। सो एक लंबे समय से मैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर आती हूँ और इस कार्यक्रम में मैं आपको अलग अलग महिलाओं से मिलवाने की कोशिश करती हूँ। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो जिंदगी में ढेर सारी शिक्षा दे चुकी हैं, यानी एक एजुकेशनिस्ट हैं। आज हम आशा गाबा जी के साथ हैं और ये एक बहुत ही जानी मानी एजुकेशनिस्ट हैं, लेक्चरर रही हैं और आजकल ये मध्यस्थ दर्शन के साथ जुड़ी हुई हैं एज अ मेंबर। सो करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: आशा जी, कार्यक्रम का नाम है विमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। सबसे पहला सवाल हर महिला से इस कार्यक्रम में इस लंबे समय से मैं ये पूछती आ रही हूँ कि उनके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण की परिभाषा हर महिला के लिए बिल्कुल अलग है। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप किसे सशक्तिकरण मानती हैं तो क्या कहेंगे आप?
2: जी, वास्तव में महिला सशक्तिकरण का जो अर्थ है वो है महिलाओं को शिक्षा, अधिकार, अवसर, संसाधन और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करना
1: जी,
2: ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में पुरुषों के समान सम्मान और अवसर प्राप्त कर सकें और विशेषकर स्वयं को एक मानव के रूप में पहचान सकें, क्योंकि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। जिस दिन वे स्वयं को मानव होने के रूप में, अपने अस्तित्व को एक मानव के रूप में पहचान जाएंगी, वे जागरूक हो पाएंगी और सशक्तिकरण के लिए वो स्वयं को परिवार में ही नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र स्तर पर योगदान कर पाएंगी, मेरा ऐसा मानना है।
1: भाई देखिए, मैं ना हमेशा से कहती आई हूँ कि महिलाओं को अगर सशक्तिकरण चाहिए तो वो पहला कदम आपके अपने परिवार से होता है, वो पहला कदम आप ही के अपने आप का होना चाहिए। सशक्तिकरण कोई और दे नहीं सकता है आपको, सशक्तिकरण आपको खुद महसूस करना है। और आई थिंक ये बिल्कुल सही है कि वो महिला सशक्त है जो ना सिर्फ अपने डिसीजंस ले पा रही है, अपनी जिंदगी को उस तरीके से जी पा रही है, लेकिन इसमें गुड बैड अगली कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आपने जो निर्णय लिया वो सही है या नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या आपने कोई निर्णय लिया, क्या आपने अपनी जिंदगी का कोई भी डिसीजन खुद लिया, और अगर लिया तो क्या आप उस पर अडिग रह सकी, क्या आपने वो डिसीजन एड्रेस किया, या आप सिर्फ दूसरों की दी हुई एक बनाई हुई लकीर पर चलती आ रही हैं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो मैं उस महिला को सशक्त मानती हूँ जो अपनी ज़िंदगी की लकीरें खुद खींचती हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मनोरंजन 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये बहुत ही प्यारा सा एपिसोड। और इस कार्यक्रम में मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलाती हूँ। आज तो एक एजुकेशनल से मिलवा रही हूँ भाई, ज्ञान का भंडार होती है और मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला अगर एजुकेशनलिस्ट है ना, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ना सिर्फ वो अपने परिवार को शिक्षित करती हैं, लेकिन समाज को शिक्षित करने में एक बड़ा अहम हिस्सा निभाती हैं। आशा जी आज हमारे साथ हैं, जो कि एक सीनियर एजुकेशनिस्ट रही हैं, लेक्चरर ये रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आजकल मध्यस्थ दर्शन से ये स्पिरिचुअलिटी को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कर रही हैं और साथ के साथ उसे लोगों को महसूस कराने की भी कोशिश कर रही हैं। अब बात करते हैं इनकी सशक्तिकरण की जर्नी से। सो आशा जी, आप जब एक टीचर लेक्चरर थी, सो आप बहुत सारे ऐसे बच्चियों से मिली होंगी, बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिली होंगी जिनकी जिंदगी में बहुत सारी उलझने होंगी, बहुत सारी बार वो आपके पास भी आए होंगे। मैं अगर आप ही की अपनी जर्नी के बारे में पूछूं, सो क्या कभी जिंदगी में कोई एक ऐसा कदम उठाया, कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसको लेने के बाद आपको ये महसूस हुआ कि आप सशक्त हैं और आपने अपने लिए कोई अपने जीवन का डिसीजन लिया है?
1: मैंने 36 इयर्स की जॉब की है एज ए प्राइमरी टीचर। मैंने जॉब को स्टार्ट किया और जॉब के

0: साथ साथ मैंने मास्टर्स किया हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री में और बीएड एमएड भी किया, तो क्वालिफिकेशन से मुझे प्रमोशन तो मिला, लेकिन मैं उस स्कूल में जब बच्चियां छोटे छोटे बच्चे आते थे उनके साथ भी काम किया, फिर मिडिल क्लास के 10th क्लास तक के बच्चों के लिए काम किया, फिर एज ए लेक्चरर मैंने 11th और 12th क्लास के बच्चों के साथ भी काम किया। तो जहाँ तक आपने समस्या की बात कही है, तो बच्चियों की बहुत समस्याएं होती हैं। आप ये देखिए कि छोटे बच्चे जब उनको पीरियड्स होते हैं तब उनकी जो हालत होती है बहुत ख़राब होती है, वो घर में कई बार बता भी नहीं पाती
1: जी।
0: और स्कूल में उनको दिक्कत होती है, फिर छोटी छोटी बच्चियों का बाल विवाह कर देना, 8th 9th में पढ़ती हैं और उनके पेरेंट्स उन पर दबाव बनाते हैं कि तुम मैरिज कर लो, आगे उन्हें पढ़ने नहीं देते हैं। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिन जो बच्चे जो है मेरे फ्री पीरियड में आकर मुझसे डिस्कस करते थे
1: जी।
0: तो मैं उन बच्चों को जिनकी भी समस्याएं होती थी तो मैं उनको अलग से एड्रेस करती थी। जैसा कि एक बच्ची ने एक बार कहा मुझे कि वो 8th क्लास में पढ़ती थी कि मैडम मेरा पढ़ने का बड़ा मन है पर मेरे फादर मेरी मैरिज करवाना चाहते हैं
1: जी।
0: तो इस तरह की समस्याओं को जब मैंने देखा तो मैंने उनके पेरेंट्स को बुलाया, समझाया कि उनकी बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी है, गेम्स में बहुत अच्छी है, स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करती है, तो आप इस बच्ची को मेरे कहने पर मेरे रिक्वेस्ट करने पर आप उसे पढ़ने दें। तो ये बात उनको पेरेंट्स को समझ आई और मैंने कहा देखना भविष्य में ये एक बहुत अच्छी शिक्षिका बनेगी। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि वो 15-20 साल पहले कही गई मेरी बात मुझे आज भी याद आती है और मैं गदगद हो जाती हूँ कि उन पेरेंट्स ने मेरी बात मानी और वो आज एक टीचर के रूप में मेरे सामने और आज तक भी जुड़ी हुई है।
1: वाओ
0: जी।
1: सो देखिए, एज एन एजुकेशनिस्ट अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास एक मौका होता है कि आप स्टूडेंट्स को उनके जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और मजेदार चीज ये है कि आप उनके जीवन को एक बड़ी अच्छी राह दे सकते हैं अपनी छोटी सी सलाह से, एक छोटी सी सीख से। और ये इख्तियार अदरवाइज अगर देखा जाए तो सिर्फ परिवार के सदस्यों के पास होता है और आप आज के जमाने में किसी से सलाह लेते नहीं है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद एजुकेशनिस्ट का एक बहुत अहम हिस्सा होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में। और सशक्तिकरण की मैं अगर बात करूं बच्चियों की, तो आई थिंक इससे अच्छा खूबसूरत सा कोई एग्जांपल हो नहीं सकता है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुना रही आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना और आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। हम बात कर रहे हैं आशा गाबा जी से। आशा जी, हमने ब्रेक पर जाने से पहले सशक्तिकरण की बात की थी, सो आप अगर अपनी पर्सनल जर्नी से कुछ बताना चाहती हैं तो क्या कहना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल, मेरी लाइफ में जब जब मैंने कोशिश किया तो मैंने कुछ नए मुकाम हासिल किए। जैसे मैंने हैप्पीनेस करिकुलम में अपना कंट्रीब्यूशन किया, मैं हैप्पीनेस टीम की कोर मेंबर भी थी, एज ए मेंटरशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ दिल्ली गवर्नमेंट में, तो वहाँ पर मेरी मुझे समझ बढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि हैप्पीनेस करिकुलम मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है। वहाँ पर हमने कुछ एक्टिविटीज़ बनाई, स्टोरीज बनाई, माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई, और इसके साथ साथ टीचर्स को भी कराई, प्रिंसिपल्स के साथ भी हमारा जो है एज ए फैसिलिटेटर मैंने काम किया है, प्रिंसिपल्स, एजुकेशन ऑफिसर्स, सबके साथ। तो मेरा एक लंबी जर्नी जो रही है सिर्फ बच्चों तक ही नहीं रही है, टीचर्स के साथ एज ए फैसिलिटेटर, प्रिंसिपल और एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ भी हमें डिस्कशन करने का मौका मिला है। तो उसमें हमने इस जर्नी में जो मैंने गहराई से मुझे समझने का मौका मिला, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो जो शिक्षा है वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो हमें जो है थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की भी ज़रूरत है, और एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव करने हैं, चेतना विकास मूल्य शिक्षा को अगर लाया जाए तो बच्चे और जो बड़े नागरिक हैं वो एक देश के लिए बहुत बड़ा यूथ जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें उनको जगाने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है, तो मेरा इसमें विश्वास है। और एज ए डिस्ट्रिक्ट हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर जब मैंने काम किया तो बहुत ही अच्छे अनुभव हुए मुझे टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, और वो मेरे साथ, मुझे खुशी इस बात की है कि अब मैंने वीआरएस ले लिया है, और उसके बाद भी मेरे साथ बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल, ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं और इस मेरी यात्रा में मेरे साथ हैं, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है।
0: आशा जी, अब एक अहम सवाल। हाँ, आपने खुशियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लोगों के ज़िंदगी में हैप्पीनेस फैलाने की आपने कोशिश की है, लेकिन मैं हमेशा से मानती हूँ कि महिलाओं का जो सरनेम है वो है चैलेंज। सो बच्ची से लेकर और एक बुजुर्ग महिला तक हमें बड़े सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। रोज जिंदगी पुरुषों के लिए कम चैलेंजिंग होती है, महिलाओं के लिए ज्यादा होती है, लेकिन हर एरा में ना हमारे चैलेंजेस बदलते रहते हैं। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि किस प्रकार के चैलेंजेस आजकल की महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी एक्चुअली क्या है कि जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए जो चैलेंजेस हैं हमारे ज़िंदगी में हमें जो है अवसर लेके आते हैं, तो वो अवसर के रूप में अगर चुनौतियों को स्वीकार किया जाए तो महिलाएं उनसे अपनी यात्रा को बहुत आगे बढ़ा सकती हैं, बौद्धिकता के लेवल पे आगे बढ़ सकती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो काम काजी महिलाएं हैं, जैसे उनका सुरक्षा और उत्पीड़न की समस्या रहती है ऑफिसेज में और सार्वजनिक स्थानों पर, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, इसके अलावा उन्हें सामाजिक रूढ़ियों का, तो जो समाज परिवार उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, तो उनको लेके महिलाएं कई बार सही डिसीजन नहीं ले पाती हैं, वो उनके अपेक्षाओं के नीचे दबकर रह जाती हैं, और वास्तव में जो एक स्वतंत्रता जो है उनकी प्रभावित होती है। तो एक नेतृत्व और अवसर उनको अगर मिल जाए तो उच्च पद पर भी वो जा सकती हैं, जो कि कुछ महिलाएं जा भी रही हैं। तो घर का एनवायरनमेंट बहुत जो है मैटर करता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ पाए। तो ऐसा है कि इस तरह की समस्याओं से क्या करते हैं कि गिव अप भी कर देती हैं लेडीज। तो गिव अप करने से क्या होता है, तो प्रॉब्लम और क्रिटिकल हो जाती है। तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है ही, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगी तो जरूर ही वो जो है विजय हासिल करेंगी, मेरा ये मानना है।
0: बिल्कुल भाई, तो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस के साथ साथ आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं। सो फोकस करिए कि आपका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो समाज का माइंडसेट, और अगर हम उसे बदल पाएं, क्योंकि हम उसका आधा हिस्सा तो हैं ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ एक और गाना, और आप अपने प्यारे रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहना। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं, आज की हमारी गेस्ट हैं आशा गाबा जी, जो एजुकेशनिस्ट हैं, एक लेक्चरर रही हैं और मध्यस्थ दर्शन के साथ ये लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। अब मैं बात करती हूँ आजकल के जमाने की फास्ट पेस्ड लाइफ के रिश्तों की। आप भी मानती हैं आशा जी की जिंदगी भागदौड़ भरी है और ऐसे में कुछ पीछे छूट रहा है, और सबसे ज्यादा जो पीछे छूट रहा है वो है हमारे रिश्ते। इन्हें कैसे बैलेंस किया जा सकता है?
1: अगर आप कहें तो मैं एक लाइन में यही कहूंगी कि सुविधा संग्रह की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उस सुविधा संग्रह को अगर थोड़ा सा माइन्यूटली देखा जाए तो नीड और डिजायर्स, इनके डिफरेंस को समझ लेना बहुत जरूरी है। बेसिकली देखा जाए तो नीड्स हमारी 6 ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है, और डिजायर्स जो है वो अनलिमिटेड हैं। तो हम अनलिमिटेड डिजायर्स की तरफ जब भागते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें वक्त नहीं मिलता है। बेसिकली हम मुड़ के देख ही नहीं पाते हैं कि हमारे जिंदगी में हो क्या रहा है, क्योंकि हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, फिर होता तो कुछ और ही है।
0: वाकई
1: है ना। तो ये है कि तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स भी उठा सकते हैं, जैसा कि पर्पस क्या है। हमें पर्पसफुल लाइफ अगर हम जीते हैं तो निश्चित रूप से हमारी गाड़ी कहीं नहीं डगमग रहती है, तो ये देखने की जरूरत है। और संवाद की स्थिति बेहतर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे डायलॉग जो है वो कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ फोन, जो गैजेट्स हैं इसमें हम इतने डूबे भीगे घिरे हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। हमारा टाइम रील देखने में ही कितना निकल जाता है। तो ये जो आजकल के मुद्दे हैं उसमें हमें जांचने की जरूरत है कि 24 घंटे बहुत होते हैं, उसमें हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और उस वक्त हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, हमारा फोकस कहाँ जा रहा है, क्या हमने जो सुबह प्लान बनाया वो सक्सेसफुल करने के लिए हम वही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो ये बहुत बारीकी वाले मुद्दे हैं और इन पर जो है देखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि परिवार में मतभेद तो होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो उन मतभेदों को आपसी डिस्कशन से सुलझाया जा सकता है, उसकी तरफ भी बात की जा सकती है। और दूसरा ये है कि सेल्फ केयर, तो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर ही रिश्ते निभाए जा सकते हैं। तो हमारा अपनी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के प्रति जो जो हमारे ड्यूटीज हैं, हमारे कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, तो हमें ये देखने की जरूरत है क्या हम वो पूरा कर पा रहे हैं। तो हमारे व्यक्तित्व का विकास तभी होता है जहां तक हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है, खुद को जांचने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच समझ के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
0: सो दोस्तों, ये जानने की बहुत जरूरत है कि सबसे पहले तो आजकल के जमाने में हम रिश्तों को बैलेंस कर कैसे रहे हैं। मानते तो हैं कि बैलेंस बिगड़ रहा है, पर उस बैलेंस को क्या हम बनाने की कोशिश करें। बहुत अच्छी टिप्स दी आशा जी ने, एंड डेफिनेटली अगर इन्हें फॉलो किया जाए और इन्हें असेस किया जाए तो इन्हें ठीक किया जा सकता है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, feel like.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। आज हम आशा जी से ढेर सारी बातें कर रहे हैं। आशा गाबा जी आज की हमारी गेस्ट हैं, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक लेक्चरर हैं। और अब आशा जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे जेंडर इक्वालिटी के बारे में। देखिए भाई, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ, सो जेंडर इक्वालिटी की बात तो करनी बहुत जरूरी है। हम ये बात करते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया भी जाता है कि दोनों जेंडर बिल्कुल समान होते हैं और उन्हें समानता मिलनी चाहिए, लेकिन समाज में, घर में और सोच में अगर हम देखें तो तीनों जगह ये इक्वालिटी कहीं नहीं मिल रही है। सो ये इक्वालिटी पाई कैसे जा सकती है?
1: खुद पर काम करके।
0: जी,
1: तो मैं तो यही बात कहूंगी कि खुद को जांचने की जरूरत है। एज ए ह्यूमन, एज ए मानव, हमें ये समझने की जरूरत है, खुद की खोज में अगर हम जाएंगे
0: जी,
1: तो हम खुद को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और दूसरों को समझने में भी हम समर्थ हो पाएंगे
0: जी।
1: तो जहां तक इन इक्वालिटी की बात है, वो समाज में है। हमारे भीतर जो एक वातावरण बना हुआ है उसको तो हम समझ ही नहीं पाते। हम बाहरी घटनाओं, बाहरी वातावरण को ठीक करने में लग जाते हैं। चुनौतियां हैं, नो डाउट, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर खुद को जांचने की जो बात कह रही हूँ वो आमतौर पर हम नहीं कर पाते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम उस उत्पीड़न से, उन घटनाओं से खुद पीड़ित हो रहे हैं, या फिर हम उस उत्पीड़न समस्या से दूर होकर अपने जो पर्पसफुल लाइफ है उस पर फोकस कर रहे हैं। घटनाएं तो आती जाती रहेंगी, घटनाओं के बारे में हम ये नहीं कह सकते क्योंकि वो बाहर हैं। जिंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ऐसे हमें सभी समझदार तो मिलेंगे नहीं।
0: वाकई,
1: तो जहां पर हमें अगर ऐसा ऐसे व्यक्तित्व से टकराव होता है जहां पर कि मन खराब हो, है ना, लैंगिक असमानता तो है ही, जेंडर इक्वालिटी तो है ही, अब लेबर का ही काम कर रहे हैं अगर मेल और फीमेल तो सैलरी भी डिफरेंट
0: जी,
1: है ना। तो यहाँ पर देखने की जरूरत है कि हम समाज सुधार के लिए बाद में देखें, पहले खुद को देखें, अपने परिवार को देखें, क्योंकि परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार से ही हम मन से जब खुश होते हैं, अपने परिवार में हम खुद खुश रहते हैं, खुश होके हम काम करते हैं, तो वो खुशी हमारे परिवार तक जाती है और कई घटनाएं जिनको हम एड्रेस ना भी करना चाहें वो अपने आप सुलझ जाती हैं। तो बजाय इसके कि हम समस्या पर फोकस करें, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके हम अगर उन घटनाओं को ठीक करने के लिए कोशिश ना करें पहले, तो सबसे पहले अपने घर परिवार में खुद खुश रहें, परिवार में सब खुशियां बटोरें और खुशियां दें, क्योंकि जितनी हम खुशियां बांटेंगे उतने ही हमारे परिवार वाले खुश रहेंगे।
0: वाकई,
1: है ना।
0: सो भाई, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है एंड आई थिंक आई टोटली अग्री कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम पूरे समाज को बदलें, अगर शुरुआत हम अपने घरों से करते हैं तो डेफिनेटली ये चेंज हम महसूस कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आशा गाबा जी आज हमारे साथ हैं। आशा जी एक बहुत ही जानी मानी एजुकेशनिस्ट रही हैं, बहुत सारे जीवन को इन्होंने बदलने की कोशिश की है और अब जीवन के इस पड़ाव पर ये मध्यस्थ दर्शन का ना सिर्फ अध्ययन कर रही हैं लेकिन इस पर बेस्ड लोगों की जिंदगियों को बदलने की भी कोशिश कर रही हैं। आशा जी, आज के जमाने में जहां पर हमारे पास इतनी सारी एडवाइस है, ऐसे जीवन में आप मुझे बताइए, आप मध्यस्थ दर्शन के बेसिस पर सभी को क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगी?
1: जी, तो सबसे पहला मैं यही कहना चाहूंगी, स्वयं को एक मानव के रूप में पहचाने
0: जी।
1: मन स्वस्थता पर ध्यान दें, शारीरिक स्वस्थता पर ध्यान दें। 99.9% हमारी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो है उसी से हमारी बॉडी और दूसरी चीजें गवर्न होती हैं।
0: yes.
1: तो मेरा ये मानना है कि भ्रम और अंधविश्वास में ना जिएं, फैक्ट्स और फिक्शन में अंतर को समझें, बौद्धिक विकास पर ध्यान दें। 24/7 हम कैसे खुश रह सकते हैं इस पर ध्यान दें। भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता अगर होगी तो वर्तमान से विरोध बना ही रहेगा, इसलिए खुद में उस विरोध को पनपने ना दें।

0: और खुद की योग्यता बढ़ाएं, पात्रता बढ़ाएं। सोचना, बोलना और करना, तीनों में हारमनी होनी जरूरी है। इसी हारमनी से ही हम जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। मन में आवेश, काम क्रोध लोभ, मद मोह मात्सर्य अगर होंगे, विचारों में हट धर्मिता होगी, अभिमान और अहंकार होगा बुद्धि में, तो हम इन पूर्व स्मृतियों, पूर्व मान्यताओं को देखकर हम जी नहीं पाएंगे। तो समझना क्या है हमें, हमें जागृति पथ पर अग्रसर होना है, भ्रमित मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा और समझदार होने पर ही, समझदार मानव होने पर ही महिलाएं परिवार और समाज में अपनी भागीदारी अच्छे से निभा पाएंगी। कंपटीशन और कंपैरिजन की बजाय कंट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ें, अपनेपन का विस्तार पर ध्यान दें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच
1: दोस्तों। वाकई मतलब देखिए ना कि हम जब कभी भी बात करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं लाइफ अनहैप्पी होती तब है ना जब हम कम्पीट करने लग जाते हैं, जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ का कंपैरिजन ही खत्म कर दें सो ऑटोमेटिकली आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपकी लाइफ ज्यादा पीसफुल है और ज्यादा खुश है। तहे दिल से धन्यवाद आशा जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
0: बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया, आपका तहे दिल से। और सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी बातों को ध्यान से सुना। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। थैंक यू
1: दोस्तों। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव।
2: ज्वाला समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पे बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूँ भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो,
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला ये मेरा वादा है।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम। इस खास कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चलते हैं। ऐसे लोगों के साथ हम बात करते हैं जो आज भी ह्यूमैनिटी के रास्ते पर चल रहे हैं और ढेर सारा काम आज भी हमारे समाज के लिए कर रहे हैं। और इस कड़ी में आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं प्रीता सक्सेना जी। प्रीता सक्सेना जी प्रेसिडेंट हैं उपज एक प्रयास की। तो ये खास एनजीओ है जो बहुत सारे नेकी के काम कर रहा है और प्रीता जी इस राह पर चल चुकी हैं। तो आज इनसे करेंगे बात, करेंगे मुलाकात। इसके लिए करेंगे स्वागत प्रीता जी का रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीता जी।
1: थैंक यू भावना जी। सभी प्यारे मित्रों को, सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं अध्यक्ष हूँ उपज एक प्रयास एनजीओ की।
0: जी प्रीता जी, पहला सवाल, उपज एक प्रयास एक खास एनजीओ है, बहुत निरंतर मेहनत कर रहा है, एक लंबे समय से काम कर रहा है, मुझे बताइए इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है और किस प्रकार से आपको ख्याल आया कि उपज एक प्रयास एक एनजीओ चलाया जाए।
1: पहले तो मैं बताना चाहूंगी, मैं अकेली ही थी, जानिए मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
0: जी
1: तो मैंने ये शुरुआत की थी 2016 में।
0: जी
1: बट रजिस्ट्रेशन जो हमारा 2020 में हुआ,
0: जी
1: किन्हीं कारणों की वजह से, तो पहले तो हमारा ये था कि काफी हम लोग, कुछ लोग थे, लोग जुड़ना नहीं चाहते थे कि क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे निस्वार्थ लोग भी होते हैं जो जुड़ जाते हैं
0: जी
1: साथ में। और वो फिर हुआ ऐसे था कि मैं एक बार अपने बेटे से हरिद्वार मिलने जा रही थी दिल्ली से, तो मुझे रास्ते में एक बच्ची दिखाई थी जहाँ मैं चाय पीने रुकी। उसको काफी ब्लड लॉस हो रहा था और मतलब जो मंथली प्रॉब्लम, और उसको लोग देख रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। बच्ची थी, उसे खाने का था बस, उसे कि मुझे खाना दे दे कोई। तो मुझे देखा, मेरे पास गाड़ी में कुछ भी नहीं था, एक पुराना कुर्ता जिससे गाड़ी साफ करते हैं वो पड़ा था, तो मैंने पहले तो उसको वो पहनाया और उसके बाद उसको थोड़ा सा खाने वाने का दिया। उस दिन से मेरे दिमाग में चीज ट्राई थी कि नहीं, कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए।
0: जी
1: तो वहां से मेरा सफर शुरू हुआ और धीरे धीरे फिर मैंने अपने फ्रेंड्स से डिस्कस किया अपने सर्कल में, तो तब हमने इस एनजीओ के बारे में सोचा कि हम इसको बड़े रूप में करते हैं कि कुछ हम जैसे लोग इसमें जुड़े हमारे साथ।
0: देखिए भाई, हर एनजीओ के साथ में अगर बात करूं तो उसकी कहानी हमेशा एक किसी इंसिडेंट से होती है। कोई एक ऐसी चीज आपके साथ होगी जो कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाएगी, कोई ऐसी चीज जो आपको मजबूर करेगी कि आज भी हम इंसान हैं, हमारे अंदर मानवता है, तो हम ये हमारी वो मानवता जगाकर चली जाएगी। एक छोटी सी बच्ची एक ढाबे पर शायद अपनी भूख मिटाने के लिए खाना मांग रही थी, लेकिन उस भूख ने और या फिर उन छोटी सी प्यारी सी आंखों ने प्रीता जी के दिल को छू लिया और उस दिन से इन्होंने ठान लिया कि उपज एक प्रयास एक ऐसी पहल होगी जिसमें शायद कोई भी ऐसी बच्ची सड़क पर भूखी या फिर सड़क पर खाना नहीं मांगेगी। ऐसी कोई भी बच्ची जो इस महामारी के दौर से गुजर रही होगी वो ऐसी कंडीशन पर सड़क पर नहीं होगी जहां उसे किसी भी प्रकार की कोई सहायता ना मिले। और उपज एक प्रयास की शुरुआत वहां से हुई, 2016 से लेकर 2020 और आज पूरे 10 साल बाद अगर आप देखें तो ये सफर बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। करेंगे इसके बारे में भी बात, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम प्रीता सक्सेना जी के साथ चल रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं उपज एक प्रयास एनजीओ की। प्रीता जी, आप मुझे बताइए, जब आप बहुत सारे दोस्त मिले, परिवार जुड़ा, बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग जुड़े और सबने सोचा कि अब इस कारवां को आगे लेकर जाया जाए, तो किस प्रकार के नेकी के काम कर रहे हैं आप उपज एक प्रयास में?
1: मैम, हमने शुरू तो गरीब बच्चियों से ही किया था, जो स्कूल तो जा सकती हैं लेकिन उनको फिर कोई आगे पढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए नहीं होता है। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा बुराड़ी में जगह है हमारे पास, उसमें हमने इवनिंग क्लासेस रखी हुई हैं, उसमें बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चे पढ़ने नहीं आना चाहते तो उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं, उनको पेंसिल्स वगैरह देते हैं, मंथली एक कॉम्पिटिशन वगैरह टाइप कराते हैं जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बने, पेंटिंग कॉम्पिटिशन वगैरह, उसमें भी फर्स्ट सेकेंड प्राइज देते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्साहित करना भी एक बहुत बड़ा काम है। और खासतौर पे जो बच्चे ऐसे होते हैं कि मांग कर गुजारा कर सकते हैं, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, तो वहाँ से थोड़ी शुरुआत है। कुछ जो घर में काम करने वाली महिला होती है उनको शाम को थोड़ा सा पढ़ाते हैं, क्लासेस देते हैं, और बाकी ओल्ड पीपल्स के लिए भी हम लोग काम करते हैं, जिनको चश्मा है, छड़ी है या व्हील चेयर कुछ जरूरत होती है, समय समय पर मेडिकल कैंप लगवाते हैं उनका शुगर बीपी वगैरह चेक कराने के लिए। मतलब ऐसे ही बहुत सारे कार्य हैं जो हम लोग करते हैं, और उसमें सबसे बड़ा काम जो है हम लोग सामूहिक विवाह भी कन्याओं का कराते हैं
0: जी।
1: तो जो भी गरीब बच्चियाँ हैं उनका 11-21 जितने भी जोड़े होते हैं उनका निःशुल्क हम लोग विवाह करवाते हैं साल में 2 बार। और एक हम भागवत कथा रखवाते हैं जिससे कि हर लोग बड़े बड़े जगह कराते हैं तो छोटा जो वर्ग होता है वो जाने में झिझकता है, शर्माता है
0: जी।
1: उस 7 दिनों में हम उस कथा के बाद 1 घंटे की क्लास रखते हैं जिसमें हम उन्हें स्वच्छता अभियान और भीख ना मांग के कमाने से कितना आत्मसम्मान मिलता है आप बिल्कुल, और वो सब चीजों पे हम लोग थोड़ा थोड़ा उन्हें समझाते हैं, सफाई कैसे रखें और समय समय पर खाना कैसे है, मतलब उन चीजों पे हम उनको 1 घंटे की क्लास देते हैं। तो वो इसलिए आते हैं कि उसके बाद जो भंडारा होता है थोड़ा सा तो उनका लालच होता है, थोड़ी वो झांकियां वाकियां देखते हैं, उनसे वो कोई प्रोत्साहित होते हैं। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम कर रहे हैं।

देखिए भाई, जीवन में जब आप अपने जीवन का निर्वाह इस प्रकार के स्ट्रगल से करते हैं ना, तो आपकी बहुत सारी चीजों पर से विश्वास उठ चुका होता है। मान लीजिए कि आप गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि न जाने पढ़ाई कितना आपका भविष्य बदल देगी उस समय। और जो माइंडसेट होता है वो ये होता है, ये दो हाथ हैं और इन दो हाथों से आप जो कमा सकते हैं या मांग सकते हैं या जहां कहीं से कुछ प्रोक्योर कर सकते हैं, उससे हमारा जीवन यापन हो। लेकिन अगर उन्हें सही राह दिखाई जाए, एक नई राह, एक ऐसा पाथ जिससे कि उनका पूरा भविष्य सुधर जाए, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। प्रीता जी ऐसे ही स्लम्स के बच्चे, ऐसे ही डाउनट्रोडन बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश कर रही है, ऐसी बच्चियों को स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसी बच्चियां जिनका विवाह नहीं हो पा रहा क्योंकि उनके माता पिता के पास इस प्रकार के पैसे नहीं है, उन्हें एक बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही खूबसूरत विवाह का मौका दे रही है, जहां पर कि वो एक शादी भी कर रही है, लेकिन वो वैसी ही शादी है जैसे शायद आम जन की होती है और एक यादगार मोमेंट बन सकती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे नेकी के काम किए जाते हैं उपज एक प्रयास में। और भी बहुत सारी बातें हैं जो प्रीता जी से करेंगे। आप जुड़े रहिएगा रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं प्रीता सक्सेना जी के साथ, जो कि प्रेसिडेंट हैं उपज एक प्रयास की। प्रीता जी, अब अगला अहम सवाल, विकलांगों के लिए आप ढेर सारा काम करती हैं और परेशानी ये है कि विकलांगों को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उन्हें कैसे प्रोत्साहित करते हैं आप?
1: मैम, विकलांगों को और कोड़ियों को, दो जनों को ऐसा है कि जिनको आप मोटिवेट करने में बहुत लंबा टाइम लगता है
0: जी,
1: तो उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा नुक्कड़ नाटक कहानियां उनको सुनाना मोटिवेशन की, और उनके शौक, जैसे छोटा सा ही होता है कि किसी से आप ये पूछ लीजिए कि आपको पसंद क्या है खाने में, उसके साथ बैठ के जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि लोग अक्सर पूरी हलवा तो लोग खिलाते हैं, भंडारा करते हैं ये, मगर कभी शौक के लिए उनको गोलगप्पे नहीं खिलाते या रसमलाई नहीं खिलाते
0: जी।
1: तो हम लोग उनके शौक और ऐसी चीजें उनके साथ करते हैं क्रिएटिव कि उनको लगता है कि हाँ, हमारी कोई मन की बात सुनने वाला है। आजकल इवन दैट कि विकलांग या कोड़ियों की बात तो छोड़िए, आप आम घरों में पेरेंट्स के लिए बच्चों को टाइम नहीं होता
0: जी,
1: तो वहाँ उन बेचारों की कौन सुनेगा
0: जी।
1: तो उसके लिए हमें मोटिवेट करने के लिए थोड़े से जगह जगह जाके नुक्कड़ नाटक करते हैं, थोड़ा सा हम जब वो जुड़ जाते हैं हमसे लोग, तो कुछ ना कुछ ऐसा रखते हैं, क्योंकि वो अंदर से इतने टूटे हुए होते हैं कि कुछ कॉम्पिटिशन थोड़ा सा उनमें करा दें। अब जैसे कोड़ी होंगे वो किसी के सामने भी अपनी बिरादरी में तो रहेंगे, लेकिन किसी और के साथ झिलने झुलने में उनको हेजिटेशन होती है
0: जी,
1: तो उनके साथ खुलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है बनिस्पत की अंधे व्यक्तियों के साथ या जो हम अंधी बच्चियाँ रखते हैं उनके साथ खुलने में फिर भी टाइम होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें फिर भी समाज, हम पढ़ लिख लेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इन जो सबसे निम्न वर्ग कोड़ियों का आता है उन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करता
0: जी।
1: यहाँ तक कि उनको कोई छूना या बैठ के खाना, जबकि अब की ये ऐसी हो गई कि छूत की बीमारी नहीं रही है, इसका इलाज बहुत अच्छा हो गया है, बट फिर भी लोग बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। तो हम लोग वहाँ भी जाते हैं तो उनको इतना प्यार और सम्मान देते हैं कि वो फिर हमसे खुल जाते हैं। जैसे दिलशाद गार्डन में भी एक कोड़ियों का मंदिर बना हुआ है दिल्ली में, वहाँ पे लोग खाना बांटने तो जाते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे कोड़ियों को खिलाने से ही होगा, मगर उनके मन की बात सुनने या कोई उनसे बैठकर बात नहीं करना चाहता कि आपको किसी दवाई की जरूरत है या कुछ है, तो उनको खोलना थोड़ा मुश्किल होता है अपने साथ, लेकिन जब वो हमारे साथ खुल जाते हैं तो वो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ही उनको समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है कि आप भीख ना मांग के आप शिक्षित हो, जो आपके नए परिवार में बच्चे आ रहे हैं उनको पढ़ाई दें।
0: वाकई प्रीता जी एक बड़ा खूबसूरत सा काम कर रही हैं, जहाँ पर कि आप देखिए माइंडसेट बदलने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये जो माइंडसेट है ना, ये बड़ी परेशानी है। आप एक तरीके की विचारधारा की तरफ चलते हैं, आप ये सोचते हैं कि भाई हमारा जीवन तो ऐसे ही यापन हो जाएगा, लेकिन अगर हम अपने जीवन को सही ढंग से देखें तो इसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं। सबसे पहला कॉम्पोनेंट है आपका अपना पैरों पे खड़े होने का, और वो कॉम्पोनेंट कई बार गरीबी के नीचे की जो रेखा है इन सभी लोगों के साथ मिस हो जाता है। और बहुत सारे लोग आप देखिए जीवन में, क्योंकि वो विकलांग हैं, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी है या फिर गरीबी एक बहुत बड़ी परेशानी है, ये अपने आप में एक अभिशाप है, इससे वो बच ही नहीं पाते हैं या फिर उससे उबर ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर उन्हें पता लग जाए कि शिक्षा की रोशनी से इस अंधकार को भी दूर किया जा सकता है, तो बहुत आसानी से इसे ठीक किया जा सकता है। और कुछ ऐसा ही नेकी का काम कर रही है प्रीता सक्सेना जी, उपज एक प्रयास एनजीओ के साथ। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम प्रीता सक्सेना जी के साथ चल रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं उपज एक प्रयास की। प्रीता जी, एजुकेशन तो चलिए आपने कहा कि बहुत जरूरी होती है, लेकिन उसके अलावा स्वावलंबी बनाने के लिए किस प्रकार से आप इन बच्चियों की, महिलाओं की और इन सभी विकलांगों की, कोड़ियों की, रोगियों की मदद करती हैं?
1: मैम, हमने इसके लिए कुछ थोड़े से जैसे थैला बनाना है, कुछ गरीब महिलाओं को वो देते हैं, वो घर से बनाए, और कुछ जो थोड़ी सी शिक्षित है वो हमारी NGO में पढ़ाती है, उनको भी हम थोड़ा सा उसी तरह से पे करते हैं। और जो लड़के हैं जो अनएजुकेटेड है और टेंथ के बाद उनको काम नहीं मिलता, उनको सर्वे वगैरह के काम थोड़े से प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। हमारी कोशिश रहती है कि जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं आम परिवारों के, उनको भी थोड़ा सा सहयोग किया जाए, तो उसमें भी हमारा प्रयास रहता है। लेकिन बहुत कंपनीज और वो बड़ा, मतलब उसके लिए हमें जोर लगाना पड़ता है, मतलब समाज आज भी जो है वो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है
0: जी।
1: तो और एक संस्था चलाना बहुत बहुत ज्यादा टफ काम है, जिससे कि हमें कोई सरकारी वो नहीं मिलती, ग्रांट नहीं मिलती, ना हम लेते हैं। हम जितने भी मेंबर हैं हम सब अपने उस पे काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए कोविड में भी बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने फिर भी किया। और आम दिनों में भी, अभी जैसे किसी को BP शुगर हो जाता है या ये सब मशीनें प्रोवाइड कराना, व्हील चेयर, जो आम फैमिली भी है, गरीब तो छोड़िए, जो आम फैमिली भी है, वो कई बार बच्चे अपने माँ को चश्मा तक बनाने के लिए उनके पास नहीं होता, इतनी इनकम नहीं है डेली बेसिस पे काम करने, तो हमें स्ट्रगल काफी करना पड़ता है कि कहाँ से फंडिंग आए। और हमारे पास जो कोई ऐसा नेता या अभिनेता हमारे साथ जुड़े नहीं है, तो थोड़ी सी स्ट्रगल है। हमारी कोशिश रहती है कि फिर भी हम उन्हें काम दें
0: जी,
1: पर कहीं ना कहीं थोड़े से असफल हो जाते हैं उस पे। आपके, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपके, क्योंकि थोड़ा सा हमें उसकी सपोर्ट चाहिए होती है कि जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए हम ज्यादा कुछ कर पाए, वहाँ पे हम थोड़े से असफल है, अभी नहीं कर पा रहे।
0: वाकई, तो भाई चुनौतियों की हम बात करेंगे, बस उससे पहले लेने वाले एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टू वर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं प्रीता सक्सेना जी के साथ, जो कि अध्यक्ष हैं उपज एक प्रयास की। प्रीता जी, चुनौतियों की बात करते हैं। आपने एक चुनौती की बात की कि फंड्स बहुत बड़ी चुनौती है। भाई, जब आप नेकी का काम करने जाते हैं तो शुरुआत में आपको लगता है कि चलिए हमारी झोली में जितना कुछ है हम उसे दे आएंगे, फिर बहुत सारी झोलियां इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों को आप इकट्ठा करते हैं। आपने खुद ही कहा कि मैं चली थी अकेली जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। लेकिन अब कारवां की झोली भी खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि 10 साल का लंबा समय आ गया है। तो मुझे बताइए कि और किस प्रकार की चुनौतियां हैं। चलिए, फंड्स आपकी एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके अलावा और किस प्रकार की चुनौतियों का सामना आप करती हैं?
1: मैम, सबसे बड़ी मेडिकल जो इक्विपमेंट देने होते हैं या जो अंधे बच्चे हैं उनकी ब्रेल शीट और सब चीजों के लिए जो पढ़ाई करा रहे हैं
0: जी,
1: उनकी प्रॉब्लम आती है कई बार। उनको जो ब्लाइंड है उन बच्चों को इंस्टीट्यूट तक ले जाना लाना, गाड़ी की दिक्कत आती है कई बार, क्योंकि वो तो अपनी जगह पे जहाँ रख रहे हैं वहाँ तो वो इतने परफेक्ट है कि उनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है
0: जी,
1: बट जहाँ तक उन्हें ले जाना होता है। तो इसके लिए मैं नाम नहीं लूंगी, एक नेताजी से मिली थी मैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से शुरू में जब मुझे कोई नहीं जानता था तो खातिरदारी की, चाय वाय पिलाई। 2 दिन बाद उनका फोन आया, मैम हम आपकी NGO के लिए अगर कुछ कराएंगे तो आप हमारे लिए क्या करेंगी? तो मैंने कहा सर समाज सेवा कर रहे हैं, जब मैं कोई उम्मीद नहीं रखती समाज से कि कुछ देना ही है तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा ही गलत मेरे आगे प्रपोजल रखा जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं किया। उसके कारण मेरे जो एक NGO के सदस्य थे वो कहने लगे, मैम अगर आप प्योर सोना रहेंगी ना तो आपके गहने नहीं बन पाएंगे, तो थोड़ी मिलावट तो करनी पड़ेगी। वहां मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया
0: जी,
1: और आज भी नहीं करती हूँ। तो जिस हाल में है संस्था थोड़ा ही कर पा रही हूँ, लेकिन करती हूँ। तो समस्याएं बहुत हैं, क्योंकि मानसिकता जो लोगों की है, पहली तो यह है कि NGO के पास तो बहुत कुछ होता है, और दूसरी मानसिकता ये आ जाती है कि गिव एंड टेक वाली, कि अगर कोई बड़ा सदस्य आज तक हमारी संस्था से इसलिए कोई चेयरपर्सन या कोई नहीं जुड़ता है क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं।
0: वाकई
1: तो वहाँ एक समस्या है। बाकी मेडिकल फैसिलिटीज में हमें दिक्कत आती है, जैसे कुछ पीछे 2 कैंसर के पेशेंट आए थे
0: जी,
1: तो एम्स में बहुत लंबा टाइम लगा उनको, तो वहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं कि दिखाने जाते हैं तो नहीं मिलता, या कोई एक्सीडेंट लाता है तो ब्लड की दिक्कत होती है।
0: वाकई
1: तो मतलब बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, वो समस्याएं आती हैं।
0: देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम अपने घरों में बैठे होते हैं हम अपनी सहूलियतों को देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि हमारे ऐशो आराम, हमारी लग्जरी, हमारी सहूलियतें हम और कैसे बढ़ा सकें। बट क्या हम कभी ये सोचते हैं कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, हमारे ही अपने देश में, जिन्हें बेसिक चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं, और जो हमारे लिए बिल्कुल फ्री हैं, हमारे लिए शायद बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसमें हमारा बहुत ज्यादा कोई शायद यू नो मनी लॉस या फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होगा, पर हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है हम क्यों। मानवता, हम इंसानों की ही ट्रेट है, और अगर हम इसे जिंदा रखेंगे तो हम किसी की मदद कर पाएंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं आप आगे बढ़ सकते हैं और इन सबके साथ जुड़कर किसी का जीवन सुधार सकते हैं। कैसे जानेंगे प्रीता जी से, बस जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्टोरेंट 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं प्रीता सक्सेना जी के साथ, जो की प्रेसिडेंट है उपज एक प्रयास की। प्रीता जी, बहुत सारे लोग फिलहाल आपको रेडियो मानव रचना के जरिए सुन रहे हैं। हमारे इंटरनेट रेडियो के थ्रू आप पूरे विश्व में अपनी आवाज को पहुंचा सकती हैं। मुझे बताइए, कोई अगर आपके साथ वॉलंटियर करना चाहता है, कोई एसोसिएट होना चाहता है, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, क्योंकि आज के जमाने में परेशानी है, बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन हाँ पर उनके पास धन है, तो किस प्रकार से वो आपके साथ जुड़ सकते हैं?
1: मैम, उसके लिए हमारा वेबसाइट पेज है, प्लस मैं आपको अपने दो नंबर है, फोन नंबर वो बोल देती हूँ
0: जी,
1: 9310852877 एंड दूसरा है 9310815366।
0: देखिए दोस्तों, आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उपज upajngo.com पर जा सकते हैं, बहुत ही आसान है यहाँ पर जाना, आप इन्हें ढूंढ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं एक बात कहती हूँ, हम अपने आसपास के एरिया में देखते हैं, आप फिलहाल हमें सुन रहे हैं एंड डेफिनेटली आप में से कोई शायद उस एरिया के आसपास भी बिलोंग करता होगा जहाँ पर उपज एनजीओ काम करता है, तो उसके लिए जरूरी क्या है, आप उनके लिए छोटी सी सहायता बन सकते हैं। किसी दिन, एक दिन आप थोड़ा सा समय निकालिए और जाकर इनके बच्चों के साथ ना सिर्फ आप थोड़ा समय निकालें लेकिन उन्हें मोटिवेट करें। इसी के साथ साथ अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो उस हुनर को आप किसी को सिखा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं जो आप दे सकते हैं, और अगर आप अपनी किसी एक लग्जरी को थोड़ा सा कम कर दें एक दिन के लिए, तो उससे भी आप किसी की मदद कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप वॉलंटियर कर सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो अपना कीमती सलाह और समय आप इन्हें दे सकते हैं, लेकिन ऐसे ही आप किसी के जीवन को सुधार सकते हैं। तो ये प्रयास जरूर करिएगा, मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है। उपज एक प्रयास एक खास प्रयास है, एक खास पहल है, इस पहल के साथ जरूर जुड़िए और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, फील लव।

सुबह पे जिस तरह शाम का

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं प्रीता सक्सेना जी के साथ। ढेर सारी बातें हमने इनसे की, प्रीता सक्सेना जी जो कि प्रेसिडेंट है उपज एक प्रयास एनजीओ की। प्रीता जी मुझे बताइए, जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहती हैं?
1: मैम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी आज जोड़ के, आप जरूरी नहीं है कि हमारी संस्था में डोनेट करें। आसपास जो भी लोग आपको दिखाई देते हैं, आप गाड़ियों में जाते हैं, कुछ साबुन, कुछ जो आपके ये होते हैं शैम्पू पाउच होते हैं, कुछ शैम्पू, कुछ खाने की चीजें, बहुत से लोग हैं वीकली आपके पास झुकी झोपड़ियाँ बस्ती है उनमें ले जाके एक बार्बर को उनकी कटिंग करा सकते हैं, बालों की दाढ़ी बनवा सकते हैं। कुछ ऐसे पुल के नीचे बैठे होते हैं लोग जिनको आप हफ्ते में एक बार खाने के कुछ पैकेट बना के दे सकते हैं। और बाकी मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों

0: में कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है।
1: तो भाई अपने सपनों को बुलंद करिए। लेकिन जैसे प्रीता जी ने एक छोटे से इंसिडेंट के बाद अपने जीवन को बदल लिया, मैं ये नहीं कहती आप पूरा जीवन बदलिए और एक एनजीओ स्टार्ट करिए, लेकिन किसी ना किसी की मदद जरूर करिए। और इस प्रकार से जब आप ऐसी मोटिवेटिंग कहानियां सुनते हैं, मानवता को जिंदा रखने का एक छोटा सा प्रयास जरूर करिएगा। अगर हम सभी लोग मिलकर अपने आसपास के मात्र 10 लोगों का भी ख्याल रख लें, तो मुझे नहीं लगता किसी एनजीओ को ऑपरेट करने की जरूरत है। उन्हें ना फंडिंग के चैलेंजेस होंगे, ना उन्हें वॉलंटियर के चैलेंजेस होंगे, ना उन्हें एसोसिएशंस के चैलेंजेस होंगे। तो इसी कड़ी में एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगी प्रीता जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे साथ जुड़ी। तहे दिल से धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद।
1: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: अरे अरे, अरे भैया आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

रेडियो मानव रचना 107.8 ऑफ एम्पर, मैं हूँ प्रांका और लेकर के आ चुकी हूँ प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में, जहाँ मैं आप लोगों के पास में होती हूँ, आपसे ढेर सारी बातें के साथ साथ सुनाती हूँ प्यारे प्यारे से गाने और आपके मैसेज जो मेरे पास में आने शुरू हो गए हैं। बस ऐसे ही मैसेज आप भेजते रहें, कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई गाना आपको इंजॉय करना है, आप मुझे 8010781078 पर मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मैं तो बात करूँ ही, लेकिन साथ में आप भी बातें करें, इसलिए मैं आते ही सबसे पहले आपको नंबर देती हूँ ताकि आप अपनी बातें हम तक पहुँचा दें। और आप मुझे कॉल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार बिजी होने के चलते हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, तो उसके लिए आप हमें दिल से माफ़ कर दीजिएगा और समझ जाइएगा कि अभी हम बड़ा बिजी हैं, आप तुरंत मैसेज कर दीजिए। और आप जब मैसेज करेंगे तो ना केवल हम आपके बातों का जवाब देंगे बल्कि आप के फरमाइश के गाने भी आपको सुनाएंगे। तो बस आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब प्रोग्राम शुरू हो गया है तो चलिए गाना आपको सुनाती हूँ, उसके बाद मैं इस प्रोग्राम में आपको बताने वाली हूँ कि आज के इस खास प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई हूँ। तो चलिए इंजॉय करते हैं पहले गाना। रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में आज के प्रोग्राम में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ढेर सारे हैक्स एंड फैक्ट्स के बारे में। जी हाँ, ये क्योंकि बहुत ही खास और हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे काम को आसान करते हैं। और हमेशा क्योंकि आज का वक्त जो है हम काफ़ी एडवांस्ड हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, और ऐसे में जहां हम स्मार्ट चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं कुछ स्मार्ट हैक्स भी हैं जो हमारे काम को बेहद आसान कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही हैक्स और फैक्ट्स लेकर के आई हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा, क्योंकि हम अपने

जिंदगी में काम करते करते कहीं ना कहीं हमारे जहन में, हमारे मन के अंदर एक ख्याल रहता है कि क्या ये काम कम हो सकते हैं या इन कामों से हमें थोड़ा सा वक्त मिल सकता है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं ये हैक्स लेकर के आती हूँ, तो आप एंजॉय कीजिए और बताऊंगी थोड़ी सी देर में, और साथ ही सुना रही हूँ आपको गाने। तो चलिए अगला गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव रेश 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं कुछ स्मार्ट हैक्स आपको बताऊंगी। भाई आज है सैटरडे और आज के इस प्रोग्राम में ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं और किचन के बारे में मैं ज़्यादा आज के प्रोग्राम में आपसे बात करती हूँ, क्योंकि किचन का काम ना अपने आप में इतना सारा होता है कि अगर आप एक बार किचन में गए और आपने ब्रेकफास्ट के टाइम पर जो भी काम किया, करते करते आपको इतना टाइम हो जाएगा कि आपको सिर्फ इतना ही वक्त मिलेगा कि आपने नाश्ता करना है और उसके बाद फिर से लंच की तैयारी हो जाती है, क्योंकि काम बहुत सारा हो जाता है। अब ऐसे में हमें चाहिए होती है हेल्प, तो देखिए अगर घर में बाकी सदस्य हैं तो ज़रूर हेल्प करते होंगे, है ना। और अगर हम अकेले हैं और हमारे साथ कोई और नहीं है हेल्प कराने वाला, तो यहाँ पर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए घर में जो भी किचन में उस वक्त काम कर रहा है तो सब मिलके उनका हाथ बटाएं, ताकि वो व्यक्ति जो किचन में खाना बना रहा है वो भी फ्री हो जाए। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि करने वाला सिर्फ एक ही होता है किचन में काम, ना तो अब क्या करें। तो ऐसे में हैक्स काम आते हैं और इसलिए मैं आप लोगों के लिए हर सैटरडे आप लोगों के लिए हैक्स लेकर के आती हूँ। चलिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जिससे ना बड़ी तकलीफ होती है, और वो है मिक्सी। अच्छा, मिक्सी से तकलीफ तब हो जाती है जब मिक्सी ख़राब हो जाती है, जार के ब्लेड घिस जाते हैं, किसी भी यूज़ में नहीं आ पाते हैं। तब ऐसे में क्या होता है, अब यही दिमाग में रहता है कि अब हमें नई मशीन ख़रीदनी पड़ेगी, है ना। और मशीन बाहर ख़रीदना मतलब अपना खर्चा करवाना, राइट। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो वेट करते हैं कि छुट्टी आए तो हम मिक्सी वाले के पास लेकर के जाएं इसे ठीक कराने के लिए, इसके जो ब्लेड है उसको चेंज करवाएं, अब उसमें भी खर्च है ना। तो एक बार जो मैं कहने वाली हूँ उसको आप ट्राई कीजिए। आपको क्या करना है, आपको मिक्सी लेनी है, उसमें जार लगाना है, जार में कुछ डालना नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज़ डालनी है और वो है सॉल्ट। जी हाँ, जो वाइट सॉल्ट होता है जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, आपको ढेर सारा जो जार है मिक्सी का जिसमें ब्लेड है, राइट, उसमें आप डाल दीजिए और फिर आप खूब सारा नमक डाल करके इसको चला दीजिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपको नमक को पीसना है। अब इससे क्या होगा, आप देखेंगे जैसे ही आपने नमक पीसा उसके बाद ब्लेड जो है वो काफ़ी हद तक काम करने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो ब्लेड होते हैं उसकी धार को एकदम शार्प करने का ये तरीका, आप ये से नुस्खा कह सकते हैं, ये एक बेहतरीन सा नुस्खा है। तो आप इसे करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये कितना वर्क किया। बट मैंने अपने घर में किया था तो मुझे तो बड़ा सही लगा। अगर आप हफ्ते में एक बार ऐसे ही नमक को मिक्सी में डाल के पीस देते हैं तो उससे आपके ब्लेड शार्प रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी और मिक्सी में पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इस तरह से आप मनी सेविंग कर सकते हैं और साथ के साथ ये हैक्स आप अपने किचन में इस्तेमाल करके आप किचन को और भी ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। अब मैंने आपको ये वाला हैक बताया, एक और बहुत ही गजब का हैक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज के इस प्रोग्राम में, और इसके साथ ही सुनाने वाली हूँ गाने जो कि हैं बेहद खूबसूरत। तो चलिए दो गाने एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है एवरग्रीन लम्हे। और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको बता रही हूं कुछ स्मार्ट हैक्स। और किचन की बात हम कर रहे हैं क्योंकि किचन का काम ज़्यादा होता है, किचन में वो सारी चीज़ें जो अपने आप में काफ़ी टाइम टेकिंग है उसको हम कैसे कम टाइम में कर सकते हैं या उससे काम हल्का कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ और आपको हैक्स बताती हूँ। साथ ही बाहर जो खाने का अब ट्रेंड है वो काफ़ी हद तक घर में हो गया है, यानी कि पहले हम बाहर जाकर एंजॉय करते थे लेकिन अब वही चीज़ें घर में भी हम बनाकर एंजॉय कर पाते हैं। फिर चाहे कुछ भी फास्ट फूड हो या कोई भी ऐसा खाना जो आप बाहर पहले एंजॉय करते थे, लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे हमें पता चलता जाता है कि अच्छा इसको ऐसे बनाना है या इस तरह से इसको बनाकर तैयार करना है, वो फिर हम घर पर ट्राई करते हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ जो एक काफ़ी अच्छी है क्योंकि जब कोई चीज़ हम घर पे बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हम घर में क्या डाल रहे हैं, किस तरह के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ऐसे ही हम जब भी छुट्टी पर होते हैं यानी कि वीकेंड होता है तो या तो राजमा या कढ़ी खाने का मन करता है या फिर दाल मखनी और उसके साथ में तंदूरी नान हो जाए तो ओहो क्या कहने, है ना। नान जो है घर में आजकल काफ़ी बनाने लगे हैं लोग। पहले का वक्त होता था कि लोगों को पता नहीं होता था कि कैसे बनाना है, सिर्फ कुछ एक लोग ही जानते थे बनाना, लेकिन आज के टाइम पर अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो भी नान बना सकते हैं। और ये तरीका तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। तंदूरी नान के लिए तंदूर का इस्तेमाल पहले किया जाता था लेकिन अब घर में भी आप बना सकते हैं। आप उल्टे तवे पर सेक कर तंदूरी नान बना सकते हैं जी हाँ। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि आपको तंदूरी नान कैसे बनानी, बल्कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप नान बनाने जा रहे हैं और आपके पास टाइम कम है, जैसे होता है कि रिलेटिव कोई आ गए हैं या फिर एकदम से इंस्टेंट कुछ खाने का मन हुआ, दाल मखनी तंदूरी नान या कुछ तंदूरी नान के साथ कुछ खाने का मन हुआ और टाइम उतना है नहीं, प्लान एकदम से बना है ना, तो इंस्टेंट नान बनाने के लिए आपको क्या करना है, आटा जब आप उसका गूंथे उसमें बेकिंग पाउडर की जगह इनो जो है आप वो डाल दीजिए, इनो सॉल्ट जो होता है, इससे नान का आटा जल्दी तैयार हो जाएगा और नान बिल्कुल जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं ना वही वाला टेस्ट आपको आने वाला है, जो कि बहुत ही यम्मी ऑसम टेस्ट होगा। तो ये आप करके देखिएगा, अभी तक आप जैसे भी नान बनाते थे आप इस तरीके से बना करके देखिएगा, आटा वाकई में बड़ा सॉफ्ट गूंथेगा और उसकी नान भी काफ़ी अच्छी बनेगी। ऐसे ही स्मार्ट हैक्स आपके लिए अभी और हैं, साथ के साथ चलिए एंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

0: तो जरा ओढ़ो हो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में आज के प्रोग्राम में आपको मैं बता रही हूं कुछ स्मार्ट हैक्स, और किचन से जुड़े ये जो हैक्स हैं जो वाकई में काम को काफ़ी आसान कर देते हैं, ऐसे ही आपका एक और काम आसान कराई देती हूं। अच्छा, कुकर में खाना बनाना थोड़ा ईजी हो जाता है, थोड़ा कम वक्त लगता है, और ये भी एक तरह से हमारे ही लिए सही है ना कि कम समय में खाना बन रहा है। लेकिन क्या होता है, दिक्कत तब बहुत ज़्यादा हो जाती है जब अचानक से हमें पता लगता है समय हमारे पास कम है खाना बनाने के लिए, और एकदम से हम किचन में गए हैं और कुकर जैसी देखा, और कुकर पहले तो ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद जब नोटिस किया तो कुकर की रबड़ ढीली हो चुकी है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अब आपने ऐसे तैसे एडजस्टमेंट किया और आपने रबड़ लगा करके खाना चढ़ा दिया, कोई दाल या जो भी आपको बनाना है वो आपने चढ़ा दिया। अब क्या हो रहा है, दाल के अंदर का जो कुकर के अंदर जो दाल है उसमें पानी है, वो पानी सारा बाहर झलक रहा है क्योंकि रबड़ ढीली है। अब क्या करें, अब एकदम से भागना पड़ेगा मार्केट की तरफ। तो कई बार होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता या दुकान काफ़ी दूर होती है, अब क्या करें उसके लिए। तो यहीं पर अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो काम आ जाए, यही तो स्मार्ट हैक है, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। अगर कुकर की रबड़ ढीली हो चुकी है तो आप उसको लीजिए और फ्रीजर में डाल दीजिए, जहाँ बर्फ़ रखी हो बस वहीं कोने में आप रख दीजिए और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में आप एकदम तैयार रहिए, बिल्कुल रेडी रखिए, यहाँ तक कि आप जो खाना है उसको इतना, जो आपने खाना चढ़ाने के लिए कुकर में डाला हुआ है सामान, उसको आप इतना गर्म कर लें कि वो उबालने वाली स्टेज पर आ जाए। अब तुरंत आप रबड़ निकालिए फ्रीजर से और उसको लगा दीजिए कुकर के ढक्कन पे, और तुरंत तुरंत आप उसको बंद कर दीजिए, सीटी तुरंत लग जाएगी और आपका खाना आसानी से पक जाएगा और कुकर के जो रबड़ है वो आपको परेशान भी नहीं करेगी। लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि आपका खाना तो बन जाएगा बट ये सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए रबड़ तो आपको ख़रीदनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपका वो खाना उस टाइम समय पर कम्प्लीट ज़रूर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होता है ना कि आप कोई काम होगा तो वो वीकेंड में होगा क्योंकि छुट्टी मिलती है भाई, और छुट्टी में ही फिर सारे काम जो बचे होते हैं वो निपटाने पड़ते हैं ना। तो अब अगर बीच में ही यानी कि वीकडेज में ही अगर ऐसा हो गया है और वीकेंड का आप इस्तेमाल करें, तो इस तरह से भी आप चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं, है ना। कितना स्मार्ट तरीका चीज़ों को ठीक करने का। ऐसे ही आपको एक चीज़ और बताती हूँ, सुबह के वक्त में हम सभी चाहते हैं कि कुछ हल्का हेल्दी टेस्टी हो, है ना। अब इसमें देखो, अगर मैं रेसिपी डिश की बात करूं कि सुबह सुबह क्या होना चाहिए जो हेल्दी है, कुछ खाने में जो ब्रेकफास्ट है वो क्या होना चाहिए, तो कई लोगों के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग चॉइसेस होती है। लेकिन पोहा जो है वो सबको पसंद आता है ना, पोहा क्योंकि जल्दी बन जाता है और ये काफ़ी हेल्दी होता है और टेस्टी भी बहुत होता है। और उसी वक्त आपको कुछ ऐसा करना है जिससे इसे बनाने में बहुत कम वक्त लगेगा और काफ़ी टेस्टी भी बनेगा। देखिए, जब भी आप पोहा बनाने जा रहे हैं ना, तो उसमें भिगोने के बाद स्टीम करके आप इसे बनाएं। स्टीम करने से पोहा नरम और मुलायम रहता है और अपनी शेप में रहता है, और बनाने में भी काफ़ी कम समय लगता है। तो अब आप स्टीम करके पोहा बनाइए, मज़ा ही आ जाएगा। तो ये आप करके देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर हमारा 8010781078 रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आपको स्मार्ट हैक्स और टिप्स दे रही हूं. तो हैक्स पर तो बहुत सारी बातें कर ली, अब बात कर लेते हैं अपनी यानी कि हमारी सेहत की. दादी नानी के नुस्खे बड़े ही कमाल के होते हैं. दादी जी नानी जी हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें बता जाती

पेट सही रहे और साथ के साथ स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, वेट लॉस तो होता ही उससे, है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी जो नहाने वाला पानी है, जिससे आप थोड़ी देर में नहाने वाले हैं, आप अगर उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें और उससे आप नहाएं तो स्किन सॉफ्ट रहती है, काफ़ी ज़्यादा चिकनी हो जाती है। जी हाँ, क्या ये आपको पता था? ये भी दादी नानी का नुस्खा है, जो कि मुझे लगता है ये तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। भाई स्किन सॉफ्ट तो हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन मुलायम रहे और टेक्सचर बड़ा स्मूथ रहे। तो बस यही वाली चीज़ मुझे लगता है कि हम लोगों को अप्लाई कर ही लेनी चाहिए, और इससे कोई नुकसान भी नहीं है, दादी नानी का नुस्खा है, आराम से इस्तेमाल कीजिए। और नींबू पानी तो हम पीते ही है, तो अब नहाने के पानी में भी हल्का सा नींबू निचोड़ करके क्यों ना इस नुस्खे को आजमाया जाए, है ना। तो ये नुस्खा जब आप आजमाएं तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। कुछ दिन पहले आप इसका इस्तेमाल कीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और साथ के साथ नंबर आप ले लीजिए 8010781078, ये हमारा नंबर है। चलिए अब आपको अगला नुस्खा बताती हूँ, और अगला नुस्खा भी हमारी दादी नानी का ही है। काले खजूर जो होते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं और काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, है ना। क्या आप जानते हैं काले खजूर जो हैं वो खाने से कमर मजबूत होती है, और इससे कमर दर्द जो कि बहुत जल्दी आज के टाइम पे लोगों को होने लगा है, कमर में दर्द रहता है और ठीक से चला भी नहीं जाता। कई बार तो मैंने देखा है कि एक एज के बाद कमर दर्द इतना रहता है कि बहुत परेशान रहते हैं, और कई लोग तो झुक कर चलते क्योंकि वो ठीक से कमर सपोर्ट ही नहीं कर पाती उनको, है ना। तो काले खजूर खाने चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया होते हैं और कमर को और हड्डी को मजबूत करते हैं। तो मुझे तो लगता है, अब देखो दादी नानी का नुस्खा है और खजूर खानी भी चाहिए, ये तो हम सभी जानते हैं खजूर कितनी हेल्दी होते हैं हमारे लिए। तो काले खजूर आप अपने घर पे ला के रख लीजिए, और जब भी मन करे, हाँ लेकिन ज़्यादा नहीं खाइएगा। और अगर आप वेट लॉस जर्नी पे है तो आप एक या दो से ज़्यादा मत लीजिएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हेल्दी है तो इसको छोड़िएगा नहीं, ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर दादी नानी के नुस्खे अभी और बहुत सारे हैं जो मुझे आपको बताने हैं, लेकिन उससे पहले चलिए एंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका आपके साथ, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

ट्रैम ये मेरी लाइफ, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ प्रियंका आपके साथ, और मैंने आपको किचन हैक्स के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई, और अब मैं आपको बता रही हूँ दादी नानी के बेहतरीन नुस्खे, जो कि इसमें से कितने सारे नुस्खे तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि इन नुस्खों को आप कितना अप्लाई करते हो अपनी ज़िंदगी में. तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, अप्लाई तो हम नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, लेकिन मैं यही तो चाहती हूँ कि ये जो नुस्खे हैं जो हम सब जानते हैं, इसको हम अप्लाई भी करें अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो जो फ़ायदा जो पहले के लोग उठाया करते थे वो हम भी उठा पाएं. इतनी नायाब चीज़ हमारे बुज़ुर्ग बता कर गए हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं. तो चलिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोग्राम के ज़रिए से अगर कुछ लोग भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आते और अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं, तो देखो कितनी अच्छी बात होगी, है ना. तो अगला नुस्खा मैं आपको बताती हूँ, और ये भी हम सभी जानते हैं कि जो कच्चा प्याज है वो खाना चाहिए. कच्चा प्याज या सब्जी में डाल करके इसको हमें खाना ही चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है, और गर्मी से बचाता है, लू से बचाता है. और आपने घर में अगर बड़े हैं आपके, तो आपने उनको देखा होगा कि जब भी वो लू में बाहर निकलते हैं तो अपने साथ में प्याज की एक गांठ, यानी कि छोटी प्याज, अपने साथ ज़रूर रखते हैं, या फिर बैग में रखते हैं, और प्याज का सेवन ज़्यादा कर देते हैं लू के टाइम पर, गर्मी के टाइम पर. वो क्यों होता है? क्योंकि ये लू से बचाता है. प्याज लू से बचाने में बहुत ही कारगर साबित होती है, इसलिए ऐसा आपने अपने बड़ों को भी डेफिनेटली करते देखा ही होगा, है ना. क्या आप जानते हैं कि ये बड़ी से बड़ी बीमारी से भी बचाता है? जी हाँ, इसलिए प्याज का इस्तेमाल जो है हमें करना ही चाहिए अपनी डाइट में. ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और बस यही मैं चाहती हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, दादी नानी के नुस्खों को एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएँ. वहीं मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि नींद नहीं आ पाती है आजकल, काफ़ी दिक्कत होती है, और हम अगर मोबाइल ना भी चलाएं तो भी एक प्रॉब्लम रहती है, जरी सी आँख लगती है तो फिर से आँख खुल जाती है, और उसके बाद हम कई कई घंटों तक जागते रहते हैं. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात पता है कब होती है? जब अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हमें ऑफिस के लिए निकलना है. छुट्टी के टाइम पर तो फिर भी एक दिमाग में ये रहता है कि अगले दिन कोई बात नहीं, हम सो जाएंगे समय निकाल के, लेकिन अगर अगला दिन वर्किंग है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है. अब ऐसे में क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये भी दादी नानी का घरेलू नुस्खा है. अगर नींद नहीं आ रही है तो हल्का सा नींबू चाट लीजिए, कहते हैं कि नींद अच्छी आ जाती है. तो मैंने तो ये अभी तक नहीं आजमाया, क्योंकि मैं तो जल्दी सो जाती हूँ बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप उनमें से हैं जिनको नींद आने में थोड़ी दिक्कत होती है, आप ये कीजिए. और ये जो नुस्खा है आपको कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताना. नंबर हमारा 8010781078. तो देखा, हमारे जो समाधान हैं वो घर में ही हैं, लेकिन घर में समाधान होने के बावजूद हमें नहीं पता, क्योंकि हम दादी नानी के नुस्खों से अब काफ़ी दूर हो चुके हैं, और जो पास है भी वो सिर्फ अपने तक ही सीमित है, क्योंकि आज के बच्चे ना उनको पता है और ना वो इन सब चीज़ों को अप्लाई कर पाते हैं, है ना. समय की कमी है या कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिस वजह से वो ध्यान ही नहीं रख पाते हैं. लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाधान घर में ही मौजूद है. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ.

मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में बता रही हूँ आपको दादी माँ नानी माँ के नुस्खे। ऐसा ही एक नुस्खा आपको बताती हूँ, और ये उनके लिए है जिनको खट्टी डकारी बहुत आती है। आज के टाइम पर हमारा खान पान इस तरह से हो गया है कि अगर हम अपनी भूख से ज़रा सा भी ऊपर खा लें तो हमें खट्टी डकारी आने लगती है, या कुछ तेल मसाले वाला ज़्यादा खा लें तो हमें ये दिक्कत होती है, है ना। या कई बार ऐसा होता है कि सब चीज़ ठीक है, खाना भी हमारा हल्का है, लेकिन उसके बाद भी खट्टी डकारों की जो समस्या है कई लोगों के साथ में ये रहती है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको इन सारी चीज़ों को करते हुए, यानी कि खाना खाते वक्त या तेल मसाला थोड़ा ज़्यादा खा लिया तब ऐसे हो जाता है, या फिर आपको प्रॉब्लम है इस चीज़ की कि आपको खट्टी डकारें सिंपल खाने से भी हो जाती है, तो दादी नानी जी कहती थी कि अगर आप एक चुटकी भर जीरा खा लें तो खट्टी डकारे आना बंद हो जाएगी। तो ये आप करके देखिए। वैसे सौंफ के लिए भी कहते हैं कि सौंफ जो है वो खट्टी डकारों को ख़त्म करता है, पेट को ठंडा करता है, लेकिन ज़ीरा वाला जो है ये भी आप ज़रूर कीजिएगा। ज़ीरा अगर आप एक चुटकी थोड़ा सा, मतलब आप ज़ीरा अगर आप खा लेते हैं और आपको ये दिक्कत हो रही है तो दिक्कत कहते हैं ठीक हो जाएगी। तो आपके साथ अब ये प्रॉब्लम हो तो आप ज़ीरा को बिल्कुल मत भूलना, याद रखना, और इसको खाना, और फिर आप महसूस करेंगे कि आपकी खट्टी डकारे थोड़ी देर में जा चुकी हैं। तो है ना कितना कमाल का ये नुस्खा। ऐसे ही सेंधा नमक खाने की हिदायत हमेशा दी जाती है, क्योंकि सेंधा नमक जो है वो अच्छा होता है खाना खाने में डालने के लिए। वहीं क्या आप जानते हैं कि सेंधा नमक शरीर के दर्द को कम करता है? जी हाँ, आपने सिकाई करते हुए तो सुना ही होगा, और आप करते भी होंगे, देखा भी होगा आपने सिकाई करते हुए कि गर्म पानी में सेंधा नमक डाल करके खूब सारा अगर आप अपने पैर डाल देते हैं तो ये काफ़ी अच्छी सिकाई हो जाती है पैरों की। आपके जो पेन होते हैं वो चले जाते हैं, आपके पैर में है, जॉइंट्स में है, तो वो गर्म पानी में सेंधा नमक डालने से दर्द गायब हो जाता है। ऐसे ही आप अगर इसको खाने में से इसका सेवन करते हैं तो ये कमाल का फ़ायदा जो है देता है बाकी नमक के मुकाबले। तो कैसा लगा ये नुस्खा, है ना कमाल का। ऐसे ही आपको एक चीज़ और मैं बताती हूँ, और ये उनके लिए है जिनको पेट में गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जी हाँ, अगर आपको भी दिक्कत थोड़ी ज़्यादा रहती है तो आप पहली चीज़ तो कम खाएं, और सबसे बड़ी चीज़ खाने के बाद आप वज्रासन में बैठ जाएं। खाना जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको जो गैस की प्रॉब्लम है या और जो प्रॉब्लम खाने के बाद होती है वो धीरे धीरे चली जाएगी। क्योंकि खाना खा के कई बार क्या होता है कि हम बैठे रह जाते हैं, और बैठने से ही काम ख़राब हो जाता है। इसलिए खाना खाने के 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद वॉक करनी चाहिए, वॉक करने के लिए कहा जाता है। तो आप धीरे धीरे धीरे वॉक कीजिए, या खाना खाने के आधे घंटे बाद आप वॉक शुरू करें। और वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद होता है, तो वज्रासन में आप ज़रूर बैठें। इससे खाना ना केवल डाइजेस्ट होगा बल्कि आपको जो ये प्रॉब्लम है जो आपके खाने के बाद शुरू होती है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। कुछ और चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ प्रियंका।

मैं हूँ प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और ये मेरी लाइफ में ढेर सारी बातें मैं आपसे कर रही हूँ जहाँ आपको न केवल मैंने किचन हैक्स बताए बल्कि दादी नानी के ढेर सारे नुस्खे भी बताए। जी हाँ, तो चलिए अगला नुस्खा आपको बताती हूँ। और हमेशा आपने सुना होगा कि हमारे बड़े हमेशा कहते हैं कि रात के समय दही नहीं खाना चाहिए, है ना। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जोड़ों में दर्द होने की शिकायत हो जाती है, इससे खांसी जुकाम की समस्या हो जाती है, इसलिए रात में हमें दही नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप किसी खाने में डाल रहे हो ना तो वो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे भी नुकसान होता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप दही को रात में अवॉइड करें। और अगर आपका बहुत दही खाने का मन कर ही रहा है तो आप अपने मन को समझा लें कि अगर आप खाएंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके साथ ये दिक्कत ज़्यादा होती है। तो अगर आप सेंसिटिव हैं और दही आपको बहुत अच्छी लगती है तो पूरे दिन खाइए, लेकिन रात में पूरी तरह से दही को अवॉइड कीजिए। जी हाँ, ये सबसे बढ़िया चीज़ मानी जाती है, लेकिन रात में आप अवॉइड कर दीजिए। वहीं खाना खाने के तुरंत बाद कहते हैं कि कई बार हम सभी को ही क्रेविंग हो जाती है चाय पीने की, और कई बार तो रात में भी बड़ी क्रेविंग होती है चाय पीने की, लेकिन चाय नहीं पीनी चाहिए। इससे खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता और पेट में सड़ने लगता है, और ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। इसीलिए रात में चाय पीने की हिदायत नहीं दी जाती है। कोई नहीं कहता कि रात में चाय पीनी चाहिए, लेकिन चाय जो चाय लवर है ना, उनकी क्रेविंग रात में ही सबसे ज़्यादा होती है। जब ऐसे कुछ थॉट चल रहे हैं दिमाग में, या कोई बात चल रही है, या कुछ भी ऐसा जो कि हमारे मन का हो रहा है, तो उस टाइम पर बातें करते करते चाय का प्याला मिल जाए, आह क्या कहना। अच्छा, मैं भी उनमें से एक हूँ जिनको चाय जो है बहुत अच्छी लगती है। मेरे को भी बहुत पसंद है चाय पीना, लेकिन रात में तो मैं भी अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरी दादी जी कहती है रात में चाय नहीं पीनी चाहिए बेटा, इससे एसिडिटी हो जाती है और बहुत शरीर को नुकसान होता है। तो मैंने तो ये सालों पहले समझ लिया था, तो आप भी समझ जाइए और चाय पीना रात में बंद कर दीजिए। तो है ना, कितनी बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही हैं। और एक चीज़ और बताऊँ जो मुझे लगता है कि बहुत ही औसम बात हमारे बड़े बुजुर्ग बोल गए। वो हमेशा कहते हैं कम बोलने वाले इंसान का दिमाग बहुत तेज होता है। क्या आप मानते हैं इस बात को? मैं तो बिल्कुल मानती हूँ। कम बोलने वाला व्यक्ति, उसका मान भी होता है और आपका दिमाग तेज होता है, क्योंकि ज़्यादा बात करने वाले जो लोग हैं ना, उनको लोग सीरियसली लेना छोड़ देते हैं। जी हाँ, और अगर आप कम बोलते हैं तो लोग आपको सीरियसली सुनते भी हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने शरीर पर काम कर रहे हैं। तो भाई, मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगती है। हमेशा कम बोलना चाहिए, और जब भी बोले अच्छा बोले, प्यार से बोले, सम्मान के साथ बोले, शब्दों को ध्यान में रख कर बोले, है ना। कितनी बढ़िया बात जो हमारे बुजुर्ग कह गए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ढेर सारी बातें मैंने आपसे की, मुझे आप ज़रूर बताइएगा। नंबर हमारा है 8010781078। तो चलिए इंजॉय करते हैं अगला गाना। मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज जिस शहर के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, उनको जाना जाता है शहरयार के नाम से। पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे तो चाहते थे कि बेटा भी यही बने, मगर ऐसा हुआ नहीं। हॉकी के दीवाने अखलाक मोहम्मद खान ने जब कलम थामी तो वो शहरयार हो गए। शहरयार ने जान लिया था कि वो क्या कर सकते हैं, और ये जानकर उन्होंने जो किया उसने उन्हें शायरी का शहरयार यानी बादशाह बना दिया। उनके लिखे को पढ़ना हमेशा चैन देता है तो ठटकने पर मजबूर भी करता है। बहुत सारी बातें आज करूंगा मैं शहरयार के बारे में, और दोस्तों शहरयार की उन गजलों को याद करेंगे जो कि इतनी मशहूर हैं, सुनने के बाद एकदम आप चौंक जाते हैं कि अच्छा, ये शहरयार साहब की लिखी हुई हैं। कराऊंगा उन गजलों से भी आपका तारुफ करवाऊंगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। देखिए दोस्तों, शहरयार का जिक्र करते ही कोई भी पूछ सकता है कौन शहरयार, और जब कहें कि उमराओ जान के गीत, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, लिखने वाले शहरयार, तब सामने वाला कहेगा अच्छा वो शहरयार जिन्होंने लिखा है कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, वो शहरयार जो कम बोलते थे मगर उनकी शायरी जनता के सिर चढ़कर बोलती थी, जिनकी शायरी को साहित्य अकेडमी ज्ञानपीठ सम्मानों से भी नवाजा गया, वो शहरयार वो उर्दू के चौथे साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ सम्मान मिला। उनके पहले फिराक गोरखपुरी, कुर्तुल एन हैदर और अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। वो शहरयार जिन्हें हिंदी और उर्दू भाषा के बीच का पुल कहा जाता है, आज उन्हीं शहरयार के बारे में बहुत सारी बातें करने वाला हूं, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अखलाक मोहम्मद खान यानी शहरयार साहब की बात हो रही है आज, और शहरयार साहब के हम पैदाइश की बात करें तो 16 जून 1936 को अलोनी जिला जो कि बरेली में पड़ता है, 1948 में उनके बड़े भाई का तबादला अलीगढ़ हुआ तो वो अलीगढ़ आ गए और वहीं के होकर रह गए। घर परिवार में कोई शायर नहीं था, पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे और जाहिर है बेटे को भी पुलिस डिपार्टमेंट में देखना चाहते थे। अखलाक खान को पढ़ाई के दौरान हॉकी से जुनून की हद तक लगाव था। हॉकी बहुत पसंद थी शहरयार साहब को, मगर जिंदगी में कोई आया और शायरी भी दाखिल हो गई। शहरयार ने अपने इंटरव्यूज में बताया कि अलीगढ़ में उनकी मुलाकात खलीलुर रहमान आजमी से हुई। आजमी की दोस्ती ने उन्हें शायरी से मिलवाया। खलीलुर रहमान के ही कहने पर अखलाक खान ने बतौर शायर शहरयार नाम अपनाया। ये तो है उनके नाम की दास्तान, लेकिन दोस्तों शहरयार साहब की एक से बढ़कर एक गजलें, नज़में और वो गीत जो हमारे भारतीय सिनेमा में आज भी गूंजते हैं, उन सब की बात होगी। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, चुनिंदा मंचों पर अपनी शायरी से मुखर रहने वाले शहरयार निजी जीवन में खामोश इंसान थे, बातचीत थोड़ी सी कम करते थे, मुशायरों में भी कम ही जाया करते थे। उमराव जान जैसी फिल्म के गाने लिखकर रातों रात चर्चित हुए, लेकिन शहरयार को धुन पर गीत लिखना रास नहीं आया और वो अदब की दुनिया में ही रहे। डॉक्टर प्रेम कुमार की किताब बातों मुलाकातों में शहरयार ने अपने जीवन के कुछ राज खोले हैं। लेखन के शुरुआती दौर के बारे में बताते हैं कि जब मैंने तय किया कि मुझे थानेदार नहीं बनना है तो घर से अलग होना पड़ा। तब मैं खलीलुर रहमान के साथ रहने लगा। शुरू में मेरी जो चीजें छपी एक्चुअली वो मेरी नहीं है, बाद में अचानक कोई मेरी जिंदगी में आया। नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल है। कहते हुए शहरयार उस व्यक्ति के बारे में अपनी बात को छुपा जाते हैं। उनकी संवेदनशीलता इस कहने में झलकती है कि इस उम्र में मैं कितना ही रुसवा हो जाऊं, किसी और को रुसवा नहीं होने दूंगा। ऐसा मिजाज था शहरयार साहब का, और सबका सम्मान करते थे और लोग भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। और उनका कलाम जो कि लोगों के सिर चढ़ करके बोलता था, उसी कलाम से उनको हर जगह इज्जत मिलती थी। शहरयार साहब के बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, शहरयार साहब का जब कोई इंटरव्यू ले रहा था तो बहुत सारी बातें अपनी जिंदगी से संबंधित कर रहे थे, लेकिन एकदम अचानक किसी एक जगह पर आकर के ठहर गए और कहने लगे, नहीं भाई, कुछ बातों पर अगर पर्दा पड़ा रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। किसी को बदनाम करने से, रुसवा करने से कोई फायदा नहीं होता। तो किसी का राज है, उस राज को राज रहने दो। वो इस प्रसंग को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि तब दुनिया मुझे अजीब लगने लगी और फिर मैं शायरी करने लगा। बीए के आखिरी साल में शेर लिखने की रफ्तार तेज हो गई। एमए में साइकोलॉजी में दाखिला लिया और जल्दी ही एहसास हुआ कि फैसला गलत लिया है। दिसंबर में नाम कटा लिया, फिर 4-6 महीने केवल शायरी ही शायरी की, और ऊपर वाला भी मुझ पर रहम करता रहा। कोई बड़ी ताकत है जो मेरी चीजों को तय करती रही है। उर्दू की बहुत अच्छी मैगजीन में मेरी चीजें छपने लगी। तेज रफ्तारी से सामने आया, फिर एमए उर्दू में ज्वाइन किया। दोस्तों, साफ गोई देखिए कि शहरयार जोर देकर स्वीकार करते हैं, कबूल करते हैं कि वो मार्क्सवादी हैं, मगर एक परम सत्ता पर भरोसा करते हैं। शहरयार निजी जीवन के मामले में कम ही बोले हैं। शहरयार की अपनी बेगम यानी कि नजमा के साथ मन नहीं मिला था। उनके एकांत और खामोश मिजाजी के पीछे इसे भी एक कारण माना जाता है। पत्नी नजमा के लिए वो क्या सोचा करते थे, उनकी नज्म नजमा के लिए में दिखाई देता है। अब वो जो नज्म है उसमें उन्होंने किस तरह से अपनी पत्नी का जिक्र किया है शायराना अंदाज में, वो अंदाज भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि शहरयार साहब ने एक नज्म लिखी थी जिसका नाम था नजमा, और वो नजमा के लिए यानी कि उनकी पत्नी के लिए थी। उसमें वो लिखते हैं, क्या सोचती हो, क्या सोचती हो, दीवारे फरामोशी से उधर क्या देखती हो, आईनाए ख्वाब में आने वाले लम्हों के मंजर देखो, आंगन में पुराने नीम के पेड़ के साए में भैयू की जहाज में बैठी हुई नन्ही चिड़िया क्यों उड़ती नहीं, जंगल की तरफ जाने वाली वो एक अकेली पगडंडी क्यों मुड़ती नहीं, टूटी जंजीर सदाओं की क्यों जुड़ती नहीं, एक सुर्ख गुलाब लगा लो अपने जूड़े में और फिर सोचो। दोस्तों, शहरयार के मिजाज पर कमलेश्वर ने लिखा है, उन्होंने अपनी शायरी में मानवीय मूल्यों को सबसे आगे रखा। शायरी हो या अफसाना, शहरयार बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जो लिखना है जम कर लिखो, और इतना लिखो कि अपने लिखे को भी जी भर के खारिज कर सको, जिससे साहित्य जो सामने आए तो खूबसूरत और असरदार बन सके। इसके साथ ही वो बहसों में ना हिस्सा लेते हैं और ना शरीक होते हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपना सुकून खोना नहीं चाहते। ऐसे थे शहरयार साहब। जब फिल्मों में गाने, खासकर उमराव जान का जिक्र हुआ, तो शहरयार ने डॉक्टर प्रेम कुमार को दिए अपने इंटरव्यू में बताया था कि मुझे जिंदगी में बहुत सी चीजें फिल्म के गानों की मकबूलियत से मिली। वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वो जब इलाज के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाते थे तो उन्हें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता था, वहां डॉक्टर बिना कार्ड ही उनकी जांच कर लिया करते थे, बहुत खुशी से जांच करते थे। ट्रेन या हवाई जहाज में रिजर्वेशन करवाना हो या एमयू की एग्जीक्यूटिव या कोर्ट के इलेक्शन का मसला हो, उमराव जान के गानों ने हमेशा मदद की है। मुशायरा चाहे देश का हो या विदेश का, शहरयार का सिर्फ एक ही परिचय काफी होता था, उमराव जान के गीतकार। लेकिन दोस्तों, फिल्म उमराव जान के अलावा भी उन्होंने गीत लिखे हैं, गजलें लिखी हैं, नज्में लिखी हैं, उनके बारे में भी आपसे बात करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज मैं उस शहर के बारे में आपसे बात कर रहा हूं जिनको जाना जाता है शहरयार के नाम से। फिल्म उमराव जान में एक से बढ़कर एक गाने इन्होंने लिखे। बाद में दामन, फासले, द नेमसेक, इन फिल्मों में भी इन्होंने गीत लिखे, मगर मन फिल्मी दुनिया में रमा नहीं। इसका कारण शहरयार ने यूं बताया कि मेरा एक उसूल है, मैं किसी ऐसी फिल्म में गाने नहीं लिख सकता जिसमें गाना कहानी का पार्ट ना हो और जिसमें पोएट्री की गुंजाइश ना हो। हम दनादन धुन पर तुरंत नहीं लिख सकते। उन्होंने बताया था कि पिता का कहना था कि ये तो आदमी को मालूम नहीं हो पाता कि वो क्या कर सकता है, लेकिन ये बहुत आसानी से मालूम हो जाता है कि वो क्या नहीं कर सकता। जब ये मालूम हो जाए तो ऐसा काम कर

छोड़ने के बाद सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं मिलता। दोस्तों शहरयार में जान लिया था कि वो क्या कर सकते हैं और ये जानकर उन्होंने जो किया उसने उन्हें शायरी का शहरयार यानी बादशाह बना दिया। और आज उसी बादशाह के बारे में आपसे मैंने बहुत सारी बातें की हैं, पर वक्त और ज्यादा इजाजत नहीं देता, इसलिए अब आपका दोस्त फहीम चाहता है आपसे आज्ञा। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

वाली तो धूम मचा के छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाती।

Nada.

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ। दोस्तों, आज जिस किसान के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, उनका नाम है रोशन लाल विश्वकर्मा, जिन्होंने किसानों के लिए लगा दी मशीनों की कतार। वो खुद अपनी जुबानी बताते हैं कि गांव में मेरे दादाजी भैया लाल किसानी के साथ साथ लोहारी का काम भी किया करते थे। उनके छोटे बेटे धनीराम के यहाँ 1967 की 8 मार्च को जन्म हुआ। बड़े पिताजी भी लोहारी का काम किया करते थे। दोनों के बीच 18 एकड़ असिंचित जमीन थी। दादाजी के निधन के बाद उन्हें 9 एकड़ जमीन मिली। पारंपरिक खेती से जैसे तैसे घर चलता था। बहनों की तो कम उम्र में ही शादी हो गई थी। 8वीं पास करके गांव से 4 किलोमीटर दूर आगे की शिक्षा के लिए दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ पिताजी को खेती में सहयोग देता, गाय बैल चराता। आगे बढ़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर के कॉलेज में दाखिला लिया। 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह से खेती के काम में जुट गया। और आगे वो बताते हैं कि 1990 में मेरी शादी कमला बाई से हो गई। आय बढ़ाने के लिए मैं खेती में नए प्रयोग करने लगा। स्प्रिंकलर सेट, छोटा ट्रैक्टर, थ्रेसर, इन सब चीजों को खरीद लिया। मोटर वाइंडिंग का काम भी सीख लिया। काम अच्छा लगा। कृषि यंत्र रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। 3 साल के बाद दुकान बंद करके जबलपुर में कार रिपेयरिंग का काम भी सीखा। इधर उधर भटक कर पिताजी से मशवरा लेकर गन्ने की खेती में नवाचारों में लग गया। अब तो आमदनी बढ़ानी ही थी, लेकिन आमदनी बढ़ी कैसे, ये दोस्तों मैं आपको जरूर बताऊंगा और बात करूंगा किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा के बारे में। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। दोस्तों, किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा बताते हैं कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए मैं कई तरह की जुगाड़ों में जुट गया था। 1999 में निश्चित समय में सिंचाई के लिए टाइमर विद ऑटो स्विच का निर्माण किया। इसके बाद आलू की तरह गन्ने की सिर्फ आंख निकालकर खेत में लगाने का परीक्षण किया। एक साल में स्वस्थ पौध तैयार हो गई। पूरे राज्य में इसे लगाने के लिए यंत्र बनाने की प्रेरणा मिली। और अगर मैं 2006 की बात करूं तो 2006 में हाथ से चलने वाली शुगर केन बर्ड चिपर मशीन की मार्केटिंग शुरू की। इसका पेटेंट भी जल्दी मिल गया। करीब 2000 मशीनें सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दुबई, ब्राजील यानी इन देशों और गन्ना उत्पादक प्रदेशों में गई हैं। तो इस तरह से दोस्तों, कृषि क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है रोशन लाल विश्वकर्मा ने। लेकिन इनसे जुड़ी और भी बातें हैं जो हमारे किसान भाइयों को प्रेरित कर सकती हैं। वो सारी बातें आपको बताता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा का, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने गन्ने की आंखें निकालने का यंत्र तैयार किया था। अब आप कहेंगे कि गन्ने की आंखें? अरे भाई, जो आप देखते हैं, जो जॉइंट होते हैं, उनको गन्ने की आंखें कहते हैं। उन्हीं आंखों को निकालने के लिए रोशन लाल विश्वकर्मा ने एक यंत्र ईजाद कर दिया। 3 किलो की ये मशीन 1600 रुपए की है और इस यंत्र से गन्ने की चंद्राकार आकार की 250 से लेकर 300 आंख प्रति घंटे निकाल ली जाती है और निकाली गई आंख से पॉली बैग में पौधे तैयार करके उन्हें सीधे खेत में लगा दिया जाता है और जो बचे हुए गन्ने होते हैं उनका उपयोग गुड़ शक्कर बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यंत्र में गन्ने की मोटाई के मुताबिक समायोजन व्यवस्था है। यंत्र में स्प्रिंग और लंबा हैंडल होने से थकान कम होती है और वो बताते हैं कि इस यंत्र के लिए मुझे 2009 में NIF का प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इस तरह से दोस्तों, रोशन लाल ने कृषि क्षेत्र में कुछ अलग काम करके कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाया है और अपने काम से लोगों को प्रेरित भी किया है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए फहीम के साथ अन्नदाता।

दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। दोस्तों किसान वैज्ञानिक रोशनलाल विश्वकर्मा कहते हैं कि अनवरत जारी हैं कृषि में नवाचार। वो कहते हैं कि 2010 में मैंने पांव से चलने वाली मशीन बनाई थी। वो प्रति घंटे गन्ने की 500 से 600 आंखें निकाला करती थी, लेकिन 2014 में पावर ऑपरेटेड मशीन बनाई और 80 किलोग्राम की ये मशीन एक घंटे में 2000 आंखें निकालती है और मेरे जरिए बनाई गई मोटर ऑपरेटेड शुगर बड चिपर सहसेट कटर 1 HP मोटर से चलती है। ये प्रति घंटे 1000 से 2000 आंख निकाल देती है। 1000-2000 टुकड़े प्रति घंटे काटे जा सकते हैं और इसकी खास बात यह है कि काटे गए टुकड़ों में आंखें क्षतिग्रस्त नहीं होती, जबकि प्रचलित पद्धति में 10-15% तक नष्ट होती हैं और अन्य कृषि यंत्र शुगर केन लीफ स्ट्रीफर शुगर केन बगास ड्रायर यानी कि इन सब को भी विकसित किया है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।

दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। दोस्तों, आज बात हो रही है किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा के बारे में, जिन्होंने तकनीकी क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने किसानों के लिए लगा दी मशीनों की कतार, और जो गन्ना होता है उसकी जो आंखें होती हैं उसके लिए एक मशीन तैयार कर ली। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। उनका कहना है कि भूसे से सानी बनाने की मशीन, डॉग ट्रीटमेंट बॉक्स, ग्रामीणों की रोजमर्रा सामग्री की सही तुलाई का वितरण के लिए सप्लाई यंत्र, मॉडिफाइड हैंड व्हील हो, पैडी मार्कर, एंटी लॉक और गाजर घास की कटाई के लिए भी यंत्र बनाए हैं। और आगे बड़े ही उत्साहित होकर के वो बताते हैं कि मैंने पावर इंजन से चलित गोबर से गमले बनाने वाली मशीन का आविष्कार भी किया है। गोबर से बने गमलों में पौधों को पूरे पोषक तत्व देने की उर्वरा शक्ति होती है, और प्लास्टिक या सीमेंट के गमलों में पौधा अंदर से सिकुड़ता चला जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, वो ये भी बताते हैं कि सोशल मीडिया आज की बहुत बड़ी ताकत है, अगर आप इसका सही से इस्तेमाल कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि सोशल मीडिया का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया। पहले मैं गांव के लोगों से बात नहीं कर पाता था, अब रोजाना 8 से 10 प्रदेशों के लोगों से मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल पर बातचीत बहुत आराम से कर लेता हूं। और कई प्रदेशों के लोग गांव में घर तक तकनीक देखने आते हैं। मैं भी हर साल कई बड़ी कृषि गोष्ठियों में जाता हूं और बहुत कुछ सीखकर वापस आता हूं। तो दोस्तों, इस तरह का अंदाज है किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा का। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जिसने कृषि क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया हो तो उसको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी तो किया गया होगा। उन सम्मानों की बात होगी, उन पुरस्कारों की बात होगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ। दोस्तों, बात हो रही है किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा के बारे में। बातें तो मैंने आपको बहुत सारी बता दी हैं, लेकिन अब बारी है उनके सम्मानों की। तो वो अपने सम्मानों की बात खुद अपनी जबानी बताते हैं और कहते हैं कि गन्ना उत्पादकों के लिए विकसित यंत्रों के लिए 2005 में पहली बार ग्वालियर में सम्मानित किया गया और 2010 में ICAR ने जोन 7 में जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार प्रदान किया और 2012 में 10 लाख रुपए सम्मान राशि का राष्ट्रीय नबार्ड अवार्ड भी मिला। 2015 में 1 लाख रुपए सम्मान राशि का NIF का राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में मिला और 2018 में पैसिफिक विश्वविद्यालय और भाकिसन ने उदयपुर में खेतों के वैज्ञानिक सम्मान प्रदान किया। तो इस तरह से बहुत सारे पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया था। इन्हीं के बारे में कुछ और भी बातें हैं, बल्कि उनका एक संदेश है सभी किसान भाइयों के लिए। अब वो संदेश क्या है, कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारी बातें कर ली हैं रोशन लाल विश्वकर्मा के बारे में। अब जाते जाते उनकी तरफ से सभी किसान भाइयों के लिए एक संदेश है। वो कहते हैं कि उन्नत तकनीक अपनाकर ही समय अनुसार खेती करनी चाहिए। खेती में ही सबसे ज्यादा स्वतंत्रता और सम्मान है। इससे खुद का, गांव का, देश का फायदा होता है। अगर किसान मन में ठान ले कि उसे कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी किसान वैज्ञानिक जैसा सम्मान पाना है तो ये संभव है। मेरे अलावा देश के बहुत सारे किसान ऐसा कर चुके हैं और आज सम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। जाते जाते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM, फील गुड फील लाइव शो बहुत खास है। हर बार आपको नई जानकारी मिलती है, एक नए स्टार्टअप के बारे में आप जानते हैं, एक नई इंडस्ट्री के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारी चीजें। केवल सरफेस लेवल की बात नहीं होती, उसके बियॉन्ड जो चीजें हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, वो सब यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। आज फिर से आए हूँ लेकर के एक और शो, तो डिस्कस करेंगे भैया कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी कंपनी क्या करती है, इंडस्ट्री क्या करती है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और मजा लीजिए इस म्यूजिकल ब्रेक का। सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है, खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये 2027 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है 150 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है, जो इसका ग्रोथ रेट है ग्रोइंग एट अ सीएजीआर ऑफ 20%। जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप

आरजे सागर शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन हो जाती हैं उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और मल्टीपल कंट्रीज जो है वो इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक और इसकी काफी तारीफ होती है। So, UPI एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक UPI यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज UPI। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ RBI की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, सेबी की तरफ से बनाई गई हैं, IRDA की तरफ से बनाई गई हैं, NPCI की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं, मैं हूँ सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूँ जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गाँव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में इस टेक्नोलॉजी का अगर पहुंचा दिया और वहां के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहां के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है, और टैक्स सेवी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लैंडिंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर यह हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

یہ سورج کے ذرے زمین پہ ملے تو ایک اور آسمان میں زمین پہ

मैं सागर शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या QR बेस्ड UPI। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योर टेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको।

डिजिट वन अश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फ्री, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइंजी, आईडीफाई, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग एआई एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजेक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं, लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं, वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं, इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था, जो लैंडिंग टैक होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। इसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशन। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिथम्स काफी एडवांस हो गए हैं जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का कोई इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो RBI के इनिशिएटिव्स हैं, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताई है फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी हैं और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस यूएस एंड यूके से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। देन उसके बाद हम बात करें अगर यूपीआई मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं यूके में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, यूएई में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। टीयर टू एंड टीयर थ्री जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया यूपीआई जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं, उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

मैं हूँ आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्ना 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड देन उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 3

आशा करता हूँ भाई इंडस्ट्री को आप समझ पाए हैं। बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि आज की जो कंपनी है उसका नाम है जार। जार एक इंडियन फिनटेक स्टार्टअप है जो एक भारतीय के लिए मतलब कोई भी चीज जो बहुत एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी है उसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी उन्होंने। हमारी एक आदत होती है, अ हैबिट ऑफ सेविंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी। छोटे छोटे अमाउंट होते हैं उनको सेव करने की, मतलब पहले होता था गुल्लक रखते थे या घर में ऐसे सहेज कर रखते थे। जार एग्जैक्टली ऐसा ही काम करता है। सो जार इज अ फाइनेंशियल फिटनेस प्लेटफॉर्म जो लोगों को ना ये एक पावर देता है कि आप छोटा छोटा अमाउंट जो है सेव कर सकते हैं, 10 रुपए तक भी, ठीक है, और ऑटोमेटिकली उसी अमाउंट को आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत फेमस है, और ये फेमस ही इसलिए हुआ क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो बहुत सारे इंडियंस के पास है जिसको इसने ब्रेक किया कि आई वॉन्ट टू सेव मनी बट आई डोंट हैव इनफ मनी, कि मेरे पास, मैं पैसा बचाना तो चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं करूँ कैसे, मेरा पैसा ही नहीं है जो मैं इन्वेस्ट करूँ। तो जार ने यहाँ पर सोल्यूशन दिया है कि भैया देखो तुम्हें बहुत ज्यादा भारी भरकम अमाउंट की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक आदत की जरूरत है। तो ये है वो कंपनी जिसने लिटरली एक ऐसी प्रॉब्लम को पकड़ा भैया, जिसने मतलब हर एक इंडियन ने रिलेट किया होगा इस चीज से, क्या यार पैसे तो मैं भी बचाना चाहता हूँ, लेकिन 10 रुपए से अगर कोई बोले कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली यार इट मेक्स सेंस, सो मच ऑफ सेंस, एग्जैक्टली वो इस कंपनी ने किया। तो ये है हमारी आज की कंपनी। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको गाने पसंद आए। फिलहाल इसी नोट पर शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ आरजे सागर, शो चल रहा है पर आत्मनिर्भर भारत। तो हम केस स्टडी लेकर के आए हैं जार की। कंपनी स्टार्ट हुई 2021 में, ठीक है। ये उस टाइम की बात हो रही है जब डिजिटल ट्रांजेक्शंस अपने बूम पर आ रहे थे, यूपीआई बूम पर आ रहा था। लॉकडाउन के जस्ट बाद की बात है भैया। उस टाइम पर हम सबको इतना तो समझ में आ गया था कि डिजिटली सब कुछ हो सकता है, और इस कंपनी को भी वो चीज समझ में आ गई। तो वहां पर इस कंपनी के फाउंडर्स ने ना एक पैटर्न नोटिस किया कि लोग ना डिजिटली हर रोज पैसे खर्च कर रहे हैं, बट सेविंग की हैबिट अगर डिजिटली डाल दी जाए तो कितना अमेजिंग होगा ना। ट्रेडिशनली जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हुआ करते थे वो बहुत ही इंटिमिडेटिंग साउंड करते थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, स्टॉक्स, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड, मार्केट रिस्क। अच्छा, एक सिंपल सी थ्योरी समझिए। आज आप किसी इंसान से बोलिए, यार तुम ना एसआईपी किया करो, हर महीने ना पैसे कटेंगे तुम्हारे अकाउंट से। आप जैसे ही ये बात करेंगे ना, वो इंसान सामने से काउंटर करेगा, यार इतने पैसे ही नहीं होते। लेकिन अगर आप बोलेंगे तुम्हें मात्र 100 रुपए महीने के तुम्हारे खाते से कटेंगे और तुम्हारी एसआईपी हो जाएगी, वो इंसान इंस्टेंटली उसका रिएक्शन चेंज हो जाएगा कि है 100 रुपए में हो सकता है। एग्जैक्टली ये माइंडसेट जो है ये समझ में आया इस कंपनी को। सो इन फाउंडर्स ने खुद से सवाल पूछा कि ऐसा हो सकता है कि सेविंग ऑटोमेटिकली हो जाए, जहां पर लोगों को ये दर्द भी महसूस ना हो, पेन भी फील ना हो कि हम अपनी मनी को कहीं रख रहे हैं और सेविंग भी हो जाए। एंड उस सवाल का जवाब जो है वो मिला जार के रूप में, जो एक कंपनी है जो इन्होंने स्टार्ट करी 2021 में। इनिशियली जो आइडिया था वो इंस्पायर्ड था ओल्ड स्कूल इंडियन हैबिट से ही, कि आप कॉइन सिक्के जो बचा करके रखते हैं फिजिकल जार से या पिगी बैंक में, तो उसी को डिजिटल किया इन्होंने, और इसीलिए इस कंपनी का नाम रखा गया जार, डिजिटल जार इनसाइड अ स्मार्टफोन। एंड सो अमेजिंग यार, आई मीन बहुत ही प्यारा सा आइडिया, और लिटरली बहुत अच्छा कर रही है कंपनी। तो देखिए ऐसा भी होता है भैया, फिनटेक की बात कर रहे हैं, फिनटेक में इतनी ज्यादा क्लटर्ड मार्केट है, उसमें भी एक गैप नजर आ गया और उसको सोल्यूशन भी दे दिया, और लिटरली अच्छा भी कर रही है कंपनी। पावर ऑफ इनोवेशन। लेकिन एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

आई होप यू एंजॉयड दिस म्यूजिकल वाइब. फिलहाल इसी नोट पर शो को आगे बढ़ाते हैं. आज की कंपनी जार. जार के फाउंडर्स की बात करेंगे. दो फाउंडर हैं, एक है मिसबाह अशरफ, दूसरा है निश्चय एजी. मिसबाह अशरफ के हम यहाँ पर होम टाउन की बात करेंगे. बिहार से आते हैं, ठीक है. मध्यवर्गीय परिवार में बड़े हुए हैं. फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स देखे हैं जो हम सब मध्यवर्गीय लोगों ने देखे हुए हैं. आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे. अब यहाँ पर इनकी एजुकेशन की बात करेंगे तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है इनके एजुकेशन के रिगार्डिंग. बट बिफोर जार इन्होंने अच्छा खासा जो है एक एक्सपीरियंस गेन किया है, जहाँ पर प्रोडक्ट एंड ग्रोथ रोल्स में इन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया है. स्टार्टअप्स को बिल्ड किया है. एक कंपनी भी स्टार्ट करी थी जिसका नाम था मार्स प्ले, ठीक है. एंड कंज्यूमर इंटरनेट प्रोडक्ट्स में बहुत एक्टिव थे, बहुत एक्टिवली डीपली इन्वॉल्व थे. तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं. सो ये एक कोई स्ट्रेट स्टोरी नहीं हो सकती है. ये मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद जाकर के, मुश्किलों के बाद, काफ़ी सारे हालातों के बाद जाकर के एक ऐसे मुकाम पर ये पहुंचे जिसके बाद इनको जो है फॉर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया में भी इनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया फॉर दिस कंपनी जार. तो ये कहानी है मिसबाह अशरफ की. सेकेंड को फाउंडर इज निश्चय जी, ठीक है. निश्चय ने एक कन्वेंशनल रूट फॉलो किया. उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, देन बेंगलोर शिफ्ट हुए, उसके बाद आईटी इंडस्ट्री में एंटर हुए, ठीक है, जो उनका कैंपस प्लेसमेंट था उसके थ्रू. उसके बाद फिर कुछ सालों तक काम किया. उसके बाद फिर लगा कि नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ ना एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, ठीक है. देन उसके बाद उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, लेकिन उसके पहले मल्टीपल डोमेन्स इन्होंने जो है एक्सप्लोर किया. इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस, बिजनेस फंक्शंस, ठीक है. प्रीवियस रोल्स की अगर बात करें, आईटी एंड कंसल्टिंग में काम कर चुके हैं, प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑपरेशंस में काम कर चुके हैं, ठीक है. लीडरशिप पोजीशंस पे रह चुके हैं स्टार्टअप एनवायरनमेंट में, ठीक है. जैसे कि मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छा खासा वहाँ पर एक्सपीरियंस गेन किया है. तो ये हैं जी दो लोग. एक है मिसबाह जो प्रोडक्ट फोकस्ड हैं, एक्सपेरिमेंटल हैं, स्टार्टअप ओरिएंटेड हैं, जिन्होंने अनुभव लिया अच्छा खासा, अपने परिवार की दिक्कतों को भी देखा और फिर बाकी परिवारों की दिक्कतों को देख करके उन्होंने एक सोल्यूशन ढूंढा. दूसरे हैं निश्चय, प्रोसेस फोकस्ड, ऑपरेशनल थिंकर. ऐसे करके ही कंपनी यहाँ तक पहुँची है.

और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ये जो स्टार्टअप है इतना पावरफुल बन पाया। That's how it works. लेते हैं और म्यूजिकल ब्रेक, आप बताइए आपका क्या पॉइंट है इसके ऊपर। 8017 8107 पे फिलहाल मजा लीजिए गानों का और जुड़ रही है हमारे साथ। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए, शो को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक जितना आपने केस स्टडी सुनी है, जितना आपने पूरी इस कंपनी को समझाया, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है गोल्ड। पर अपनी जानकारी के लिए बता दें कि जार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ गोल्ड नहीं है। द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपनी इज बिहेवियरल साइकोलॉजी, माइक्रो सेविंग थ्रू ऑटोमेशन। अगर किसी इंसान ने 98 रुपीज पे किए हैं रिचार्ज के लिए, तो वहां पर जार ये कर सकता है कि 2 रुपए ऑटोमेटिकली काट ले, उस फिगर को राउंड अप कर दिया और 2 रुपए डिजिटल गोल्ड सेविंग्स में डाल दिया। अब सोचिए कितना इजी आ रही है। ये भी तो हम देखते हैं ना कि अगर आपको किसी कंपनी का रिचार्ज करना है और आप किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू कर रहे हैं, तो 2-3 रुपए तो वो भी अपनी फीस लेता है। एग्जैक्टली यहां पर एक कंपनी बोल रही है कि काम करो, 2 रुपए हमें दे दो, हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। कितना ही ईजी है, बिल्कुल पेनफुल नहीं है भाई, लेकिन बेयरली नोटिस होता है। बट कितना बड़ा, कितना इंटरेस्टिंग मूव है। दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस कंपनी। सो फार अबाउट दिस, आई मीन देर आर सो मेनी फैक्टर्स जो आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग यूएसपी आई हैव एवर हर्ड ऑफ। या मैंने कभी इस शो में बताई होगी कि ड्राइवर से थोड़ी बात करते हैं। इंडिया का इमोशनल कनेक्शन विद गोल्ड, आपको पता है बहुत अच्छे से, गोल्ड इक्वल्स टू सेफ्टी प्लस सिक्योरिटी प्लस कल्चर। हमारे परिवारों में इसलिए गोल्ड को ज्यादा खरीदा जाता है क्योंकि इंडियंस जो है गोल्ड के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, मोर देन एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जार को ये साइकोलॉजी समझ में आई। दूसरा, लो एंट्री बैरियर। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर 500 रुपए 1000 रुपए आपको लेकर के आने होते हैं। जार बोलता है 10 रुपए ले आओ, क्या फर्क पड़ता है, लाओ भाई 10 रुपए लाओ, 15 रुपए लाओ। कितना इजी एंट्री पॉइंट मिल गया अरे कंज्यूमर को। उसको थर्ड पॉइंट आता है यूपीआई इकोसिस्टम ग्रोथ। भारत में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से ग्रो किया, बट अगर वो ग्रो ना करता तो डेफिनेटली ये कंपनी स्ट्रगल कर रही होती। और इस कंपनी के साथ साथ और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्ट्रगल कर रही होती, लेकिन क्योंकि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना, यूपीआई ने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को पॉसिबल कर दिया विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, जिसका फायदा इन कंपनीज को मिला डेफिनेटली। दैट इज अनदर की ड्राइवर ऑफ दिस कंपनी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

आई होप यू एंजॉयड द म्यूजिकल वाइब। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जार की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जार एक बहुत प्यारी सी कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और किस तरीके से एक आदत को इन्होंने बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर कुछ कुछ इंटरेस्टिंग लेसन हैं जो आपको जरूर सीखने चाहिए कि इस कंपनी ने कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, बट लोगों को ऑलरेडी पता था कि उन्हें सेव करना चाहिए। जार ने सिंपली उस ऑब्स्टेकल को, उस फ्रिक्शन को हटा दिया, उस बैरियर को हटा दिया जो उनके अंदर था, जो उनको रोक रहा था। अगला पॉइंट है कि कोई भी बड़ी से बड़ा स्टार्टअप जो है वो हर बार उसको बड़ा बनाने के लिए नए बिहेवियर को डेवलप करने की जरूरत नहीं होती, समटाइम्स कुछ एग्जिस्टिंग बिहेवियर्स को रीडिजाइन करना होता है। ऊबर ने टैक्सीज इन्वेंट नहीं करी थी, जोमैटो ने फूड इन्वेंट नहीं किया था, सिमिलरली जार ने सेविंग्स इन्वेंट नहीं करी, आदत बदली, बैरियर्स को हटाया, एक्सेसिबिलिटी दे दी, एंट्री बैरियर को हटा दिया। सो दीज आर द थिंग्स जिसका फल जो है इस कंपनी को मिला है। तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी का नाम है जार। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

फील गुड फील लाइव। तो भाई देखिए, आज अब इस शो को हम यहाँ पर कंक्लूड करना चाहेंगे। जार की स्टडी हम आपके लिए लेकर के आए। हर स्टार्टअप को किसी बड़ी टेक्नोलॉजी से शुरू नहीं करना होता है बाबू मोशाय। कभी कभी एक स्टार्टअप सिर्फ एक आदत को समझने से स्टार्ट हो सकता है। तो छोटा सा सवाल उठा कि लोग पैसे बचाना क्यों नहीं शुरू कर पाते। उस सवाल ने एक डिजिटल पिगी बैंक बना दिया, जिसका नाम दिया गया जार। और शायद जिंदगी का भी यही फॉर्मूला है। बड़ा पैसा एक दिन में नहीं बनता, लेकिन छोटी छोटी आदतों से एक दिन फर्क जरूर आता है। फर्क बहुत बड़ा हो जाता है और हर चीज में लागू होता है। थ्योरी है, आपको लग रहा है कि आपको अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है तो आप एक दिन में जाकर के उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बस आपको छोटी छोटी आदतों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। खाने की आदतें, सोने की आदतें, तो वो जो छोटी छोटी आदतें आपके अंदर चेंज ला रही होंगी ना, उसकी वजह से फिर एक दिन ऐसा होगा कि आपकी बॉडी इतनी अच्छी बन चुकी होगी जो भी आपने ख्वाब देखा है उस तरफ। तो ये है हमारी आज की कंपनी। आज आपको शो कैसा लगा मुझे बताइए जरा 8010781078 पर। फिलहाल इसी नोट पर मैं चलता हूं, आपसे इजाजत लूंगा, फिर लौटूंगा लेकर एक और शो। अब मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। कुछ स्टार्ट करना है तो कर दीजिए, किसी बड़े मूवमेंट का वेट मत करिए। छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करिए एंड सिंपल गो फॉर इट। चलता हूं, दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने हम लेकर के आ जाते हैं आपके पास। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राकेश राय सप्रा, चेयरमैन कार्डियोवास्कुलर साइंसेस यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। बहुत सारी बातें आज हमारी होने वाली हैं और आज का जो मेन टॉपिक है वो है हार्ट अटैक। अब देखिए, होता यह है ना कि हार्ट ना, हमारा जो हार्ट है ना, हर सेकंड हर मिनट बिना रुके काम करता है। लेकिन जब हार्ट की किसी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से ब्लड फ्लो सडनली रुक जाता है तो सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है और हम इसे हार्ट अटैक कहते हैं। तो सबसे जो चिंताजनक बात यह है कि हार्ट अटैक को लेकर आज भी लोगों के माइंड में बहुत सारे मिथ्स हैं। कभी सिम्टम्स को एसिडिटी समझकर इग्नोर कर देते हैं तो कभी एज को देखकर रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और आज इस खास टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। डॉक्टर, मैं आपका सबसे पहले स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में।
1: गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर। मैं दिल का डॉक्टर, आप सबके दिल को स्वस्थ रखने के लिए दिल से अच्छी अच्छी सलाह दूंगा, तो आप दिल के बारे में सारे डिस्कशन कर सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर, तो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, हार्ट अटैक एक्चुअली स्टार्ट कैसे होता है और क्या आर्टरी में ब्लॉकेज एकदम से होता है या ग्रेजुअली ये डेवलप होता है?
1: देखिए, हार्ट अटैक तो डेफिनेटली एक पॉइंट टाइम का इवेंट होता है, तो ये तो अचानक होता है, लेकिन इसका बेस जो है वो अचानक नहीं होता। उसका सबस्ट्रेट धीरे धीरे करके डेवलप होता है। दिल की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने के प्रोसेस से ही हार्ट की बीमारी चालू होती है। इस बीमारी का नाम हम लोग कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, दिल की नाड़ियों में चर्बी जमा होना। और ये चर्बी जमा होने का काम 40 साल या 50 साल के बाद नहीं होता। इनफैक्ट आपको जान के ताजुब होगा कि ये प्रोसेस जिंदगी के पहले 10 साल में चालू हो जाता है। तो इसलिए हम लोग सबको ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपको बचाव करना है तो उम्र पे मत देखिए कि मैं इसका बचाव अपनी आदतों को 40 साल के बाद सुधारूंगा। इसका बचाव अगर सही मायने में करना है तो आपको अच्छी आदतें स्कूल गोइंग एज से इंकॉर्पोरेट करनी चाहिए, तभी आप सही मायने से हार्ट अटैक को बचा सकेंगे। तो दिल की नसों में जब चर्बी जमा होती है, धीरे धीरे करके बढ़ती है और उसके ऊपर की जो लाइनिंग होती है वो किसी कारण से, वो कारण मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, अनअकस्टम्ड फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है या स्मोकिंग हो सकती है, उससे उस ऊपर की लाइनिंग क्रैक आ जाता है और अंदर का कोलेस्ट्रॉल ब्लड स्ट्रीम में एक्सपोज हो जाता है और उससे वहां पे ब्लड क्लॉट जम जाता है और ब्लड क्लॉट जमने से अचानक ब्लड सप्लाई 100% रुक जाती है और उससे हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट अटैक एक पॉइंट इवेंट है जब ब्लड फ्लो 100% रुक गया, लेकिन उसका प्रोसेस जो नीचे कोलेस्ट्रॉल जमने का चालू होता है वो कम उम्र से चालू हो जाता है।
0: जी डॉक्टर, अक्सर लोग जो है कार्डियक अरेस्ट को और साथ ही हार्ट अटैक को सेम समझते हैं, लेकिन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है?
1: हार्ट अटैक, जैसे मैंने आपको बताया, हार्ट अटैक एक प्रोसेस होता है जिसमें दिल की नाड़ी में ब्लॉकेज आता है, अचानक फ्लो रुक जाता है, उससे हार्ट अटैक होता है। कार्डियक अरेस्ट ब्लड सप्लाई से लिंक नहीं होता। कार्डियक अरेस्ट एक तरह से धड़कन की खराबी होती है कि आपकी धड़कन रुक गई। वो धड़कन दोनों किस्म से रुकती है, अगर आपका धड़कन स्लो होके बंद हो जाए उसको भी कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, या आपकी धड़कन बहुत तेज हो जाए जिसको हम टेकीकार्डिया कहते हैं, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के नाम से हम उसको कहते हैं, धड़कन की खराबी। जब आपकी धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है
0: जी।
1: तो धड़कन बंद होना या धड़कन बहुत तेज होना ये कार्डियक अरेस्ट का कारण है और हार्ट अटैक जो है वो नस बंद होने के कारण होता है।
0: बिल्कुल डॉक्टर, क्या हार्ट अटैक के रिस्क को प्रिडिक्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट या स्कैन्स अवेलेबल हैं और कौन से लोगों को ये टेस्ट कंसिडर करने चाहिए?
1: देखिए, हार्ट अटैक का प्रेडिक्ट करने का तरीका हार्ट अटैक की बीमारियों के कारण को प्रेडिक्ट करना या डायग्नोस करना होता है। हार्ट अटैक तीन बड़ी बीमारियों से होता है, एक है हाई ब्लड प्रेशर, एक हाई ब्लड शुगर और एक हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। इन तीनों चीजों को आप प्रेडिक्ट या टेस्ट कर सकते हो और इसके लिए सिंपल ब्लड टेस्ट करने की जरूरत होती है या अपना ब्लड प्रेशर नापने की जरूरत होती है। तो इसलिए जो हम लोग कहते हैं, हम सभी को बचाव करने के लिए कहते हैं, नो योर नंबर्स। जैसे आप अपना घर का नंबर, टेलीफोन नंबर याद करते हैं, वैसे ही आपको अपना ब्लड प्रेशर का नंबर, ब्लड शुगर का नंबर और कोलेस्ट्रॉल का नंबर याद करना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज जानेंगे तभी आप उसको नॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे और तभी आप हार्ट अटैक को बचाव कर सकेंगे।
0: जी डॉक्टर, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के बावजूद क्या किसी पर्सन को हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है?
1: डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया, ये एक सिर्फ रिस्क फैक्टर के एब्सेंस से आपको हार्ट अटैक का रिस्क खत्म नहीं होता। अगर इनफैक्ट अगर आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो, ब्लड शुगर भी नॉर्मल हो, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो, लेकिन अगर आपकी आदतें बुरी हो, तीन बुरी आदतों से हार्ट अटैक होता है, अगर आप रोज की सब्जी फल ना खाएं, रोज की एक्सरसाइज ना करें या स्मोकिंग करें, तो बुरी आदतों से आपको हार्ट अटैक हो जाता है। भले ही आप में हार्ट अटैक की बीमारियां, हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट करने वाली ब्लड प्रेशर शुगर कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं है, लेकिन सिर्फ आदतें बुरी हैं। इसलिए हम कहते हैं हार्ट अटैक को एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। अगर आप कैसे जीवन व्यतीत करते हैं उससे आपका हार्ट अटैक बढ़ता है। सो हार्ट अटैक इज ए डिजीज ऑफ चॉइस। आप चाहें तो उसको बचाव कर सकते हैं, चाहे तो हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट खुद कर सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर, स्मोकिंग का हार्ट पर इमीडिएट जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो क्या होता है, और स्मोकिंग छोड़ने के बाद हार्ट को बेनिफिट क्या जल्दी मिलने शुरू हो जाते हैं या इसमें वक्त लगता है?
1: देखिए, स्मोकिंग से हार्ट अटैक होने का बहुत बुरा रिस्क होता है
0: जी।
1: इनफैक्ट इसलिए हम कहते हैं स्मोकिंग एक इंसान की खुद की सबसे बुरी आदत है। एक तरह से आपने खुद ही अपने पैर पे मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी पैदा करी है, और अगर आप ये कुल्हाड़ी चलाएंगे तो आपका पैर कटेगा जरूर। इसलिए स्मोकिंग बहुत ही बुरी आदत है हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट करने का, खास करके कम उम्र में। हम लोग ने देखा है 40 साल से कम उम्र में अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो 90% लोग उनमें से स्मोकर्स होते हैं
0: जी।
1: तो स्मोकिंग हार्ट अटैक का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो इसको बचाव करने के लिए आपको स्मोकिंग कम करने से सिर्फ फायदा नहीं होता, आपको कम्प्लीटली स्मोकिंग छोड़ने से ही आप हार्ट अटैक बचाव कर सकेंगे। और डेफिनेटली ये बेनिफिट, आपने एक दिन की स्मोकिंग छोड़ी तो अगले दिन आपको ये बचाव

0: हैं, दिल की नसें सिकुड़ती हैं, और दिल की नसों में जैसे मैंने बताया जहां कोलेस्ट्रॉल जमा हो वहां पे क्रैक पैदा होकर क्लॉट जमने का रिस्क बढ़ जाता है। तो दोनों स्ट्रेस हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट करते हैं और दोनों को हमें बचाव करना चाहिए। फिजिकल स्ट्रेस आपके लिए फायदेमंद भी होता है, जैसे हमने बताया हार्ट अटैक को बचाने के लिए रोज की एक्सरसाइज जरूरी होती है। लेकिन अगर आप रोज एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पूरे महीने की एक्सरसाइज अचानक एक दिन करना चाहेंगे, तो दैट विल बी एन अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज जिसका आपको बॉडी को टॉलरेट करने की आदत नहीं है, तब आपका इसका बुरा असर होता है। और मेंटल स्ट्रेस को के बुरे इफेक्ट को बचाने का भी एक तरीका, सबसे कॉमन तरीका रोज की एक्सरसाइज होता है कि रोज की एक्सरसाइज करके आप थोड़ा थोड़ा एड्रेनलिन बॉडी में रिलीज करेंगे, आपका बॉडी का स्टेमिना इंप्रूव करेगा और बॉडी उस एड्रेनलिन को टॉलरेट करने के ज्यादा कैपेबल हो जाएगी। इसलिए रोज एक्सरसाइज करने से आप मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज से के बुरे असर को बचाव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर, आजकल यंग जो लोग हैं उनमें भी हार्ट अटैक्स का जो कंसर्न है वो बढ़ रहा है। यंग एज में कौन से रिस्क फैक्टर जो है ये ज्यादा कंसर्निंग जो है ये लगते हैं और क्या है?
0: ये सारे रिस्क फैक्टर्स यंग एज में ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट जो बीमारियां हार्ट अटैक को पैदा करती हैं, बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, वो यंग एज में कम मिलेगा। लेकिन बुरी आदतें जो हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट करते हैं वो यंग एज में ज्यादा मिलते हैं। तो आपका बुरे किस्म का खाना खाना, अच्छे किस्म का खाना नहीं खाना, फल सब्जी नहीं खाना, जंक फूड या फैटी फूड ज्यादा खाना, रोज की एक्सरसाइज नहीं करना, अनअकस्टम्ड फिजिकल एक्सरसाइज करना, ये यंग में पाया जाता है। जिम में जाके आप अचानक पूरे महीने की एक्सरसाइज एक ही दिन में दिखावे में करना चाहते हो, मैराथन दौड़ना चाहते हो जबकि आपके रोज की चलने की आदत नहीं है। और आखिरी बुरी आदत जैसे मैंने बताया जो यंग एज में हार्ट अटैक करने का सबसे बड़ा कारण होता है वो है स्मोकिंग। किसी भी किस्म की स्मोकिंग हो, बीड़ी, सिगरेट या वेपिंग, वेपिंग का भी वही बुरा असर होता है जैसा सिगरेट और बीड़ी का होता है। इसलिए ये बुरी आदतें यंग एज में हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण बन जाती है।
1: जी डॉक्टर, अगर किसी फैमिली में हार्ट डिजीज का हिस्ट्री जो है ये रही हो तो क्या नेक्स्ट जनरेशन को अपना हार्ट चेक करवाना चाहिए? रिस्क को अर्ली स्टेज पर कैसे मैनेज करें ये जरा बताएं।
0: डेफिनेटली जेनेटिक्स का हार्ट की बीमारियों से बहुत क्लोज संबंध है। इनफैक्ट इंडियंस और साउथ एशियन पॉपुलेशन में वेस्टर्न पॉपुलेशन से इसी जेनेटिक रिस्क फैक्टर के कारण ही बीमारी ज्यादा और जल्दी होने का चांस पाया जाता है। जनरली इंडियंस में हार्ट अटैक अमेरिकन्स के हिसाब से 10 साल पहले आता है, क्योंकि हम लोग के जीन्स में ऐसी टेंडेंसी है, हम लोग का कोलेस्ट्रॉल इस किस्म का है जिसमें हार्ट अटैक होने का चांस ज्यादा हो जाता है। आप अपनी जेनेटिक टेंडेंसी को कैसे पहचानेंगे? उसका एक कॉमन तरीका होता है कि अगर आपके घर में किसी को हार्ट की बीमारी कम उम्र में आई है, कम उम्र का मतलब है अगर किसी मेल मेंबर को 55 साल से कम उम्र में या फीमेल मेंबर को 65 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक की बीमारी आई है, तो बाकी घर के फैमिली मेंबर्स को हार्ट की प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, हार्ट की बीमारी फैमिली में कई बार इसलिए भी आ जाती है क्योंकि फैमिली की आदतें बुरी हैं। अगर फैमिली में कोई बड़ा बुजुर्ग बुरी आदत रखता है जैसे स्मोकिंग करता है या एक्सरसाइज नहीं करता है, तो वही बुरी आदत बच्चों में आने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए वो फैमिली टेंडेंसी बढ़ जाती है।
1: जी।
0: इसलिए मैं कॉमनली ये कोटेशन यूज करता हूँ कि दिल की बीमारी आपको इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके परिवार में वो दिल की बीमारी दौड़ती है, बल्कि दिल की बीमारी आपको इसलिए होती है क्योंकि आपके परिवार में कोई भी नहीं दौड़ता है। तो अच्छी आदतें अगर आपके परिवार में नहीं होंगी तो आप में दिल की बीमारी होने का चांस बढ़ जाएगा। और उसको बचाव करने के लिए आप टेस्ट करने से पहले अपनी आदतों को सुधारें, अच्छी आदतें रखें, उससे ही आपका हार्ट अटैक होने का चांस बहुत बच जाएगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर, क्या रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला कोई पर्सन भी हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है? और अगर हाँ तो अपेरेंटली फिट लोगों में हिडन रिस्क क्या हो सकते हैं?
0: देखिए, जैसे मैंने बताया सिर्फ एक रिस्क फैक्टर हमको ध्यान नहीं रखना है, सारे रिस्क फैक्टर्स को ख्याल करना है। अगर कोई अच्छा रेगुलर एक्सरसाइज करता है लेकिन उसके साथ में उसको बुरी आदत है कि हर 5 मिनट के बाद सिगरेट पीता है, तो आपने उस अच्छे एक्सरसाइज के जो अच्छे बेनिफिट को आपने सिगरेट पीने की बुरी आदत से नलीफाई कर दिया। तो आपके एक अच्छी आदत से दूसरी बुरी आदत का इफेक्ट नहीं चला जाएगा। तो इसलिए सारी अच्छी आदतें अगर आप रखेंगे तो आप सही मायने में बचाव कर सकेंगे।
1: बिल्कुल डॉक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये भी आ जाता है एक पेशेंट का कि खाना जो है वो क्या खाना चाहिए, और ऐसे में तो क्या कहना चाहेंगे, डाइट क्या फॉलो करनी चाहिए?
0: देखिए, डाइट में दोनों एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें मेन चीज जो दिल की बीमारी के लिए बुरा होता है वो होता है फैट, क्योंकि दिल की नाड़ी

0: जो जमा जो होता है वो चर्बी होता है, और चर्बी फैट से ही आता है। कौन सा फैट हमारे लिए बुरा है? सबसे बुरा फैट होता है एनिमल सोर्स ऑफ फैट। तो एनिमल से जो भी फैट आता है, चाहे वो नॉनवेज डाइट की किस्म से आए या एनिमल सोर्स से मिल्क जो हम कंज्यूम करते हैं, जिसको हम कॉमनली इंडिया में हम उसको वेजिटेरियन डाइट का कंपोनेंट मानते हैं, लेकिन उसमें भी वो फैट होता है जो नॉनवेज डाइट के तरह बुरा होता है। इसलिए दूध और दूध से बनी हुई चीजें, घी, मक्खन, मलाई, इन सब से हमको बचाव करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये दिल की बीमारी का बहुत इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है। एक और किस्म का फैट जो दिल की बीमारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड तेल या जला हुआ तेल। अगर किसी भी तेल को आग एक बार आप उबाल लेते हैं तो डीनेचर हो जाता है, और उसके बाद अगर उस तेल को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत बुरा होता है। तो इसलिए हमको कोई भी तेल, अगर हम तली हुई चीज खाना चाहते हैं, तो ये इंश्योर करें कि वो तेल पहले एक बार भी उबाला हुआ ना हो। और ऐसे ही बुरा होता है बेकरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये सारे बेकरी प्रोडक्ट में पेस्ट्री हो, केक हो, बिस्किट्स हो, ब्रेड हो, इन सब में वो बुरे किस्म का डीनेचर्ड ऑयल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इससे हमको बचना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: कौन सा खाना आपके लिए फायदेमंद है? जैसे मैंने बताया, रोज का फल और रोज की सब्जी, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और इसका फायदा दिल की बीमारी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो रोज एक फल जरूर खाएं। सिर्फ ये एक अच्छी आदत से आप हार्ट अटैक होने के चांस को 25% कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर, कुछ आखिरी सवाल और हैं, और हार्ट अटैक के कौन से वार्निंग साइंस हैं जिन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए?
0: देखिए, हार्ट अटैक का लक्षण सेम होता है जिसको जो हम दिल की बीमारी का लक्षण मानते हैं, कि अगर आपके छाती में कोई भी डिस्कम्फर्ट, छाती में भारीपन हो, जलन हो, घुटन का सेंसेशन हो, और अगर ऐसा सेंसेशन चलने पे, फिजिकल एक्सरसाइज से बढ़ रहा हो, आराम करने से कम हो रहा हो, ये हार्ट की बीमारी का लक्षण होता है। और अगर इसी किस्म का लक्षण आपको अचानक आधी रात को हो जाए, भले ही वो छाती में जलन का लक्षण हो, और उसके साथ में अगर आपको थोड़ी घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, और टाइम पे हो रहा है, सीवियर हो रहा है, ये हार्ट अटैक का लक्षण होता है। तो इसको कभी आप गैस की बीमारी समझ के इग्नोर ना करें। घर के नजदीक किसी भी हॉस्पिटल में जाके एक ईसीजी करा लें। हार्ट अटैक होगा तो ईसीजी में तुरंत दिख जाएगा। अगर ईसीजी नॉर्मल है तो फिर आप गैस का इलाज करें, गैस की दवाई लें, डाइजीन पिए, उससे आप गैस का इलाज कर सकते हैं। बट आपने हार्ट अटैक होने का रिस्क, हार्ट अटैक होने का चांस चेक करके अवॉइड कर लिया। तो इसलिए ये लक्षण हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। इनफैक्ट अक्सर ये देखा गया है कि हार्ट अटैक होने से पहले, कुछ दिन पहले, इसी किस्म के लक्षण कम सीवियरिटी में आते हैं, इसको हम कहते हैं प्री इनफार्क्ट एंजाइना, हार्ट अटैक होने के पहले के लक्षण। अगर इस समय अगर आप चेक कर लें तो आप हार्ट की नस को 100% बंद होने से पहले डिटेक्ट कर पाएंगे, और आप उसका चेक करेंगे तो हार्ट अटैक के बुरे इफेक्ट को, बुरे रिस्क को आप बचाव कर सकेंगे।
1: बिल्कुल डॉक्टर, मैं जाते जाते बस आखिरी सवाल ये जानना चाहती हूँ कि क्या वो आखिरी संदेश है जो आप हमारे सभी लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे?
0: सबसे आखिरी संदेश मैं यही पहुँचाना चाहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य की इम्पोर्टेंस को समझें। इसलिए हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आपका बाकी का सारा वेल्थ वेस्ट हो जाता है। इसलिए अगर आपने हेल्थ को संभाल के रखा तभी आप अपने वेल्थ को यूज भी कर पाएंगे। इसलिए अपने हेल्थ के इम्पोर्टेंस को समझें, अपनी आदतों को सुधारें, और कुछ अच्छी चीजें जो मेंटल स्ट्रेस को कम करने में इम्पोर्टेंट होती हैं, अच्छी आदतें डालें, अपने आप में सेटिस्फैक्शन, काइंडनेस और हैप्पीनेस, इस तरह की विचार और इस तरह की आदतों, इस तरह की सोच को डालने की कोशिश करें, और बुरे विचार, बुरी आदतें जैसे सेल्फिशनेस, कॉम्पिटिशन, चेजिंग द फाइनेंशियल गोल, की पैसे के पीछे अंधाधुंध दौड़ना, इन सब को अवॉइड करने की कोशिश करें। एक वर्क और लाइफ के बीच में एक बैलेंस लाने की कोशिश करें, और ये बैलेंस लाइफ आपके दिल को स्वस्थ रखने में और हार्ट अटैक को बचाव करने में बहुत सक्सेसफुल होगा।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आप हमारे स्टूडियो और इतनी सारी जानकारी दी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: थैंक यू वेरी मच। कीप योर हार्ट सेफ एंड हेल्दी।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।
2: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया।
3: सच?
2: प्यार हो गया, क्या करें?
3: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से

0: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यू। तो आप लोग इस टाइम सुन रहे रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। ये शो अपने आप में बहुत खास है, उसकी वजह भी है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी वैल्यूज मिलती हैं। हर बार हम यहाँ पर एक एक्सपर्ट को इनवाइट करते हैं जो अपनी लाइफ की ओवरऑल जर्नी से बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर अभिषेक शर्मा। अभिषेक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। अभिषेक पहले रेडियो मानव रचना के साथ काम कर चुके हैं, नाउ ही इज डूइंग रियली गुड, आगे बढ़े अपने लाइफ में और कुछ उन्होंने एक्सप्लोर किया। पहले यहाँ पर ऑडियो इंजीनियरिंग करते थे, अब बहुत सारे डोमेन्स उन्होंने और एक्सप्लोर करे हैं। तो प्रोडक्शन की बात करेंगे, बहुत सारी चीजें जो उनकी डोमेन में फॉल करती हैं उनकी बात होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करेंगे अभिषेक का। अभिषेक स्वागत है आपका।
1: हेलो हेलो सागर भाई, कैसे हो?
0: मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ भाई।
0: अभिषेक थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, क्या आपका डोमेन है, प्रोफाइल क्या है, एक्सपर्टीज क्या है आपकी, ताकि हमारे लिसनर्स को पता लगे आपके बारे में।
1: सो मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं फरीदाबाद का ही रहने वाला हूँ, और मैं पिछले 7 साल से अपने मीडिया फील्ड में काम कर रहा हूँ। और मैंने स्टार्टिंग अपने, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, सो मैंने बीएससी आईटी किया था मानव रचना से, और फिर उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया था, मैं कोडिंग करता था माइक्रोसॉफ्ट में, 1 साल मैंने पूरा जॉब किया। फिर मेरे को अंदर से फील हुआ क्या मेरे को कुछ ऐसा अलग हटके करना चाहिए जो मेरा मन कह रहा है करने को। तो फिर मैंने 1 साल अपनी पढ़ाई करी, दोबारा से मैंने पीजी डिप्लोमा किया मानव रचना से पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजिंग में। देन मैं रेडियो मानव रचना में इंटर्न लगा था, जहाँ पर मैं सारी साउंड एडिटिंग रेडियो में करता था, वीडियो एडिटिंग करता था, फोटोज वगैरह क्लिक करता था, वीडियो शूट पे जाता था, ओबीज लेता था, फिर कुछ महीनों के लिए आरजे भी बना शाम के शो का। सो ऐसे करके मैंने वहाँ पे 1.5 साल काम सीखा, और फिर अच्छे से मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में वहाँ से मूव किया अपना करियर। वहाँ पर मैंने Gaana.com के लिए काम किया था, गाना ऐप का मैं AI, जो गाना ऐप का जो UI था वो मैं डिजाइन करता था, वीडियोज वगैरह शूट एंड एडिट करता था। देन ऐसे करते करते फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पार्ट है रेडियो मिर्ची, उसमें मैं प्रोड्यूसर लगा। सो उसमें जितने भी आर्टिस्ट थे उनका मैं सारा कंटेंट डिजाइन करता था, शूट से लेकर एडिट तक, कि क्या कंटेंट होना चाहिए। आइडिएशन पे बैठता था आर्टिस्ट के साथ, मिर्ची मुर्गा काफी फेमस हुआ करता था उस टाइम पे, सो उसके आइडिएशन में मैं रहता था, और उसमें जितने वॉइस ओवर्स थे उसमें मैं हेल्प करता था। देन एडिटिंग पार्ट तो हमेशा रहा मेरा करना, शूट भी मैंने वहाँ पे सीखा। मैंने वैसे देखा जाए सागर भाई, मैंने वैसे सीखा नहीं काम, लेकिन मैं जॉब के साथ साथ ही सीखता चला गया काम। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो मानव रचना में जब मैं था रेडियो में, उस टाइम पर मैं काफी सीखने को मिला, भले ही मैं इंटर्नशिप पे फिर जॉब से कन्वर्ट हुआ, बट मैंने काम वहीं से सीखना स्टार्ट किया। सो ऐसे करते करते मेरे को जॉब मिलती चली गई, मैं ट्राई करता चला गया और मेरा एक्सपीरियंस गेन होता गया मेरा, और मैं काम सीखता गया। उसके बाद फिर मैं भाई इंडिया टुडे आज तक में 2.5 साल काम किया, उस पर मैं प्रोड्यूसर था। उसमें क्या कहते हैं, जितने भी इनकी वेब सीरीज होती थी, स्मॉल वेब सीरीज जो इनकी OTT पे जाती थी, उसमें शूट करता था, एडिट करता था। उसमें फिर मैं डायरेक्शन में भी ऐड हो गया था, उसमें कंटेंट में डायरेक्ट करता था जो भी शूट होता था, और स्पॉन्सर्स वीडियो होती थी, वीडियो ब्रांड की वीडियोज होती थी, एंड काफी कॉन्सर्ट्स होते थे, कॉन्सर्ट्स का पूरा वीडियो प्रोडक्शन में काम संभालता था। सो मेरी प्रोफाइल धीरे धीरे करके पूरी प्रोडक्शन वाली ही बन गई, जिसमें मैं प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक का सारा जो भी टास्क होता है वो मैं मैनेज करता था। पहले मैं खुद करता था, देन फिर मेरे को टीम अलॉट हुई, फिर मैं टीम के साथ करने लग गया। सो ऐसे कर करके मेरे को आगे करियर में ग्रोथ मिली, और करेंटली मैं अभी NDTV में काम करता हूँ। सो NDTV में एज अ सीनियर प्रोड्यूसर अपॉइंट हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मेरा काम बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी हैं, वेब सीरीज भी हैं, टीवी शोज भी हैं, और क्या कहते हैं जो सोशल मीडिया के कंटेंट होते हैं, रील्स वगैरह वो भी हैं। सो अब मैं सारा आइडिएशन पार्ट संभालता हूँ और सारा प्रोडक्शन संभालता हूँ विद माय टीम। सो भाई मेरा ये करियर ग्राफ रहा है पूरा, पर मानव रचना का मेरा बहुत बड़ा हाथ है पूरे करियर ग्रोथ में।
0: जी बहुत ही सुंदर। तो अभी तक हमने अभिषेक से बात करी है, अभिषेक ने अपने शब्दों में खुद बताया कि उन्होंने कैसे कैसे करते करते चीजें सीखी हैं। तो एक चीज तो यहाँ पर हमें समझ में आती है कि आप बैठ करके घर पे थ्योरी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हो जीवन में, आपको करते करते चीजें समझ में आती हैं, क्या रखना है, क्या निकालना है, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, ये बाद में फिगर आउट होता है। आपको काम करते रहना चाहिए, आपको फील्ड में बने रहना होगा, ये अभी तक अभिषेक की यात्रा से हमने सीखा है। फिलहाल लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे. आगे बात करेंगे प्रोडक्शन की, कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, एक्सपर्टीज की बात करेंगे, काम कैसे शुरू होता है, जॉब में क्या क्या चीजें हैं, कैसे जॉब में एंटर किया जाता है, तमाम चीजें, आपके जो सवाल होंगे उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं. लेकिन वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. मैं आरजे सागर, शो चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ. फील गुड, फील लाइफ.

0: वेलकम बैक, मैं अर्जुन सागर। शो चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ और उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर जो म्यूजिकल वाइब अभी आपने सुनी वो आपको मजा आया, आपको शो पसंद आ रहा है। अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक अपने शब्दों में बता चुके हैं आपको कैसी उनकी यात्रा रही, कैसे उन्होंने रेडियो से लेकर के न्यूज, फिर उसके बाद कमर्शियल रेडियो, देन उसके बाद वेब सीरीज, OTT, सोशल मीडिया, प्रोडक्शन, सब कुछ उन्होंने संभाला। आइए एक स्टेप और आगे लेकर के चलते हैं अपने शो को और अभिषेक से फर्दर हम डिकोड करते हुए जानना चाहेंगे यहाँ पर। अभिषेक, प्रोडक्शन के बारे में बताइए। व्हेन यू आर सीइंग प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं जो प्रोडक्शन में फॉल करते हैं, थोड़ा अच्छे से हमारे लिसनर्स को पता लगे कि एग्जैक्टली जो ये वर्ड सुनते हैं हम लोग प्रोडक्शन, ये होता क्या है।
1: सो सागर भाई, मैं अगर प्रोडक्शन को डिवाइड करूं तो इसके तीन पार्ट होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। सो हम स्टार्ट करते हैं प्री प्रोडक्शन से। तो प्री प्रोडक्शन में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज हमारे पास कोई भी चीज होती है, पहले आइडिया होता है कि आइडिया को कैसे डेवलप करना है। आइडिया के डेवलपमेंट में हम बैठते हैं, अगर आपके पास टीम है तो आप टीम के साथ बैठोगे, अगर आपको खुद का एक आइडिया है तो आप उसको पूरा एक्सटेंड करके पूरा एक ड्राफ्ट बना सकते हैं। उसके बाद हम फिर उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, देन स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद हम लोग उसके स्टोरी बोर्डिंग में बैठते हैं, फिर शूट प्लान करते हैं कहाँ पर शूट होगा, कैसे करना है, किस कंडीशन में करना है, आउटडोर है, इनडोर है। देन उसके बाद हम एक रेफरेंसेस लेते हैं कि हमारा कंटेंट किस ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है कंटेंट उसकी तरह लगेगा, सो हम रेफरेंस वहां से ले सकते हैं। देन हम बात करते हैं प्रोडक्शन की स्केड्यूलिंग के लिए कि पूरा हमने डिजाइन कर लिया प्रोडक्शन, फिर हम उसके शेड्यूलिंग में बैठते हैं कि कब कैसे और किस टाइम करना है, क्योंकि वेदर कंडीशन भी देखनी होती है, इक्विपमेंट्स भी देखने होते हैं, लॉजिस्टिक्स भी देखने होते हैं, मैन पावर भी देखना होता है, सो उसके अकॉर्डिंग हम सब उसको शेड्यूल करते हैं। देन हम बजट देखते हैं कि बजट का क्या रहेगा, बेसिक बजट क्या है, एक्सटेंड कितना हो सकता है, हमारे फाइनेंसिस कैसे हैं, कोई अलग से इसमें प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, कोई क्या कहते हैं कोई पार्टनर है, सो सारा जो मनी रिलेटेड इशू होता है वो इसके अंदर आता है। फिर हम लोकेशन के लिए जाते हैं, रेके करते हैं कि जो भी हमारा पूरा ड्राफ्ट बनाए हम किस लोकेशन में जाके सूटेबल, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ हम शूट कर सकते हैं, वहाँ की परमिशन लेना, ये सब उसमें आता है। देन हम फिर करते हैं कास्टिंग, जिसमें हम लोगों के ऑडिशंस लेते हैं, हम पूरी कास्टिंग बिठाते हैं कि कितने कैरेक्टर हैं, कितने स्पॉट बॉयज होंगे, कितने DOPs होंगे, कितने एक्ट्रेस होंगे, एक्ट्रेसेस होंगे, साइड एक्टर्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग एक पूरी कास्टिंग होती है और ये सारा जो पार्ट होता है सारा प्री प्रोडक्शन में आता है। और अगर मैं इक्विपमेंट्स की बात करूं कि हमको कैमरा कैसे चाहिए, जिसमें हम सिनेमाटोग्राफी के ऐड करते हैं मूवीज के लिए, जिसमें हम DOPs और कैमरा इक्विपमेंट्स, लाइटिंग की बात करते हैं, सो कैमरा किस टाइप के होने चाहिए, किस टाइप की उनके लेंसेज चाहिए, फ्रेम रेट कैसा रहेगा, रेजोल्यूशन क्या रहेगा, और ISO लाइट कंडीशन के अकॉर्डिंग, और क्या क्या मूवमेंट रहनी है, कैसे ट्राइपॉड्स यूज होने हैं, डॉली शॉट है, ट्राइपॉड पे है, या फिर क्या कहते हैं आपका ड्रोन शॉट है, टॉप एंगल शॉट है, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें होती हैं हम इक्विपमेंट्स में उसको लेते हैं कैमरे के लिए। फिर मेन पार्ट होता है जो अब तक मैंने अपने करियर में देखा है कि अगर आपका वीडियो कितना भी अच्छा हो, आपने क्या फोन शूट किया हो, अगर आपका ऑडियो खराब है या उसमें कुछ डिस्टर्बेंस है या फिर कुछ भी ग्लिच है तो वो कंटेंट बेकार है आपका, लोग उसको देखना पसंद ही नहीं करेंगे अगर उसमें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा सही से, अगर ऑडियो की क्वालिटी बहुत बेकार है। सो इसलिए हम माइक्रोफोन जितने भी होते हैं हम उसको देखते हैं किस क्वालिटी का है, कितना उसमें नॉइस कैंसिलेशन है, सो वो बहुत मैटर करता है प्री प्रोडक्शन में। सो ऑडियो प्रोडक्शन आपके हमेशा टॉप नॉच रहनी चाहिए, वीडियो क्वालिटी का ऊपर नीचे थोड़ा चलेगा लेकिन ऑडियो प्रोडक्शन आपके हमेशा HD हाई क्वालिटी में ही रहनी चाहिए। और फिर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो डायरेक्शन होती है कि वो कौन कर रहा है, उसमें क्या टैलेंट रहेगा डायरेक्शन का, जो वर्किंग कल्चर होता है सेट पे वो कैसा रहेगा, वो सब हम डिजाइन करते हैं। देन उसके बाद हम चलते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में। पोस्ट प्रोडक्शन में आपका ये होता है कि आपके पास सारे रॉ फुटेजेस आ गए, जितना भी आपने शूट किया A to Z कंटेंट वो आपके पास एक रॉ फुटेज में आ गया, लेकिन लोग गलती ये करते हैं कि सिर्फ एक कॉपी बनाई और उसको सीधा प्रोडक्शन टेबल पे भेज देते हैं एडिट के लिए। आपको 2 से 3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए आपके सारे रॉ कंटेंट की, क्योंकि बहुत पैसा लगा होता है, बहुत मेहनत होती है लोगों की, काफी सारे स्टाफ के मेंबर काम करते हैं, अगर वो इधर उधर हो जाता है कंटेंट सो आपका सारा काम खराब। सो इसलिए बेटर है कि आप उसका बैकअप लेके रखें, क्लाउड पे भी लेके रखें और फिजिकल फॉर्म में आप किसी हार्ड ड्राइव में भी 1 से 2 कॉपी बना के रखें। फिर हम बात करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन की, तो उसमें एडिटिंग पे जाता है आपका, जितने भी इसमें फंडामेंटल्स होते हैं वीडियो एडिटिंग के वो करते हैं, एडिटिंग का एक वर्क फ्लो बनाते हैं कि फर्स्ट ड्राफ्ट कैसा रहेगा, रफ कट कैसा रहेगा। सो एडिटिंग में जो एडिटर होता है और साथ में जो डायरेक्टर होता है वो साथ में बैठ के काम करते हैं, मोस्टली डायरेक्टर नहीं बैठते हैं, बस एडिटर को ब्रीफ देके छोड़ देते हैं पर ऐसा नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर को ऑब्वियसली बैठना चाहिए क्योंकि उसका एक विजन होता है कि मेरे को अपनी मूवी या मेरे को अपनी सीरीज या मेरे को अपना टीवी शो ऐसा दिखाना है ऑडियंस को। सो एक वो उसका एक पीओवी रहना चाहिए एडिटर के साथ। देन कलर करेक्शन होती है कि सारा पूरी जो मूवी है, पूरा जो हमारा कंटेंट है, उसकी जो कलर करेक्शन है वो ऐसी दिखे कि कहीं पे लो लाइट कंडीशन में हमने शूट किया, कहीं पे हाई में किया है। सो उसको एक पूरा एक मीडियम फॉर्म में लाके उसको सेटल कर देते हैं ताकि वो देखने वालों के लिए एक्सपीरियंस अच्छा रहे और ऊपर नीचे और प्रोफेशनल भी दिखता है वो काम, अगर आपका कलर ग्रेड अच्छा होता है तो। ऑडियो मिक्सिंग ऑब्वियसली टॉप नॉच होनी चाहिए आपकी। जितना भी हमने कंटेंट शूट किया, कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि हम ऑन लोकेशन ही रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑडियो को, बट कुछ ऐसा होता है कि हम डब करना पड़ता है, तो डबिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए सो दैट आपको वीडियो प्रोडक्शन के साथ साथ ऑडियो प्रोडक्शन बीच में इन्वॉल्व होती है। ऑडियो प्रोडक्शन में होता है कि कहीं कहीं पर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी देना है, तो उसके लिए आपके साथ एक कंपोजर भी होना चाहिए, म्यूजिक प्रोड्यूसर होना चाहिए कि आप उसको ब्रीफ दे पाए, क्या मेरे को यहाँ पे थोड़ी टेंशन क्रिएट करनी है इस वाले सीन में, तो मेरे को टाइप का म्यूजिक देना है। सो वो साथ में एडिटर के साथ ही काम होता है। VFX की रिक्वायरमेंट है सो दैट कि कहीं पे मेरे को जैसे मेरे पीछे लाल किला दिख रहा है, अब मैं चाहता हूँ मेरे को लाल किला नहीं दिखाना है वहाँ पे, सो वो उसको रिमूव कर दिया। कोई सोचता है कि यार मेरे को लाल किला की जगह मेरे को ताजमहल दिखाना है, तो वो दिखेगा, ऐसे करके होता है। सो ये सारा जो पार्ट होता है ये आपका पोस्ट प्रोडक्शन में इंक्लूड होता है। सो धीरे धीरे आप सीखोगे करते करते जैसे मैंने सीखा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत प्यारे तरीके से बहुत सिंपल शब्दों में अभिषेक ने हमें यहाँ पर बताया प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको बहुत मजा आ रहा होगा सुनने में, क्योंकि ये तमाम बातें आपने सुनी तो होंगी, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, लेकिन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये अभी अभी हमें अभिषेक ने बताया और उम्मीद कर रहा हूँ आप यहाँ तक समझ पाए हैं। चलिए एक और म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपने शो के अंतिम पड़ाव की तरफ आएंगे और फर्दर डिस्कस करेंगे यहाँ पर एज अ स्किल आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, काम कैसे मैनेज होता है, सब चीजें जानेंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, मैं हूं आरजे सागर, शो चल रहा है पर वॉइस ऑफ यूथ, आप लोग सुन रहे हैं स्टेम रेडियो 107.8 एफएम।

0: Once again, I am hoping आपको मजा आ रहा है. अगर आपके पास कोई feedback है मेरे लिए अभिषेक के लिए तो please 8010781078 इस number तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा. Show चल रहा है Voice of Youth और यहाँ पर हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं. बहुत सारी बातें अभी तक हमने करी हैं. अभिषेक के domain को समझा है, production, pre-production, post-production, क्या-क्या चीजें होती हैं, सब हमने जाना है. आइए let's talk about the real thing कि इस फील्ड में काम कैसे मिलता है. तो अभिषेक प्लीज हमें बताइए कि इस फील्ड में काम ढूंढने के लिए क्या करना होता है. अगर किसी को जॉब करनी है तो क्या करना होगा, किसी को अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करना है तो क्या करना होगा.
1: यार सबसे पहले अगर आपको जॉब भी करनी है तो आप इंटर्नशिप से स्टार्ट करिए. अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप कॉलेज खत्म करके आप अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं प्रोफेशनली, सो आप ढूंढिए कि आपके एरिया में या फिर आपके घर के आसपास कुछ ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस हो जो ऑलरेडी सब काम करता हो और आपको इंटर्नशिप वहाँ मिल जाए. सो आप वहाँ पे आप काम भी करोगे, आपको पैसे भी मिलेंगे और आपके लिंक भी बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो अपना काम उस प्रोडक्शन हाउस से करवा रहे हैं, फिर आप ही हैंडल कर रहे होंगे उनके काम को. सो दैट आपके लिंक बनते हैं, आप काम भी सीख रहे हो एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट ऑल्सो. सो बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप यंग एज में हो तो आप इंटर्नशिप के लिए जाएं, साथ साथ आप पैसे भी कमाएंगे और काम भी सीखेंगे और लिंक भी बनेंगे आगे चल के. और अगर आप एक ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है और आप किसी बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं, सो आप एक अपना प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाएं. मान लो आपने किसी ABC कंपनी में एक साल के लिए काम किया, सो आप उसका एक पूरा कैटलॉग अपने पास रखें, जो भी आपने वहाँ पे काम किया है उसका एक पोर्टफोलियो बनाएं और उसका एक पूरा कैटलॉग बनाएं. जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे जॉब सर्च के टाइम पे वहाँ पे आप उसको शो करिए. और जरूरी नहीं है, लोग ये गलती करते हैं कि यार मेरे पास वही काम है जो मैंने कंपनी में किया है. आपके पास कैमरा है नहीं है तो आप रेंट कर सकते हैं, दोस्त से ले लिया, फोन है, मोबाइल है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, आप अपना खुद को कुछ ना कुछ कंटेंट ऐसा शूट करिए, एडिट करिए और वो भी आप ऐड कर सकते हैं अपने कैटलॉग में. ये नहीं कि आप सिर्फ कंपनी का ही काम दिखा रहे हो, आप अपना काम भी दिखा रहे हो. सो ये आप दिखाते हैं तो आपके पास काफी हाई चांस रहते हैं कि आप किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस में लग जाते हैं. और कोई अगर अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप खुद का एक कैटलॉग डिजाइन करिए, खुद का एक आइडिया क्रिएट करें, कंटेंट शूट करिए, एडिट करिए और उसको ऐसे ट्रीट करिए कि ये आपकी फिल्म है. उसकी तरह आप उसको शूट करके आप अपने कैटलॉग में ऐड करिए और फिर आप जितने प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कि कोई भी ब्रांड है जिनका इंस्टाग्राम पे काफी अच्छी रीच है, उनको रील्स बनानी है अपनी शूट के लिए, वो ढूंढते हैं लोगों को, आप उनको पिच करिए, उनसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करिए, लिंक्डइन पे कनेक्ट करिए और उनकी मेल आईडी पे कनेक्ट करिए और अपना कैटलॉग सेंड करिए अपने वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ. और अपने जो भी चार्जेस होते हैं वो मिनिमल रखिए, ना कि हायर साइड, क्योंकि आपका काम देख के दूसरा बंदा भी आएगा. भले आपने पहले प्रोजेक्ट में पैसे कम लिए लेकिन पहले प्रोजेक्ट से काम आपका आगे बढ़ेगा और फिर दूसरा क्लाइंट उसको देख के अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ. तो ऐसे आप धीरे धीरे नोट बाय नोट कनेक्ट होते चल जाएंगे और आपका करियर बन जाएगा इसमें.
0: जी जी जी बहुत उम्दा. एक और चीज यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा सोशल मीडिया के बारे में. सोशल मीडिया का प्रोडक्शन भी एक प्रोडक्शन होता है. बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उस प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या लोगों को पता होना चाहिए अगर किसी इंसान को अपने सोशल मीडिया पर कॉन्टेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करनी है तो कैसे प्रोडक्शन प्लान करे, वो एक बार और बता दीजिए.
1: सर सोशल मीडिया पे किसी को भी अपना कंटेंट आगे पहुंचाना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप क्या चाहते हैं, आपका पेज लोग आपको क्या करते हुए देखना चाहते हैं और आपको लोग क्यों पसंद कर रहे हैं. पहले आप ये जानिए कि आपकी ऑडियंस क्या है. जब आपको पता पड़ जाए कि यार ये मेरी ऑडियंस है, ये एज ग्रुप के लोग मेरे कॉन्टेंट ज़्यादा देख रहे हैं, सो आप उसी के अराउंड अपने कॉन्टेंट को एनहांस कर दीजिए, उसकी क्वालिटी बढ़ा दीजिए, उसके जो कॉन्टेंट के अंदर है थोड़ी डेप्थ लिया है ताकि वो रिलेटेबल इतना हो जाए कि लोग या तो सेव करें उस कंटेंट को या फिर वो रीशेयर करें. रीशेयर से क्या होता है कि और रीशेयर वही कंटेंट होता है जो लोग उससे रिलेट कर पाते हैं. जैसे कि कुछ भी 90s के कुछ भी कंटेंट है, अब जो लोग 90s के टाइम से निकलते हुए आ रहे हैं सो उनको एक नॉस्टैल्जिया वाली वैल्यू फील होगी तो वो उसको शेयर करेंगे और सेव करेंगे. अगर आपका कॉन्टेंट ज्यादा अच्छा होगा और हाई चांस ये रहते हैं कि आपका कॉन्टेंट ज्यादा अच्छा है और आप उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हो और उसकी शेयरेबिलिटी भी ज्यादा है, सो आप ऐसे लोगों के पास तक पहुंच जाते हैं आपके कंटेंट जो कि क्या कहते हैं बॉलीवुड के बिग प्रोडक्शन हाउसेज हो गए. सो वहां पर आप अगर आपका कंटेंट जाता है सो आपका वेल एंड गुड है, आप काफी ग्रो कर सकते हैं, आपको चांस मिलेगा वेब सीरीज काम करने का, मूवीज में काम करने का. बट ये सबसे लेटर पार्ट होता है. स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हैं कि कुछ भी आपके हाथ में कैमरा है, आप खुद भी कॉन्टेंट खुद भी शूट करें, कुछ भी करें, शेयरेबिलिटी लाने के लिए आप ऐसा कंटेंट यूज करिए कि जिसमें लोगों को या तो कुछ सीखने को मिले या किसी को सिखाने के लिए मिले, यही कंटेंट होना चाहिए। या फिर कुछ ऐसा उसमें पर्सनल टच हो जिससे लोग फील करें कि यार ये बंदा जो बोल रहा है ये शायद मैं ही हूँ, ये मेरी ही कहानी है, ऐसा तो मैं ही करता हूँ, ऐसा तो वो करता है। तब जाके आप कहते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप काफी अच्छा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो अभिषेक ने बताया कि शेयरेबिलिटी के ऊपर आपको काम करना चाहिए कि लोग उससे रिलेट करें। रिलेटेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज का, क्योंकि अगर लोग रिलेट करेंगे तो ही उसको शेयर करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच अभिषेक, आई एम डन विद माय क्वेश्चंस। कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूं और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: सागर भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, और जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉलेज लाइफ को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित ना रखें। कॉलेज लाइफ में आप काफी कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कॉलेज टाइम में ही आप कंटेंट बनाकर भी जॉब से पहले, कॉलेज खत्म होने से पहले आप अपना करियर बूम कर सकते हैं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अपने कंटेंट की जर्नी को भी स्टार्ट जरूर करें कॉलेज में। हाँ, लेकिन बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंटेंट की तरफ झुक गए सारा टाइम या फिर पढ़ाई की तरफ, मिड में रहना चाहिए। दोनों तरफ अच्छा करें और बेस्ट ऑफ लक सबके लिए।
0: थैंक यू सो मच अभिषेक, इट मीन्स अ लॉट टू अस कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शुक्रिया भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी के साथ वक्त अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का। अभिषेक से हमने बात करी, अभिषेक शर्मा ने बहुत सुंदर शब्दों में हमें पूरा प्रोसेस बताया कैसे एग्जैक्टली काम करता है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, सोशल मीडिया पे कैसे काम होता है, कैसे वायरल होती हैं चीजें, कैसे आप उसको आगे बढ़ा सकते हो, कैसे अपना नाम कमा सकते हो, करियर कैसे बना सकते हो, बहुत कुछ आपने जाना। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको पसंद आया होगा। अगर इसी एपिसोड को आप सुनना चाहते हैं तो हमारी आई रेडियो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, रेडियो मानवश्ना की। वहां पर आपको सागर नाम से एक सेक्शन मिलेगा, उसमें आप जाइएगा, वॉइस ऑफ यूथ फीचरिंग अभिषेक शर्मा नाम से एक फाइल होगी, आप उसको सुन सकते हैं। बार बार बार बार आप सुनेंगे, इन सवालों के जवाब आपको बार बार बार बार मिलते रहेंगे। शुक्रिया अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच। ऑल राइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट वक्त है अपने शो के यहाँ पर साइन अप करने का। फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइन।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और वक्त हुआ है आप ही के बारे में कुछ खास बातें करने का। बदलती दुनिया और दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो हुई है अब तक वो है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ हम सब जुड़ गए हैं। कुछ साल पहले हमारे घर में एक लैंडलाइन फोन हुआ करता था। जब बजता था तो बच्चे खास तौर पर भागते थे उस फोन को उठाने के लिए। वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता था, और साथ ही हुआ करते थे टेलीविजन। धीरे धीरे समय बदला, जगह ले ली कंप्यूटर्स ने, कंप्यूटर्स के साथ बदलाव आए तो आ गया फोन। जी हाँ, फोन, वो भी सेल फोन जो आपकी जेब में समा जाता है। और ये फोन अब आपका टीवी भी बन चुका है, आपका कंप्यूटर भी बन चुका है, और फोन तो है ही, लेकिन इसके साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आज जिस चीज से हमें डर लगता है वो है अपराध, कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। जी हाँ, साइबर क्राइम से जुड़ी कुछ बातें आज हम करने वाले हैं, क्योंकि ये साइबर क्राइम आपके फोन से जुड़ा हुआ है। बहुत ही छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, 5 से 50 हज़ार या फिर 1.5 लाख तक की कीमत का भी अवेलेबल है बाजार में, और हर किसी के हाथ में है। जितनी आबादी उतने ही फोन कनेक्शंस, लेकिन इन फोन कनेक्शंस के जरिए बढ़ते अपराधों ने हर किसी की नींद खराब कर रखी है। आपके साथ ऐसा कुछ ना हो इसलिए एक खास प्रोग्राम हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार जी, ACP साइबर क्राइम फरीदाबाद। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
2: जी, थैंक यू।
1: सबसे पहले सर, मैं जानना चाहती हूँ, हम रेडियो मानव रचना के माध्यम से अपने सोशल मीडिया पे दर्शकों को और साथ ही रेडियो पर अपने श्रोताओं को आज साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जानकारी देना चाहते हैं
2: जी।
1: लेकिन बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूंगी, साइबर क्राइम एक्चुअली में है क्या, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, और हमारी जिंदगियों को कैसे ये इफेक्ट कर रहा है आज की तारीख में।
2: साइबर क्राइम को आप अगर सरल शब्दों में समझना चाहें तो ऐसे अपराध जो साइबर के माध्यम से होते हैं, फोन, लैपटॉप, आपका कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे आपके फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से आपको चोट पहुंचाई जाए, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए, तो ऐसे सभी अपराध साइबर क्राइम में आते हैं
1: जी। यानी हम जो फोन इस्तेमाल करें, हम जो लैपटॉप का इस्तेमाल करें, कंप्यूटर्स हमारे घरों में हैं, उनके थ्रू जो अपराध हो रहे हैं और हमारी जिंदगियों को फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली कहीं ना कहीं असर डाल रहे हैं, तो वो साइबर क्राइम के श्रेणी में आते हैं
2: जी।
1: अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सारे लोगों का मैंने आंसर इसका यही देखा है कि फाइनेंशियली आपको इफेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा आपके पैसों पर इफेक्ट होता है, लेकिन उसके अलावा भी क्या साइबर अपराधियों का कोई और उद्देश्य भी होता है?
2: जी देखिए, फाइनेंशियल के अलावा आपका पर्सनल डाटा वो चुरा लेते हैं
1: जी,
2: आपकी पर्सनल फोटोज आपको डिफेम करने के लिए यूज हो सकती हैं, आपको ब्लैकमेल करने के लिए यूज हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं इससे ऐसे अपराध भी हो सकते हैं जिससे आपका पूरा परिवार भी खतरे में आ सकता है
1: जी। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आपसे पैसे लेना चाहते हैं
2: जी,
1: डेटा हैक करना बहुत ज्यादा कॉमन हो गया आजकल, और वो डेटा आगे सेल किया जाता है, तो वो कंपनीज अपना जो प्रॉफिट कमाती हैं वो अलग चीज हो जाती है। सर, मैं जानना चाहूंगी आपसे, और ये मैं चाहूंगी आप विस्तार से हमारे दर्शकों को और हमारे श्रोताओं को बताएं, कौन कौन से ऐसे साइबर क्राइम हैं जो सबसे ज्यादा आजकल चलन में है, और कौन से ऐसे हैं जो हुआ करते थे या फिर भी आगे भी कुछ पॉसिबिलिटी है उनके होने की?
2: देखिए, सबसे पहले जब साइबर क्राइम हुआ था तो सिंपल आपके पिन नंबर से और आपके अकाउंट नंबर से पैसे एक्सेस होने शुरू हुए थे
1: जी।
2: उसके बाद बैंकों ने सेफ्टी बढ़ाई और 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्टार्ट कर दी। उसमें 2 स्तर पर जो है ना आपके बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी की जाती है
1: जी।
2: और उसके लिए आपको पिन नंबर के साथ साथ आपके पास एक OTP भी आता है। तो उस OTP को लिखने के लिए उसको आपसे संपर्क करना पड़ता है
1: जी,
2: हर तरीके से। तो वो फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, आपके मैसेज के माध्यम से भी कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो किसी तरह से भी उनको वो OTP चाहिए
1: जी।
2: वो आपको बहका के, फुसला के कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, हम आपकी KYC पूरी कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी रिन्यूअल करनी है, या आपका जो फोन नंबर है वो बंद होने वाला है, उसकी केवाईसी कराइए, उसके लिए आपके फोन पे ओटीपी आया वो बता दीजिए। तो किसी भी तरह से आपसे ओटीपी लेंगे तो किसी भी अनजान व्यक्ति को आप अपना ओटीपी शेयर ना करें जब तक कि आपने कोई ऐसा प्रोसेस शुरू ना कर रखा।
1: जी जी,
2: रैंडमली आपके फोन पे कोई कॉल आती है और वो ये कहता है कि जी आपके फोन की हमें केवाईसी करनी है या आपके अकाउंट की केवाईसी करनी है, और वो आपसे ये कहता है कि भाई हम एक लिंक भेज रहे हैं वो क्लिक करिए, या हम एक ओटीपी भेज रहे हैं वो हमें ओटीपी बता दे, तो ऐसा कतई ना करिए, उनकी बातों पे यकीन मत करिए। जब तक आपने बैंक के किसी व्यक्ति को आप पर्सनली नहीं जानते हैं, वो आपको फोन नहीं कर रहा है, कभी भी बैंक आपसे फोन पे ओटीपी या इस तरह के यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मांगते।
1: यानी पासवर्ड्स कभी भी कोई बैंक नहीं मांगता।
2: दूसरा फ्रॉड आजकल चला हुआ है कि आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी सोशल मीडिया ऐप हैं जहाँ पे आपको ये बताया जाता है घर बैठे पैसे कमाए, सस्ते छोटे पैसे लगा के मोटा मुनाफा कमाए। उसमें क्या करते हैं कि आपको ये कहते हैं कि हम आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, वो कई गुना हो जाएगा। वो आपको एक टेलीग्राम पेज पे ले जाते हैं और शुरू में आपसे बात करेंगे फिर टेलीग्राम पेज पे ले जाएंगे। कई फ्रॉड इस तरह के हैं, आपको शुरू में प्रॉफिट आपके अकाउंट में डाल भी देते हैं ताकि आपको उन पे यकीन हो जाए। जब आपको छोटा प्रॉफिट दे देंगे आपको यकीन हो जाएगा, फिर आप उसमें बड़ा इन्वेस्ट कर दोगे।
1: बिल्कुल,
2: कई बार आपका प्रॉफिट वो दिखाते रहते हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया, लेकिन वो ये कहेंगे निकालने से पहले आपको इतने चार्जेस जमा कराने पड़ेंगे, इतना और खेलिए आप, इतना स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्ट करिए। वो आपको सिर्फ पेज पे दिखाते रहेंगे, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं होगी। और जिस दिन आप उनको फोर्स करोगे कि हमारा पैसा वापस दो, तो वो अपने फोन नंबर, वो टेलीग्राम पेज, वो सब कुछ आपका बंद कर देंगे।
1: ओके, तो इस तरह के फ्रॉड कर देंगे और अपना अकाउंट जो है वो आपसे मतलब आप रीच नहीं कर पाएंगे।
2: जी, तीसरा फ्रॉड आजकल इंश्योरेंस के नाम पे चल रहा है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का डाटा उनके पास कहीं ना कहीं से आ जाता है। वो आपको कॉल करते हैं कि आप सो एंड सो बोल रहे हैं, आपकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है और इतने पैसे आपको मिल रहे हैं, अगर आप इतने पैसे और सबमिट करा दें तो आपको इतने का प्रॉफिट और हो जाएगा। तो वो आपको पॉलिसी का अकाउंट ना देके कोई और अकाउंट देते हैं। आप यकीन करके उसमें पॉलिसी के पैसे जमा करा देते हो, लेकिन उसका उस पॉलिसी से कोई संपर्क नहीं होता, सिर्फ वो आपके डेटा से आपको एक्सेस करते हैं, फोन पे आपको बात करते हैं और आप उनके दिए हुए अकाउंट में पैसा जमा करा देते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और आजकल एक नई चलन की बात जो चली हुई है, डिजिटल अरेस्ट, हर जगह इसकी बात चल रही है। तो डिजिटल अरेस्ट में आपके डेटा से ही आपको मूर्ख बनाया जाता है कि भाई आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, फोन में वीडियो कॉल होगी आपकी, वीडियो कॉल में ये दिखाया जाएगा कोई वकील बोल रहा है या कोई जज साहब बोल रहे हैं या कोई पुलिस से कोई इंस्पेक्टर बोल रहा है या कोई आईजी बोल रहा है, इस तरह से दिखाया जाता है। और वो आपको एक तरह से ब्लैकमेल करता है कि ये हो गया है, वो हो गया है, आपका एक पार्सल था उसमें एनडीपीएस मिला है, ड्रग्स मिली है, आपने ऐसा अपराध किया है, तो आप डर जाते हो, आपका एक पार्सल आने वाला था, हमने उसमें खोला, उसमें ये पैसा मिला है। तो वो उसको बिल्कुल ऐसे डरा के उसका दिमाग ब्लॉक कर देते हैं कि वो कुछ सोचने समझने की पोजीशन में नहीं रहता। फिर नेक्स्ट जो सामने वाला बंदा है जो कमांड करता है, फिर वो इस हिसाब से डील करने लग जाता है।
1: डर जाता है
2: आप इस अकाउंट में इतने पैसे जमा कराओ तब जाके आपको हम रिलीज करेंगे, ये बेल बॉन्ड है या और कुछ है, टेक्निकल टर्म में उनको फंसाने की कोशिश करते हैं।
1: ओके, लेकिन सर ये भी जानना चाहूंगी आपसे, डिजिटल अरेस्ट इतना कॉमन हो चुका है आज की तारीख में, फरीदाबाद शहर की बात करें तो हर हफ्ते या हर महीने में कहूंगी बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहां पर लोगों ने लाखों रुपए तक अपनी प्रॉपर्टी तक सेल कर दी, अपनी गाड़ियां तक सेल कर दी हैं। सो डिजिटल अरेस्ट इतना कॉमन हो रहा है, फोन पर सरकार के मैसेजेस भी चल रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्यों ऐसी कमी हो रही है, लोग क्यों नहीं समझ पा रहे ये चीज?
2: देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ को हर इंसान तक पहुंचने में टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करते हैं, लेकिन हम इन बातों से अवेयर नहीं होते कि भाई उसके लोग मिसयूज़ कितना कर सकते हैं, आपके साथ उसके मार्फत कितना मतलब धोखा हो सकता है, कितना फाइनेंशियल ठगी हो सकती है और आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। अब आप देखते हैं जैसे ही हम किसी को कॉल मिलाते हैं तो होम मिनिस्ट्री ने एक कॉलर ट्यून बनाई हुई है, ये फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। तो हर लेवल पे हम हर स्तर के बच्चे को, बुजुर्ग को, मीडियम एज को, फीमेल्स को,
3: अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, और जो एक कॉमन एरिया है वहाँ पे जाके भी लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे अभी सूरजकुंड मेला लगा था, हमने बहुत सारे लोगों को जितने वहाँ आए सबको अवेयर किया। हमारा एक फरीदाबाद पुलिस में ट्रैफिक ताऊ करके है
1: जी जी,
3: वो जो 1930 हमारी हेल्पलाइन है, हमने उसकी पब्लिसिटी की है। सबको हम बता रहे हैं कि भाई अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम अवेयर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी इस चीज से दूरी बनाए हुए,
1: उनको नहीं पता
3: है, उनको नहीं पता है, इसलिए वो इस चीज का शिकार हो रहे हैं। जबकि नेट पे कई सारे पोर्टल ऐसे हैं जहाँ पे आप जाके अवेयरनेस ले सकते हो। लेकिन बस वही बात है कि जब तक हम खुद से इस चीज को पहल नहीं करेंगे, तब तक हम इस चीज के बारे में जागरूक नहीं हो सकते।
1: जी।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ।
1: सर, सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा साइबर क्राइम है जिसमें लोग सबसे ज्यादा मात्रा में फंस रहे हैं?
2: अभी प्रेजेंट स्टेज में तो इन्वेस्टमेंट का ही चल रहा है। Okay. जो स्टॉक मार्केट के नाम पे
1: थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट कीजिए और हम आपको डबल प्रॉफिट देंगे।
2: सबसे ज्यादा केस एट प्रेजेंट ही नहीं के आ रहे हैं और बड़े बड़े अमाउंट के आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से जब से डिजिटल युग जो है ना और तेजी से बढ़ा है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड है वो ऑनलाइन हम ज्यादा यूज करने लगे हैं, तो उस चीज की संख्या भी ज्यादा बढ़ गई है। आपने देखा होगा कोरोना से पहले हार्ड मनी चलती थी, कैश चलता था।
1: बिल्कुल,
2: आजकल हर कोई फोन पे, पेटीएम, हर कोई यूज करता है, हर रेडी वाला, हर आम आदमी, मजदूर, हर कोई यूज करने लग गया। तो अब वो बंदे जो इतना पैसा जो हम डिजिटल युग में यूज कर रहे हैं, साइबर वर्ल्ड में जो यूज किया जा रहा है, फिर उसमें अपराध होने की उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी आ जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लोग हर जगह स्कैन कर लेते हैं अमाउंट देने के लिए, स्कैनर लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ हमने ये भी सुना है कि ऐसे स्कैन करके आपका अपना अकाउंट भी खाली हो जाता है अगर कोई स्कैनर ऐसा आ गया तो सामने, क्या ऐसा भी पॉसिबल है?
2: नहीं, देखिए ऐसा है, स्कैन में ये पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या और कुछ नहीं देते। स्कैन करके जैसे जितना अमाउंट आपने फीड किया, जब तक आपके फोन में कोई ऐसा ऐप नहीं है जो कि आपके लिए सेफ नहीं है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई और नहीं देख पाए। जैसे मैं आपको बताऊं कि जितने भी हमारे एंड्रॉयड फोन हैं, हम उसमें जितनी भी एप्स डाउनलोड करते हैं, तो जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो हमें हमसे बहुत सारी परमिशंस मांगता है।
1: बिल्कुल,
2: आपके कॉन्टैक्ट को नोटिफिकेशन अलाउ करने की नहीं है, आपकी गैलरी को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो जब आप उसको बिना पढ़े लिखे हर चीज से एग्री करोगे तो वो जो ऐप है फिर उन सब चीजों का एक्सेस है उसके पास, आपके कॉन्टैक्ट का भी है, आपकी गैलरी का भी है, आपकी गैलरी में पासबुक भी होती है,
1: बिल्कुल,
2: चेक की भी फोटोकॉपी होती है।
1: बिल्कुल,
2: कई बार आप ये सोचते हैं कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, उसकी भी फोटो खींच के रख लेते हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो वो सारी चीजें उनके पास एक्सेस हो गया, तो उनके लिए बड़ा इजी है। दूसरी बात ये है कि पासवर्ड हम बिल्कुल ऐसा रखते हैं कि जो हमें याद करने की जरूरत ही ना पड़े।
1: बिल्कुल,
2: 1, 2, 3, 4 मेरी डेट ऑफ बर्थ या मेरी शादी की डेट ऑफ बर्थ,
1: मतलब कुछ शादी की डेट,
2: जो हमारी कॉमन चीजें हैं, तो उन कॉमन चीजों को अगर आपका फोन एक्सेस होता है इजीली, उनको वो सारी चीजें पता लग जाती है।
1: बिल्कुल,
2: आपकी मार्कशीट है तो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी शादी की डेट की कोई वेडिंग एनिवर्सरी है या और कुछ है वो सेलिब्रेशन कर रखा तो वो भी उसमें डेट है, तो उनके लिए बड़ा इजी होता है पासवर्ड क्रैक करना।
1: सर, एक और टर्म हमने सुनी है, फिशिंग एंड विशिंग। ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आम इंसान को बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन मैं चाहूंगी आज आप हमारे श्रोताओं को बताएं, समझाएं कि ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली क्या है।
2: देखिए, फिशिंग जैसे कि मछली पकड़ी जाती है, उसी की सिमिलर टर्म है ये। कांटा फेंका जाता है किसी को फंसाने के लिए,
1: पूरा जाल बिछाया जाता है,
2: जाल बिछाया जाता है कि आपको मैसेज करेंगे, मेल करेंगे या कोई ऐसा लुभावना चीज भेजेंगे, लिंक पे क्लिक करवाएंगे, ये सारा फिशिंग में आता है। और विशिंग होता है कि जब आपको मैसेज, मेल एटसेट्रा ना करके आपको कॉल से लोग चीट करने की कोशिश करें, कॉल करेंगे कि भाई आपकी ये पॉलिसी चल रही है या आपको इतने पैसे के इतने कर देंगे, इस तरह की सारे फ्रॉड जो है ना वो विशिंग में आते हैं।
1: ओके, यानी मतलब दोनों टर्म्स अलग अलग हैं और दोनों का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को फंसा कर उससे फाइनेंशियल फ्रॉड करना है।
2: बिल्कुल।
1: बात करते हैं सर सोशल मीडिया पर हो रहे बहुत सारे अपराधों की, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज़्यादा युवा दिखते हैं और एक्स पर जो है ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी या कोई सीनियर लोग दिखाई देते हैं, या फिर कहें कि थोड़े जो एक अलग जो शिक्षा के क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर जर्नलिज्म या इस तरीके से जो हैं हम कह सकते हैं एलीट क्लास जो है वो एक्स पर है, लेकिन बच्चे जितने भी हैं यंगस्टर्स वो सब इंस्टाग्राम पर हैं। और इंस्टाग्राम पर एक सबसे कमाल की चीज़ ये होती है कि शॉपिंग भी हो रही है
2: जी,
1: फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइव चल रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, कुछ आप बात करें कि आपको एक फ़ोन ख़रीदना है तो आपके पास 10 नोटिफिकेशंस और 10 नए एड्स और मैसेजेस आ जाते हैं कि आप यहाँ से फ़ोन ख़रीदें, इसका प्राइस ऐसा है, इस ऐप पे ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। सो इसमें युवा बहुत ज़्यादा फंस जाता है
2: जी,
1: तो कैसे उनको बचाया जाए?
2: देखिए ऐसा है, सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप भी सोशल मीडिया ही है, टेलीग्राम, ये सारे वो स्टेज हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को साइबर वर्ल्ड में जानते हैं, फिजिकली ना जानते हुए।
1: जी जी।
2: तो इसमें फाइनेंशियल और ब्लैकमेलिंग दोनों तरह के ऑफेंस होते हैं। पहले हम फाइनेंशियल पे बात करते हैं। इंस्टाग्राम पे आपने देखा कि भाई एक चीज है, कंपनी की चीज है और उस पे बहुत भारी डिस्काउंट चल रहा है, मात्र एक रुपए में खरीदें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और उसके लिए कुछ नहीं, आप हमारे पेज को फॉलो करें और ये लिंक पे जाके अपनी जानकारी दें, अपना एड्रेस भरें। जब उसमें एड्रेस भरते हैं तो उसमें फिर वो आपसे आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जो है ना CVV नंबर और उसका डिटेल पूछता है।
1: हाँ, बिल्कुल।
2: पूछने के बाद जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो ये कहते हैं कि भाई सबमिट करें, आपके फोन पे OTP आएगा, वो OTP बताएं।
1: ओ जी।
2: तो इस तरह से उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे फ्रॉड हैं, लेकिन जो फ्रॉड हैं वो इस तरीके से करते हैं।
1: जी।
2: तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से किसी को शेयर ना करें। आपका कार्ड नंबर है, ATM कार्ड नंबर या डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो भी है, उसका CVV नंबर, अपना पिन नंबर, इस तरह से किसी भी अननोन पेज पे जाके उसको फिल ना करें।
1: जी। और ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है, यंगस्टर्स जो होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स खास तौर पर से, जब डिस्काउंट मिलता है चीज़ों पर, गर्ल्स को बैग्स या कपड़ों पर डिस्काउंट मिल रहा है, बॉयज़ को कुछ गेमिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे कुछ ऐसा डिस्काउंट मिल रहा है, तो बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से।
2: जी,
1: और ये जो फिशिंग कह सकते हैं वो यहाँ पर
2: सक्सेसफुल होती है।
1: जी।
2: उसके बाद दूसरा क्या है कि इंस्टाग्राम पे हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट अननोन बंदे की एक्सेप्ट की, हम उससे बातचीत करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इश्यू आता है फीमेल्स को। जो लड़कियां हैं वो उन पे इतना यकीन कर बैठती हैं कि कुछ पर्सनल फोटोज या कुछ इस तरह की चीज़ें उनसे शेयर कर देती हैं, फिर वो उन्हीं फ़ोटो का फ़ायदा उठा के उस लड़की को ब्लैकमेल करता है।
1: ओके।
2: और उसी के तहत उनके मदर फादर की पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड वगैरह का यूज करके, और वो फाइनेंशियल फ्रॉड फिर करते हैं।
1: ओके।
2: तो किसी भी ऐसे अननोन बंदे की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें और उससे नजदीकियां ना बढ़ाएं जब तक आप उसको पर्सनल रूप से नहीं जानते।
1: जी बिल्कुल।
2: और अपने अकाउंट को पूरी तरह से पर्सनल रखें, चाहे वो फेसबुक अकाउंट है, चाहे वो इंस्टाग्राम आईडी है। फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में हर किसी को एक्सेप्ट ना करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो इन्फ्लुएंसर बनने की जो एक भीड़ लगी हुई है आजकल कि लाखों में फॉलोअर्स होने चाहिए, हमारा जो चाहे तो हमारा चैनल है, चाहे हमारा अकाउंट है, उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें, वो सारी चीज़ों के चक्कर में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अपराध जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं।
2: बिल्कुल। और अगर आप कोई ऐसा पेज यूज़ भी करते हैं तो उसकी लिमिटेशन जानिए आप, उसमें किसी से इतनी नज़दीकियाँ ना बढ़ाएं, उस पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, फैमिली की फोटो शेयर करें तो उसमें उनका एक्सेस उन्हीं दोस्तों के पास हो जिनको आप पर्सनली जानते हैं, हर किसी के लिए वो नहीं होने चाहिए। तो उससे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हर वो व्यक्ति देख सकता है जो आपकी उस फ्रेंड रिक्वेस्ट में है।
1: जी बिल्कुल। और यानी वो आप स्टॉक कर सकते हैं इजीली किसी को।
2: एक टर्म है, साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं उसको। तो जैसे फिजिकल वर्ल्ड में किसी को जब हम पीछा करते हैं तो IPC में अपराध कवर होता है कि किसी फीमेल को ऐसे पीछा नहीं किया जा सकता, उसी तरह से साइबर वर्ल्ड में जब किसी का पीछा करते हैं तो उसको साइबर स्टॉकिंग बोला जाता
1: है। और ये अपराध है।
2: ये अपराध है। इसी तरह से फीमेल को जब कोई साइबर वर्ल्ड में पीछा करता है तो उसको साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब आपने किसी बंदे के साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी और आप फिर उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो वो आपको इंस्टाग्राम जिस आईडी पे वो दोस्त है आपको उस पर मैसेज करेगा, आपने उस पर ब्लॉक कर दिया, फिर वो आपके फ़ोन पे फ़ोन करेगा, आपने फ़ोन नहीं उठाया, फिर वो आपके व्हाट्सअप मैसेज करेगा, फिर आपने व्हाट्सअप नहीं उठाया या उसको ब्लॉक कर दिया। तो अगर वो कंटिन्यू इस तरह से आपको पीछा कर रहा है तो वो एक अपराध है, वो साइबर स्टॉकिंग में कवर होता है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं।
1: ओके। यानी अगर कोई व्यक्ति, खास तौर पर से मैं लड़कियों को और लेडीज़ को कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई ऐसे स्टॉक कर रहा है, आपके सोशल मीडिया पे बार बार आपको मैसेज करके तंग कर रहा है और फिर उसके बाद आप ब्लॉक कर देती हैं उसको और फिर वो आपके अपने फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू आपको परेशान कर रहा है, तो ये साइबर स्टॉकिंग की श्रेणी में आता है और एक अपराध है जिसकी कंप्लेंट आप इजीली कर सकते हैं।
2: जी। इसके अलावा एक और टर्म है, उसको बोलते हैं साइबर बुलिंग। जो व्यक्ति, जैसे बुली होता है एक दबंग टाइप का व्यक्ति, जैसे फिजिकल वर्ल्ड में कोई आपको परेशान करता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये दबंग है और ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है। इसी तरह से जो ये साइबर स्टॉकिंग है ये मेल के अगेंस्ट भी हो सकती है।
1: ओके। यानी पुरुषों को भी ऐसे दबाया जा सकता है।
2: जी जी, वो जैसे बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो आपको पर्सनल लोन देती हैं ऑनलाइन, उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा भारी होता है। वो क्या करते हैं कि आपसे जब आप उनकी ऐप डाउनलोड करते हो तो आपके कॉन्टेक्ट उनके पास कॉपी हो जाते हैं और आप उनसे लोन लेते हो ऑनलाइन, फिर आप उनका भर भी देते हो, हाई रेट से भर देते हो, लेकिन फिर वो आपसे और पैसे की डिमांड करते हैं,
1: मतलब वो खत्म ही नहीं होता।
2: हाँ, तो जब आप उनको मना करते हो कि भाई मैं आपके पूरे पैसे दे चुका फिर भी आप क्यों मेरे से पैसे मांग रहे हो, तो अगर आप नहीं देते हो तो वो उन कॉन्टेक्ट पे आपको डिफेम करना शुरू कर देते हैं, आपके सभी रिश्तेदारों में दोस्तों में मैसेज शुरू कर देते हैं कि इसने मुझसे लोन लिया था ये दे नहीं रहा है ये।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो वो भी एक तरह का अपराध।
1: बिल्कुल, ऐसे केसेस काफी हाईलाइट भी हुए हैं हाल ही में। यानी पुराने जमाने में जो हम फिल्मों में देखा करते थे कि जमींदारी में आपने जो चीज है अपनी गिरवी रख दी है और आप उसको छुड़वा नहीं पा रहे हैं, वो चीज आजकल साइबर वर्ल्ड में भी होने लगी है। सर, वाईफाई पर काम करते हुए किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, हम मॉल में भी जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, एयरपोर्ट पे होते हैं, यहाँ तक कि स्टेशन्स पर और बस स्टॉप पर भी अब वाईफाई की फैसिलिटी शुरू हो गई है। रेस्टोरेंट्स में बैठते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा तो सबसे पहले हम वाईफाई कनेक्शन पूछते हैं। अब वाईफाई पर काम करते हुए बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, सबको पता है ये बात, लेकिन फिर भी वो इंटरनेट के बिना शायद मुझे लगता है आधा घंटा बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। सो इसमें क्या ध्यान रखें?
2: जैसे जब हम वाईफाई से किसी से भी कनेक्ट होते हैं तो हमारा फोन उससे कनेक्ट होता है और फोन से जुड़ी हुई कई बार चीजें जिन पे हमने एक्सेस नहीं लिया हुआ, मतलब लिमिट नहीं लगाई हुई, तो वो उनके पास वो चीजें चली जाती हैं। तो इसलिए हम सिंपल वाईफाई यूज ना करके वीपीएन के थ्रू ही किसी का हम वाईफाई कनेक्ट करें और कोशिश करें कि इसकी जरूरत ना पड़े, इमरजेंसी में
1: ही जो डेटा चल रहा है आपका
2: फोन के डेटा से ही हमें अपना काम करना चाहिए, या हमारे ऑफिस का जो पर्सनल हमारा वाईफाई है या घर का है वही यूज करें, बाहर से यूज ना करें। इमरजेंसी में करना भी पड़ जाता है तो वो वीपीएन के थ्रू करें, सिंपल ब्राउजर से हम उनसे ना जुड़े।
1: ओके, यानी ध्यान बहुत ज्यादा रखना है
2: जी।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन। अपना रेडियो।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ। एक बहुत जरूरी चीज है सर, बच्चे बहुत ज्यादा पेरेंट्स का फोन इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर से 10, 12, 14 साल तक के बच्चे जिनको अभी तक फोन का एक्सेस नहीं दिया गया है अलग से मोबाइल फोन्स, उनको साइबर क्राइम के बारे में कुछ नहीं पता। माता पिता का फोन उठाते हैं, गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं जिनके बारे में माता पिता को पता भी नहीं होता है, और फिर खेलते रहते हैं और फिर उसके बाद लाखों रुपए हार भी जाते हैं। कैसे वो ये सारी चीजें हो जाती हैं, थोड़ा सा बच्चों को जरूर गाइड कीजिए।
1: देखिए, ऐसा है कि कई गेमिंग साइट ऐसी हैं कि जो कि जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, गेम खेलते खेलते उनको उनका जो हीरो है उस गेम में उसको कुछ गैजेट्स चाहिए, उसको कुछ ड्रेस चाहिए, तो वो परचेज की जाती है। तो वो बच्चे जो है ना अपने माँ बाप को बताए बगैर जो ATM है या उनकी जो क्रेडिट कार्ड है या बैंक की जो डिटेल है वो उसके साथ शेयर कर देते हैं, उससे ये फ्रॉड होते हैं। तो जो बच्चे कर रहे हैं, सबसे पहले तो बच्चों को जब फ़ोन दें तो उनको बताएं कि बेटा इस तरह की कोई चीज़ें नहीं करनी है, कोई बैंक अकाउंट डिटेल या कोई और चीज़, कोई गैजेट अगर आपको लेना है तो आप हमें बताओ, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट ही उसमें फिल कर दो। और कोशिश ये करें कि घर के वाईफाई पे या फ़ोन पे चाइल्ड का लॉक लगा के रखें, कि कुछ साइट ऐसी हैं जिन पे बच्चे ना जा पाए।
0: जी जी, यानी लॉक लगाना बेहद जरूरी,
1: लॉक लगाना बहुत जरूरी है।
0: प्रॉब्लम ये है सर कि बहुत सारे पेरेंट्स को अंदाजा ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और बच्चे जो हैं, हमने हाल ही में देखे केसेस, 14-15 साल के बच्चे हैं, लेवल्स खेलते खेलते पैसे जमा कराने लग गए, या फिर कुछ और चीज हो गई वहां पर, उनको उन्होंने ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया, कुछ ऐसे टारगेट्स देने शुरू कर दिए। सो ये बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, आजकल तो स्कूलों में भी इसमें काफी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, हम भी जाते हैं, हमारी टीम जाती है स्कूलों में, जो खासकर यंगस्टर हैं, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं वो ज्यादा शिकार होते हैं इन चीजों के, क्योंकि वो नए नए गैजेट्स चलाना सीखते हैं और घर वालों की नज़र में भी ये होता है, क्योंकि बच्चा ट्यूशन पे भी जाता है, उनको फ़ोन देना भी ज़रूरी है। आजकल तो आप देखते हैं टैब वैब जितनी ऑनलाइन क्लासेज भी होने लगी, खासकर कोरोना के बाद, जो मैं पहले ही बता चुका आपको, तो इन चीज़ों से बच्चों को दूर नहीं रखा जा सकता, देने पड़ेंगे, मजबूरी है आज के टाइम में। लेकिन हमें उनको देने के साथ साथ उनकी जिम्मेवारी भी उनको बतानी है, उनको अवेयर करना है। तो स्कूल भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी ये ड्यूटी निभानी चाहिए अपने बच्चों को कोई चीज हाथ में देने से पहले। जैसे बाइक देते हैं तो पहले बाइक को चलाना सिखाते हैं, आप 18 साल के हो जाओगे तब बाइक चलाओगे और बाइक के लिए लाइसेंस भी बनवाओगे। तो इसी तरह से अगर कोई फोन दे रहे हैं तो उसके ये बताना चाहिए कि ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी है।
0: जी जी जी सर, अब ये साइबर अपराध किसी के साथ हो जाता है और वो व्यक्ति अचानक से समझ ही नहीं पाता कि क्या हो गया, वो पुलिस स्टेशन जाता है FIR दर्ज कराने, कई बार वो सहम भी जाता है कि वहाँ जाकर मुझे बताना पड़ेगा या फिर मेरे साथ कुछ, वो मेरी रिपोर्ट दर्ज करें ना करें, या फिर घर वालों को बताएंगे तो घबरा जाते हैं लोग, इस वजह से बदनामी से भी कुछ लोग डरते हैं, खासतौर पर से डिजिटल अरेस्ट की जैसे हमने बात करी। सो सबसे पहले अगर इस तरीके का कोई भी साइबर क्राइम होता है तो कहाँ कॉल करना है, कैसे कंप्लेंट रजिस्टर करनी है?
1: देखिए, अब आपको कहीं नहीं जाना है, अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है तो 1930 की एक हेल्पलाइन है जो कि सेंट्रल लेवल से पूरे इंडिया में वर्क करती है। तो सिंपल सा आपको उस पर कॉल करना है, और जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा और उतनी ही जल्दी आरोपी तक हम पहुंच सकते हैं।
0: जी,
1: सपोज करिए अभी आपके साथ कोई स्कैम हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, आपके अकाउंट से पैसे चले गए, तो आप तुरंत, आपको कुछ नहीं करना, 1930 पे कॉल करें।
0: ओके।
1: वो जो जानकारी मांगते हैं उनको प्रोवाइड कराएं। उससे क्या होता है कि जो पैसा आपके अकाउंट से गया है, होता क्या है कि जैसे पैसा आपके अकाउंट से कहीं सेकंड अकाउंट में जाता है, उससे थर्ड में जाता है, उससे फोर्थ में जाता है।
0: ओके।
1: तो इस प्रोसेस में उनका थोड़ा सा टाइम लगता है।
0: ओके।
1: तो हम जितना जल्दी उस क्राइम को रिपोर्ट करेंगे 1930 पे, 1930 में एक ऑटोमेटिक फंक्शन है, एक पूरी बैकअप टीम है, वो उस पैसे को वहीं फ्रीज कर देती है, उस अकाउंट को फ्रीज कर देती है ऑटोमेटिक।
0: जी,
1: तो जैसे ही वो फोन कॉल हुई, वो पैसा फर्स्ट अकाउंट में या सेकंड अकाउंट में है वो वहीं फ्रीज हो जाएगा,
0: यानी आगे वो बट नहीं पाएगा,
1: बट नहीं पाएगा और ना उसकी ट्रांजेक्शन हो पाएगी, उस अकाउंट की जमा करना और निकालना दोनों तरह से वो फ्रीज कर दिया जाता है।
0: ओके।
1: तो वो पैसा आपका फ्रीज हो गया। उसके बाद वो जो आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है वो आपका जो जुरिडिक्शन है, जहां आप रहते हो, जहां से आपने कॉल की है, उस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में मार्क हो जाती है ऑटोमेटिकली।
0: ओके।
1: फिर वो पुलिस स्टेशन उस पर काम करता है, वो पुलिस स्टेशन आपसे संपर्क करेगा फोन करके और फिर आपके पैसे आपको वापस करवाए जाएंगे।
0: ओके।
1: अगर आपने वो कॉल करने में देरी कर दी, 1930 को कॉल करने में देरी कर दी, तो वो उतने ही आगे अकाउंटों में चला जाएगा और हो सकता है कि जो चीटिंग करने वाला है वो पैसे को विड्रॉ भी कर ले।
0: जी जी।
1: फिर कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड कराने का सिर्फ इतना फायदा होगा कि हम आरोपियों को पकड़ तो सकते हैं, कोशिश भी करेंगे कि पैसा आपका रिकवर हो जाए, लेकिन वो अकाउंट में फ्रीज नहीं हो पाता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और एक ट्रांजेक्शन के लिए ये भी हो सकता है कि हम 15-20 अकाउंट फ्रीज कर दें, क्योंकि वो मल्टी लेवल में जाता है अकाउंटों में, एक अकाउंट से 10 अकाउंट में चला गया, 10 से फिर 15 में चला गया, तो वो सारे अकाउंट उसी तरह से फ्रीज कर दिए जाते हैं।
0: जी, बहुत सारे युवाओं को सर लालच दिया जाता है कि आप हमारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए और हम आपको उसके बेस पे कमीशन देते रहेंगे। क्या ये अकाउंट्स जो यंगस्टर्स को, कॉलेज और स्कूल के बच्चों को दिए जाते हैं, जो 18 साल से बड़े जिनके अपने अकाउंट्स हैं, उनको जो ये लालच दिया जाता है, क्या ये इसी पैसे को ट्रांसफर करने के लिए होता है?
1: बिल्कुल, ये एक नए तरह का मतलब फ्रॉड है। अगर चीटर अपने अकाउंट को यूज करेंगे तो डायरेक्ट लायबिलिटी उन पे है, वो फंस जाएंगे। वो क्या करते हैं कि किसी से रेंट आउट करते हैं उसका अकाउंट, कि भाई आपका अकाउंट भी हम खुलवाएंगे और आपको 10,000 रुपए भी देंगे, आप ये अकाउंट हमें दे दीजिए, फिर उस अकाउंट का एक्सेस वो चीटर संभालते हैं। कल को जो फ्रॉड अमाउंट है या जो चीट मनी है वो उस अकाउंट में आती है, तो वो जिसने वो अकाउंट बेचा है वो भी उतना ही भागीदार है जितना जिसने ये अकाउंट उसमें यूज किया। तो हम उसको भी अरेस्ट करते हैं और उसकी जिंदगी उस 10,000 रुपए के ऊपर खराब हो जाती है। तो सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना अकाउंट खुलवा के किसी अननोन बंदे को सिर्फ थोड़े से लालच में ना बेचें, उससे आपका भी करियर खराब होगा और किसी न किसी को उस अकाउंट के मार्फत चीट किया जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जब फ्री में कहीं से पैसे आते हैं ना, तो वो फ्री में नहीं होते हैं, आपको पता नहीं होता उसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है।
1: साइबर वर्ल्ड में कोई भी चीज फ्री नहीं है। इवन आपको नेट एक्सेस करने के लिए 1 GB डाटा फ्री दे रहे हैं, तो उसके बदले में भी कुछ न कुछ आपसे ले रहे हैं। तो ध्यान रखें कि साइबर में कुछ भी फ्री नहीं है और ना कुछ फ्री लेने की आदत डालें।
0: जी बिल्कुल, यानी फ्री की जो आदत है ना, उस आदत से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। सर, क्या कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स या वर्कशॉप्स दी जाती हैं आम इंसान को सरकार द्वारा या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, जिससे कि उनको ये साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां मिल सकें और वो खुद को और बाकी लोगों को बचा सकें?
1: जी, पोर्टल हैं हमारे बहुत सारे, उन पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साइबर दोस्त करके भी है।
0: जी जी।
1: तो अभी लेटेस्ट शुरू हुआ है, आप उस पे लॉगिन करेंगे तो उस पे बहुत सारे ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जिनको आप जान के अपने आप को सेफ कर सकते हैं। और अवेयरनेस प्रोग्राम भी हैं। गूगल का मतलब सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग और फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं होता, आप उससे काम की चीजें भी सर्च कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। मैं चाहूंगी विस्तार से थोड़ा सा आप सर हमें साइबर दोस्त के बारे में भी जरूर बताएं और क्या इनिशिएटिव्स हो रहे हैं आपकी तरफ से, फरीदाबाद पुलिस की तरफ से, लोगों तक किस तरीके से जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं।
1: देखिए, एक नया पोर्टल स्टार्ट किया है, तो इस पोर्टल को हम जगह जगह बता भी रहे हैं, आप इस पोर्टल को खोलिए, इस पर अपने आप को रजिस्टर करिए और इस पे जो नवीनतम जितने भी फ्रॉड हैं या जितनी भी चीज़ें हैं और वो सारी आपको उस पे पढ़ने को मिलेंगी।
0: जी।
1: और आपको अपना अकाउंट किस तरह से बचाना है, किस तरह से साइबर के प्रति आप अवेयर हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं उसमें। आप गूगल करेंगे तो आपको तुरंत दिखाई दे जाएगा, उसको खोलिए और उससे अपने आप को अवेयर करिए।
0: जी। और एक और पोर्टल है संचार साथी, ये भी बहुत काम का है, इसके बारे में भी हमें जरूर।
1: ये भी इसी तरह का है, मतलब अलग अलग लेवल्स के अलग अलग पोर्टल्स हैं, आप इन सब पे अपने बारे में जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम या फेसबुक या साइबर वर्ल्ड का जो भी है, उस पे सारी आपको जानकारियां मिलेंगी। आप एक बार देखिए, गूगल पे जाके इनको सर्च करिए तो ये मिलेंगे आपको और आप इस पे अपने आप को रजिस्टर करके इससे जानकारी लेके और अपने आप को अवेयर कर सकते हैं।
0: जी, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ ऐसी अफवाहें होती हैं जिनसे बहुत जगह कुछ जो लोगों की भावनाएं हैं उनको आहत किया जाता है या फिर दंगे भड़काए जाते हैं या फिर लोगों में कुछ पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है, उसको रोकें कैसे, उसको समझें कैसे? क्योंकि हम बहुत सारे बुजुर्गों के साथ जब कभी बैठते हैं या फिर बच्चों के साथ बैठते हैं तो व्हाट्सएप पे आई हुई जो न्यूज़ होती है ना, उनको लगता है यही एक ऑथेंटिक न्यूज़ है। किसी ने अगर कोई एक पिक्चर बना के उसमें किसी चैनल का एक फेक लोगो लगा के भेज दिया तो लोगों को लगता है ये सच है।
1: जी,
0: इस चीज से कैसे बचे, क्योंकि ये भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है।
1: देखिए, बहुत सारे लोगों के पास टाइम होता है, उनका एक ही मकसद होता है कि पर डे हमें 1.5 GB या 1 GB मिला है, वो शाम तक हमें खत्म करना है।
0: जी,
1: इस आदत से बचिए। जो भी चीज आपके पास आती है उन सब को फॉरवर्ड करना वो अपनी ड्यूटी समझते हैं, बगैर सोचे समझे इस तरह के आचरण से आप बचें। पहले आपके पास जो मैसेज आता है वो पढ़िए ध्यान से, उसकी पुष्टि जब तक आपको नहीं हो जाती उस चीज को आगे मत बढ़ाइए। जब भी कहीं दंगे होते हैं, हिंसा होती है, तो एक मैसेज बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड कर दिया जाता है लोगों को, जो चीज एक छोटी सी थी उसको बेवजह सांप्रदायिक रूप देके उसको बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए, और जो मैसेज हमारे पास आते हैं पहले उसको पढ़ें समझें। अगर आपको पुष्टि हो जाती है ये है, तो भी अगर उससे कोई सांप्रदायिक दंगा फैल सकता है तो आप उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, अपने तक सीमित रखें और सरकार को शांति बनाए रखने में सहयोग करें।
0: जी बिल्कुल,
1: जब भी कहीं ऐसी सिचुएशन होती है तो सरकार वहां का नेट एक्सेस बंद कर देती है, उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन यही है कि

0: जैसे कई बार होता है कि भाई वो घटना हुई नहीं होती लेकिन वो फॉरवर्ड होने लग जाती है और लड़की की फोटो के साथ होने लग जाती है,
1: वो बहुत खतरनाक होता है।
0: कई बार आप देखते हैं कि फेसबुक पे ऐसे भद्दे कमेंट हो जाते हैं कि भाई किसी लड़की की फोटो लगा के उसके नीचे फोन नंबर लिख दिया जाता है कि आप इस नंबर पे फोन करेंगे तो ये करेगी वो करेगी, बड़े बुरे कमेंट होते हैं। तो इमेजिन करिए जिस लड़की का वो फोटो है आपके फॉरवर्ड करने से या फेसबुक पे पोस्ट करने से उस लड़की के जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह का काम ना करिए और साइबर के यूजेस पे जाइए, मिस यूजेस पे मत जाइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है अगर ऐसा कोई अपराध आप देख रहे हैं या हो रहा है तो 1930 पे कॉल करना सबसे सटीक तरीका है इस परेशानी को रोकने के लिए और इस अपराध को कंट्रोल करने के लिए।
0: जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी जानकारी आपने बहुत सरल शब्दों में दी किस तरीके से साइबर अपराध को रोकने के लिए एक आम इंसान को भी अब अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पुलिस तो अपना प्रयास कर ही रही है, जगह जगह पर आपको कॉलर ट्यून्स के जरिए, सेमिनार्स के जरिए, पोर्टल्स के जरिए जागरूक कर रही है, अखबारों में हर रोज खबरें आती हैं, न्यूज़ आती हैं, आप रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जान रहे हैं कि साइबर अपराध कितना बढ़ रहा है और इसे कैसे रोका जाए। लेकिन अगर आप जागरूक होंगे तो इसे जल्दी रोका जा सकेगा और आप और आपके आसपास रहने वाले लोग इस परेशानी से बच पाएंगे और उनका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, जो इमेज है, जो उनकी मानसिकता है, जो भी तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, जो कुछ करना चाह रहे हैं उस पर कहीं कुछ लगाम ना लगे ना, इसलिए आपको जरूर साइबर अपराध को रोकने के लिए खुद को जागरूक करना बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। और अगर आप कुछ खास जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 8010781078 पर। और आप अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद कर रहे हैं और इसे किसी के साथ भी साझा करना चाहते हैं तो हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो मानव रचना 107.8, और पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव।

0: प्रिया प्यार हो गया,
1: सच
0: प्यार हो गया, क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

0: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम उन लोगों के साथ चलते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं या मानवता की राह पर चलते हैं, मानवता के अलग अलग किस्म के काम करते हैं। और आप जानते ही हैं कि ऐसे खास कहानियां, ऐसे खास एपिसोड्स मैं आपके लिए लेकर आती हूं, जिनमें कि मैं आपको उन शख्स से मिलवाती हूं, उन लोगों से मिलवाती हूं, उनकी कहानियां सुनवाती हूं जो मानवता के काम करते हैं। आज इस कड़ी में एक बहुत ही फेमस शख्सियत से हम मिलने वाले हैं, गुठली मैन ऑफ इंडिया यानी जसमीत सिंह अरोड़ा जी। भाई ये आम की जितनी भी गुठलियां है ना, वो आपसे मांगते हैं और ये कहते हैं कि गुठलियां मुझे भेजिए और उसके बाद मैं इनका पेड़ लगाकर लोगों को बांटूंगा। तो अब ये पूरा सफर कैसा था, कैसे बने ये गुठली मैन ऑफ इंडिया, और दरअसल काम करना कितना जोखिम भरा था, कितना मुश्किल था, कितना आसान था, ये सारी बातें हम इनसे करने वाले हैं। और उसके लिए हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। जसमीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका कि आपने जनरसली आपके ऑडियंस के लिए मेरे को चुना है, एंड थैंक यू सो मच।
0: जसमीत जी, सबसे पहला सवाल, गुठली मैन ऑफ इंडिया बनने का जो सफर था, ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ?
1: देखिए, कहाँ और कैसे का ये है कि थोड़ा इट्स एंड बिट्स है। 2016-17 में मेरी टूरिंग के लिए, मैं बाय एजुकेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, तो उस टूरिंग के लिए मैं जब भी बी टाउन्स में जाता तो किसानों को देखता और किसान मुझे हर वक्त गरीबी दिखता। एंड मैं मतलब समझ नहीं पा रहा था कि लैंडलॉर्ड्स होकर ये गरीब क्यों है। तो जब और घुसा अंदर में तो देखा कि ये पैडी फार्मिंग करते हैं एंड 1500 से 2000 रुपये कमाते हैं महीने के, एंड बहुत पानी यूज होता है, बहुत केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है, इनकी सेहत खराब, सॉइल की हेल्थ खराब, एंड घर की जो वुमेन है उनकी भी हालात बहुत खराब, क्योंकि किसी भी घर में जब पैसा कम जाता है तो वुमेन सबसे पहले ब्रंट लेती है। तो सारा कुछ ये करते कराते ये एक सिचुएशन दिखी। उसके बाद ट्रेवल्स करने से क्या है कि एक्चुअल इन्वायरमेंट, एक्चुअल क्लाइमेटिक कंडीशंस फील करता था, तो वो फील भी दिख रही थी कि भी एक्चुअली हम सबसे ज्यादा पोल्यूटेड, वर्ल्ड के जो पोल्यूटेड सिटीज हैं उसमें इंडिया काफी नाम आगे है और हीट में भी हम बहुत आगे हैं। तो जो एक्चुअली फील करता था मैं, एंड जब देखा कि लोग क्यों नहीं इसको सॉल्व कर रहे, तो देखता कि लोग मीटिंग्स करते हैं इंटेलेक्चुअली साउंड करने के लिए ना, कप ऑफ टीज एंड इंटेलेक्चुअल मीटिंग्स, एनवायरमेंटल समिट्स, वहाँ बातें होती हैं, हाँ बहुत गर्मी है, पेड़ लगाने पड़ेंगे, इट्स टू मच हीट, वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम ये वर्ड बोलते हैं, तो जस्ट साउंड इंटेलेक्चुअल, बट द मोमेंट द कप ऑफ टी, द डिनर, द लंच इज ओवर, या मे बी वो समिट इज ओवर, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज का तो होता पता नहीं दिखा मुझे। तो सारा कुछ मिला के मुझे लगा कि शायद मे बी इंटेंशन की बात तो एक तरफ है, मे बी शायद हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सा पेड़, कैसा पेड़, कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, किधर करना है। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा करता हूँ, मैं बच्चों के पास चले जाता हूँ। एंड बच्चों से जब मैंने बातें की कि भी स्कूल्स के बच्चों को मैं अगर बता दूं पर्यावरण के बारे में, किसान के बारे में, भी किसान के आम अगर पेड़ लगा दें, तो बच्चों से जब मैं बात कर रहा हूँ तो नीम के पेड़, जामुन के पेड़, तो बच्चे कहते भी नो, ठीक है पेड़, बट नीम जामुन इज नॉट देयर सब्जेक्ट। एंड जब मुझे बताना पड़ा उनको कि डिफॉरेस्टेशन में आम के पेड़ भी कट रहे हैं और आम का भी आने वाले दिनों में आपके प्लेट पे आम कम हो सकता है, देन दे वेर वेरी कंसर्न्ड कि भी मेरे आम के साथ क्यों ऐसा खतरा हो सकता है। तो वहां से पूरा मिशन का एक जन्म हुआ कि किसान राजी था मैंगो पेड़ लगाने के लिए, वो दूसरा कोई पेड़ लगाने के लिए रेडी नहीं था अपनी जमीन पर, पर्यावरण कहता था कि मुझे एक पेड़ ऐसा दे दो जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करे, मैंगो पेड़ इज अ पेड़ जो बायोडाइवर्सिटी को फुल्ली सपोर्ट करता है, एंड बच्चा कह रहा था कि कुछ मेरे सब्जेक्ट का लाओ तभी तो मैं एंट्री लूँ इस पूरे मिशन में, तो मैंगो इज अगेन द सब्जेक्ट। तो वहां से मैंने बातें लोगों को चालू की कि मुद्दा तो था पर्यावरण और किसान का भला करना, लेकिन सब्जेक्ट मैंने बना दिया गुठली को, एंड लोगों से कहना चालू किया भी मैंगो खाइए, गुठलियां दीजिए, मैं उसका पौधा बनाऊंगा, पौधा बना के मैं किसानों को फ्री में दे दूंगा। अब लोगों ने बोला कि सरदार पागल हो गया, भाई ये गुठलियां मांग रहा है, लोग आम मांगते हैं ये गुठलियां मांग रहा है, तो किसी ने गुठली मैन, किसी ने गुठली सिंह, किसी ने मैंगो सिंह, किसी ने गर्बेज सिंह, अलग अलग अलग नाम दिए। वो करते करते करते गुठली मैन का सफर कोविड आ गया, कोविड तक लोग गुठलियां उतनी दे नहीं रहे थे, देन फिर सोशल मीडिया का अपना प्लस पॉइंट 2021-22 के करीब स्लोली स्टेडली सोशल मीडिया ने बस इस चीज को बहुत आगे बढ़ा दिया, एंड मोर देन 130 स्कूल्स अभी तक दे हैव कॉल्ड मी फॉर इंटरेक्टिव सेशंस, वो मेरे इस पूरे मिशन के साथ हैं, वो मुझे गुठलियां भेजते हैं, मुझे भी अपने स्कूल में बुलाते हैं, मिलिट्री इज अ पार्ट, एनसीसी इज अ पार्ट, प्रीति जिंटा इज अ पार्ट, रवि शास्त्री जी इज अ पार्ट, तो इस तरीके से मेरे पे फिर एक बस डॉक्यूमेंट्री बनी जिसका नाम ही गुटली मैन है, वो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर सत्येंद्र फिल्म इंस्टीट्यूट के थ्रू वो शूट की गई है, एंड विच हैज वन मेनी इंटरनेशनल अवार्ड्स आल्सो एज द बेस्ट इन्वायरमेंटल फिल्म, के एक गार्बेज से कैसे इन्वायरमेंट का कुछ काम हो सकता है इन द लैंड्स ऑफ फार्मर, कि फार्मर को भी अपग्रेड कर दिया जाए। सो यहाँ से ये सारा कुछ मिला के आप कह सकते हैं 16-17 से शुरू हुआ और अभी हम 26 में हैं।
0: वाओ, कितना इंटरेस्टिंग, लेकिन शायद बहुत ही कम शब्दों में जसमीत जी आपने अपना गुटली मैन का सफर सुनाया। सुनने में सच बताऊं बिल्कुल वैसा ही उन मीटिंग्स की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान लगा, बट आई एम डैम श्योर कि ये सफर बहुत मुश्किल था। तो ये सफर कैसा था दोस्तों, ये हम जानेंगे इनसे, लेकिन उससे पहले लेने वाली हूँ एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि आज आप बिंदास भावना के साथ नहीं, आप गुटली मैन ऑफ इंडिया के साथ हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम जसमीत सिंह अरोड़ा जी के साथ हैं, जो बहुत ही फेमस भी कहलाते हैं गुटली मैन ऑफ इंडिया। जसमीत जी, अब एक बड़ा अहम सवाल, दरअसल मुझे इस प्रोसेस से लेकर जाइए ना, जहाँ आपके पास बहुत सारे आम की गुटलियाँ आती है और उसके बाद वो पौधा बनकर किसानों तक जाती है, कैसे करते हैं ये सारा प्रोसेस?
1: देखिए, ऐसा है कि ये गुटलियों का सफर जो ऐसा है कि पूरे इंडिया में, ऑल अक्रॉस इंडिया, कोई ऐसा जगह नहीं है जिसने मुझे गुटलियाँ नहीं दी है, चाहे दो, चाहे बीस, कोई 20,000, कोई 200, कोई 1,00,000 गुटली मुझे भेजते हैं, वो बाय पार्सल्स भेजते हैं एंड कोई बाय हैंड भी दे जाते हैं। अभी जैसे आज की डेट बात करते करते तंजानिया से किसी ने मुझे आम भेज दिए, बोलते आम खा लीजिएगा, उसकी गुटलियाँ आप रख लीजिएगा। सो दिस इज द वे थिंग्स आर हैपनिंग एंड मैं उनको, जब गुटलियाँ मुझे मिल जाती हैं तो मैं उनको अंकुरित करने के लिए, जर्मिनेशन के लिए, जर्मिनेशन प्रोसेस में डालता हूँ एंड ये जर्मिनेशन प्रोसेस इट टेक्स अराउंड 7 to 8 months। उसके बाद इसकी ग्राफ्टिंग होती है। ग्राफ्टिंग इसलिए की जाती है, ये ऑल अक्रॉस इंडिया से मिक्स मेरे को गुटलियाँ आती हैं। टोटल गुटलियाँ जो है किसी अलग अलग ब्रीड्स की हैं। तो जब भी हम किसान को कोई पेड़ देते हैं तो किसान के लिए ब्रीड जानना बहुत जरूरी है। जस्ट रैंडमली मैं कोई पौधा उसको नहीं दे सकता, क्योंकि मैंगो का पेड़ 10 से 15 साल लेता बड़ा होने में एंड इसीलिए, इसी रीजन से किसान उसको लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि इतना टाइम किसके पास है। तो मैं उसको ग्राफ्टिंग जब कर देता हूँ, ग्राफ्टिंग करने के बाद उसको हैंड ओवर करता हूँ, दैट इज अ लोकल हैबिटेट मैंगो ट्री विच टेक्स अराउंड 3 months, थ्री इयर्स टू ग्रो। 3 साल में वो फ्रूट देना चालू कर देता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है। प्रोसेस में काफी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में उनको बताता हूँ, वर्मी कंपोस्ट के बारे में, मल्चिंग के बारे में, क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की। तो उस आदत से उनको निकालना, उस सॉइल को भी उस पूरी कंडीशन से बाहर निकालना भी बहुत जरूरी है। मतलब जस्ट रैंडमली हमने कल तक उस पैडी फार्मिंग में थे और आज हम पेड़ लगा लेंगे, वो नहीं है, देयर इज अ प्रोसेस।
0: तो भाई देखिए, आज हमने ये प्रोसेस समझ लिया और एक्चुअली जब जसमीत जी ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी आंखों के सामने देख पा रही थी कि 10-15 साल एक पेड़ को हम बढ़ते हुए देखते थे। इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमारे घर के गार्डन्स में आम के पेड़ होते थे और जब वो लगाए जाते थे तो हमसे कहा जाता था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम इन पेड़ के फलों को खाओगे। बट अगर देखा जाए तो आजकल के जमाने में हम वो फल खरीद कर खा रहे हैं। जसमीत जी, वाकई ये सफर और ये प्रोसेस काफी मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से आपने बहुत सारे किसानों के लिए ये आसान बना दिया है, बहुत सारे लोगों के लिए आप एक मोटिवेशन बन गए हैं। दोस्तों, मुझे जसमीत सिंह जी से बहुत बातें करनी है, तो जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। एक छोटा सा प्यारा सा गाना और आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइफ।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं जसमीत सिंह अरोड़ा जी यानी गुटली मैन ऑफ इंडिया के साथ। भाई देखिए, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व आम खाता है, और आम आदमी भी आम खाता है और खास आदमी भी आम खाता है, और आम तो सबका फेवरेट होता है। सो जसमीत जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इस प्रोसेस को रेप्लिकेट भी किया जा सकता है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सुनेंगे और खासतौर पर हमारे इंटरनेट रेडियो के जरिए तो आपको पूरे विश्व में लोग सुनेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इसे रेप्लिकेट किया जा सकता है, और अगर हाँ तो क्या आपकी ही इस मुहिम को कहीं और भी आगे ले जाया जा सकता है?
1: हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल किया आपने, और समहाउ पता नहीं आज मेरी मैनिफेस्टेशन है कि मैं सुबह ही आज इसके बारे में सोच रहा था कि कहीं ना कहीं ये मिशन जो है मैंने डूएबल है, ये मैंने बता दिया भाई, ये डूएबल है, ये हो सकता है। नाउ अगर हमें देखिए, आज की डेट में मोर देन मतलब पता नहीं कितने करोड़ मैंगोज ऑल अक्रॉस इंडिया एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड खाए जाते हैं, और उसकी गुटलियां हम रॉट करने के लिए फेंक देते हैं। हमें लगता है कि हम गार्बेज क्रिएट कर रहे हैं, हमें इतना ही ह्यूमिलेशन, इतना ही गिल्ट फील होता है। बट द थिंग इज, मैं आपको बताऊं कि पेड़ तो हम लगा नहीं रहे हैं, उसके लिए हम अलग से अपने दिमाग में ड्रामा करते हैं, कभी अर्थ डे कभी इन्वायरमेंट डे। 5 तारीख को इन्वायरमेंट डे जो मना रहे, दैट इज अ फार्स, कि एक दिन हम इन्वायरमेंट डे बना रहे हैं जिसके कारण हम आजू बाजू जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम रह रहे हैं उस भरी गर्मियों में कॉर्पोरेट के मेमोज आते हैं कि आप पेड़ लगाइए। अरे पेड़ लगाइए, पेड़ जिंदा रहेगा क्या इतनी गर्मी में? तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, ये जो गुठलियां हम भेज देते हैं मतलब फेंक देते हैं रॉट करने के लिए, उससे प्रोड्यूस होता है मिथेन गैस, एंड दैट इज अगेन हीट। मतलब हमने और हीट प्रोड्यूस करने के लिए गुठलियों को रॉट करने के लिए दे दिया। तो उससे बेटर है कि आप या तो उस गुठलियों को आप पौधे बनाइए अपने एंड पे पौधे बनाकर आप किसी को वो दान कर दीजिए। एक दूसरा, आपसे नहीं हो रहा, आप किसी भी क्या बोलते हैं ना, किसी जगह पर जाके इसको रोपण कराइए गुठलियों को, वो भी नहीं हो रहा, तो मैं तो कह रहा हूँ कि आम खाइए, कोई भी ब्रीड का आम खाइए, उसकी पल्प साफ करिए, उसको सुखाइए, 2 से 1 दिन लगता है छाव में धूप में, सुखा के 9831459390 मुझे कॉल करके कनेक्ट करिए और मुझे गुठलियां भेज दीजिए, मैं इनसे पौधे बनाऊंगा और पौधे बना के किसानों को दे दूंगा। ये तो हो गया मेरा हिस्सा। अब मैं चाहता हूं कि आपके श्रोतागण सुने और इसको थोड़ा सा गौर भी करें कि मुझे ऑल इंडिया में कम से कम 100 से 200 नर्सरीज बनानी है। अगर कोई सोशल माइंड के बंदे जिनकी कुछ जमीनों पे भी थोड़ा सा होल्ड हो कोई, वो जमीनें मुझे सोशली चाहिए, और ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जिससे कि हम जैसे पंजाब में पंजाब की गुठलियां वहीं इकट्ठी करके वहीं पे लोकल किसानों को गाइड करके उनकी टीम बनाकर उनको सारा कुछ नेचुरल फार्मिंग के बताकर हम ये हैंडओवर कर दें उनको, उसी तरीके से गुजरात, उसी तरीके से दिल्ली, उसी तरीके से अलग अलग जगहें। तो उससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो मिशन है ये बहुत जल्दी रेप्लीकेट हो जाएगा। और मुझे रेप्लीकेट क्यों करना है मैं आपको बताऊं, आने वाले दिनों में अगर हमने इंडिया को ही 2000 करोड़ पेड़ नहीं दिए तो इंडिया का टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री बढ़ने के पूरे आसार हैं, और 3 से 5% जीडीपी डाउन होने के पूरे आसार हैं। अब कोई बोले कि इन्वायरमेंट और जीडीपी का क्या लेना देना, तो मैं उसको यही कहूंगा कि आज की डेट में क्लाइमेट एक स्पेकुलेटिव क्लाइमेट बन चुका है, कभी भी हीट वेव, कभी भी बाढ़, कभी भी कुछ, तो उससे क्रॉप साइकिल्स पूरी डिस्टर्ब हो जा रही है, अचानक कहीं पे भी पानी आ जाने से डिस्टर्बेंस आ जाएगी। अब गरीब जो है सबसे पहले असर करेगा, क्योंकि वो गांव में है उसकी क्रॉप खराब होगी, शहर वाला गरीब भी सबसे पहले असर में आ जाएगा, मिडिल क्लास का बंदा इन्फ्लेशन की मार में आएगा, गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो रीएलोकेट हो जाते हैं टू सॉल्व दीस काइंड ऑफ कैलमिटीज, सडन फोर्स मेजर कॉज जो अचानक से फ्लड आ गया उसको, तो उस जो फंड उनका रीएलोकेट हुआ जो सही जगह पर जाना था, उसके कारण जो जीडीपी पे असर आना आने वाले दिनों पे वो एक असर है। एंड द रिच क्लास जो बोलता है सानू की मैनू की, मैं तो एसी ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा क्या लेना देना एनवायरमेंट के साथ, ठीक है गर्म है तो गर्म है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी ही तो इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्री में, आप ही तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आने वाले दिनों में अगर वर्क फोर्स की एफिकेसी कम हो जाएगी, अगर साइकोलॉजिकली वो डाउन हो जाएंगे, टेम्परेचर इतना शूट अप करेगा, तो आज प्रोडक्टिविटी पे असर आएगा, और प्रोडक्टिविटी डाउन मतलब आपकी प्रॉफिट डाउन, आपकी प्रॉफिट डाउन मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर क्वेश्चन मार्क। सो थिंग इज, अगर कोई बोलता है एनवायरमेंट मेरा कोई लेना देना नहीं है, एवरी क्लास एवरी स्टार्टअप हैज अ कनेक्शन विद एनवायरमेंट, एंड इसको रेप्लीकेट होना बहुत जरूरी है जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए गुटली ऑल अक्रॉस इंडिया में पाई जाती है, और हमें ऑल अक्रॉस इंडिया में पेड़ चाहिए, नॉट इन दी पॉकेट्स। मुझे किसी पर्टिकुलर पॉकेट्स में नहीं चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे आपका ऑडियंस के थ्रू ही मैं कहूँ कि मेरे को अगर कोई पूछे, जैसे कि मैं इधर उधर भी कहते आया हूँ, मैं भारत सरकार को, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री को, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को ये कहना चाहूंगा कि अक्रॉस इंडियन बोर्ड्स क्लास 10 में हम अगर 10 पेड़ के लिए क्लास 10 में 3 से 5 नंबर दे दे बच्चों को, तो माँ बाप भी मिलके ये पेड़ बढ़ाएंगे। कैसे होगा, कैसे ऑडिट होगा, क्या होगा, मैं बता दूंगा। नहीं मतलब अगर किसी ने मजाक में बोला तो तुम संभालोगे क्या मिनिस्ट्री, अगर ये सेवा मुझे करनी पड़ी तो ये सेवा करने को भी मैं तैयार हूँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री में या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में। तो वहां से क्या है कि पूरे ऑल इंडिया, अक्रॉस इंडिया में ये वेजिटेशन, ये फॉरेस्ट पूरा क्रिएट होगा, जिससे कि हमारा, हम कहते हैं ना, इंडिया पोल्यूटेड है, इंडिया हीटेड है, नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस। दिल्ली का पोल्यूशन हटाने से इंडिया की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, या चेन्नई की प्रॉब्लम इंडिया है, तो इंडिया को एज अ होल देखना पड़ेगा। तो ये आपने जैसे कहा, ये रेप्लिकेबल पूरा है, अपने अपने लेवल पे, बंदा माइक्रो लेवल पे 4 गुठलियां 5 गुठलियां, उससे ज्यादा वो आगे बढ़ा दे, उससे ज्यादा नहीं हो पा रहा मुझे दे दे, एंड स्कूल्स की गुठलियां जो है 20,000 25,000 50,000 लाख वो मुझे भेज दे। सो दिस इज द वे वी हैव टू डू इट।
0: मैं देखो, मैंने बचपन में ना एक कहावत सुनी थी, आम के आम गुठलियों के दाम, लेकिन आज मुझे उन गुठलियों के दाम नजर आ रहे हैं और समझ भी आ रहे हैं। तो ये गुठलियां वाकई बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं, लेकिन इस बदलाव के लिए पहला कदम आप सबको उठाना पड़ेगा हमारे साथ। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं गुटली मैन ऑफ इंडिया यानी जसमीत सिंह अरोड़ा जी के साथ। जसमीत जी, अब एक बड़ा दिल को लगता हुआ सवाल, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, सुन तो लिया, समझ तो लिया, प्रोसेस भी जान लिया, लेकिन बहुत आसान तो नहीं है। मैं समझ पाती हूँ जब हम कोई काम करते हैं वो बहुत मुश्किल होता है, तो मुझे रियल टाइम चैलेंजेस बताइए कि क्या आते हैं।
1: रियल टाइम चैलेंजेस देखिए जी, सबसे पहले तो जो आया था मेरे साथ के भी मेरे पे लोगों ने बिलीव ही नहीं किया था। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीधा ही मुझे ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक, मेरे दोस्त यार मुझे मतलब कहीं पहले गुटली गुटली होगा, गुटली पता नहीं, चलो चलो चलो कमरे छोड़ के चले जाते, बात ही नहीं सुनते गुटलियां देने में, क्योंकि गुटलियां उनको हैंड ओवर करनी है। आम खा लिया, गुटलियां तो फेंकने की आदत है, उस आदत से निकलना है, मुझे गुटलियां देनी है। तो ये आदत, ये पूरा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में ये दिक्कत आ रही थी। करते करते कोविड तक तो मेरे हाथ में लोग गुटली देते थे, समझ लीजिए 20, 25, 50, वो भी दया करके कि अच्छा तू मांग रहा है रख ले। अब टेक्निकली मैं आपको बताऊं, मैंगो गुटली के एक जेनेटिक इशू है, आप अगर 1000 गुटली मुझे देंगे तो 10-15% ही गुटली अंकुरित होगी। दिस इज वन जेनेटिक इशू ऑफ मैंगो। वन सेकेंड, हमें आदत पड़ गई है अप्रैल के महीने में मैंगो खाने की। उस टाइम अभी भी आप देखिएगा कई पेड़ों में जो मैंगो है वो ग्रीन है, लेकिन मार्केट में आपको एकदम येलो ब्यूटीफुल मैंगो मिलेगा। ये सारा कार्बाइड का आर्टिफिशियल रैपन मैंगो है। ये आर्टिफिशियल मैंगो क्या कर रहा है, पल्प को आपके खाने लायक बना दे रहा है, लेकिन जो गुटली है वो जर्मिनेशन लायक तो बनी नहीं अभी तक, अभी भी वो कच्ची है, तो कच्ची गुटली जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगी। तो लोगों को इतना टेक्निकली तो मालूम नहीं, लोग बस बाजार में जाते हैं आम खा लेते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू कि प्लीज कार्बाइड का मैंगो मत खाइए। कार्बाइड को हटाने के लिए कितना धोना पड़ेगा मुझे मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं, और लेकिन हो क्या क्या सकता है, आपको स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको कैंसर के कोई रोग हो सकते हैं, आपको पेट के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो प्लीज अवॉइड ईटिंग मैंगो आउट ऑफ द साइकिल। आप थोड़ा सा वक्त देखें, जैसे अब जो टाइम आ रहा है ये टाइम मतलब मैंगो के पकने का टाइम है, तो यहाँ से मैंगो जो मिलेगा वो आर्टिफिशियल राइपन नहीं है, लेकिन अभी तक जो आप खा चुके हैं आपके पेट में, और आप कई बंदा बोलता भी होगा भाई मैंने मैंगो खाया मेरा पेट क्यों खराब हो जाता है, क्योंकि वो कार्बाइड जो है उसके पेट को खराब कर रहा है। अब रह गया कि ये सारा कनेक्ट करना, इतनी गुटली कट्टी कहाँ से करूं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो स्कूल्स को बोलता है, स्कूल्स ने भी नहीं सुना। करते करते एक दिन अपनी बिटिया को मैंने बोला कि मेरी एक रील बनाओ, एंड रील बस मैंने फ्लोट की तो वो कई बंदे उसमें से जुड़ने लगे, फोन आना चालू हुआ। वहां से करते करते करते थोड़ा सा सूथिंग आउट हुआ है। अभी तक मुझे 21 लाख गुटलियां मिली हैं। मेरा टारगेट समझ लीजिए 200 करोड़ गुटलियां का है, टारगेट मेरा 20 करोड़ पेड़ लगाने का है। अभी तक मैंने 8 लाख पेड़ जो है वितरण किए अंडर ट्री का लंगर। मैं ट्री के लंगर लगाता हूं जिसमें कि मैं उसमें वितरण कर देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इच्छा है कि मैं 20 करोड़ पेड़ लगाऊं, क्योंकि भारत को चाहिए 2000 करोड़ पेड़, लेकिन 2000 करोड़ का टारगेट लेना इज इम्प्रैक्टिकल, बिना मतलब की बेवकूफ वाली बातें करनी नहीं है। जो प्रैक्टिकल है उसको पहले एक स्टेप को लेके करें, एंड अगर ये रेप्लीकेट हो गया, मेरी बात किसी ने सही बंदे ने सुन ली, या मेरे को एक कोई सही पावरफुल पोजिशन मिल गई, तो उसको आराम से मैं उसको रेप्लीकेट कर दूंगा विद इन 5 ईयर्स। और स्कूल में अगर ये चालू हो गया तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। तो दिक्कतें नाम की थी, दिक्कतें जैसे मेरी वाइफ को नहीं समझ में आ रहा था शुरू में कि भाई क्या आम के घर घर में गुटली गुटली पूरी बदबू बहल गई, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, दोस्तों यारों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन विजन मेरे अंदर क्लियर थी। तो उससे यू नो जिन्होंने 2-4 बंदे जो साथ चले थे स्टार्टिंग में वो छोड़ गए, बोलते नहीं नहीं ये मतलब पता नहीं कचरा उठाता है, कहाँ कहाँ कचरा क्या करेगा। तो सारा कुछ मिला के दोज वर हिकअप्स, लेकिन मैं उन हिकअप्स को ना ज्यादा आप दिमाग लगाना नहीं चाहता, क्योंकि इसके साथ मैं आपको बताऊं कि क्यों नहीं दिमाग लगाना चाहता। मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसकी 13 साल की उम्र में शादी हुई थी, अमृतसर से वो कैलकटा आई, मेरे फादर 30 थे, शी वॉज जस्ट क्लास 8 पास, सिर्फ गुरमुखी जानती थी। कैलकटा आके उन्होंने हिंदी बंगला इंग्लिश सीखी, क्लास 10 किया, 12 किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया, मास्टर्स इन इंग्लिश किया, बीएड किया, एक स्कूल की स्थापना की। 1971 वॉर में उन्होंने नर्सिंग कोर्स किया कि अगर वॉर एस्केलेट हो गई तो आई नीड टू बी रेडी एज अ नर्स। सो मैं उस माँ का बेटा हूँ, एंड देन शी डाइड ऑफ अ मोटर न्यूरॉन डिजीज बाय द एज ऑफ 54। मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने क्या ना कोई लिमिट देखी नहीं, जब मुझे लगता था कि और नहीं पढ़ेगी और पढ़ूंगी, जब मुझे लगता था कि और कुछ नहीं करूंगी मैं स्कूल की स्थापना करूंगी। तो एक लिमिटलेस सा पन मेरे अंदर है। तो ये सारे जो चैलेंजेस है, ठीक है, सी कोई भी मिशन में अगर चैलेंज नहीं रहेगा पागलपंथ ही नहीं रहेगी तो किस बात का मिशन है वो? अगर आपके पास कोई स्टोरी नहीं है, हिकअप्स ही नहीं है, तो वो मिशन मतलब कैसे बनेगा? वो तो फिर कोई बिजनेस है, वो तो कोई धंधा है, उसमें भी बहुत सारे हिकअप्स आते हैं।
0: भाई बहुत ही खूबसूरत तरीके से जसमीत जी आपने समझाया है कि चैलेंजेस नहीं होंगे तो उन हर्डल्स को क्रॉस करने का जो कहना चाहिए सेटिस्फेक्शन है वो भी नहीं आएगा। एंड आज जसमीत जी एक सफर लेकर चल रहे हैं जहां ये कह रहे हैं भाई मेरा टारगेट तो बहुत बड़ा है 2,000 करोड़ पेड़ों का, लेकिन भाई अगर रियल टाइम की हम बात करें तो हम इसे सच कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी सी है आप और मैं, हम सब एक साथ आ जाएं और हम अपना अपना शेयर ले लें तो शायद हम इस पूरी सच्चाई को एक रियल सच बना सकते हैं। और अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो बस करिएगा सिर्फ इस गाने का इंतजार। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.1 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं जसमीत सिंह अरोड़ा जी के साथ, जो कि गुटली मैन ऑफ इंडिया हैं। जसमीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मुझे बताइए कि कोई आपके साथ कैसे जुड़ सकता है, क्या क्या तरीके हैं जो आपके साथ, चाहे कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वॉलंटियर करना चाहता है, या आपके इस इनिशिएटिव को रेप्लिकेट करना चाहता है, तो कैसे जुड़ सकता है?
1: देखिए, मैं सबको यही कहूंगा कि खुले हाथ से आप अगर सोशल मीडिया में हैं तो आप मेरी पोस्ट को आगे बढ़ाइए जितनी दूर तक। आप अगर व्हाट्सएप में मेरा मैसेज देख रहे हैं जितनी दूर तक भेज दीजिए। जैसे आप मीडिया जगत में है तो मैं सारे मीडिया जगत को कहूंगा कि हर मीडिया जगत अगर हर लैंग्वेज में इसको मतलब रिले करे, आगे एयर करे, तो बहुत जल्दी ये बात आएगी। एंड लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो सबसे पहले वो गुटलियां मुझे दे सकते हैं। उनको और भी आगे बढ़ना है तो मैंने जैसे बताया उनके पास

0: पोटली जो है वो जर्मिनेट होगी। तो मेरे साथ जुड़ना इज ए वेरी इजी टास्क, मेरे पास कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सफर नहीं है। मेरा नंबर मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 9831459390, मुझे कॉल करिए एंड बस हम जुड़ जाए, वन एक सेकेंड की तो बात है।
1: वाकई जसमीत जी, आपके साथ अब हमारे सभी लिसनर्स जुड़ गए हैं और आपके इस इनिशिएटिव में वो हाथ मिलाने वाले हैं। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सभी को?
0: बस जाते जाते मैं देखिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि एलपीजी के सिलेंडर्स की लाइनें और उसकी सिस्टम्स, उसकी तकलीफें तो शायद हम थोड़ी बहुत देख ही रहे हैं और कब खत्म होगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन दूसरा है कि ये जो पर्यावरण की प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए दो बातें बोलूंगा। किसी को लग रहा है ना कि अगर इन्फ्लेशन जो होता है वो मॉनेटरी होता है, तो मैं आने वाले दिन में बताऊं कि इन्फ्लेशन जो है वो इन्वायरमेंटल भी है। जैसे कि हमारे कानों में जाता होगा कि 150 रुपए का शेयर डॉलर हो जाएगा, तो रुपए पे प्रेशर कौन देगा? रुपए पे प्रेशर जिसने जो देना देगा, इन्वायरमेंट भी देगा। इन्वायरमेंट के अपने प्रेशर्स उस पे आएंगे, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि आज अगर हम स्पेकुलेटिव क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये इन्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा दुविधा देने वाला है। वन सेकेंड, एलपीजी के साथ ही वापस बोलता हूँ कि एलपीजी सिलेंडर पे हमने जो करना था कर लिया, लेकिन मुझे सिर्फ इतना मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, जो आपके लिसनर्स हैं, मैं ये बात उनको पूछना चाहूंगा कि अगर आपके हाथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर और एलपीजी का दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए कि एलपीजी से तो 1000 आदमी का खाना बन सकता है, खिचड़ी बन जाएगी। एलपीजी का काम हो गया, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है एक हाथ में है, माँ बाबू जी, आपके बच्चे, आपका स्पाउस, उस टाइम में वो सेल्फिश पना सॉल्व किसके साथ करेंगे? पेड़ ही तो ऑक्सीजन देता है, तो ये सॉल्व कैसे करेंगे? जिसके पास इसका आंसर हो मुझे जरूर कॉल करें 9831459390 पे कि हाँ इस सेल्फिश पने को ना मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। बस ये मेरा एक लास्ट लोगों को कहना है, नहीं तो खाइए गुठलियां मुझे भेज दीजिए।
1: भाई कितना आसान है, आई मीन एज सिंपल एज दैट, आम खाइए, गुठलियां गुठली मैन को भेज दीजिए और वो आपकी गुठलियों को पेड़ बना के वापस आप ही के देश में, आप ही के पर्यावरण में भेज रहे हैं, फिर और आम खाइए। सो जरूरी ये है कि आप इस इनिशिएटिव से इसलिए जुड़े क्योंकि इससे आपका डायरेक्टली फायदा है। तहे दिल से धन्यवाद जसमीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा कि अब हम आपके मिशन का एक हिस्सा हैं। जरूर जरूर जरूर।
0: देखिए ये पूरा पर्यावरण का काम मैं कर रहा हूँ किसानों के खेतों पे, किसानों के साथ। तो आज अगर किसी को लग रहा है कि किसान के बारे में मुझे क्यों सोचना है, मैं तो सिटी में बैठा हूँ, तो मैं बता दूँ कि इंडिया एज अ कृषि प्रधान देश, 45 करोड़ जनता जो है वो रूरल इकोनॉमी पे बिलोंग करती है, एंड हमारे शहर में जो वेजिटेबल और फ्रूट आप खा रहे हैं, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अ विलेज नॉट फ्रॉम अ फैक्ट्री। तो दिमाग में ये बंदे बात रखें कि किसान का कितना बड़ा महत्व है हमारी जिंदगी में।
1: वाकई दोस्तों, अगर हम आज अपनी प्लेट में खाना देख रहे हैं और जिन ग्रीन वेजिटेबल्स को आप हेल्दी कहते हैं ना अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, तो वो आ कहाँ से रहा है? तो अगर इस खाने को आप खाना चाहते हैं एंड यू वांट टू लिव हैप्पीली, तो उसके लिए आपको मोबाइल फोन्स की नहीं लेकिन किसानों की जरूरत होगी। तो ये अहमियत हमें समझनी बहुत जरूरी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच जसमीत जी हमारे इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू।
1: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, कहीं नहीं जाने वाले हैं आप, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड फील लाइव।

रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और लेकर के आ गई हूं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में जहां आपसे ढेर सारी बातें मैं करती हूं और पूरे 3 बजे तक यानी कि 1 से 3 का ये प्रोग्राम है, 2 घंटे जहां आपके साथ बातों के साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए गाने भी तो ज़रूरी है ना, है ना। तो मैं गाने भी आपको सुनाती हूँ और साथ ही आपकी फरमाइश है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और बस ऐसे ही आप अपना प्यार रेडियो मानव रचना को ऐसे ही देते रहें और खूब सारे मैसेज करते रहें। हमारा नंबर है 8010781078। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई बात आपको शेयर करनी है, कोई गाना आपको सुनना है, गाना किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप हमें झट से व्हाट्सएप कर दें या फिर टेक्स्ट कर सकते हैं। अब मैं आ चुकी हूँ तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आते ही मैं आपको एंटरटेन करने के लिए सुनाती हूँ एक गाना। तो भाई ये गाना जो है ना बड़ा ही खूबसूरत है, चलिए एंजॉय करते हैं। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ। रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM सुन रहे हैं, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

ये मेरी लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रांकार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और आज के दिन क्या होने वाला है, तो आज मैं आपको हैक्स बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर सैटरडे मैं आप लोगों के लिए हैक्स लेकर के आती हूँ। या तो कोई ना कोई होता है जिनसे मैं बात करती हूँ, इंटरव्यू लेते हैं हम उनका, या फिर हम हैक्स पर बात करते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स, हैक्स जो कि हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं। तो यस, आज भी मैं कई सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जिससे वाकई में काम ना केवल आसान होगा बल्कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें जो कि किचन से जुड़ी हैं, आपके ब्यूटी हैक्स से जुड़ी हुई हैं, जिससे आप हम चाहते हैं कि बहुत कम चीज़ों में हमारा काम हो जाए, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा भी यूज़ ना हो और हमें जो चाहिए उसका रिजल्ट भी 100% आए। तो बिल्कुल वैसी ही चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, या फिर मनी सेविंग हैक्स, ट्रैवलिंग हैक्स और भी बहुत कुछ तो आज के प्रोग्राम में होने वाला है। और कुछ मैसेज भी है मेरे पास में, इनको भी हम लेंगे। तो चलिए इंजॉय करते हैं पहले एक और बहुत ही प्यारा सा गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम हैक्स के बारे में काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। देखिए, घर का काम हर दिन चलता रहता है, घर का पूरा काम, घर साफ करना, कभी खाना बनाना, कभी चीज़ों को ठीक करना, तो कभी उनकी सफाई। ये काम देखने में भले ही आसान लगे कि हाँ ये तो झट से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये काम जितना देखने में आसान लगता है, अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत वक्त लग जाती है और मेहनत ऊपर से, है ना। तो ये सारे काम निपटाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, यानी कि अगर पूरा घर अच्छे से देखने लगे तो पूरा पूरा दिन भी निकल जाता है, तो इतना टाइम जो है वो लग जाता है। और यही वजह है कि घर संभालने वाले लोग जो है ना हमेशा ऐसी तरकीबें खोजते रहते हैं जिससे उनका समय बच जाए और काम भी हल्का हो ना, जो समय की बचत के साथ साथ एक होता है ना कि काम इजी हो तो मूड भी फ्रेश रहता है, क्योंकि थोड़ा वक्त हमें हमारे लिए भी मिल जाता है। आजकल की तेज़ ज़िंदगी में ना हर मिनट की कीमत होती है, और ऐसे में छोटी छोटी चीज़ों को समझदारी से करने की आदत जो है ना वो बड़े बदलाव लेकर के आ सकती है। और फिर चाहे आपके किचन से जुड़ा है, आपके वॉशरूम से चीज़ें जुड़ी हैं, या किसी भी चीज़ से, अगर उन चीज़ों में हमें थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे काम को आसान कर दे, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो बस यही सोच करके मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी हैक्स लेकर के आती हूँ। अब जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ किचन हैक्स, जो कि सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो किचन का ही होता है। किचन में आपको अगर लगता है कि सिर्फ खाना ही तो बनता है, तो खाने के साथ साथ और भी चीज़ें हैं। किचन को साफ करना, बर्तन क्लीन करना, उसका प्लेटफॉर्म क्लीन करना, यहाँ तक कि पूरी किचन को क्लीन रखना, बिकॉज वहाँ पर हम अपना खाना बना रहे हैं, राइट। अगर वो हम ज़रा सा भी गंदा रखेंगे तो हमें ही अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जो घर को संभालता है, उसकी देखभाल करता है ना, उनसे पूछो कि कितना वक्त लग जाता है, और ख़ास तौर से किचन में। तो हमेशा से हमारी ये खोज रहती है कि क्यों ना किचन को लेके कुछ चीज़ें पता चलती रहे, जिससे यू नो थोड़ा काम आसान हो जाए। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे हैक्स, जो कि अक्सर मैं आपके लिए किचन पर ज़्यादातर बात करती हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आती हूँ। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा नुस्खा जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है। अब देखिए, किचन में वैसे तो कई सारे काम हैं, लेकिन उसमें से एक चीज़ जो कि यूज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जब भी यूज़ होती है और वो यूज़ में ना आ पाए तो गुस्सा आ जाता है, और वो है किचन में रखी कैंची, जिसको हम कोई पेपर को कट करने में, या पॉलीथीन को कट करने में, या दूध की थैली को कट करने में, या और भी बहुत सारे कामों को करने में हम कैंची का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इसकी जो धार है वो कम हो जाती है, अब यूज़ करते करते धार कम हो जाती है। अब ऐसे में क्या होता है ना कि फिर जब यूज़ करने के लिए आते हैं तो वो यूज़ में नहीं आ पाती है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे इसकी धार बनी रहे? तो देखिए, आप अगर इसकी धार बनाना चाहते हैं ना, तो जो फॉइल पेपर होता है उसको 3 से 4 बार आप फोल्ड कर लो, फोल्ड करके आप उस कैंची से काटो। फॉइल पेपर जो होता है एल्युमिनियम का, आप उसको 3 से 4 या 5 लेयर बना के उससे उस पर आप कैंची चलाओ, उस कैंची से आप उसको काटो, और जैसे जैसे आप काटोगे ना उसकी धार बहुत अच्छी होती जाएगी, और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करना, तो ये वापस से इस्तेमाल में हो जाएगी। तो हर हफ्ते मुझे लगता है कि कर ही लेना चाहिए, और वैसे भी जब हमारे पास समय होता है थोड़ा, और हम ऐसी चीज़ें कर ही लेते हैं थोड़ा फन में, है ना, इसलिए आप जब भी फ्री हो तो कैंची में धार लगा ही लीजिएगा, क्योंकि घर बैठे आपका काम हो जाएगा। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग हैक। अब चलिए आपको सुनाती हूँ एक बेहद खूबसूरत सा गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

मैं हूं प्रियंका, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, क्योंकि हैक्स बता रही हूं आपको, बड़े ही ज़बरदस्त हैक्स हैं। और कुछ पहले मैं किचन हैक्स के बारे में बात करूं, बिकॉज किचन का काम अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है, और हमारी कोशिश भी ये रहती है कि सारा काम तो हम कर लेंगे, लेकिन किचन का अगर काम हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से, हाँ, कुछ हैक्स के मदद से अगर हम काम कर लें तो कितना बढ़िया हो जाए, है ना। तो अगर आप भी उनमें से हैं कि किचन के हैक्स आपको चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ। हरी मिर्च जो है, वैसे तो कई सारी चीज़ें जो बड़ी नाजुक होती है और ख़राब हो जाती है, उसमें से एक हरी मिर्च है। अच्छा, हरी मिर्च और धनिया, धनिया को भी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि धनिया भी बहुत नाजुक होती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम हरी मिर्च को लेके बात करते हैं। हरी मिर्च क्योंकि जल्दी गलने लगती है ना, फ्रिज में रखा तो नमी पकड़ने लगती है और इस वजह से वो गलनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हरी मिर्च लंबे टाइम तक चले, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जिसमें आप हरी मिर्च रख रहे हैं उसमें आप एक या तो टूथपिक रख दें एक दो, या फिर आप कुछ चावल के दाने रखते हैं, तो इससे क्या होगा, वो नमी सोख लेते हैं और हरी मिर्च ज़्यादा समय तक हरी बनी रहेगी, ख़राब नहीं होगी, गलेगी नहीं। तो ये आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनिया की। धनिया अगर आप रखना चाहते हैं, जैसे आप किसी भी चीज़ में रखें लेकिन वो या तो सूख जाता है या गल जाता है, सही से नहीं रह पाता है ना, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका धनिया जो कि फ्रिज में है और आप उसे लंबे टाइम तक हरा बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको करना है एक बर्तन में या छोटा सा गिलास होता है उसमें आप पानी ले लीजिए और धनिया को उसमें रख दीजिए, यानी कि पत्ते ऊपर की तरफ और उसके जो डंडे हैं वो नीचे की तरफ, जैसे हम फूलों को पॉट में रखते हैं एग्जैक्टली वैसे ही। तो बस ऐसे आप करके जब आप फ्रिज में रखोगे कि धनिया के पत्ते ऊपर की तरफ है और गिलास के अंदर उसमें उसके तने हैं, तो लंबे टाइम तक वो हरा रहेगा, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि धनिया को, हरी मिर्च को आप जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर लें, या फिर आप उतना ही लाएं जितना 3-4 दिन में आप ख़त्म कर लें, बिकॉज इसका एक टेस्ट होता है, और समय के साथ साथ अगर इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है तो वो टेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए कोशिश करें कि ताज़ी चीज़ों का स्वाद जो है खाने में वो ज़्यादा अच्छा बनाता है खाने को, तो कोशिश करें कि आप ताज़ी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में आज हम हैक्स के बारे में कई सारी बातें कर रहे हैं। चलिए एक हैक आपको और बताती हूं और वो है बाथरूम से जुड़ा हुआ हैक, बिकॉज बाथरूम में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके हैक्स हमें चाहिए होता है। अब जैसे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कई सारे लोग इसको फेस करते होंगे और वो है साबुन का गल जाना, है ना। अच्छा मुझे बताना, हाँ अगर आप में से किसी को सोप्स का बड़ा शौक है तो मुझे बताना, बिकॉज मुझे बहुत शौक है। नई नई तरह के मार्केट में जितने भी सोप्स होते हैं ना, मुझे कलेक्ट करने का बहुत शौक है। पता नहीं क्यों एक बड़ा ही अलग सा क्रेज़ है उनको लेकर के, कि जो भी कलरफुल सोप्स होते हैं और अच्छे अच्छे सोप होते हैं जिनकी जिनकी शेप अच्छी है, बहुत सुंदर तरीके से सोप बने, तो बड़ा शौक होता है कई लोगों को उसको कलेक्ट करने का। लेकिन दिक्कत पता क्या आती है कि हम बड़े प्यार से बड़े इच्छा से हम वो सोप लाते तो हैं, लेकिन जब उसको यूज़ करते हैं तो वो गीले होकर गलने लगते हैं। अब कुछ ऐसा ट्रिक चाहिए होता है कि हम उसका इस्तेमाल करें और उसके बाद में साबुन गले भी नहीं और आराम से वो सूख जाए कहीं पर, मतलब सही रहे। तो मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, बाथरूम या रसोई में रखा साबुन कई बार गीला होकर गलने लगता है, तो इसके लिए किसी छोटे डिब्बे में कुछ रबड़ बैंड्स लगाकर साबुन को ऊपर रखें, यानी कि नीचे रबड़ बैंड्स हैं और ऊपर में साबुन है। इससे साबुन ना तो गलेगा और ना ही ख़राब होगा और इसकी खुशबू भी बनी रहेगी। जैसे सोप्स होते हैं ना, समय के साथ खुशबू कम हो जाती है उसकी, तो वो नहीं होगा। तो ये आसान सा ट्रिक मुझे लगता है कि काम आने वाला है और ये तो हर कोई कर सकता है। तो आप करके मुझे बताना कि कैसा लगा ये ट्रिक आपको। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं, मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रांका, प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में आज मैं आपको कई सारे स्मार्ट हैक्स बता रही हूं। अच्छा, एक आपको हैक बताती हूं, और ये हैक जुड़ा है किचन से। किचन में कई सारे काम, तो मुझे लगता है कि अब आप जो स्मार्ट टिप्स हैं, हैक्स हैं, उनका इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ मैं आपको बताती रहती हूँ जो कि बहुत ही काम का होता है। अच्छा, लहसुन जो है ये खाने के टेस्ट को बढ़ाता है ना, लेकिन आप कितने टाइम तक लहसुन को ताज़ा रख पाते हैं? मुझे लगता है ज़्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि उसमें नमी आ जाती है, जिस वजह से वो ख़राब होने लगता है या फंगस लगने लगती है। तो अगर ऐसा ही होता है कि लहसुन आप रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब होने लगता है, फंगस लगने लगती है, तो लहसुन छील कर रख देने से, वो जल्दी ख़राब होने से अगर आप बचाना चाहते हैं, तो आप इसे डिब्बे में रखें, यानी किसी भी आप डिब्बे में रखें, और उसके नीचे थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर अगर आप डाल देते हैं, तो बिना फ्रिज में रखे भी कई दिनों तक जो लहसुन है वो ताज़ा रहेगा। और लहसुन को वैसे भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, आप इसको भारी रखिए, लेकिन अगर आप उसमें मैदा डाल देते हैं या कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं, तो इससे काफ़ी टाइम तक लहसुन बहुत सही रहेगा और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ताज़ा बना रहेगा। तो है ना, कितना स्मार्ट ट्रिक लहसुन को अच्छा करने का। ऐसे ही कुछ और भी तरीके हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब पुराने रोल्स जो हैं, जो घर में अक्सर खाली होते रहते हैं, तो अगर ऐसा होता है, जैसे सिल्वर फॉइल का जो रोल है

या फिर हम बात करें कि किचन में यूज़ होने वाले जो पेपर्स होते हैं उनके रोल्स होते हैं, अगर आप इनके रोल्स फेंक देते हैं तो अब आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये पर्दों की सजावट से लेकर घर के कई हिस्सों में सजावटी काम में आ सकता है। जी हाँ, इसे संभाल कर रखें और ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई बार क्या होता है, हम ऐसी चीज़ों को फेंक देते हैं, बट इसके जो रोल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप इसको सजा करके, यानी कि इसमें फूल पत्ती का डिज़ाइन दे करके आप इसमें कुछ कुछ रख सकते हैं, या ये आपके बहुत काम में आएगा और मैं बताऊंगी कैसे। और चलिए, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इस प्रोग्राम में। आपके पास कोई हैक है जिसे आपने पढ़ा या कहीं से सुना और अब आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो नंबर है हमारा 8010781078। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। रेडियो माना वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और काफी सारे हैक्स मैं आपको बता रही हूं आज के इस प्रोग्राम में। अच्छा, अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि किस तरह से एल्यूमिनियम फॉइल पेपर के जो वो रोल्स हैं वो जब खाली हो जाते हैं तो हम अक्सर फेंक देते हैं। एक तो वो बड़े स्ट्रांग होते हैं और अगर कभी हम ऐसे सोचते भी हैं कि इसका हम कुछ कुछ इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन बहुत टाइम रखने के बाद फिर इसे फेंक देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसका इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं। देखिए, हर कमरे में पर्दे लगे होते हैं ना, लेकिन जब उन्हें खोलते हैं तो उनका ऊपरी हिस्सा अक्सर उलझा या बिखरा हुआ दिखाई देता है। इस परेशानी से बचने के लिए पुराने रैपिंग रोल्स, जैसे जो एल्युमिनियम फॉइल या आपके जो रोल्स होते हैं, जब वो खाली हो जाते हैं तो आप उसमें इनका इस्तेमाल करें। जी हाँ, इन रोल्स को पर्दे के रिंग्स के बीच में अगर आप फंसा देंगे तो एक तो शेप बहुत अच्छा आएगा, बहुत सुंदर लगेंगे, एक वो गोल सी शेप आएगी पर्दों में और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्दे लगेंगे। और इससे पर्दे फिक्स रहेंगे और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, उलझेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। अगर कोई आता है आपके घर में, रिश्तेदार, कोई मेहमान, तो वो देख कर आपके पर्दों की तारीफ ज़रूर करेगा, क्योंकि जब वो रोल्स आप लगाओगे और उससे जब पर्दों में शेप आएगी ना, वो बहुत सुंदर दिखाई देगी। तो आप ऐसे ही स्मार्ट हैक्स के लिए प्रियंका को कांटेक्ट करें, उसे मैसेज करें, और कोई हैक आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें बताएं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।
1: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो।
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। और देखिए भाई, किचन के बारे में तो कई सारी बातें हमने कर ली, मैंने बहुत सारे हैक्स आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा पैसे बचा लेते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं और ऐसे में पैसों की बचत बहुत ज़रूरी है। तो अब जो देखो मेन खर्चे हैं वो तो होने ही हैं, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस बीच हम क्या करें कि उसमें से भी अगर थोड़े पैसे बच जाएं तो मज़ा ही आ जाए ना, क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ जो कि बड़ी कमाल की है, जो पता है हमें भी नहीं पता होता कि हमसे गलती हो रही होती है, लेकिन हम अगर इसे समझ लें तो हम इस गलती से बच सकते हैं। पता है क्या, जब भी हम शॉपिंग करने बाहर जाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि जब हम शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहली हम, अगर हमारे पास ऑनलाइन का कोई ऐसा रोल नहीं है, राइट, मतलब मान लीजिए कि हमें ऑनलाइन नहीं करना है, हमें कैश में पे करना है, और कैश पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कितना है, उसके बाद हम शॉपिंग करते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो बस अब आपको कैश वहाँ नहीं देखना है, आपको कैश देखना है अपने घर में। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं तो उसमें से 3 या 4,000 आप घर में निकाल के चले जाइए, क्योंकि आपको पता है कि आपके वॉलेट में 10,000 रुपये हैं, राइट। तो अब आप 10,000 तक की तो एटलीस्ट शॉपिंग करेंगे ना, 10 भी नहीं तो आप 7-8 तक तो जाएंगे ही। अब वो वाली चीज़ें भी हम कभी कभी ले आते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस पसंद आ गया और हमें पता है हमारे वॉलेट में पैसे हैं तो बस हमने ले लिया। अब सोचो अगर हम पहले से ही घर में पैसे रख के आ गए हैं और हमारे पास अब सिर्फ 4 या 5,000 रुपए हैं, तो अब हमें पता है कि भाई 4-5 से ऊपर तो नहीं बढ़ पाएंगे, आप कैश में पेमेंट करनी है ना, तो इसके लिए फिर हम उतना ही खर्च करेंगे। और यही हैक है, यही करना है आपको कि आपको पैसे सिर्फ आधे लेके जाने हैं। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो उसके लिए, अब देखो अगर 8-10 हज़ार की चीज़ घर में आनी है तो अगर आप छोड़ के जाओगे तो फिर तो वापस आना पड़ेगा आपको पैसे लेने के लिए है ना। लेकिन अगर आप छोटी मोटी चीज़ें लेने जा रहे हैं लेकिन आपको पता है, आप अपनी आदत से वाकिफ हैं कि मैं थोड़ा खर्चा ज़्यादा कर लेती हूँ, तो उसके लिए तो फिर यही तरीका सबसे बेस्ट है, करके देखिए मज़ा आ जाएगा। और मेरे जैसे, क्योंकि मैं कई बार, ज़्यादा नहीं बट हाँ, मैं कई बार खर्चा काफ़ी कर लेती हूँ, तो मेरे जैसे जो लड़के हैं ना, इनफैक्ट लड़के भी, कोई भी हो सकता है भाई, ठीक है, हो जाता है। तो आप इस तरह से बचत कर सकते हैं अपने पैसों की। और भी पता है बहुत सारे तरीके जिससे आप बच सकते हैं, वो कैसे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं, मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

ये मेरी लाइफ में भाई बहुत सारी बातें हो रही हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं, मैं हूँ प्रियंका। और आज मैं आपको, क्योंकि सैटरडे है, काफ़ी सारे हैक्स आपको बता रही हूँ। तो आप एक चीज़ बताती हूँ, आपको शॉपिंग करने जाना है तो किस तरह से वॉलेट का ध्यान आपको पहले ही रख लेना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। वाकई में बहुत स्मार्ट है कि, लेकिन दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम जब शॉपिंग करने जाते हैं, ज़रूरत हमें, अब मान लीजिए हमारे वॉलेट में थे 10,000 रुपये, लेकिन अब हमने उसमें से 5,000 निकाल दिए और 5,000 हमारे पास में रह गए। लेकिन मतलब जब हम शॉपिंग करने जाते हैं या कुछ मान लीजिए स्टोर से कुछ खरीदने जाते हैं, हमारी ज़रूरत 3 की भी नहीं होती, यानी 3,000 से भी अंदर का सामान आता है, लेकिन हम बहुत सारी फालतू की चीज़ें ले आते हैं। अब उससे कैसे बचना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले चीज़, आप अकेले जाएं। अगर आप किसी दूसरे के साथ में जाएंगे तो शौकिया तौर पर चीज़ें आ ही जाती हैं, और पता है फिर घर आके समझ में आता है, अरे हम तो डाइट पे थे, हमें तो ये मीठा नहीं खाना, हमें ये बाहर का नहीं खाना, हम ये पैकेट फूड नहीं खाना है, क्यों ले आए हम इसे। फिर मन मार के घर में रखना पड़ता है। और बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, ले तो आते हैं लेकिन फिर उसे रखे रखे एक्सपायर कर देते हैं और फिर वो वेस्ट हो जाता है, या फिर मन मार के खाना पड़ता है। अब आप सोचो कितनी कैलोरीज आप अपने अंदर ले रहे हैं, राइट? तो आपको बस यही सोचना है, ये घर आकर नहीं सोचना है, ये वहीं सोचना है कि अगर हम ये लेके गए तो हम ये खा नहीं पाएंगे। बस अपने अंदर का जो वो जो अवतार है ना, जो आप देखना चाहते हैं कुछ समय बाद जब आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर लेंगे, बस वो अवतार आपको जगाना है और आपको उसी वक्त ध्यान रखना है। कितनी बचत पता तभी हो जाएगी, क्योंकि जब हम सामान कुछ लेने जाते हैं ना, सामान ज़्यादा नहीं होता लेकिन ऊपर की चीज़ें जो कि फास्ट फूड है या पैकेट वाला जो फूड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से खर्चा भी होता है और काम का भी नहीं होता सामान। इसलिए आप इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे जाते वक्त तो बहुत ही बढ़िया होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि अगर जाएं तो आप अकेले ही जाएं, क्योंकि अकेले आप बहुत अच्छे से शॉपिंग कर पाएंगे, राइट? और ख़ास तौर पे अगर आपके साथ कोई ऐसा हुआ जिसको खाने पीने का बड़ा शौक है, तो बस फिर आप, फिर ये हैक आपके लिए नहीं है। इसलिए आप अगर इसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के फॉलो करें, डेफिनेटली ये सब पॉसिबल हो पाएगा जो आप सोच रहे हैं।

प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और ये मेरी लाइफ में वही कई सारे हैक्स मैंने आपको बताए और अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो कि बहुत बहुत काम की है, मतलब आप इसके लिए ना मुझे थैंक यू बोलोगे। और वो पता ही क्या है, वो है समय की बचत कैसे करें, है ना। आई नो आप ये जानना चाहते हैं बिकॉज ये आपका नहीं हर किसी का सवाल है कि समय की बचत कैसे करें। अब देखिए, समय की बचत के लिए ना आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ से कौन सा समय निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है, बिकॉज हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें अगर 10 मिनट लगने हैं तो हम उसमें 15-20 मिनट लगा देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको देर से करते हैं, नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते और एक ही तरीके से काम करते जाते हैं और जहाँ हमें 10 मिनट लगने हैं वहाँ हम 15-20 मिनट लगा देते हैं। तो थोड़ा सा बस गौर कीजिए इन सारी चीज़ों पर, पूरे दिन में काफ़ी कुछ ऐसा निकल जाएगा जिससे आप समय की बचत कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप ऑफिस जाते हैं और बहुत बिजी रहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, और ख़ास तौर पे अपने लिए अगर आप वक्त निकालना चाहते हैं तो रात में ही आधे से ज़्यादा तैयारी करके आप सोएं। जैसे कि आप अपने जो कल पहनने के लिए कपड़े हैं वो आप निकाल करके इस्त्री कर लीजिए अच्छे से साफ, जो भी आपको करना है, जैसे आपको अपने हील्स क्लीन करने हैं या शूज़ क्लीन करने हैं वो भी आप रात में करके रखें, कपड़ों पर इस्त्री करके रखें। और भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसे आप सुबह कंप्लीट करने वाले हैं वो आप रात में ही कर दीजिए। बच्चे हैं तो बच्चों की यूनिफॉर्म भी आप रात में ही प्रेस वगैरह कर दें अच्छे से, उसको इस्त्री करके रखें। तो आधे से ज़्यादा काम अगर आप रात में ही निपटा लेते हैं तो यकीन मानिए सुबह आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा और वो टाइम आप खुद को दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वाली चीज़ अगर सब कर लें तो एक सही मैनेजमेंट जो होता है टाइम का, काम का, वो बेहतर तरीके से हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मुझे बताना हाँ कि जो हैक्स मैं आपको बताती हूँ आपको कैसा लगते हैं, और उसमें से कोई भी ऐसा हैक जो आपको पसंद है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर हमारा है 8010781078।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ये गाना आपने सुना और अब मैं सुनाने वाली हूँ आपको अगला गाना. मैं हूँ प्रियंका और मेरे चलने का वक्त हो गया है. तो आज का प्रोग्राम यहीं तक. भाई आज के प्रोग्राम में काफ़ी सारे हैक्स पर मैंने आपसे बात की, बहुत कुछ आपको बताया और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा. लेकिन पता है एक उम्मीद मैं ये भी करती हूँ कि आप मुझसे बातें शेयर करो. अब जैसे आज के प्रोग्राम में मैंने हैक्स पर बात की तो आई होप आपके पास भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कोई हैक या कोई किस्सा कहानी. तो आप बिल्कुल कीजिए. मैं नंबर आपको बता देती हूँ 8010781078. ये हमारा नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं. आप व्हाट्सएप कर दीजिए या टेक्स्ट कर सकते हैं. तो चलिए इसी के साथ मेरे चलने का वक्त हो गया है. और हाँ, चलते चलते एक और बात मैं आप

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे शायर की कि जब वो अपने शेर लोगों को सुनाता है तो लोग वाह वाह कहने पर मजबूर हो जाते हैं। नाम है राहत इंदौरी। देखिए दोस्तों, राहत इंदौरी 1950 को इंदौर में पैदा हुए थे। उनका पूरा नाम राहत इंदौरी नहीं बल्कि राहत कुरैशी था। उनके पिता का नाम था रफतुल्ला कुरैशी और माँ का नाम मकबूल उन्निसा बेगम। और इनकी जो शुरुआती पढ़ाई थी देवास और इंदौर के नूतन स्कूल में हुई थी। इसके बाद इंदौर विश्वविद्यालय से उर्दू में एमए और उर्दू मुशायरा शीर्षक से पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद 16 सालों तक इंदौर विश्वविद्यालय में उर्दू साहित्य के अध्यापक के तौर पर अपनी सेवाएं दी और एक पत्रिका थी जिसका नाम था शाखें, उसमें 10 सालों तक संपादन भी किया था और सालों साल वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुशायरों की शान बने हुए थे। इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें आज मैं आपसे साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज़ की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, राहत इंदौरी उर्फ राहत कुरैशी ने दो शादियां की थी। उन्होंने पहली शादी 27 मई 1986 को सीमा राहत से की। सीमा से उनको एक बेटी शिबली और दो बेटे जिनका नाम फैजल और सतलज राहत है। उन्होंने दूसरी शादी की थी अंजुम रहबर से, जो कि ये बात है 1988 की। दोस्तों, अंजुम से उनको एक बेटा हुआ और कुछ सालों के बाद इन दोनों में तलाक हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहत इंदौरी कैसे बने शायर। हुआ क्या दोस्तों, राहत इंदौरी के शायर बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वो अपने स्कूली दिनों में सड़कों पर साइन बोर्ड जो होता है ना, उस पर लिखने का काम किया करते थे। बताया जाता है कि उनकी लिखावट काफी सुंदर थी। वो अपनी लिखावट से ही किसी का भी दिल जीत लिया करते थे, लेकिन तकदीर ने तो उनका शायर बनना मुकर्रर कर दिया था। एक मुशायरे के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर शायर जान निसार अख्तर से हुई। बताया जाता है कि ऑटोग्राफ लेते वक्त राहत इंदौरी ने खुद को शायर बनने की इच्छा उनके सामने जाहिर की थी। अब राहत इंदौरी की इच्छा को जान निसार अख्तर ने कितनी तवज्जो दी, इसके बारे में भी बात होगी। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर। मुझे

से। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि एक बार राहत इंदौरी की जानिसार अख्तर से मुलाकात हो गई। जानिसार अख्तर यानी कि जावेद अख्तर साहब के पिताजी, उनसे मुलाकात हुई और मैं भी शायर बनना चाहता हूँ ये इच्छा उन्होंने उनके सामने जाहिर कर दी। तब अख्तर साहब ने कहा था कि पहले 5000 शेर जुबानी याद कर लें, फिर वो शायरी खुद ब खुद लिखने लगेंगे। तब राहत इंदौरी ने जवाब दिया कि 5000 शेर तो मुझे पहले से ही याद हैं। इस पर अख्तर साहब ने जवाब दिया कि फिर तो तुम पहले से ही शायर हो, देर किस बात की है, स्टेज संभाला करो। उसके बाद राहत इंदौरी इंदौर के आसपास के जो इलाके थे वहाँ की महफिलों में अपनी शायरी का जलवा बिखेरने लगे। उसके बाद धीरे धीरे वो एक ऐसे शायर बन गए जो अपनी बात अपने शेरों के जरिए इस कदर रखते थे कि उन्हें नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाता। राहत इंदौरी की शायरी में जीवन के हर पहलू पर उनकी कलम का जादू देखने को मिलता था। बात चाहे दोस्ती की हो या प्रेम की या फिर रिश्तों की, राहत इंदौरी की कलम हर क्षेत्र में जम कर चलती थी। इसी के साथ उनके और भी बहुत सारे कलाम हैं, आपके साथ साझा करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है राहत इंदौरी के बारे में। राहत इंदौरी एक ऐसा नाम कि जिसने अपने शेरो शायरी से लोगों को दीवाना बना दिया था। अपने देश भारत में ही नहीं बल्कि वो जिस देश में भी जाया करते थे और अपनी शायरी से लोगों को दीवाना बना दिया करते थे। उनकी शायरी कहने का जो अंदाज है, वो अंदाज ही लोगों को इतना अच्छा लगता था कि उनके दीवाने हो जाया करते थे। और राहत इंदौरी की बात चली है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर राहत इंदौरी उर्दू तहजीब के, कह सकते हैं कि वट वृक्ष की तरह थे। लंबे अरसे से श्रोताओं के दिल पर राज करने वाले राहत इंदौरी की शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब का नारा बुलंद था। कहते थे कि शायरी और गजल इशारे का आर्ट है। वो कहते थे कि अगर मेरा शहर जल रहा है और मैं कोई रोमांटिक गजल गा रहा हूं तो अपने फन, देश, वक्त सभी से दगा कर रहा हूं। ऐसा कहना था राहत इंदौरी का, ऐसा जज्बा था उनके भीतर अपने देश भारत के लिए। और भारत के लिए भी उन्होंने एक से बढ़कर एक शेर लिखे हैं, उनका भी जिक्र करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, हर कोई अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। क्षेत्र सबका अलग अलग हो सकता है, उनकी अपनी पसंद के मुताबिक, उनकी रुचि के मुताबिक। बात चल रही है शायर की, और शायर हैं राहत इंदौरी। हर आदमी की यही इच्छा होती है कि वो अपने फन को, अपने टैलेंट को इतना निखार ले कि लोगों के बीच जब वो जाए तो लोग उसकी शायरी से या जो भी कला वो जानता है उस कला से अपना बना लें। राहत इंदौरी के अंदर ये जादू वाकई में था कि किस तरह से लोगों को सम्मोहित किया जाता है, किस तरह से उनके जैसा बनकर उन्हीं की बात उनको कहना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है जो राहत इंदौरी के साथ थी। शायरी लिखने से पहले वो एक चित्रकार बनना चाहते थे, और जिसके लिए उन्होंने व्यवसायिक स्तर पर पेंटिंग करना शुरू भी कर दिया था। वो भारतीय सिनेमा के जो पोस्टर होते हैं ना, और जो बैनर होते हैं, उनको बनाने का काम शुरू कर दिया। यही नहीं, वो किताबों के जो कवर होते हैं ना, उन कवर को भी डिजाइन किया करते थे। उनके गीतों को 11 से भी ज्यादा भारतीय सिनेमा ब्लॉकबस्टर फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। उसी फहरिस्त में नाम आता है मुन्ना भाई MBBS का। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहत इंदौरी एक सरल और स्पष्ट भाषा में कविता लिखते थे। वो अपनी शायरी की नज्मों को एक खास शैली में पेश किया करते थे। उनकी जो पहचान थी ना, वो पहचान भी सबसे अलग थी। राहत इंदौरी की जिंदगी के बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही है राहत इंदौरी की। चित्रकारी में भी काफी नाम अर्जित किया था राहत साहब ने। राहत इंदौरी की दो बड़ी बहनें थीं, जिनके नाम तहजीब और तकरीब थे। एक बड़े भाई अकील और फिर एक छोटे भाई आदिल रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और राहत साहब को शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपने शहर इंदौर में मात्र 10 साल की उम्र से ही एक साइन चित्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। चित्रकारी उनकी रुचि के क्षेत्रों में से एक थी और बहुत जल्द ही इस क्षेत्र में उनका नाम हो गया था। अपनी प्रतिभा, असाधारण डिजाइन कौशल, शानदार रंग भावना और कल्पना के चलते वो कुछ ही समय में इंदौर के व्यस्तम साइन बोर्ड चित्रकार बन गए थे। एक दौर वो भी था जब ग्राहकों को राहत के जरिए चित्रित बोर्डों को पाने के लिए महीनों का इंतजार करना भी कबूल था। तो इस तरह का दौर था हमारे आज के शायर राहत इंदौरी का। लेकिन उनकी जिंदगी से कुछ और भी बातें जुड़ी हैं, आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

0: नहीं है।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है राहत इंदौरी के बारे में। अब उनको शेर पढ़ने का इतना शौक था कि वो चाहते थे कि जो मेरा कलाम है मैं लोगों को सुनाऊं, और इसीलिए उनके अंदर ये बात पैदा होती थी कि मैं भी शेर पढ़ना चाहता हूं, इसके लिए क्या करना होगा, ये सवाल उनके जहन में आता था। राहत साहब पर लिखी डॉक्टर दीपक रूहानी की किताब, जिसका शीर्षक है मुझे सुनाते रहे लोग वाकया मेरा, इस किताब में एक किस्से का जिक्र है कि राहत साहब इंदौर के नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे जब वो 9वीं क्लास में हुआ करते थे। तो उनके स्कूल में एक मुशायरा होना था। राहत साहब की जो ड्यूटी थी वो शायरों के वेलकम में लगी थी। वहां जब जानिसार अख्तर आए तो राहत साहब उनसे ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए और कहा कि साहब मैं भी शेर पढ़ना चाहता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। इस पर जानिसार अख्तर साहब बोले कि भाई देखिए, पहले कम से कम आपको 5000 शेर याद होना चाहिए। तब राहत साहब फौरन बोले कि अरे साहब, इतने शेर तो मुझे अभी याद हैं। अब राहत इंदौरी की इस बात को सुनने के बाद जानिसार अख्तर साहब ने क्या कहा आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है राहत इंदौरी के बारे में और किस्सा चल रहा था कि एक बार जानिसार अख्तर साहब से जब राहत साहब की मुलाकात हुई तो राहत साहब ने कहा कि मैं भी शेर बोलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो जानिसार अख्तर साहब ने कहा इसके लिए आपको कम से कम 5000 शेर ज़बानी याद होने चाहिए और खुरदार। तो राहत साहब ने कहा कि साहब इतने शेर तो मुझे अभी याद हैं। ये बात सुनने के बाद जानिसार अख्तर साहब ने कहा तो फिर अगला शेर जो होगा वो तुम्हारा ही होगा। इसके बाद जानिसार अख्तर साहब ने ऑटोग्राफ देते हुए अपने शेर का पहला मिसरा लिखा और मिसरा कुछ यूं था, हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह। राहत साहब के मुंह से दूसरा मिसरा निकला, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। अब दोस्तों, डॉक्टर राहत इंदौरी के इस शेर के साथ ही आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। एंड दिस शो इज रियली स्पेशल फॉर अस बिकॉज यहां पर हर बार हर एक एपिसोड में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जिनके साथ हम बहुत सारी बातें करते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कशिश। कशिश से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं बिकॉज अप्लाइड साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, काउंसलिंग सेशंस लेती हैं बच्चों के। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी, स्पेशली हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। इसको हम दो एस्पेक्ट में कवर करेंगे, हमारा माइंड काम कैसे करता है जितना इनको पता ही बताएंगे। दूसरा हम ये कवर करेंगे कि अगर इसको एज अ प्रोफेशन आपको चूज करना है, वट आर द थिंग्स दैट यू शुड नो। बट लेट्स वेलकम कशिश। स्वागत है कशिश आपका।
1: थैंक यू सो मच।
0: थोड़ा सा बताइए अपने डोमेन के बारे में, क्या करते हो आप?
1: सो बेसिकली आई हैव डन बी अप्लाइड साइकोलॉजी, जिसमें अपने बिहेवियर के बारे में और हाउ अ ह्यूमन माइंड्स वर्क, आप वो जानते हो, बहुत हेल्प करता है आपको ज़िंदगी में। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इमोशनली अवेयर ही नहीं होते अपनी इमोशंस के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, और वो सिर्फ इस्केप करते रहते हैं एंड वो सिर्फ भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और एक टाइम आता है जब वो जितनी सारी चीज़ें आपके अंदर बॉटल अप हो गई है, तो जब वो फूटती है और उसके बाद जब आपको समझ नहीं आता कि अब क्या करूँ, और जब वो फूटती है तो वो सिर्फ आपको इफ़ेक्ट नहीं करती, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो उन सब के ऊपर फूटती है। तो हम नहीं चाहते कि हम वहाँ तक कभी पहुँचे, और हम चाहते हैं कि उस चीज़ को पहुँचने से पहले हम बहुत पहले उस चीज़ को रोक दें, उस पर काम करें। तो उस पर काम हम ऐसे ही कर सकते हैं जब हम अवेयर होंगे अपने एक्शंस के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, मतलब व्हेन वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट। बेसिकली जब हमें पता है कि हम इस एक्शन के लिए सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आप चाहे बाद में किसी को भी ब्लेम कर लो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये था, वो था, वो था, तो कुछ भी आपको हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप कॉन्शियस हो तो आप कुछ ऐसा करोगे ही नहीं जो कि आपको इन फ्यूचर ऐसा लगे कि अरे मैंने ये क्यों करा। अगर आप कॉन्शियस होते तो आप वो चीज़ करते ही नहीं, पर आप कॉन्शियस नहीं थे एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर एक्शंस, दैट्स व्हाई यू डिड इट।
0: So basically the study of your behavior, we can call it applied psychology, right?
1: Yes. Applied psychology में basically हम बहुत सारे practicals करते हैं, practical, not, it's not just theoretical, practicals भी होता है। तो जैसे there is a personality test, draw a personality test, when you are given a sheet of paper and you are asked to draw a boy. तो मेरे साथ जब मेरा एक क्लाइंट था, सब्जेक्ट था, तो उसमें मैंने उसको पेपर दिया था और उस टाइम पे ही वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। तो उसने इतनी छोटी सी, बहुत ही छोटी सी फिगर ड्रॉ करी थी बॉय की। तो जितनी छोटी आपकी फिगर होती है उतनी कम आपकी सेल्फ वर्थ होती है जो आप उस टाइम पे अपने आप को देख रहे होते हो कि मेरी बस इतनी ही वर्थ है। अगर आप बहुत बड़ी इमेज ड्रॉ करते हो, इट मीन्स दैट येस You think that you are worthy, but अगर आप जितनी छोटी इमेज ड्रॉ करते हो तो आपकी वर्थ उतनी ही कम होती है अपनी नज़रों में। सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉ पर्सनैलिटी टेस्ट।
0: अरे बाप रे, मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा है, मेरे को जाके वापस अपनी सारी ड्राइंग्स देखनी पड़ेंगी कि मैंने कब क्या बनाया है और मैं कहाँ पे खड़ा हुआ था। सो अमेजिंग, सो इंटरेस्टिंग। इफ आई मे आस्क यू, व्हाट वाज द थॉट That triggered you to pursue this? क्यों ये चूज किया कि मेरे को साइकोलॉजी में जाना है?
1: राइट, सो व्हेन आई वाज इन स्कूल मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं थे और मेरी फैमिली में भी मेरे साथ कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँ। एंड आई ऑलवेज सर्च फॉर अ फ्रेंड एंड फॉर लव। तो मुझे वहाँ पर लगा कि मे बी आई शुड enjoy my own company, मुझे अपनी own company enjoy करने के लिए क्या करना पड़ेगा। So when I was in 11th, there was this subject psychology, और उनके उसमें option था that you can either choose sociology or psychology। तो psychology choose करने में मेरा कोई interest नहीं था पहले, and I wanted कि मैं sociology ही opt करूँ, but उसमें बहुत कम बच्चे थे तो फिर वो subject ही cancel out हो गया और मुझे psychology choose करनी पड़ी forcefully। तो जब मैंने वो psychology choose करी तो उसमें एक टर्म थी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इफ़ यू नो अबाउट इट, कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जो डॉटर होती है उसको अपने फादर के लिए मतलब वो अपनी चाहती है कि वो फादर के साथ एक फैमिली बिल्ड करे। तो ये हर किसी के साथ होता है। तो वो सब चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो मुझे, मैंने बहुत कनेक्ट करा साइकोलॉजी से, सब्जेक्ट से. तो मुझे ये था कि ये जब साइकोलॉजी ख़त्म हो जाएगी 11 ट्वेल्थ की, तो मैं इसको परस्यू करूँ, मैं इसके बारे में और पढ़ूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील होता था जो चीज़ें मैं वहाँ पर पढ़ती थी, बिहेवियरली जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. इसलिए मैंने उसको परस्यू करा कि मे बी आई शुड चूज़ दिस. इसलिए मैंने 3 साल अपने दिए और मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी 3 सालों में. क्रिमिनल साइकोलॉजी, अब नॉर्मल साइकोलॉजी, एक जो सीरियल किलर होता है उसका क्या पैटर्न होता है, वो क्यों करता है, कहाँ से आती है वो चीज़ें, एंड एवरीथिंग. एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट. एंड आई वुड से कि अगर आपको खुद के बारे में जानना है और आपको अगर ज़िंदगी के बारे में जानना है, आपको लोगों के बारे में जानना है, तो आप प्लीज़ साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करिए. और बहुत सारी बुक्स भी है, बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास पढ़ने के लिए. अगर आप डिग्री भी नहीं कर सकते तो भी आप बुक्स पढ़ सकते हैं, देर आर मेनी बुक्स. आप ओशो को पढ़ना स्टार्ट करिए. एक्चुअली ओशो आपको बताएंगे कि कैसे यू कैन बी अवेयर ऑफ योर एक्शंस एंड हाउ योर एक्शंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप आगे कहाँ जाएंगे इसके बाद.
0: आई एम कन्विंस्ड. ऑलराइट, ऑन दिस नोट लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कशिश से हम आगे बात करेंगे. देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू कवर, बट वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. आई एम आरजे सागर.

0: वेलकम बैक। आई जस्ट होप आपको मजा आ रहा है। अगर कोई फीडबैक है मेरे लिए, कशिश के लिए, तो प्लीज 8010781078 पर जरूर अपनी बात पहुंचाइएगा। फिलहाल शो को अपने आगे लेकर के चलेंगे और कशिश हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। साइकोलॉजी को समझने की बात हो रही है। कशिश, मैं दो तरीके से इस टॉपिक को समझना चाहूंगा। फर्स्ट इज एज अ स्किल, जो हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं समझना चाहता हूँ, इन जनरल हमें अगर साइकोलॉजी पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी और मैं जानना चाहता हूँ जितना आपके बारे में हो सकता है मैक्सिमम, सो कैसे हम लोग पता करें। स्पेशली इसमें एक एस्पेक्ट होता है कि जब आप किसी इंसान से मिल रहे हो या डेट के लिए जा रहे हो या शादी के लिए बात चल रही है आपकी, किसी लड़का या लड़की को आप देखने जा रहे हो, सो यू नीड टू हैव अ फ्यू थिंग्स इन योर माइंड कि मैं ये चीज़ें जो मुझे ऑब्जर्व करनी चाहिए जिससे पता लगे कि हम दोनों कंपेटेबल हैं या नहीं है, या मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ, लाइक दिस।
1: ट्रू। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे किसी के साथ, तो आप वो बिल्ड ही नहीं कर पाओगे कनेक्शन, और आप उसको फॉरवर्ड भी नहीं लेके जा सकते। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो एक इंसान से, वो आपकी बात सुन भी रहा है, वो एक गुड लिसनर है भी या नहीं। अगर वो गुड लिसनर नहीं है और सिर्फ वो मैं कर रहा है, सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है, तो ड्रॉप इट राइट देयर बिकॉज इट्स नॉट गोना वर्क। अगर आपको किसी रिलेशनशिप को चलाना है, आप उसको आगे लेके जाना चाहते हो, तो इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ आप बोल रहे हो और दूसरे वाला सुन रहा है, एंड इट शुड ऑल्सो नॉट लाइक कि सिर्फ दूसरे वाला ही बोल रहा है और आप ही सुन रहे हो। बोथ वेज होना चाहिए, आप भी बोलो, वो भी बोले, आप भी सुनो और वो भी सुने। तो अगर ये चीज़ सबसे पहली होती है कि अगर ये इसमें आप टिक कर पा रहे हो, तो इट्स वेल एंड गुड, आप आगे जा सकते हो। उसके बाद आप देखो कि वो जो इंसान है उसके पैटर्न्स क्या है, वो कैसे सोचता है, वो चीज़ों को कैसे देखता है, और आप कुछ ऐसा उससे इंसिडेंट शेयर करो जिससे आप बहुत कनेक्टेड हो और आप जैसे उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो और जैसे वो इंसान उस चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, आप कहीं पर मैच कर रहे हो, आपके थॉट्स कहीं पर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि हाँ इस सिचुएशन में ये इंसान भी नॉट 100%, अगर वो 70% भी वैसा सोच पा रहा है जैसा आप सोच रहे हो, तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि आपके पैटर्न्स भी मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, तो आप फुटबॉल नहीं बन सकते दूसरे के ओपिनियन के लिए। यू कैन नॉट एक्ट लाइक अ फुटबॉल टू अदर्स ओपिनियन, राइट? इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप समझाओ, एंड एक्सेप्टेंस एंड एडजस्टमेंट्स तो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप सोचो कि सिर्फ आपकी बात ऊपर है और आप दूसरे को सप्रेस करते रहो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं चलेंगे आपकी चीज़ें। तो सबसे पहले दूसरे को बोलने के पहले आपको खुद को भी समझना पड़ेगा कि क्या आप इतने एडजस्टिंग और एक्सेप्टिंग हो सकते हो इस इंसान को लेकर। इफ़ येस, इट इज़ गुड, और तभी चीजें चल सकती है, मुझे ऐसा लगता है।
0: यू शुड नो द पैटर्न्स, यू शुड कम्युनिकेट। सो इंटरेस्टिंग। अगर मैं पैटर्न्स की बात करूं, क्या चीजें हैं जो टाइम बीइंग हमारे सामने खुलती हैं लेयर्स, या जो हमें खोलनी चाहिए एटलीस्ट इंसान के बारे में और अच्छे से जानने के लिए, कि सामने से सब झूठ बोलते हैं।
1: ट्रू।
0: सो व्हेनेवर यू मीट समवन, मे बी अ कॉलीग, मैनेजर, आपको फर्स्ट टाइम ही लगेगा बहुत अच्छे इंसान है, हर आदमी अपना बेस्ट लेके आता है, बट How can we maximize that thing to peel off the layers?
1: Right. सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप मिलो उस इंसान से। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये काफ़ी नहीं होता, क्योंकि इसमें सब प्रिटेंड कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। किसी ऐसी सिचुएशन में रहो जिसमें कि आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड से कि आप किसी ऐसी जगह पर जाओ और आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ठीक है, आप दूसरे इंसान के पास भी फ़ोन नहीं है, आपके पास भी फ़ोन नहीं है, आप सिर्फ आप दो लोग हो, बहुत ज़्यादा सड़ी गर्मी हो रही है और आपके पास कोई चारा नहीं है, आप फंसे पड़े हो एक जगह पर, आप वहाँ पर देखो कि तब वो इंसान कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्या वो पेशेंट है उस टाइम पर, क्या वो आपके साथ है, या फिर वो भी चिड़चिड़ा चुका है और वो बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, रेस्टलेस हो रहा है अगर वो, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रूथ रिवील होता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये इंसान ऐसे एक्ट करेगा। अगर वो उस टाइम पे भी पेशेंट है और वो इफ़ ही इज़ देयर विद यू और वो समझ पा रहा है और वो काम कर पा रहा है आपको उस सिचुएशन में, तो वहाँ पर एक चीज़ पता चलती है कि इंसान ऐसा ही रहेगा अगर कोई आगे भी ऐसी सिचुएशन आती है तो। पर अगर वो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बौखला गया है और उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, तो नाउ अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये इंसान आगे भी ऐसे करेगा। और दूसरा कि मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दो चार मीटिंग्स में आप नहीं समझ सकते किसी को। लोग बहुत आजकल प्रटेंड कर सकते हैं, इट इज़ वेरी ईजी टू प्रटेंड, और फेक करना भी बहुत ईजी हो गया आजकल। तो एक्सट्रीम्स पहले जानो इंसान के, कोई ऐसी सिचुएशन लाओ जिसमें आप ऐसा सामने वाले को प्रवोक भी कर सकते हो कि वो गुस्सा करे, तो आप देख सकते हो कि इसका क्या पैटर्न है, कितना गुस्सा कर सकता है। अगर वो उस टाइम पे गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है, और वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा, तो वो आगे भी नहीं सुनेगा आपकी बात उसका, क्योंकि पैटर्न ही ये है कि जब उसको गुस्सा आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड हो जाता है, और वो उसके अपने थॉट्स इतने ओवरपावरिंग होते हैं कि वो दूसरे इंसान को कंसिडर ही नहीं कर रहा। एग्जैक्टली तो आप देखो ऐसी सिचुएशंस में एंड अप करो जहाँ पर आपको इंसान को जानने का मौका मिले। जितने आपके पास फालतू क्वेश्चंस है, नो मैटर कि वो रिलेवेंट है या नहीं है, आप पूछो। अगर आपको वो दे रहा है आंसर, पेशेंटली दे रहा है, कामली दे रहा है, तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि वो सुनेगा आपकी बात और वो समझना भी चाहेगा और आपको समझाना भी चाहेगा। पर अगर वो आपको ऐसे लेट डाउन कर रहा है कि अरे क्या फालतू क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये तो इररिलेवेंट है, तो फिर आप समझो ये बात कि उसके लिए मैटर नहीं करता आपके थॉट्स और आपके जो क्वेश्चंस है वो। अगर आपको किसी के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो इंसान जैसा भी है, आप उसको वैसा एक्सेप्ट करो। तो अगर कोई इंसान आपको वैसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, चाहे आपके कितने भी बेवकूफ़ क्वेश्चंस और इररिलेवेंट क्वेश्चंस है, अगर वो नहीं कर पा रहा उस चीज़ को एक्सेप्ट, और अगर वो आपको ये बोल रहा है कि अरे तुम ये क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये तो बहुत फालतू बातें हैं, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, इट डजेंट मैटर आप बच्चों वाली बातें पूछ रहे हो या फिर आप बहुत समझदारी वाली बातें पूछ रहे हो। अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, और आपको अपने पार्टनर से वो क्वेश्चन पूछना है, तो आपको वो पूछना है और उसका काम है उसको आंसर करना। चाहे वो कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला आंसर ना दे, बट अगर वो सिर्फ उसको सुन रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है और आपको वो आंसर दे रहा है, तो वो भी एक अचीवमेंट है।
0: सो अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट किया है कशिश ने इस चीज़ को। मैं रिएट्रेट करना चाहूँगा इसको कि अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, डोंट एवर बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग दैट क्वेश्चन, बिकॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग इज दैट वी हैव दैट एबिलिटी टू क्वेश्चन थिंग्स, और ये चीज़ कभी जानी नहीं चाहिए। एंड इट डजेंट मैटर कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। सो देयर वाज एन इंसिडेंट, मैं एक बहुत फेमस एक्टर है बॉलीवुड के, उनका इंटरव्यू ले रहा था एक बार। सो ही वाज सेइंग द सेम थिंग कि मैं अपने बचपन में अपने माँ बाप से, बाकी लोगों से पूछता था कि मेरा बर्थडे 5 अक्टूबर को क्यों आता है। मतलब इससे ज़्यादा वियर्ड क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, बट इट इज़ वट इट इज़, इट शोज़ कि आप क्यूरियस हो हर चीज़ को लेकर के। एंड एवरी थिंग, एवरी इन्वेंशन, एवरी सिंगल इनोवेशन या जो भी अचीवमेंट आप दुनिया में आज देखते हो, जो भी चीज़ें आई हैं, हर चीज़ एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। अगर किसी ने फ्लाइट बनाई है, पहले उसने क्वेश्चन पूछा होगा कि क्या हम लोग उड़ सकते हैं, अगर नहीं उड़ सकते तो क्यों नहीं उड़ सकते। उसके बाद जाकर के फिर घूम फिर के जनरेशन वाइज चीज़ें बदली होंगी, फ्लाइट बनी, फिर इतनी सारी चीज़ें आई, फ़ोन आया आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आई, वाईफाई आपके पास आया, सब कुछ स्टार्ट हुआ एक क्वेश्चन से। सो ये बहुत ब्यूटीफुल बात कशिश ने बोली यहाँ पर कि अगर आप सवाल पूछने का स्कोप आपके पास है, वहाँ पर नॉन जजमेंटली कोई इंसान आपसे सवाल पूछ सकता है, इट शोज हाउ ब्यूटीफुल दैट बॉन्ड इज। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, मोस्टली पीपल दैट आर वर्किंग आउट देयर, ओवर अचीवर, इनसिक्योर, अंडर परफॉर्मर्स, दे ऑल आर इनसिक्योर एंड दे ऑल आर एंशियस। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टैप इन टू दिस थिंग कि वाई आर वी सो एंशियस, क्यों हम इतने एंशियस हैं, और अगर है तो हाउ टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, कि इसका रूट कॉज क्या है। कई बार समझ नहीं आता, फॉगी होता है दिमाग कि क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है, कुछ डीपेस्ट कुछ छुपा हुआ है वहाँ पर, उसको कैसे समझना होता है, हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट एंजाइटी।
1: ट्रू। सो जो हमारी इनसिक्योरिटी आती है, वो सबसे पहले उस डर से आती है कि हम इस चीज़ को खो सकते हैं। अगर कोई इंसान इनसिक्योर होता है किसी चीज़ को लेकर, खुद को लेकर या किसी इंसान को लेकर, तो उसके पीछे एक डर होता है, और वो डर यही होता है उसको खोने का डर। और इंसान को वो जो डर तभी आता है जब वो उसको बहुत कस के पकड़ के रखता है। तो जितना आप चीज़ों को कस के पकड़ के रखोगे, आपको उतना ही डर लगेगा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा कि लाइफ जो होती है ना, उसमें आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होगा आपके साथ. अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें नहीं पता था कि हम यहाँ पर बैठेंगे, राइट? तो लाइफ इज फिल्ड विथ सरप्राइजेस, बट जितना आप खुद को रिजिड और जितना आप चीज़ों को पकड़ के रखोगे, उतनी ही तकलीफ आपको होगी और किसी को भी नहीं होगी. तो आई वुड से कि चीज़ों को पकड़ना छोड़ दो, और जितना कस के आप पकड़ोगे उतना आप खुद ट्रिगर होगे, किसी को शायद इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, और आपकी इनसिक्योरिटीज़ खुद अपने आप में ही बढ़ेगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा. तो इट्स बेटर दैट यू टेक लाइफ वेरी ईजी और प्रेजेंट में जीना अगर हम स्टार्ट कर दे. ऑल दो ये सब चीज़ें बोलनी बहुत आसान होती है, बट जब एप्लीकेशन की बात होती है तो हम बहुत बार फेल कर जाते हैं. बट अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड इफ़ वी कीप रिमाइंडिंग आर सेल्स दैट आई एम हियर, ये एक लूप होता है जो छूटेगा आपसे. पर जब आपको दोबारा याद आएगा, हो सकता है एक घंटे बाद याद आए, तो आप फिर से अपने आप को रिमाइंड कराओ दैट आई एम हियर, फिर से वो छूटेगा, वो जो थ्रेड है वो दोबारा छूटेगा. अब दोबारा अपने आप को रिमाइंड कराओ, तो जैसे जैसे आप रिमाइंड कराओगे वो जो टाइम स्पैन है वो कम होगा, और जब वो कम होगा और जब आपको पता चलेगा कि दैट यू हैव एक्सेप्टेड दैट यू आर हियर इन द प्रेजेंट एंड यू आर लिविंग योर लाइफ, वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर द बेस्ट, तो शायद आपकी इनसिक्योरिटीज़ कम हो जाए बाय द टाइम. आई एम नॉट प्रोमिसिंग कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, बट हाँ, जो ज़िंदगी होती है उसमें ये नहीं होता कि सब कुछ एक रात में ठीक हो जाता है, क्योंकि हम जहाँ पर आए हैं बहुत सालों से बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आए हैं, तो उसका जो बोझ होता है वो कहीं ना कहीं हमारे कंधों पर हमेशा रहता है. बट उस अच्छा आई विल गिव यू वन एग्जांपल. जैसे एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ. एक साधु होता है, वो बहुत तप करता है, और वो इतना तप करता है कि एक जो छोटा लड़का होता है वो ये चाहता है कि मैं बस इसकी शरण में आ जाऊँ और ये मुझे अपना ले और ये मेरा गुरु बन जाए. तो वो पहाड़ पे चढ़ता है ऊपर, इतनी मेहनत करके ऊपर जाता है उस साधु के पास, और वो उनको बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो और मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ. साधु कहता है ठीक है. तो वो कहता है कि चलो ये जो पत्थर है ना इसको उठाओ, और वो नीचे चलने लगता है, पहाड़ से नीचे उतरने लगता है. साधु जो होता है वो नीचे उतरने लगता है, और वो जो लड़का होता है वो इस कन्फ्यूजन में आ जाता है कि खुद तो खाली हाथ चल रहा है आगे, और मुझे इतना बड़ा पत्थर उठाने के लिए बोल दिया. तो अब वो उस पत्थर को लेके नीचे चलता जाता है. तो फिर जब वो नीचे आ जाता है वो इतना थक जाता है, उसकी सांसें फूल रही होती है, उसको समझ नहीं आता कि मैं, उसको गुस्सा आ रहा होता है कि खुद तो खाली हाथ चल गया है और मुझे बोल दिया पत्थर उठाने के लिए. जब वो नीचे पहुँचते हैं तो साधु पीछे मुड़ के देखता है, वो कहता है कि ये पत्थर तुम क्यों लेकर आ रहे हो? तो वो कहता है कि आपने तो कहा था उठाने के लिए. तो साधु कहता है मैंने तो सिर्फ उठाने के लिए कहा था, मैंने ये थोड़ी कहा था कि इसको अपने साथ नीचे लेकर आओ. तो द थिंग इज कि वो उसकी चॉइस थी कि वो उस बोझ को अपने साथ लेकर आया, इसलिए ही वो परेशान हुआ. अगर वो उसको उठाकर वहीं छोड़ देता, क्योंकि साधु ने तो नहीं कहा था कि उसको अपने साथ लेकर आओ, बट उसकी चॉइस थी कि वो साथ लेकर आया. तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी का जो बोझ है हम छोड़ सकते हैं, जैसे हम उठाते हैं हम छोड़ भी सकते हैं, पर हम चूज़ करते हैं उसको अपने साथ कैरी करना और आगे बढ़ना उसके साथ. इसलिए ही मोस्ट ऑफ़ द पीपल इनसिक्योर और परेशान रहते हैं अपनी ज़िंदगी में. तो इट्स बेटर दैट यू लेट गो ऑफ थिंग्स, एंड इट्स बेटर दैट यू एक्सेप्ट इट एट द वेरी मोमेंट. जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे और जैसे ही आप लेट गो कर दोगे, वैसे ही चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी. तो ट्राई करिए कि चीज़ों को पकड़ना छोड़ते हैं हम.
0: सो ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट. देयर इज अ बिगर रियलाइजेशन ऑफ दैट पार्ट कि लाइफ में जो भी चल रहा है डजंट मैटर, बट आपने क्या अचीव किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या आपका है, किस चीज़ का स्ट्रेस है, क्या ट्रॉमा है, इट ऑल गोइंग टू बी जीरो वन डे. वी ऑल आर गोइंग टू लीव दिस वर्ल्ड. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी एनजाइटी आपकी खत्म कर भी सकता है एक थॉट कि एक दिन वैसे भी जाना ही है भाई. तो इन बिटवीन ठीक है, जो आपके पास कोशिश आप करते रहो, जितने आप मैचेस खेल सकते हो खेलो, कहीं में सेंचुरी मार भी दोगे, कुछ भी नहीं मार पाओगे, बिल्कुल जीरो पे आउट हो सकते हो, इट डजंट मैटर. सो जस्ट बी इन द मोमेंट एंड ऑलवेज हैव दिस रियलाइजेशन कि सब कुछ परमानेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है एक्चुअली. फिलहाल आई थिंक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे. आगे हम बात करेंगे साइकोलॉजी अगर आपको पढ़नी है, ये समझनी है, हाउ टू गेट स्टार्टेड, बट आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक. स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील.

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, बता तो उस वक्त मैं कहां था, बता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: Once again, I'm hoping you are loving the musical vibe. अगर आपको शो पसंद आ रहा है तो 8010781078 पर अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूं आरजे सागर, शो यहां पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। आज के हमारे मेहमान है कशिश। कशिश, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि अगर किसी इंसान को साइकोलॉजी पढ़नी है, डिग्री नहीं करनी है, जस्ट समझनी है हाउ एग्जैक्टली आवर माइंड वर्क्स, हाउ बिहेवियर वर्क्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, कैसे शुरुआत की जाए?
1: राइट,
0: जस्ट गिव अस अ रोड मैप।
1: ओके, सो सबसे पहले तो अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप बुक्स पढ़ सकते हैं तो आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें। देयर इज़ दिस बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड बहुत फेमस बुक है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी। और मैं चाहूँगी कि एक बार एफर्ट करके आप उस बुक को पढ़ें। और उसके अलावा भी देयर आर सो मैनी बुक्स जो बहुत कुछ इंसान के बारे में बताती है, उसके पैटर्न्स के बारे में बताती है। उसके अलावा डिग्री करना ज़रूरी है साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, क्योंकि आप इतनी डेप्थ में किसी भी चीज़ को उठाकर नहीं पढ़ सकते। बट हाँ, अगर आप नहीं कर सकते डिग्री, तो आप रिसर्च पेपर्स उठाइए और आप रिसर्च पेपर्स पढ़िए। वहाँ पर केसेस होते हैं बहुत सारे, और उसके नीचे उन केसेस को जैसे सॉल्व करा गया है, और जो जो उसमें आंसर्स, जो हमने केस पढ़ा, जो आंसर्स अब हमें मिलने चाहिए, वो सब होते हैं उसमें अटैच्ड होते हैं। आप वो पढ़िए, आपको आपका परसेप्शन चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। अब जैसे एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा था, तो उसमें था कि एक लड़की होती है और वो जॉइंट फैमिली में रहती है। उसके जो ताऊ जी ताई जी होते हैं, वो सब ये चाहते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उनको मिल जाए। और वो जो लड़की होती है ना, उसके जो पापा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट और ऑर्थोडॉक्स पर्सनालिटी उनकी होती है, तो वो हमेशा अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को सप्रेस करते रहे, पूरी ज़िंदगी डोमिनेट करते रहे। बट उसके बाद जब टाइम आया अपने लिए स्टैंड लेने का, अपनी प्रॉपर्टी के लिए स्टैंड लेने का, तो वो नहीं ले पाए स्टैंड, और वो सारी प्रॉपर्टी जो थी उनके ताऊजी के पास चली गई। एंड शी इज़ लेफ्ट विद नथिंग, हर फादर इज़ लेफ्ट विद नथिंग। और अब वो ऐसी सिचुएशन में है कि उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो जो लड़की होती है वो पता है क्या करती है, वो अपने बेड के नीचे, अपने पिलो के नीचे ब्लेड्स रखती है, और वो चुपके से कभी भी अपने आप को हार्म कर लेती है, काट लेती है, अपना हाथ काट लेती है, कुछ करती है। और फिर उसके बाद वो ऐसे दिखाती है कि मेरे ऊपर कुछ है, देर इज़ सम सुपर नेचुरल थिंग अराउंड मी विच इज़ हर्टिंग मी। ओके, तो बहुत सारे लोग उनके पेरेंट्स को ये सलाह देते हैं कि आप तांत्रिक के पास जाओ और आप ये सब चीज़ें कराओ। बट एक समझदार व्यक्ति होता है जो बोलते हैं कि आप इनकी काउंसलिंग स्टार्ट करो। जब वो फर्स्ट सेशन के लिए जाती है, तब उसको पता होता है कि अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा आई तो सबको पता चल जाएगा कि मेरा सच क्या है, ठीक है। तो वो क्या करती है कि वो बिल्कुल नहीं चाहती आना किसी भी सेशन के लिए, और वो अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा घुमाती है कि यही हो रहा है, कोई सुपर नेचुरल चीज़ है मेरे साथ। तो वो क्या करती है, ऐसे चुटकी बजाती है और अपनी वॉइस चेंज करती है, और एक मेल वॉइस में बोलती है कि मैं सबको मार दूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी, जस्ट टू डराने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अब जब फोर्सफुली उसको काउंसलिंग सेशंस में भेजा जाता है, तो एक दिन ये ट्रूथ सामने आता है कि वो ये सब इसलिए कर रही थी बिकॉज शी वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड अपने फादर को लेकर, कि जब अपने लिए स्टैंड लेना था तो वो नहीं ले पाए। और अगर वो एज अ गर्ल डराती तो कोई नहीं डरता, बट एज अ मेल जब उसने चूज़ करा कि मैं एज अ मेल वॉइस यूज़ करके इन सब लोगों को डराऊँ, तो वो सब डर गए। तो हियर जो मेन चीज़ थी, उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी, वो ये थी कि उसके फादर ने हमेशा उसको सप्रेस करा, और जब अपने लिए स्टैंड लेने का टाइम आया तो वो नहीं ले पाए, तो वो उस चीज़ में फंस गई, तो इसलिए उसने ये कार्ड पुल करा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको समझ आएंगी अगर आप ऐसे रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे तो, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपका जो माइंड सेट है वो बहुत ब्रॉड होगा और बहुत ग्रो करोगे आप टाइम के साथ। तो आप रिसर्च पेपर्स पढ़ना स्टार्ट करिए, और कुछ बुक्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी मैंने बताया, और भी है, एल्केमिस्ट पढ़ सकते हो आप, एल्केमिस्ट इज़ अ वेरी नाइस बुक।
0: सो अमेजिंग, आप बिकमिंग सुपरनैचुरल पढ़ सकते हो, डॉक्टर जो डिस्पेंसा की बहुत खूबसूरत किताब है, आप पढ़ सकते हो द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ, एंड सो मेनी बुक्स आर देयर जो आप जरूर पढ़ें एक बार लाइफ में, एटलीस्ट आपको पता लगेगा माइंड काम कैसे करता है। अगर किसी इंसान को प्रॉपर एक काउंसलर बनना है, फर्स्ट थिंग, इट इज नॉट फॉर एवरीवन. क्या ट्रेट्स होनी चाहिए इंसान में कि लेट्स से कोई 12th क्लास का बच्चा इस टाइम सुन रहा है और वो बोल रहा है कि मेरे को काउंसलिंग में जाना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है मेरे को, कैसे आइडेंटिफाई करें कि मेरे लिए सही डोमेन है? क्या ट्रेट्स, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उस इंसान में?
1: सबसे पहले तो दे शुड बी अ गुड लिसनर. एक साइकोलॉजिस्ट का काम ही होता है सुनना. सुनाता तो वो बहुत बाद में है, पहले वो सिर्फ सुनता है और वो सिर्फ एनालाइज करता है कि सामने वाले के क्या पैटर्न्स है. तो अगर आप वहीं पर फेल हो रहे हो और अगर आपको ओके, यू कैन नॉट बी वेरी नोजी, मतलब अगर कोई आपको कोई बात बता रहा है तो वो बहुत ट्रस्ट करके आपको बात बता रहा है, और आप उस मोमेंट पे चाहे आपको कितनी भी बातें उसके बारे में पता चल रही हैं या आपको कितना भी उसके बारे में समझ आ रहा है, आप स्टिल वो बातें रख नहीं सकते उसके आगे. क्योंकि अगर आपने वो चीज़ें रख दी अभी इनिशियल फेज में, तो वो शायद पुल बैक कर सकता है जो सामने वाला है. तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, और आपको पहले पूरी तरह से उस इंसान को कम्फर्ट करना है, कम्फर्टेबल करना है अपने साथ. एंड यू शुड हैव दैट वॉर्म्थ विद इन यू कि लोग आपके साथ खुल पाए. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी ऐसे होती है कि वो सामने वाले को कम्फर्ट नहीं दे पाते और लोग उनके आगे खुल भी नहीं पाते. तो अगर इंसान आपके आगे खुल ही नहीं पाएगा तो आपका साइकोलॉजिस्ट होने का मोटिव ही ख़त्म हो गया वहाँ पर. तो यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, यू शुड बी वेलकमिंग आई वुड से. और सबसे बड़ी चीज़ कि डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी होती है एक साइकोलॉजिस्ट के लिए. क्योंकि अगर मेरे सामने रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा केस आता है जिससे अगर मैं अटैच हो गई, उस इंसान से अगर मैं अटैच हो गई, तो मैं उसको कुछ हेल्प तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी और मैं और फंस जाऊँगी उसके साथ. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने प्रोफेशन को प्रोफेशनली ही रखें और बिल्कुल भी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ना हो उस चीज़ में. तो ये बहुत ज़रूरी है. और अगर हम 12th क्लास के बच्चे की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट बनने का थॉट रैंडमली नहीं आता, हमेशा तभी आता है जब किसी इंसान के अंदर कुछ बहुत सारी बातें होती है जो वो अपने बारे में जानना चाहता है. और तो वो जो बच्चा है ही शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, और उसको ज़िंदगी के बारे में अपने उम्र के बच्चों से थोड़ा ज़्यादा पता होगा और वो चाहता होगा और ज़्यादा अपने आप को समझना, तभी वो ये डिसीजन पर आएगा कि अब मुझे काउंसलर बनना है.
0: एटलीस्ट क्यूरियस होगा.
1: यस ऑफ कोर्स.
0: कि दिमाग काम कैसे करता है.
1: यस.
0: कोई इंसान सिचुएशन में खुश है, दूसरा इंसान उस सिचुएशन में उदास है, तीसरा इंसान गुस्सा है, तो अगर ये तीनों चीज़ें आपको कॉन्ट्रास्टिंग नज़र आती हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये सिचुएशन तो सेम है लेकिन तीनों के अंदर कुछ अलग चल रहा है, तो वो जो क्यूरियोसिटी है ना कि इनके अंदर क्या चल रहा है, वो आई थिंक दैट इज़ अ राइट वे टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. करियर ऑप्शंस क्या होते हैं इसमें, हाउ टू बी अ गाय और गर्ल हु कैन अर्न वेल इन दिस फील्ड.
1: टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनिशियली आपको साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा तो अर्निंग नहीं होती, इवन इंटर्नशिप्स भी पेड ही होती हैं. बट अगर आप एक सब कुछ करने के बाद, जैसे अगर आपने बी ए अप्लाइड साइकोलॉजी कर ली एंड देन यू आर डन विद योर एम ए एम फिल पी एच डी, देन यू कैन अर्न वेरी वेल एंड तब बहुत स्कोप होता है. बट इनिशियली भी साइकोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट एरिया है, मतलब स्कूल्स में भी देर इज़ मैंडेटरी कि आप काउंसलर होगा ही, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ देयर, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज़ देयर, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एवरीथिंग, इवन इन ऑल द क्रिमिनल केसेस एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी इज़ देयर, अब नॉर्मल साइकोलॉजी इज़ देयर. सो देर आर सो मैनी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स एंड इट इज़ वेरी वास्ट. But it's just that you have to stick with one subject. You cannot just hop in here and there ki thodi si sports padh li, thodi si criminal padh li, thodi si ye.

0: क्योंकि उसमें आपको लाइसेंस मिलता है, एमफिल इज़ फॉर 1 ईयर, आपको उसमें लाइसेंस मिलता है जिसमें आप ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकते हो अपने पेशेंट को. विदाउट एमफिल यू कैन नॉट डू दैट. आप अपनी नॉर्मल काउंसलिंग कर सकते हो पेशेंट की, बट आप उसको कोई भी ड्रग्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते विदाउट एमफिल. तो बहुत ज़रूरी है एमफिल करना अगर आपको एज अ करियर काउंसलिंग को चूज़ करना है. तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट और आपको बहुत सारा अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच पाओगे.
1: सो अमेजिंग, आई एम डन विद माय क्वेश्चंस. कोई भी चीज़ मैं ना पूछ पाए और आप कहना चाहते हो प्लीज़ फील.
0: आई थिंक आपने सब कुछ पूछ लिया.
1: ऑलराइट, थैंक यू सो मच कशिश फॉर जॉइनिंग अस. इट मींस अ लॉट टू अस एंड थैंक यू फॉर गिविंग ऑल दोज वैल्यूएबल थिंग्स टू अस. आई मीन आई एम जस्ट होपिंग लिसनर्स को मजा आया होगा, आपको पसंद आई होंगी सारी बातें, क्योंकि बातें हुई हैं जो आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं. हमारे दिमाग में क्या चलता है, हमारे दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग की पढ़ाई एक तरीके से आप कह सकते हो साइकोलॉजी है. पैटर्न्स, बिहेवियर्स, एक्शंस, रिएक्शंस, सब कुछ उसमें आता है. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. एंड आई वुड से कि अगर आप कोई भी एक इंसान है जो यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हो, यू आर अ सर्वाइवर, सो यू शुड नो दिस एटलीस्ट कि दुनिया कैसे सोचती है, बिहेवियर्स क्या होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना होता है. अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई चोर है, कोई सीरियल किलर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई एथलीट हो सकता है, सबकी अपनी एक साइकोलॉजी है, उसको समझना मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड हो जाता है. ऑलराइट, ऑन दिस नोट वक्त है अपने शो को कंक्लूड करने का. आई होप आपको पसंद आया होगा. चलिए फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो. लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए. दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ.

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव। शो बहुत खास है, हर बार आपको नई जानकारी मिलती है, एक नए स्टार्टअप के बारे में आप जानते हैं, एक नई इंडस्ट्री के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारी चीजें। केवल सरफेस लेवल की बात नहीं होती, उसके बियॉन्ड जो चीजें हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, वो सब यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। आज फिर से आया हूँ लेकर के एक और शो, तो डिस्कस करेंगे भैया कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी कंपनी क्या करती है, इंडस्ट्री क्या करती है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और मजा लीजिए इस म्यूजिकल ब्रेक का। सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइफ।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है, खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये 2027 तक, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, 150 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है, ग्रोइंग एट अ सीएजीआर ऑफ 20%। जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं, और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज भी करते हैं। एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मालवशना 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE

अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और यू नो इतना स्मूथली ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और मल्टीपल कंट्रीज जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक, और इसकी काफी तारीफ होती है। सो यूपीआई एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक यूपीआई यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसिडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट यू नो अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज यूपीआई। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ आरबीआई की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, सेबी की तरफ से बनाई गई हैं, आईआरडी की तरफ से बनाई गई हैं, एनपीसीआई की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हूँ सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूं जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट मींस हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गांव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में इस टेक्नोलॉजी का अगर पहुंचा दिया और वहां के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहां के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है, उनका माइंडसेट अलग होता है, इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है और टैक्स सेवी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है, इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लर्निंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर, क्योंकि उस टाइम पर ये हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसके साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या क्यूआर बेस्ड यूपीआई। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योरटेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन एश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स को आ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फ्री, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइंजी, आईडी5, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।

की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो है वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग एआई एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजैक्शंस होती रहे, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था जो लैंडिंग टैक होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। इसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशन। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिथम्स काफी एडवांस हो गए हैं, जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का वो इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं, जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ये RBI के इनिशिएटिव्स हैं, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताई है फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम

को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी हैं और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस यूएस एंड यूके से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। उसके बाद हम बात करें अगर यूपीआई मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं यूके में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, यूएई में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। टीयर टू एंड टीयर थ्री जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया यूपीआई जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं, उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

मैं हूँ आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्ना 107.8 FM के साथ, फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड देन उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइव। Thank you.

आशा करता हूँ भाई इंडस्ट्री को आप समझ पाए हैं। बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि आज की जो कंपनी है उसका नाम है जार। जार एक इंडियन फिनटेक स्टार्टअप है जो एक भारतीय के लिए मतलब कोई भी चीज जो बहुत एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी है उसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी उन्होंने। हमारी एक आदत होती है, अ हैबिट ऑफ सेविंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी। छोटे छोटे अमाउंट होते हैं उनको सेव करने की, मतलब पहले होता था गुल्लक रखते थे या घर में ऐसे सहेज कर रखते थे। जार एग्जैक्टली ऐसा ही काम करता है। सो जार इज अ फाइनेंशियल फिटनेस प्लेटफॉर्म जो लोगों को ना ये एक पावर देता है कि आप छोटा छोटा अमाउंट जो है सेव कर सकते हैं, 10 रुपए तक भी, ठीक है, और ऑटोमेटिकली उसी अमाउंट को आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत फेमस है, और ये फेमस ही इसलिए हुआ क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो बहुत सारे इंडियंस के पास है, जिसको इसने ब्रेक किया कि आई वॉन्ट टू सेव मनी बट आई डोंट हैव इनफ मनी, कि मेरे पास, मैं पैसा बचाना तो चाहता हूँ, इन्वेस्ट तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं करूँ कैसे, मेरा पैसा ही नहीं है जो मैं इन्वेस्ट करूँ। तो जार ने यहाँ पर सोल्यूशन दिया है कि भैया देखो तुम्हें बहुत ज्यादा भारी भरकम अमाउंट की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक आदत की जरूरत है। तो ये है वो कंपनी जिसने लिटरली एक ऐसी प्रॉब्लम को पकड़ा भैया, जिसने मतलब हर एक इंडियन ने रिलेट किया होगा इस चीज से, क्या यार पैसे तो मैं भी बचाना चाहता हूँ, लेकिन 10 रुपए से अगर कोई बोले कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली यार इट मेक्स सेंस, सो मच ऑफ सेंस, एग्जैक्टली वो इस कंपनी ने किया। तो ये है हमारी आज की कंपनी। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको गाने पसंद आए। फिलहाल इसी नोट पर शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ आरजे सागर, शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत। तो हम केस स्टडी लेकर के आए हैं जार की। कंपनी स्टार्ट हुई 2021 में, ठीक है। ये उस टाइम की बात हो रही है जब डिजिटल ट्रांजेक्शंस अपने बूम पर आ रहे थे, यूपीआई बूम पर आ रहा था। लॉकडाउन के जस्ट बाद की बात है भैया। उस टाइम पर हम सबको इतना तो समझ में आ गया था कि डिजिटली सब कुछ हो सकता है, और इस कंपनी को भी वो चीज समझ में आ गई। तो वहां पर इस कंपनी के फाउंडर्स ने ना एक पैटर्न नोटिस किया कि लोग ना डिजिटली हर रोज पैसे खर्च कर रहे हैं, बट सेविंग की हैबिट अगर डिजिटली डाल दी जाए तो कितना अमेजिंग होगा ना। ट्रेडिशनली जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हुआ करते थे वो बहुत ही इंटिमिडेटिंग साउंड करते थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, स्टॉक्स, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड, मार्केट रिस्क। अच्छा, एक सिंपल सी थ्योरी समझिए। आज आप किसी इंसान से बोलिए यार तुम ना एसआईपी किया करो, हर महीने ना पैसे कटेंगे तुम्हारे अकाउंट से। आप जैसे ही ये बात करेंगे ना, वो इंसान सामने से काउंटर करेगा यार इतने तो पैसे ही नहीं होते। लेकिन अगर आप बोलेंगे तुम्हें मात्र 100 रुपए महीने के तुम्हारे खाते से कटेंगे और तुम्हारी एसआईपी हो जाएगी, वो इंसान इंस्टेंटली उसका रिएक्शन चेंज हो जाएगा कि हैं 100 रुपए में हो सकता है। एग्जैक्टली ये माइंडसेट जो है ये समझ में आया इस कंपनी को। सो इन फाउंडर्स ने खुद से ये सवाल पूछा कि ऐसा हो सकता है कि सेविंग ऑटोमेटिकली हो जाए, जहां पर लोगों को ये दर्द भी महसूस ना हो, पेन भी फील ना हो कि हम अपनी मनी को कहीं रख रहे हैं और सेविंग भी हो जाए। एंड उस सवाल का जवाब जो है वो मिला जार के रूप में, जो ये कंपनी है जो इन्होंने स्टार्ट करी 2021 में। इनिशियली जो आइडिया था वो इंस्पायर्ड था ओल्ड स्कूल इंडियन हैबिट से ही, कि आप कॉइन सिक्के जो बचा करके रखते हैं फिजिकल जार्स या पिगी बैंक में, तो उसी को डिजिटल किया इन्होंने, और इसीलिए इस कंपनी का नाम रखा गया जार, डिजिटल जार इनसाइड अ स्मार्टफोन। एंड सो अमेजिंग यार, आई मीन बहुत ही प्यारा सा आइडिया, और लिटरली बहुत अच्छा कर रही है कंपनी। तो देखिए ऐसा भी होता है भैया, फिनटेक की बात कर रहे हैं, फिनटेक में इतनी ज्यादा क्लटर्ड मार्केट है, उसमें भी एक गैप नजर आ गया और उसको सोल्यूशन भी दे दिया, और लिटरली अच्छा भी कर रही है कंपनी। पावर ऑफ इनोवेशन। लेकिन एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

आई होप यू एंजॉयड दिस म्यूजिकल वाइब. फिलहाल इसे नोट पर शो को आगे बढ़ाते हैं. आज की कंपनी जार. जार के फाउंडर्स की बात करेंगे. दो फाउंडर हैं, एक है मिसबाह अशरफ, दूसरा है निश्चय एजी. मिसबाह अशरफ के हम यहाँ पर होम टाउन की बात करेंगे. बिहार से आते हैं, ठीक है, मध्यवर्गीय परिवार में बड़े हुए हैं. फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स देखे हैं जो हम सब मध्यवर्गीय लोगों ने देखे हुए हैं, आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे. अब यहाँ पर इनकी एजुकेशन की बात करेंगे तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है इनके एजुकेशन की रिगार्डिंग. बट बिफोर जार इन्होंने अच्छा खासा जो है एक एक्सपीरियंस गेन किया है, जहाँ पर प्रोडक्ट एंड ग्रोथ रोल्स में इन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया है. स्टार्टअप्स को बिल्ड किया है, एक कंपनी भी स्टार्ट करी थी जिसका नाम था मार्स प्ले, ठीक है, एंड कंज्यूमर इंटरनेट प्रोडक्ट्स में

कई बार तुमने घूंघट भी खोल लिए, एक घूंघट के भीतर तुमने कोई ना पाया तो भी तुम्हें समझ नहीं आती, तब तुम दूसरा घूंघट खोलने में लग जाते हो। एक मुट्ठी झाग झाग सिद्ध हो गई तो मन कहे चला जाता है सारी ही झाग थोड़ी झाग होगी, एक घूंघट व्यर्थ हुआ दूसरे घूंघट में खोज लेंगे। ऐसा जन्म जन्मों से घूंघट उठाने का क्रम चलता है, किसी घूंघट में कभी किसी को नहीं पाया, सब घूंघट खाली थे।

तुमने कभी किसी में किसी को पाया? पति में कुछ पाया, पत्नी में कुछ पाया, मित्र में कुछ पाया, सगे साथी में कुछ पाया, या सिर्फ घूंघट था? नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता है वहां, लेकिन मन की आशा कहती यहां नहीं मिला तो कहीं और मिल जाएगा। इस झरने में पानी सिद्ध नहीं हुआ, फिर दूर और झरना दिखाई पड़ने लगता। तुम कब जागोगे इस सत्य से कि झरने तुम कल्पित करते हो, कहीं कोई नहीं है? तुम्हारे अतिरिक्त सब अयथार्थ है, तुम्हारे अतिरिक्त सब माया है। यमराज की दृष्टि से बचकर आगे बढ़ो। अगर जीवन को सचमुच पाना है तो मौत से, जहां जहां मौत हो वहां वहां जीवन नहीं है, इसको तुम समझ लो। जहां जहां परिवर्तन हो वहां शाश्वत नहीं है, और जहां जहां क्षणभंगुर हो वहां सनातन नहीं है। और जहां जहां चीजें बदलती हो वहां समय को मत गमाना, उसको खोजो जो कभी नहीं बदलता है। उस न बदलने को खोज लेने की कला का नाम धर्म है। एस धम्मो सनातनो। विषय रूपी फूलों को चुनने वाले मोहित मन वाले पुरुष को मृत्यु उसी तरह उठा ले जाती है जिस तरह सोए हुए गांव को भरी हुई बाढ़, जिस सोए हुए गांव में अचानक नदी में बाढ़ आ जाए और लोग सोए सोए ही बह जाते हैं। ऐसे ही विषय रूपी फूलों को चुनने वाले मोहित मन वाले पुरुष को मृत्यु उठा ले जाती, सोए ही सोए बाढ़ आ जाती है और जिंदगी विदा हो जाती। तुम सपने ही देखते रहते हो और बाढ़ आ जाती। सारी काम वासना स्वप्न देखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यह ऐसे बंदे सोते रहे फिर जागे भी तो क्या जागे? सूरज का उभरना याद रहा और दिन का ढलना भूल गए। एक तो जागते ही नहीं, सोए ही रह के बिता देते। और अगर कभी कोई सोचता भी है कि जाग गया तो सोचता ही है कि जाग गया, वो भी जागना जैसे सपने में ही जागना है। सूरज का उभरना याद रहा और दिन का ढलना भूल गए। तो लोग अपने जन्मदिन को याद रखते, मृत्यु दिन की कौन चर्चा करता है? लोग जीवन पर नजर रखते, मौत की बात ही करनी बेहूदी मालूम पड़ती। अगर किसी से पूछो कि कब मरोगे तो वो नाराज हो जाता। मरोगे के नहीं तो फिर तुम्हारा तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं, वो तुम्हें दुश्मन समझ लेगा। पूछा कुछ गलत न था, जो होने ही वाला था वही पूछा था। लेकिन मौत की लोग बात भी नहीं करना चाहते, बात से भी भय लगता है। फिर भी मौत तो है, उस तथ्य को इनकार न कर सकोगे। किसी भांति उस तथ्य को स्वीकार करो तो शायद इस जीवन से जागने की क्षमता आ जाए। जिसने भी मृत्यु को स्वीकार किया वो देखेगा मृत्यु कभी आती है ऐसा थोड़ी, रोज हम मर रहे हैं। अभी आती है, अभी आ रही है, अभी घट रही है। ऐसा थोड़ी कि कभी 70 साल के बाद घटेगी, रोज रोज घटती है, 70 साल में पूरी हो जाती है। जन्म के साथ ही मौत का सिलसिला शुरू होता है, मरने के साथ पूरा होता है। लंबी प्रक्रिया है, मृत्यु कोई घटना नहीं है, प्रक्रिया है, पूरे जीवन पर फैली है। जैसे झील पर लहरें फैली हो ऐसे जीवन पर मौत फैली है। अगर तुम मौत को छिपाते हो, ढांकते हो, बचते हो तो तुम जीवन के सत्य को ना देख पाओगे। जिसे तुम जीवन कहते हो इस जीवन का सत्य तो मृत्यु है। सूरज का उभरना याद रहा और दिन का ढलना भूल गए। सूरज उग चुका है, ढलने में ज्यादा देर न लगेगी। जो उग चुका वो ढल ही चुका, जो उग गया है वो ढलने के मार्ग पर है। सुबह का सूरज सांझ का सूरज बनने की चेष्टा में संलग्न है। सांझ दूर नहीं है अगर सुबह हो गई। जब सुबह ही हो गई तो सांझ कितनी दूर हो सकती है? जिसको तुम भर जवानी कहते हो वो केवल आधे दिन का पूरा हो जाना है, आधी सांझ का आ जाना है। जवानी आधी मौत है। लेकिन कौन याद रखता है? जो याद रख लेके वही शिष्य है। मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं,
जिंदगी भी जान लेकर जाएगी। मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं, जिंदगी भी जान लेकर जाएगी। मौत को दुश्मन न समझना, जिसे तुम जिंदगी कहते हो वो मौत ही है, वो भी जान लेकर जाएगी। फूलों को चुनने वाले मोहित मन वाले पुरुष को मृत्यु उसी तरह उठा ले जाती है जिस तरह सोए हुए गांव को बढ़ी हुई बाढ़। तू हविस में दुनिया की जिंदगी मिटा बैठा, भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दुनिया थी। तू हविस में दुनिया की जिंदगी मिटा बैठा, दुनिया को पाने की चेष्टा में वो जो जीवन था उसे तूने मिटा दिया, और दुनिया के पाने की चेष्टा को ही तूने जिंदगी समझी, वो जिंदगी ना थी। भूल हो गई गाफिल सोए हुए आदमी, भूल हो गई जिंदगी ही दुनिया थी। इसे थोड़ा समझ लो, जिसे तुम दुनिया कहते हो तुम्हारे बाहर जो फैलाव है उसे जिंदगी मत समझ लेना। अगर उस बाहर की दुनिया को ही इकट्ठा करने में लगे रहे तो असली जिंदगी गंवा दोगे, पीछे पछताओगे, समय बीत जाएगा और रोओगे, फिर शायद कुछ कर भी ना सकोगे। अभी कुछ किया जा सकता है, मरते क्षण में शायद अधिकतम लोगों को यह समझ आती है। तू हविस में दुनिया की जिंदगी गंवा बैठा, मरते वक्त अधिक लोगों को यह ख्याल आना शुरू हो जाता है। भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दुनिया थी, लेकिन तब समय नहीं बचता। मरते मरते दिखाई पड़ना शुरू होता है कि महल जो बनाए, धन जो इकट्ठा किया, साम्राज्य जो फैलाए, भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दुनिया थी। भीतर की जिंदगी को जान लेते तो दुनिया को पा लेते, बाहर की दुनिया को पाने में लग गए भीतर की जिंदगी गंवा दी। बाहर और भीतर में उतना ही फर्क है जितना सत्य में और स्वप्न में। बाहर है स्वप्न का जाल, भीतर है साक्षी का निवास। जो दिखाई पड़ता है उस पर ध्यान मत दो, जो देखता है उस पर ध्यान दो। जो भोगा जाता है उस पर ध्यान मत दो, जो भोगता है उस पर ध्यान दो। आंख की फिक्र मत करो, आंख के पीछे जो खड़ा देखता है उसकी फिक्र करो। कान की फिक्र मत करो, कान के पीछे खड़ा जो सुनता है उसकी फिक्र करो। न जन्म की चिंता करो न मृत्यु की, चिंता करो उसकी जो जन्म में आता है और मृत्यु में जाता है, जो जन्म के भी पहले है और मृत्यु के भी बाद है। मरते क्षण में ये याद भी आए तो फिर क्या करोगे। जिनको पहले याद आ जाती है वे कुछ कर लेते। हिचकियों पर हो रही है, हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म, झटके देकर तार तोड़े जा रहे। मरते क्षण में तो फिर ऐसा ही लगेगा कि जिसको जिंदगी समझी। हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म, वो सारे स्वप्न, वे सारे गीत, वो सारा संगीत हिचकियों में बदल जाता है। हिचकियां ही हाथ में रह जाती है। हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म, झटके देकर तार तोड़े जा रहे। इसके पहले कि सब कुछ हिचकियों में बदल जाए, और इसके पहले कि तुम्हारा साज तोड़ा जाए, भीतर के गीत को गा लो। इसके पहले कि मौत शरीर को छीने, तुम उसे जान लो जिसे मौत छीन ना सकेगी। इसके पहले कि बाहर का जगत खो जाए, तुम भीतर के जगत में पैर जमा लो। अन्यथा तुम सोए हुए गांव की तरह हो, बड़ी हुई नदी की बाढ़ तुम्हें सोया सोया बहा ले जाएगी। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को हानि पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है, वैसे ही मुनि गांव में भिक्षाटन करे। जीवन के गांव की बात है। बुद्ध कह रहे हैं जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को हानि पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है,
ऐसे ही तुम इस जिंदगी में रहो। जीवन जो रस दे सके ले लो, मगर रस केवल वे ही ले पाते हैं जो जागृत है। शेष तो उन भौनों की तरह है जो रस लेने में इस तरह डूब जाते कि उड़ना ही भूल जाते। सांझ जब कमल की पखरियां बंद होने लगती तब वे उसी में बंद हो जाते, उनके लिए कमल भी कारागृह हो जाते। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को बिना हानि पहुंचाए रस लेके चुपचाप चल देता है, ऐसे जिंदगी को बिना कोई हानि पहुंचाए, यही अहिंसा का सूत्र है। अहिंसा का सूत्र इतना ही है कि रस लेने के तुम हकदार हो, लेकिन किसी की हानि पहुंचाने के नहीं। फूल को तोड़ के भी भोगा जा सकता है, वो भी कोई भोगना हुआ। भौरा आता है फूल पर, चुपचाप गुनगुनाता है गीत, रिझा लेता है फूल को, रस ले लेता, उड़ जाता, तोड़ता नहीं, मिटाता नहीं। भौरे की तरह मुक्त, भ्रमर की तरह मुक्त। बुद्ध कहते हैं जीवन के गांव में तुम जियो जरूर, लेकिन आबद्ध मत हो जाना, बंद मत हो जाना। हमारी हालत तो बड़ी उल्टी है, इससे ठीक उल्टी। बुद्ध कहते हैं दुनिया में रहना, लेकिन दुनिया के मत हो जाना। बुद्ध कहते हैं दुनिया में रहना, लेकिन हमारी हालत से ठीक उल्टी है। बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम है, बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम है। हम नहीं दुनिया में, लेकिन एक दुनिया हम में है। मर भी जाएं हम तो भी गम नहीं मरते, कब्र में भी तुम पड़े रहोगे। हम नहीं दुनिया में, लेकिन एक दुनिया हम में। तब भी तुम सपने देखोगे, तब भी तुम उसी दुनिया के सपने देखोगे जिससे तुमने कुछ कभी पाया नहीं। तुम्हारी आंखें फिर भी उसी अंधेरे में खोई रहेंगी जहां कभी रोशनी की किरण न मिली। तो एक तो है ढंग, दुनिया उस भीतर से नहीं हटती, और एक है सन्यासी का ढंग, वो जीता भी है तो दुनिया उसके भीतर नहीं होती। ये जीवन के विराट नगर के संबंध में भी सही है, और यही बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए कहा कि गांव गांव जब तुम भीख भी मांगने जाओ, भिक्षाटन भी करो, तो चुपचाप मांग लेना, ऐसे ही जैसे भौरा फूलों से मांग लेता और विदा हो जाना। ले लेना जो मिलता हो, धन्यवाद दे देना जहां से मिले, अनुग्रह पूर्वक स्वीकार कर लेना। न मिले तो दुखी मत होना, क्योंकि मिलना चाहिए धन्यभाग, न मिले संतोष। और जो न मिलने पर संतुष्ट है उसे मिल ही जाता है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी कि मिल जाने पर भी संतोष नहीं, तो मिल के भी नहीं मिल पाता। हम दरिद्र के दरिद्र ही रह जाते हैं। जीवन से बहुत कुछ पाया जा सकता है, सपने से भी सीखा जा सकता है, और मृग मरीचिकाएं भी बुद्धत्व का आधार बन जाती, भ्रम से भी जागने की कला उपलब्ध हो जाती। रस को लेकर चल देता है वैसे ही मुनि गांव में भिक्षाटन करे। न तो संसार का सवाल है, न संसार को छोड़ने का सवाल है, क्योंकि जो तुम्हारा है ही नहीं उसे तुम छोड़ोगे कैसे। इतने भर जानने की बात है कि हम यहाँ मेहमान से ज्यादा नहीं। जब तुम किसी के घर मेहमान होते हो, जाते वक्त तुम ऐसा थोड़ी कहते हो कि अब सारा घर तुम्हारे लिए छोड़े जाते, त्याग किए जाते। मेहमान का यहाँ कुछ है ही नहीं, घर में ठहरने का सौभाग्य मिल गया धन्यवाद, अपना कुछ है नहीं छोड़ेंगे क्या। इसलिए त्यागी वही है जिसने ये जान लिया कि हमारा कुछ भी नहीं, वह नहीं जिसने छोड़ा, क्योंकि जिसने छोड़ा उसे तो अभी भी ख्याल है कि अपना था छोड़ा। अपना हो तो ही छोड़ा जा सकता है, अपना हो ही ना तो छोड़ना कैसा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं छोड़ने की भ्रांति में मत पड़ना, क्योंकि वो पकड़ने की ही भ्रांति का हिस्सा है। तुम तो पकड़ने की भ्रांति को ही समझ लेना, अपना कुछ भी नहीं। अभी नहीं थे तुम, अभी हो, अभी फिर नहीं हो जाओगे। इस संसार को भीतर घर मत बनाने देना, तुम संसार में रहना,
लेकिन संसार तुम में न रह पाए।

मृत्यु और जीवन की हर प्रक्रिया से तुम एक ही रस को खोजते रहना और चुनते रहना, हर अवस्था तुम्हें जगाने का कारण बन जाए, निमित्त बन जाए। घरों की गृहस्थी, बाजारों की दुकान, कोई भी चीज तुम्हें सुनाने का बहाना न बने, जगाने का बहाना बन जाए। तो तुमने रस ले लिया। मरने के पहले अगर तुमने इतना जान लिया उनको, महाजीवन को जान लिया, तो तुमने रस ले लिया। तो तुम यूं ही न भटके, तो तुमने ऐसी ही गर्द गुबार न खाई, तो रास्ते पे तुम चले ही नहीं, पहुंचे भी तब तुम अचानक हैरान होगे, चकित होगे कि जिसे तुम खोजते फिरते थे वो तुम्हारे भीतर था। वो परमात्मा का राज्य तुम्हारे हृदय के ही राज्य का दूसरा नाम है। मोक्ष तुम्हारे भीतर छिपी स्वतंत्रता का ही नाम है। और क्या है जो अहंकार का टिमटिमाता दिया बुझ जाता है तो ऐसा नहीं कि अंधकार हो जाता है, उस टिमटिमाते दिए के बुझते ही महासूर्यों का प्रकाश तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। रविन्द्रनाथ ने लिखा है कि जब वे गीतांजलि लिख रहे थे तो पद्मा नदी पर एक बजरे में निवास करते थे, रात गीत की धुन में खोए, कोई गीत उतर रहा था, उतरे चला जा रहा था, वो एक टिमटिमाती मोमबत्ती को जला के बजरे में देर तक गीत की कड़ियों को लिखते रहे। कोई आधी रात फूंक मार के मोमबत्ती बुझाई, हैरान हो, पूरे चांद ही गीत था। जैसे ही मोमबत्ती बुझी कि बजरे की उस छोटी सी कुर्सी में सब तरफ से सूरज, सब तरफ से चांद की किरणें भीतर आ गई, रंध रंध से वो छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी चांद की किरणों को बाहर रोके हुई थी। तुमने कभी ख्याल किया कमरे में दिया जलता हो तो चांद भीतर नहीं आता? फिर दिया फूंक मार के बुझा दिया, चांद बरस पड़ा भीतर, बाढ़ की तरह सब तरफ से आ गया। रविन्द्रनाथ उस रात नाचे और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि आज एक अपूर्व अनुभव हुआ, कहीं ऐसा ही तो नहीं, कहीं हम निर्वाण है, इधर तुम बुझे, उधर सब तरफ से परमात्मा या जो भी नाम दो भीतर प्रविष्ट हो जाता है। तो एक तो जीवन को जीने का ढंग है जैसा तुम जी रहे हो, एक बुद्धों का ढंग भी है। चुनाव तुम्हारे हाथ में, तुम बुद्धों की भांति भी जी सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा सिवाय तुम्हारे। और तुम दीनहीन भिखमंगों की भांति भी जी सकते हो जैसा तुम जी रहे हो, कोई तुम्हें जबरदस्ती जिला नहीं रहा, तुमने ही न मालूम किस बेहोशी और नासमझी में इस तरह की जीवन निचाणु जिनमें तुम खुद ही कैद हो गए हो। मैं एक घर में मेहमान था, सामने एक मकान बन रहा था और एक छोटा लड़का वहां मकान के सामने पड़ी हुई रेत और ईंटों के बीच में खेल रहा था। उसने धीरे धीरे, मैं देखता रहा बाहर बैठा हुआ, मैं देख रहा था, उसने धीरे धीरे अपने चारों तरफ ईंटें लगा ली और ईंटों की जमाता गया ऊपर। फिर वो घबराया जब उसके गले तक ईंटें आ गई, क्योंकि वो खुद कैद हो गया। तब वो चिल्लाया कि बचाओ। मैं उसे देख रहा था और मुझे लगा यही आदमी की अवस्था है, ढंग से रखी है उसी ढंग से गिरा दो। तुमने ही रखी है, तुम ही उठा सकते हो, कारागृह तुम्हारा ही बनाया हुआ है, किसी और ने तुम्हें कारागृह में बंद नहीं किया है, खेल खेल में बना लिया है। खेल खेल में ही आदमी बंद हो जाता, जंजीरों में उलझ जाता है। चलने को चल रहा हूं पर इसकी खबर नहीं, मैं हूं सफर में या मेरी मंजिल सफर में। अब ऐसे मत चलो, अब जरा जाग के चलना हो जाए, अब जरा होश से चलो। महाकाश्यप उस दिन सुबह खिलखिला के न हंसा होता तो भी क्या बुद्ध उसे मौन के प्रतीक फूल को देते? प्रश्न पूछते समय थोड़ा सोचा भी करे कि प्रश्न का सार क्या है। यदि ऐसा हुआ होता, यदि वैसा हुआ होता,
इन सारी बात

तुम क्यों व्यर्थ समय को व्यतीत करते हो? महाकाश्यप नहसा होता तो बुद्ध फूल देते या न देते, इससे तुम्हें क्या होगा? महाकाश्यप ना भी हुआ हो, कहानी सिर्फ कहानी हो, तो भी तुम्हें क्या होगा? कुछ अपनी पूछो, कुछ ऐसी बात पूछो जो तुम्हारे काम पड़ जाए। प्रश्न ऐसे न हो कि सिर्फ मस्तिष्क की खुजलाहट हो, क्योंकि खुजलाहट का गुण है जितना खुजाओ बढ़ती चली जाती है। पूछने के लिए ही मत पूछो, अगर न हो प्रश्न तो पूछो ही मत, चुप बैठेंगे। शायद तुम्हारे बीच कोई महाकाश्यप हंसते। हंसना न हंसना महत्वपूर्ण नहीं है, बाहर जो घटता है उसका कोई मूल्य बुद्ध पुरुषों के लिए नहीं। फूल तो महाकाश्यप को दिया ही होता, वो अकेला ही था वहां जो बुद्ध के मन को समझ सकता था। हर हालत में फूल उसके पास गया होता, बुद्ध न देते तो भी गया होता। छोड़ दो फिक्र, हंसता नहीं, बुद्ध ना भी देते फूल तो भी मैं कहता हूँ उसी के पास गया होता, फूल खुद चला गया होता, कोई बुद्ध को देने की जरूरत भी न थी। घटना को समझने की कोशिश करो, ब्यौरे की व्यर्थ बकवास में मत पड़ो। घटना सीधी है कि बुद्ध चुप रहे, उस चुप्पी को कोई और न समझ पाया। चुप्पी को समझने के लिए तुम्हें भी चुप होना जरूरी है। जिस भाषा को समझना हो उस भाषा को जानना जरूरी है। मैं हिंदी बोल रहा हूं तो हिंदी जानना जरूरी है, मैं चीनी बोलूं तो चीनी जानना जरूरी है, तभी समझ सकोगे। बुद्ध उस दिन मौन बोले, मौन की भाषा बोले, जो मौन का रस जानता था वही समझा, जो मौन का रस नहीं जानते थे उन्होंने उस मौन को भी अपने चिंतन का व्यापार बना लिया। वो सोचने लगे बुद्ध मौन क्यों बैठे। अभागे लोग जब बुद्ध मौन थे तब चुप हो गए होते तो फूल उन्हें भी मिल सकता था, लेकिन वे सोचने लगे कि बुद्ध मौन क्यों बैठे, कि बुद्ध हाथ में फूल क्यों लिए। जिसने सोचा उसने गंवाया। बुद्धों के पास सोचने से संबंध नहीं जुड़ता, बुद्धों के पास तो न सोचने की कला आनी चाहिए। महाकाश्यप चुप रहा, उसने बस भर आंख देखा, उसने सोचा नहीं कौन फिक्र करे। इतना अप्रतिम सौंदर्य उस दिन प्रकट हुआ था, ऐसा सूरज उगा था जैसा कभी कभी सदियों में उगता है। बुद्ध उस दिन सब द्वार दरवाजे अपने मंदिर के खोल कर बैठे थे, निमंत्रण दिया था कि जिसे भी आना हो आ जाए। परमात्मा द्वार पर आके खड़ा था, दस्तक दे रहा था। तुम सोचने लगे, तुम विचार करने लगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्यों बुद्ध चुप बैठे हैं, पहले क्यों कभी नहीं बैठे। विचारक चूक गए। महाकाश्यप कोई विचारक न था, वो सिर्फ देखता रहा बुद्ध को। जैसे बुद्ध फूल को देखते रहे ऐसा महाकाश्यप बुद्ध को देखता रहा। वही तो इशारा था कि जैसे मैं देख रहा हूं फूल को, मात्र दृष्टा हूं, ऐसे ही तुम भी दृष्टा हो जाओ। आज हो चुकी बहुत बातें दर्शन की, अब दृष्टा हो जाओ। दर्शन की बात कब तक चलाए रखोगे? हो चुकी चर्चा भोजन की, अब भोजन करो, अब स्वाद लो। बुद्ध ने थाली सजा दी थी अपनी, तुम सोचने लगे भोजन के संबंध में। बुद्ध भोजन रखे सामने बैठे थे, जैसे बुद्ध फूल को देख रहे थे वैसा ही महाकाश्यप बुद्ध के फूल को देखने लगा। बुद्ध ने एक फूल देखा, महाकाश्यप ने दो फूल देखे, दो फूलों को एक साथ देखा, उन दोनों फूलों का तारतम्य देखा, संगीत देखा, लयबद्धता देखी,
एक अपूर्व छंद का उसे अनुभव होने लगा। रुकता भी महाकाश्यप कैसे बिना हंसे, क्यों हंसा महाकाश्यप? हंसा लोगों पर जो कि सोच में पड़ गए हैं। मंदिर सामने खड़ा है और वो मंदिर की खोज कर रहे हैं। सूरज उग चुका है, वो आंख बंद किए प्रकाश की चर्चा में लीन है। महाकाश्यप हंसा लोगों की मूर्ता पर। हंसा कहना ठीक नहीं, हंसी निकल गई, कुछ किया नहीं हंसने में, रुक न सका, घट गया, फूट पड़ी हंसी। देख के सारी न समझी, हजारों लोग मौजूद थे, चूके जा रहे इस मूर्ता पर हंसा है और इस बात पर भी हंसा कि बुद्ध ने भी खूब खेल खेला, जो नहीं कहा जा सकता वो भी कह दिया, जो नहीं बताया जा सकता उसको भी बता दिया, जिसको जतलाने में कभी अंगुलियां समर्थ नहीं हुई उस तरफ भी इशारा कर दिया। उपस्थित उस दिन मात हो गए, जो नहीं कहा जा सकता था उसे कृत्य बना दिया, वक्तव्य दे दिया उसका संपूर्ण जीवन से। इसलिए उस दिन के बाद जैन परंपरा में जब भी गुरु प्रश्न पूछता है तो शिष्य को उत्तर नहीं देना होता, कोई कृत्य करना होता है जिससे वक्तव्य मिल जाए, कोई कृत्य, ऐसा कृत्य जिसमें शिष्य संपूर्ण रूप से डूब जाए। महाकाश्यप हंसा ऐसा नहीं, महाकाश्यप हंसी हो गया। पीछे कोई बचा नहीं जो हंस रहा था, कोई पीछे खड़ा नहीं था जो हंस रहा था, महाकाश्यप एक खिलखिलाहट होकर बिखर गया उस संगत पर। जैन फकीर प्रश्न पूछते, एक जैन फकीर हुआ बैठा था, शिष्य बैठे थे, एक बर्तन में पानी रखा था। उसने कहा कि सुनो, बिना कुछ कहे बताओ कि ये क्या है, ये बर्तन और ये पानी, बिना कुछ कहे कोई वक्तव्य दो, अर्थात कृत्य से घोषित करो जैसा महाकाश्यप ने किया था खिलखिलाकर। और जब कृत्य से महाकाश्यप ने घोषित किया तो कृत्य से बुद्ध ने उत्तर भी दिया फूल देकर। आज मैं भी तुम्हें फूल देने को उत्सुक हूं। शिष्य देखने लगे हाथ में कोई फूल तो नहीं था, सोचने लगे कि ये बात तो और उलझन की हो गई, कम से कम बुद्ध हाथ में फूल तो लिए थे, इस आदमी के हाथ में कोई फूल नहीं, वो फूल के संबंध में सोचने लगे। और उन्होंने लाख सोचा कि इस पानी भरे बर्तन के संबंध में क्या कहो, बिना कहे कैसे वक्तव्य दो। और तभी भोजन का समय करीब आ रहा था, रसोईया जो भिक्षु जो सन्यासी रसोई का काम करता था वो भीतर आया। उसने ये उदासी चिंतन से तने हुए लोग देखे, उसने पूछा मामला क्या है? गुरु ने कहा एक सवाल है, इस बर्तन जल भरे बर्तन के संबंध में वक्तव्य देना है, कोई वक्तव्य जो इसकी पूरी के पूरे रहस्य को प्रकट कर दे, शब्द का उपयोग नहीं करना है, और जो ये करेगा वही फूल में देने को तैयार हूं जो बुद्ध ने दिया था। लेकिन उस रसोई ने गुरु के हाथ की तरफ देखा ही नहीं कि फूल वहां है या नहीं। गुरु फूल है, अब इसमें फूल क्या देखना। वो उठा, उसने एक लात मार दी उस बर्तन में, पानी लुढ़क के सब तरफ बह गया। और वो बोला कि अब उठो, हो गई बकवास बहुत, भोजन का समय हो गया। कहते हैं गुरु ने उसके चरण छू लिए, दे दिया फूल, वक्तव्य उसने प्रकट कर दिया। अस्तित्व को तो ऐसे ही बिखेर के बताया जाता है, अब और क्या कहने को रहा, उल्टा दिया पात्र, जल बिखर गया सब तरफ। ऐसे ही उस दिन महाकाश्यप ने भी उल्टा दिया था अपना पात्र, खिलखिलाहट बिखर गई थी सब तरफ। ऐसी फिर हजारों घटनाएं हैं जैन परंपरा में, एक घटना को दोबारा नहीं दोहरा सकते, याद रखना, क्योंकि दोहराने का तो मतलब होगा सोच के। इसलिए हर घटना अनूठी है और आखिरी, फिर तुम उसे पुनरुक्त नहीं कर सकते। अगर मैं आज फूल लेके आ जाऊं
तो जो हंसेगा उसको घर नहीं मिलेगा। अगर आज मैं बर्तन में पानी रख के बैठ जाऊं और तुमसे पूछूं तो जो लात मार के लुड़काएगा उसको घर नहीं मिलेगा। वो तो विचार हो गया। अब तो महाकाश्यप की कहानी पता है, हजारों घटनाएं, लेकिन हर घटना अनूठी है और उसकी पुनरुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पुनरुक्ति यानी विचार। कुछ कहो पूरे अस्तित्व से और कुछ कहो इस ढंग से जैसा कभी ना कहा गया हो, तो फिर मन को जगह नहीं बचती। मन तो अनुकरण करता है, दोहराता है, यंत्रवत है। मन के पास कोई मौलिक सूझ नहीं होती। एक दूसरे दिन फकीर का एक शिष्य बहुत दिन से चिंता में रखे, गुरु ने कोई सवाल दिया जो हल नहीं होता। जब सब तरह के उपाय कर चुका तो उसने प्रधान शिष्य को पूछा कि तुम तो स्वीकार हो गए हो, तुम तो कुछ कुंजी दो, हम परेशान हुए जा रहे हैं, वर्षों बीत गए, कुछ हल नहीं होता, कोई राह नहीं मिलती, और जब भी जाते हैं हम उत्तर भी नहीं दे पाते। गुरु कहता बस बकवास बंद, अभी हम बोले भी नहीं, अभी तो हद हो गई, ऐसे तो हम कभी भी जीत ना पाएंगे, कम से कम बोलने तो दो, हम कुछ कहें फिर तुम कहो गलत और सही। हम बोलते ही नहीं और गलत हो जाता है, तो अब तो सही होने का कोई उपाय ना रहा है। गुरु नाराज है। शिष्य हंसने लगा। प्रधान शिष्य का नाराज नहीं, क्योंकि जब तुम विचार करते हुए जाते हो तो चेहरे का ढंग ही और होता है, जब तुम निर्विचार में जाते हो तो चेहरे का ढंग ही और होता है। सोचो थोड़ा, जब तुम विचार से भरे होते हो तो सारे चेहरे पर तनाव होता, आंख में माथे पर बल होते, जब तुम निर्विचार में होते हो सब बल खो जाते हैं, सब तनाव खो जाता है। जब तुम निर्विचार में होते हो तब तुम्हारे चारों तरफ ऐसी शांति झरती कि अज्ञानी भी पहचान ले तो गुरु ने पहचान लिया। वो तुम्हें दरवाजे के भीतर घुसने देता है, ये भी उसकी करुणा। उस प्रधान शिष्य ने कहा कि मेरी तुम्हें पता नहीं, दरवाजे के बाहर ही रहता था, वो कहता था लौट जा, फिजूल की बकवास लेके मत आ, अभी उसने मुझे देखा भी नहीं था, लेकिन जैसे मेरी छाया मुझसे पहले पहुंच जाती, जैसे मेरा वातावरण, मैं दरवाजे पर होता और उसे छू लेता, जैसे कोई गंध उसे खबर देती थी। तो इस नए शिष्य ने पूछा फिर तुमने कैसे उसकी अनुकंपा को पाया, उसके प्रसाद को पाया। उसने कहा वो तो मैं कभी ना पा सका, जब मैं मर ही गया तब मिला। उसने कहा भले मानुष पहले क्यों ना बताया, यही हम भी करेंगे। अब कहीं कोई ये कर सकता है। दूसरे दिन वो गया, जैसे ही गुरु ने उसकी तरफ देखा, इसके पहले कि गुरु कहे कि नहीं बकवास बंद, वो भड़ाम से गिर पड़ा, हाथ बंद कर ली, हाथ फैला दी, जैसे मर गया। गुरु ने कहा बहुत खूब, बिल्कुल ठीक ठीक किया। प्रश्न का क्या हुआ? उस शिष्य ने अब मजबूरी एक आंख खोली और कहा कि प्रश्न तो अभी हल नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा ना समझ, मुर्दे बोला नहीं करते और न मुर्दे ऐसे आंख खोलते, उठ भाग यहां से और किसी दूसरे से उत्तर मत पूछना। पूछे उत्तरों का क्या मूल्य है? वो तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारे अंतरतम से आना चाहिए, तुम उसमें मौजूद होने चाहिए। वो तुम्हारा गीत हो, वो तुम्हारा नाच हो, उसमें तुम पूरे लीन हो जाओ, वो जीवन हो कि मौत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाकाश्यप उस दिन हंसा, कहना ठीक नहीं हंसा, हंसी फैल गई। देखते ये सारी दशा, बुद्ध का सामने होना और लोगों का अंधे बने रहना, सूरज का निकल आना और अंधेरे का न मिटना, देखते हंसा। ज्ञान बरसता हो और लोगों के घड़े चिकने हो और जल उन पर पड़ता ही न हो, ये देखते हंसा। हंसता या न हंसता भूल उसे मिलना था। हंसी न हंसी तो संयोगी थी। बुद्ध ने फूल हर हालत दिया होता, हंसने की वजह से नहीं दिया, ध्यान रखना, नहीं तो फिर भूल हो जाएगी।
यही तो भूल है मन की। तब तुम सोचो कि हंसने की वजह से दिया, तो अगर अब दोबारा कभी ऐसा मौका हमें मिलेगा तो हम हंस देंगे, वहीं तुम चूक जाओगे। हंसने की वजह से नहीं दिया, हंसी के पीछे जो मौन था, हंसी के पीछे विचार भी हो सकता तब व्यर्थ हो गई। हंसी के पीछे जो मौन था, उस खिलखिलाहट के फूलों के पीछे जो परम शांति थी, वो हंसी निर्वाण का फूल थी। न हंसता तो बुद्ध उठ के गए होते, हंसा तो बुद्ध ने उसे बुला भी लिया, न हंसता तो बुद्ध खुद उठ के गए होते, खुद उसकी झोली में उड़ेल दिया होता। लेकिन इस तरह के प्रश्न तुम्हारे मन में उठते क्यों? तुम्हारे जीवन की समस्याएं हल हो गई कि तुम महाकाश्यप की चिंता में पड़े हो? तुम्हारा जीवन समाधान को उपलब्ध हो गया कि तुम इस तरह के बौद्धिक प्रश्न उठाते हो? मत गमाओ समय को इस भांति, अन्यथा कोई महाकाश्यप तुम पर भी हंसेगा, तुम्हारी मूर्ता पर भी हंसेगा। यहां मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं, कुछ हो सकता है। जब मैं मौजूद नहीं रहूंगा तब तुम रोओगे, अगर अभी ना हंसे तो तब तुम रोओगे। इस मौजूदगी का उपयोग कर लो, इस मौजूदगी को पी लो, इस मौजूदगी को तुम्हारे रग रेशे में उतर जाने दो। व्यर्थ के ऊहापोह में मत पड़ो। मदरसे तक ही थी बहस आराइयां, पाठशाला तक तर्क तर्क जाल, प्रश्नों प्रश्नों के विस्तार। मदरसे तक ही थी बहस आराइयां, चुप लगी जब बात की तह पा गए। तो जो मैं कहता हूं उसको तुम तर्क मत बनाओ, अन्यथा तुम चूके। तब तुम किसी दिन पछताओगे कि इतने करीब थे और चूक गए। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि सोचने वालों ने गमा दिया है और न सोचने वालों ने पा लिया है। कभी कभी क्या हमेशा ही ऐसा हुआ है? जो मैं कह रहा हूं वो इसीलिए कह रहा हूं ताकि चुप लग जाए और तुम बात की तह पा जाओ। तुम बात में से बात निकाल लेते हो, बात की तह नहीं पाते। एक बात से तुम दस दूसरी बातों पर निकल जाते हो। मैं करता हूं इशारा चांद की तरफ, तुम उंगली पकड़ लेते हो। तुम उंगली के संबंध में पूछने लगते हो, तुम चांद की बात ही भूल जाते हो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम्हें कहना पड़े, थी ना आजादे फना, किस्ती ए दिल ए ना खुदा, मौज तूफान से बची तो नजरे साहिल हो गई। किसी तरह तूफान से बच के आ भी गए तो किनारे से टकरा गए। थी ना आजादे फना, किस्ती ए दिल ए ना खुदा, मौज तूफान से बची तो नजरे साहिल हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि हम मेरे किनारे पे आके भी डूब जाओ। कोई एजाजे सफर था या फरेबे चश्मे शौक, सामने आकर नेहा आंखों से मंजिल हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल सामने आ गई हो और फिर भी तुम चूक जाओ। उस दिन बुद्ध के सामने बैठे लोग चूक गए। सामने आकर नेहा आंखों से मंजिल हो गई, आ गई थी सामने मंजिल, लेकिन जिसे पहुंचना है अगर वही तैयार ना हो तो मंजिल भी क्या करे। सामने भी आ जाए तो भी तुम चूक जाओगे, क्योंकि सवाल मंजिल का नहीं तुम्हारा है। व्यर्थ की बातों में मत पड़ो। और यदि ऐसा होता तो कैसा होता, ये तो पूछो ही मत। इसकी तुम्हें व्यथा नहीं दिखाई पड़ती कि यदि रावण सीता को न चुराता तो रामायण का क्या होता? अब इसका कौन उत्तर दे, इसका कौन उत्तर दे, और उत्तर का क्या अर्थ है? जो हो गया हो गया, उससे अन्यथा नहीं हो सकता था। अब तुम उसमें से और व्यर्थ की बातें मत निकालो, नहीं तुम सोचते ही रहोगे। प्रत्येक पल सोचने में गवाया बड़ा महंगा है।
بلش

दुस्सह बुद्ध के देह में जीवित रहते उनका भिक्षु संघ एकता में रहा, लेकिन बुद्ध के देह विसर्जन के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया बुद्ध धर्म अनेक शाखाओं एवं प्रशाखाओं में बटने लगा। अज्ञानी संप्रदाय बनाते हैं, लेकिन बुद्ध के ज्ञानी शिष्य भी अनेक विभिन्न एवं विपरीत संप्रदायों में बट गए। कृपया इस घटना पर कुछ प्रकाश डालें। अज्ञानी संप्रदाय बनाते हैं, ज्ञानी भी संप्रदाय बनाते हैं, लेकिन अज्ञानी का संप्रदाय कारागृह हो जाता है और ज्ञानी का संप्रदाय मुक्ति की एक राह है। संप्रदाय का अर्थ होता है मार्ग, संप्रदाय का अर्थ होता है जिससे पहुंचा जा सकता है। ज्ञानी मार्ग से पहुंचते हैं, मार्ग बनाते भी, अज्ञानी मार्ग से जकड़ जाते हैं, पहुंचते नहीं। मार्ग बोझिल हो जाता है, छाती पर पत्थर की तरह बैठ जाता है। ज्ञानी मार्ग का उपयोग कर लेते हैं, अज्ञानी मार्ग से ही बंध जाते हैं। संप्रदाय में कुछ बुराई नहीं है अगर पहुंचाता हो। संप्रदाय शब्द बड़ा बहुमूल्य है, जिससे पहुंचा जाता है वही संप्रदाय है, लेकिन बड़ा गंदा हो गया। लेकिन गंदा हो जाने का कारण संप्रदाय नहीं है। अब कोई नाव को सिर पर रख के ढोए तो इसमें नाव का क्या कसूर है? क्या तुम नाव के दुश्मन हो जाओ कि लोग नाव को सिर पर रख के ढो रहे हैं? मूर्ति तो ढोएंगे ही, नाव न होती कुछ और ढोते हैं। मंदिर मस्जिद न होते लड़ने को तो किसी और पास से लड़ते हैं, कुछ और कारण खोज लेते हैं। जिन्हें जाना नहीं वे मार्ग के संबंध में विवाद करने लगते, जिन्हें जाना है वे मार्ग का उपयोग कर लेते, और जिसने मार्ग का उपयोग कर लिया वो मार्ग से मुक्त हो जाता है। जिसने नाव का उपयोग कर लिया वो नाव को सिर पर थोड़ी ढोता है, नाव पीछे पड़ी रह जाती, रास्ते पीछे पड़े रह जाते, तुम सदा आगे बढ़ते चले जाते हो। संप्रदाय में अपने आप कोई भूल भ्रांति नहीं है, भूल भ्रांति है तो तुम में। तुम तो औषधि को भी जहर बना लेते हो, बड़े कलाकार, तुम्हारी कुशलता का क्या कहना? जो जानते हैं वे जहर को भी औषधि बना लेते हैं। वक्त के काम पड़ जाता है जहर भी जीवन को बचाने के, तुम्हारी औषधि भी जीवन की जानलेवा हो जाती। असली सवाल तुम्हारा है। बुद्ध के जाने के बाद धर्म शाखा प्रशाखाओं में बटा, बटना ही चाहिए। जब वृक्ष बड़ा होगा तो पेड़ ही पेड़ थोड़ी रह जाएगा, शाखा प्रशाखाओं में बटेगा। पेड़ ही पेड़ बड़ी ठूठ मालूम पड़ेगी, उस वृक्ष के नीचे छाया किसको मिलेगी जिसमें पेड़ ही पेड़ हो? उससे तो खजूर का वृक्ष भी बेहतर, कुछ तो छाया थोड़ी बहुत कहीं पड़ती होगी। वृक्ष तो वही शानदार है, वही जीवित है जिसमें हजारों शाखाएं प्रशाखाएं निकलती है। शाखाएं प्रशाखाएं तो इसी की खबर है कि वृक्ष में हजार वृक्ष होने की क्षमता थी, किसी तरह एक में समा लिया है। हर्ज भी कुछ नहीं है, जितनी शाखाएं प्रशाखाएं हो उतना ही सुंदर, क्योंकि उतने ही पक्षी बसेरा कर सकेंगे, उतने ही पक्षी घोंसले बना सकेंगे, उतने ही यात्री विश्राम पा सकेंगे, उतनी ही बड़ी छाया होगी, उतनी ही गहन छाया होगी, धूप से तपे मानों के लिए आसरा होगा, सरल होगी। जो वृक्ष फूट रह जाए उसका क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ हुआ वृक्ष बांझ, उसमें फैलने की क्षमता नहीं है। जीवन का अर्थ है फैलने की क्षमता। सभी जीवित चीजें फैलती हैं, सिर्फ मृत्यु सिकुड़ती है। मृत्यु सिकुड़ती है जीवन फैलाता है, जीवन विस्तार है, एक से दो, दो से अनेक होता चला जाता है। परमात्मा अकेला था फिर अनेक हुआ, क्योंकि परमात्मा जीवित था। अगर मुर्दा होता तो अनेक नहीं हो सकता था।
संसार को गाली मत देना, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आए तो समझोगे कि संसार परमात्मा की शाखाएं प्रशाखाएं, तुम भी उसी की शाखा प्रशाखा हो। इतना जीवित है कि चुकता ही नहीं, फैलता ही चला जाता है। वृक्ष भारत में बड़े प्राचीन समय से जीवन का प्रतीक रहा है। बुद्ध के वृक्ष में बड़ी क्षमता थी, बड़ा बल था, बड़ी संभावना थी। अकेली पीड़ से कैसे बुद्ध का वृक्ष चिपका रहता, जैसे जैसे बड़ा शाखाएं प्रशाखाएं हुई। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में उन शाखाओं प्रशाखाओं में कोई विरोध न था, वे सभी एक ही वृक्ष से जुड़ी थी और एक ही जड़ पर जीवित थी। उन सभी का जीवन एक ही स्रोत से आता था, बुद्ध स्रोत थे। ज्ञानी ने इसमें कुछ विरोध न देखा, इसमें इतना ही देखा कि बुद्ध में बड़ी संभावना है। ये जरा हैरान की बात है, सारी मनुष्य जाति में बुद्ध ने जितनी संभावनाओं को जन्म दिया किसी दूसरे आदमी ने नहीं दिया। महावीर के वृक्ष में केवल दो शाखाएं लगी, दिगंबर श्वेतांबर बस, और उनमें भी कोई बहुत फासला नहीं है, क्षुद्र बातों का फासला है। तो कोई महावीर का श्रृंगार करके पूछता है, कोई महावीर को नग्न पूछता है। श्रृंगार के भीतर भी महावीर नग्न है और नग्न में भी उनका बड़ा श्रृंगार है, इसमें कुछ बड़ा फासला नहीं। उनकी नग्नता ही श्रृंगार है, अब और क्या सजाना है उनको, और सजाना तो ऐसे है जैसे कोई सांप पर पैर चिपका है। तो सांप अकेला बिना पैर के खूब चलता था, अब तुम और पैर चिपका के उसे खराब मत करो। ये तो उन पर और श्रृंगार करना ऐसे है जैसे कोई मोर को और रंगों से पोते, मोर वैसे ही काफी रंगीन था, अब तुम कृपा करके रंग खराब मत करो। महावीर की नग्नता में ही खूब श्रृंगार है, उन जैसी सुंदर नग्नता कभी प्रकट हुई तो फिर तुम्हारी मौज है, तुम्हारा मन नहीं मानता। इसलिए नहीं कि महावीर में कुछ कमी है, तुम्हारा मन बिना किए कुछ नहीं मानता। तुम कुछ करना चाहते हो करो भी क्या, महावीर जैसे व्यक्ति के सामने एकदम असमर्थ हो जाते हो। सुंदर कपड़े पहनाते हो, सुंदर आभूषण लगाते हो, ये तुम्हारी राहत है। तो महावीर का कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारे सब वस्त्रों के पीछे भी वे अपनी नग्नता में खड़े नग्न ही है। ऐसे छोटे छोटे फासले हैं। दिगंबर कहते हैं कि उनकी कोई शादी नहीं हुई, श्वेतांबर कहते हैं शादी हुई, क्या फर्क पड़ता है। दिगंबर कहते हैं उनका कोई बच्चा नहीं हुआ, जब शादी ही नहीं हुई तो बच्चा कैसे हो। श्वेतांबर कहते हैं उनकी एक लड़की थी, पर क्या फर्क पड़ता है। महावीर में से क्या फर्क पड़ता है शादी हुई कि ना हुई, ये तो फिजूल के विस्तार की बातें हैं। महावीर के होने का इससे क्या लेना देना है, शादी हुई हो तो ठीक, न हुई हो तो ठीक, जिसको जैसी मौज हो वैसी कहानी बना ले, लेकिन कोई बहुत बड़ा विस्तार नहीं होगा। जीसस के भी दो शाखाएं फूट के रह गई, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, कोई बड़ा विस्तार नहीं होगा। बुद्ध अनूठे हैं, अद्वितीय हैं, सैकड़ों शाखाएं हुई और प्रत्येक शाखा इतनी विराट थी कि उसमें से भी प्रशाखाएं हुई। कहते हैं जितना दर्शन के मार्ग अकेले बुद्ध ने खोले उतने मनुष्य जाति में किसी व्यक्ति ने नहीं खोले। बुद्ध अकेले समस्त प्रकार के दर्शनों का स्रोत बन गए। ऐसी कोई दार्शनिक परंपरा नहीं है जगत में जिसके समतुल परंपरा बुद्ध धर्म में ना हो। अगर तुम बुद्ध धर्म का पूरा इतिहास समझ लो तो बाकी सब धर्मों का इतिहास छोड़ भी दो तो कुछ हार जाना होगा, क्योंकि सारे जगत में जो भी कहीं हुआ है, जो विचार कहीं भी जन्मा है, वो विचार बुद्ध में भी जन्मा है। बुद्ध अकेले बड़े विराट वृक्ष, ये तो सौंदर्य की बात है, ये तो अहोभाव और उत्सव की बात है, इसमें कुछ चिंता का कारण नहीं है। ये तो इतना ही बताता है कि बुद्ध में बड़ी संभावना थी। ज्ञानी ने तो उस संभावना का उपयोग किया, उसमें कोई झगड़ा न था। बिल्कुल विपरीत जाने वाली शाखाएं भी, एक पूरब जा रही एक पश्चिम जा रही, फिर भी एक ही तने से जुड़ी होती, विरोध कहां है।
और उन दोनों का जीवन स्रोत एक ही जगह से आता है। एक बुद्ध ही फैलते चले गए सब में, इससे कुछ अड़चन न थी, लेकिन अज्ञानी अड़चन खड़ी करता है। अज्ञानी की अड़चन ऐसी है कि वो ये भूल ही जाता है कि सभी विरोध अलग अलग दिशाओं में जाती शाखाएं एक ही स्रोत से जन्मी है। मैंने सुना है एक गुरु के दो शिष्य थे। गर्मी की दोपहर थी, गुरु विश्राम कर रहा था और दोनों उसकी सेवा कर रहे थे। गुरु ने करवट बदली तो दोनों शिष्यों ने आधा आधा गुरु को बांट रखा था सेवा के लिए। बाया पैर एक ने ले रखा था, दाया पैर एक ने ले रखा था। गुरु ने करवट पड़ी तो बदली तो बाया पैर दाए पैर पर पड़ गया। स्वभाव तो झंझट खड़ी हो गई। गुरु तो एक है, शिष्य दो थे, दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान बांटा हुआ था। तो जब दाएं पैर पे बाएं पैर पड़ा तो जिसका दाएं पैर था उसने कहा हटा ले अपने बाएं पैर को, मेरे पैर पर पैर सीमा होती है सहने की, बहुत हो चुका हटा ले। उस दूसरे का देखूं किसकी हिम्मत कि मेरे पैर को कोई हटा दे, सिर कट जाएंगे मगर मेरा पैर जहां रख गया रख गया। ये कोई साधारण पैर नहीं, अंगद का पैर है। भारी झगड़ा हो गया, दोनों लठ लेके आ गए। गुरु इस उपद्रव सुन के उसकी नींद खुल गई। उसने देखी ये दशा, उसने जब लठ चलने के ही करीब आ गए, लठ चलने वाले थे गुरु पर, क्योंकि जिसका दायां पैर था वो बाएं पैर को तोड़ डालने को तत्पर हो गया था और जिसका बाएं पैर था वो दाएं पैर को तोड़ डालने को तत्पर हो गया था। गुरु ने कहा जरा रुको, तुम मुझे मार ही डालोगे, ये दोनों पैर मेरे, तुमने विभाजन कैसे किया? अज्ञानी बांट लेता है और भूल ही जाता है कि जो उसने बांटा है वो एक ही व्यक्ति के पैर या एक ही वृक्ष की शाखाएं। अज्ञानी ने उपद्रव खड़ा किया, अज्ञानी लड़े, एक दूसरे का विरोध किया, एक दूसरे का खंडन किया, एक दूसरे को नष्ट करने की चेष्टा की। जब संप्रदाय अज्ञानी के हाथ में पड़ता है तब खतरा शुरू होता है। ज्ञानी संप्रदाय को बनाता है क्योंकि धर्म की शाखाएं प्रशाखाएं पैदा होती, जितना जीवित धर्म उतनी शाखाएं प्रशाखाएं। दुनिया से संप्रदाय थोड़ी मिटाने हैं, अज्ञानी मिटाने हैं। जिस दिन संप्रदाय मिट जाएंगी दुनिया बड़ी बेरौनक हो जाएगी। उस दिन गुरु बिना पैर के होगा, उसको फिर जैसे भिकमंगों को ठेले पर रख के चलाना पड़ता है ऐसे चलाना पड़ेगा। फिर वृक्ष बिना शाखाओं के होगा, न पक्षी बसेरा करेंगे न राहगीर छाया लेंगे। और जिस वृक्ष में पत्ते न लगते हो शाखाएं न लगती हो उसका इतना ही अर्थ है कि जगह सूख गई, अब वहां जीवन नहीं, जीवन छोड़ चुका उसे, उड़ गया। तुम पूछते हो बुद्ध के देह में जीवित रहते उनका भिक्षु संघ एकता में रहा? नहीं, ज्ञानी के लिए तो वो अब भी एकता में है। और तुमसे मैं कहता हूं अज्ञानी के लिए वो तब भी एकता में नहीं था जब बुद्ध जीवित थे, तब भी अज्ञानी अपनी तैयारियां कर रहे थे, तभी फिरके बटने शुरू हो गए थे। बुद्ध के जीते जी अज्ञानियों ने अपने हिसाब बांट लिए थे, अलग अलग कर लिए थे। बुद्ध के मरने से थोड़ी अचानक अज्ञान पैदा होता है, अज्ञानी तो पहले भी अज्ञानी था, वो कोई अचानक थोड़ी अज्ञानी हो गया। और जो अज्ञानी है बुद्ध के जीवित होने से थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। अज्ञान तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, बुद्ध क्या कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना तो तुम्हें पड़ेगा, समझा सकता हूँ, समझना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर तुम न समझने को ही जिद किए बैठे हो, अगर समझने के लिए तुमने जरा भी तैयारी नहीं दिखाई है तो बुद्ध लाख सिर पीटते रहे कोई परिणाम नहीं हो सकता।

0: Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर वन।
1: नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी में। जिंदगी का ये सफर तय करते, कई रोल्स निभाते, कई बार एक सवाल बार बार उठता है कि कौन हूँ मैं। उस सवाल को हम दबा कर आगे बढ़ जाते हैं और हर रोल को फिर निभाने लगते हैं। लेकिन हमने जो ये सफर तय किया है उसमें इस सवाल को सामने लाए हैं और इस पूरे सफर में ये तलाशने की कोशिश की है। कई जवाब हमें मिले भी हैं, लेकिन हम उस पड़ाव पर पहुंचे थे कि किस तरह से जो हमारी ईगोज हैं, वो कई बिहेवियर्स जो हमारे होते हैं उनको बताती है कि वो अड़चन बन सकती है, और कैसे हम सुप्त अवस्था में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। जागना क्यों जरूरी है और जागा कैसे जा सकता है, यही आज तलाशने की कोशिश करेंगे अपनी इस कड़ी में। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ है ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
2: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी, बहुत कुछ हमने अपने बारे में जानने की कोशिश की है, जाना है कि ईगो क्या है। जिसे हम मानते थे कि ईगो है, वो कहीं ना कहीं अंदर के आंतरिक भय से जुड़ा था, अटैचमेंट से जुड़ा था, और अब ये भी जान गए हैं कि हम सोए हुए हैं। कहीं ना कहीं जागना जरूरी है।
2: जागना टू रियलिटी।
1: यस।
2: से अवेकन टू व्हाट? अवेयरनेस ऑफ व्हाट? अवेयरनेस ऑफ द प्रोसेस। अभी तक सोए हुए थे, मतलब सोचेंगे क्या सोए हुए थे, कि जो सत्य है उसकी तरफ जैसे मून उससे परे हटा हुआ था, आंखें बंद थी, तो जिसको हम कहते हैं अज्ञान की नींद में सोए हुए थे। नहीं कहते कि तीसरा नेत्र खुल गया, मतलब ज्ञान का नेत्र खुल गया, जो असलियत है, जो सत्यता है, जो अंदर एक प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में जागृता।

0: गई। तो नाउ क्योंकि अब प्रोसेस पता चल गया, अब उसको फॉलो करना शायद थोड़ा सा इजी हो जाना चाहिए।
1: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, जैसा आपने ये कहा कि किसके बारे में जानना है, क्योंकि हमें कई बार कहा जाता था, मुझे भी अगर मैं अपने आप को देखूं तो कहा जाता है कि खुद के बारे में अवेयर हो जाओ, अपने बारे में सोचो, मेडिटेट करो। ये सारे सवाल आते तो थे, सब कुछ तो था, लेकिन करना कैसे है? आज जब ये प्रोसेस समझ में आया है कि ये होता है हमारे अंदर, ना किस तरह से हमारा थॉट जो है वो हमारी डेस्टिनी क्रिएट करता है, किस तरह से ईगो दो तरह की हो सकती है, हम हर्ट होने को, सेंसिटिविटी को अपनी हम अपनी स्ट्रेंथ मानते थे, वो कहाँ किस तरह से हमारे भय का एक रूप होती
0: है, कोई ना कोई एक अटैचमेंट है,
1: हाँ,
0: जो पकड़ी हुई है, वी हैव टू लेट गो ऑफ दैट।
1: लेकिन ये जो अपनी सेल्फ अवेयरनेस की जो सुप्त अवस्था है, हम नहीं जानते कि भाई क्या है हम, उसको जागृत करने का प्रोसेस अब क्या है?
0: We will have to go through a few steps. मतलब ये सब कुछ जैसे आपने कहा हमें समझ पे भी आ गया, फिर भी सारा दिन में करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि थोड़ा सा उसको समय देना पड़ेगा। एंड वो समय देना मतलब क्या, आप देखो सवेरे से उठते हैं, इट बिगिंस विद न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इस तरफ से रेडियो ऑन है, चौथी तरफ सब तैयार हो रहे हैं, शोर मच रहा है, एंड एक्चुअली जो सारा दिन हमारा बीतता है वो बहुत शोर में बीतता है। शोर नॉट नेसेसरली बाहर, लेकिन शोर अंदर। यू नो, इफ यू जस्ट एक मिनट के लिए डिटैच होकर सबसे पहले अपने मन की स्थिति को देखें, तो सारा दिन साइलेंस बहुत कम है। सारा दिन मन में ये करना है, ये करना है, जल्दी करो, यहाँ हुआ कि नहीं, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे तो ये करना था। द स्पीड ऑफ द माइंड इज वेरी फास्ट। अगर इतनी ज्यादा स्पीड होगी तो फिर रास्ते में कौन आ रहा है जा रहा है वो नहीं दिखाई देगा। यू नो, इफ यू आर गोइंग एट 120 तो यू विल नॉट रियली सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द जर्नी।
1: बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अस,
0: इनसाइड में,
1: अंदर ही इतनी तेज स्पीड पे चल रहे हैं,
0: बहुत ज्यादा तेज है ना। आप देखो संकल्पों की गति इज अबाउट 25-30 थॉट्स पर मिनट, और आजकल हम बहुत ज्यादा नॉर्मल स्पीड पर भी नहीं है, वी आर स्लाइटली हायर स्पीड। आप देखो सड़क पर भी गाड़ी चलाने की एक स्पीड रखी जाती है ना, आज कितनी पुलिस खड़ी होती है कि जैसे ही आपने उस स्पीड को क्रॉस किया स्टॉप। क्यों? जहां स्पीड बढ़ेगी वहां कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। मन की स्पीड इस टाइम कैसी है?
1: बहुत फास्ट है।
0: एक संकल्प उसके बाद तुरंत दूसरा, मतलब देयर इज नो टाइम, इतना फास्ट है। और जितनी स्पीड ज्यादा है तो समझ लीजिए कि क्वालिटी ठीक नहीं है। आप देखो जब हम परेशान होते हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया, उसके बाद तो मन की स्पीड कैसे चलती है? क्यों कहा, अपने को ऐसा समझता है, सबके सामने बोल दिया, मेरा कुछ नहीं है क्या, मेरी सेल्फ, इट्स फास्ट। अगर किसी के लिए अच्छा सोचना है आप उसकी स्पीड देखिए, इट इज स्लो। तो पॉजिटिव थॉट्स विल ऑलवेज बी स्लोअर एंड नेगेटिव थॉट्स आर ऑलवेज फास्टर। तो अगर बहुत स्पीड ज्यादा है इसका मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन है कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो अब अवेयरनेस चाहिए, तो पहली बात तो इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा नॉइज सारा दिन कंज्यूम कर रहे हैं बाहर से, इंफॉर्मेशन, नॉइज, टेलीविजन, रेडियो, मीडिया, यू नो, जस्ट फिलिंग इट इन, जितना भरते जाएंगे उतना
1: हम खाली होते
0: हैं। इट विल गो वेरी फास्ट।
1: इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि जैसे हम खाली होते हैं हम भागते हैं किसी नॉइज की तरफ।
0: हाँ,
1: हम खाली रहना नहीं चाहते,
0: हमें अभ्यास ही नहीं रहा कि दो मिनट अगर बैठ जाए। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन स्टार्ट इज बीच बीच में कुछ क्षण निकाल के जस्ट बी क्वाइट, एंड नॉट बी क्वाइट जस्ट वर्बली, ना शांत रहना मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुख से चुप रहना, लेकिन आंतरिक।
1: तो क्या हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं उस टाइम?
0: सप्रेस नहीं करना और ना थॉट को बंद करना है, लेकिन देखना है इस समय, लेट्स डू इट राइट नाउ, जो सभी देख भी रहे हैं इस टाइम प्रोग्राम को, इस क्षण हम कर सकते हैं, जो कर रहे हैं, जैसे बैठे हैं, एक सेकंड के लिए जो कर रहे हैं वो रुक जाइए, जस्ट स्टॉप, एंड अभी सिर्फ डिटैच होकर देखिए मेरे मन में इस समय कौन सा संकल्प चल रहा। एंड वेरी ऑफन वी विल फाइंड कि वो बहुत रेलेवेंट नहीं होगा इस टाइम, वो या तो पास्ट में होगा, कुछ थोड़ी देर पहले किसी से बात की होगी, कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा, या वो आने वाले टाइम के बारे में प्लान कर रहा होगा, अभी ये करना है। वेरी रेयरली वी आर इन द नाउ। इस क्षण का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा रहे होंगे। बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बैठे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, मन लेकिन पूरा पूरा उस बात को, जब हम जो बात अभी सुन रहे हैं उसको ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करना कहाँ पॉसिबल है। तो वो तभी होगा जब माइंड थोड़ा सा साइलेंट होगा। उस ब्लॉटिंग पेपर को क्लीन रखना पड़ेगा। वो ब्लॉटिंग पेपर इतना सैचुरेटेड रहता है कि उस पर कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रह जाती कि कुछ नया डाला जाए। तो इसका एक जेन्युइन अभ्यास अगर हम करना शुरू करें कि बीच बीच में जस्ट बी क्वाइट फॉर फ्यू मिनट्स, एक मिनट, दो मिनट, कुछ मत अभ्यास करें कि कुछ नहीं सोच रहे, बट एक्चुअली कुछ नहीं सोच रहे ऐसा नहीं होगा, लेकिन करना क्या है, सिर्फ देखना है कि मेरा मन क्या कर रहा है। जैसे हम बीच बीच में चेक करते हैं ना बच्चे क्या कर रहे हैं, बीच बीच में जो ऑफिस में सीनियर होगा वो एक राउंड मार के देखेगा कि सब लोग क्या काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं। इसी तरह बीच बीच में चेक करना मन क्या कर रहा है, तो डिटैच हो जाएगा और डिटैच होके चेक कर लेगा ठीक काम कर रहा है, नहीं तो थोड़ा सा उसको प्यार से, अभी आपको इस टाइम ये नहीं सोचना है, अभी आपको ये सोचना है, ब्रिंग इट बैक।
1: ओके,
0: यू हैव टू टॉक टू योर माइंड, इट्स योर माइंड। अगर हम दूसरे को जाकर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आप ऑफिस में एक हेड हैं, आप अपने ऑफिस में चक्कर लगा के सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं, अभी आपको ये नहीं करना ये करना है, आप किससे बात कर रहे हैं? आप उनके मन से ही तो बात कर रहे हैं ना, कान सुनेगा मन ही तो उस चीज को परसीव करेगा। सबके मन से बात कर सकते हैं तो अपने मन से क्यों नहीं बात कर सकते?
1: अब अपने मन से, मेरे मन से, मैं आई द सोल इज टॉकिंग,
0: क्या इट्स लाइक दिस, आई एम सिटिंग हियर एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन पे बात की थी तो मुझे कोई और चीज के बारे में पता चला, अब मैं यहाँ कुछ और बात कर रही हूँ आपसे और सोच कुछ और रही हूँ, तो मैं अपने साथ और आपके साथ धोखा है, यू नो, बिकॉज मेरा मन यहाँ होना चाहिए इस टाइम, उसको हम कंसंट्रेशन कहेंगे, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आराम से आपसे अभी बात करते करते कुछ और सोच सकती हूँ, लेकिन फिर हमारा वो जो रिलेशनशिप बनना चाहिए वो नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद कोई आई यू रियली लिसनिंग, ऑफ कोर्स आई एम लिसनिंग, एंड ऊपर से वील गो यस यस आई एम लिसनिंग बट नो, एंड फिर हम सुनेंगे लेकिन उसको ठीक से ग्रहण नहीं करेंगे, जाकर करे कुछ और देंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द माइंड वॉज डूइंग समथिंग एल्स। ऑफिस में आप देखो कितनी बार होता है, मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया था ना, आपने सुना नहीं था उस टाइम, सुना तो था, कानों ने सुना था,
1: रजिस्टर नहीं हुआ।
0: दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग And listening. I'm hearing. कान सुन रहे हैं. Listening.
1: समझ रहे हो.
0: तो that will only be possible अगर बीच बीच में हम चेक कर लें कि मन कहाँ है.
1: अच्छा, हम जब चेक कर रहे हैं तो जो विचार जो संकल्प उसी वक्त चल रहा है उसी को देखें या पीछे जो गुजरा वक्त थोड़ा सा है.
0: अभी चेक करें अभी क्या चल रहा है. कुछ और चल रहा है. अपने आप से पूछे क्या इस टाइम ये इम्पोर्टेंट है, नहीं ये तो बीती हुई वाली बात है, अभी कुछ और करना है, इसके बारे में कब सोचें, शाम को सोचेंगे घर जाने के बाद, ठीक है शाम को हम इसके बारे में सोचेंगे, फुल स्टॉप। इट्स जस्ट दैट वी नेवर टॉक्ड टू आवर माइंड। अगर हमने किसी के साथ बात ही नहीं की, उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कैसे चलना है, तो वो अपने आप चल रहे हैं
1: हिसाब से जो उसे समझ में।
0: अगर ऑफिस में हम नहीं बताएंगे कि क्या कब करना है तो वो अपने हिसाब से करेंगे, तो हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, बीच बीच में स्टॉप करके चेक करना है। दैट इज व्हाट वी से, जस्ट बी क्वाइट फॉर सम टाइम, और थोड़े टाइम के बाद क्या है, मन को पता चल जाएगा काम करने का तरीका कैसा है, एक सिस्टम बन जाएगा और फिर वो मन उसी सिस्टम के अनुसार चलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ, एंड दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट स्टॉप, डिटैच, चेक, क्या सोच रहे थे, अच्छा ये वाली बात तो कल के लिए है ना, ये तो कल की मीटिंग में करना है, अभी ये ओके, लिविंग इन द प्रेजेंट। किसी ने कुछ कह दिया, वो सुनकर घर पहुंच गए, ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, घर आ गए, घर में बच्चों के साथ है इस टाइम, वाइफ के साथ है, जितना थोड़ा समय मिलता है इट शुड बी क्वालिटी टाइम, यू नो वी टॉक अबाउट क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम यही है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली अवेलेबल नहीं है, मेंटली अभी भी मन सोच रहा है क्यों ऐसा डांटा, इतनी सी तो बात थी, या व्हाटएवर, टेल द माइंड वो ऑफिस की बात है ना, और शायद उन्होंने जो किया वो ठीक ही किया था, जो भी किया था कल सोचेंगे ऑफिस जाने के बाद, एंड इट विल लिसन, गिव इट वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन, माइंड को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन देना है. अगर हम मन को सिर्फ ये कहेंगे अभी नहीं सोचना, पर ये इम्पोर्टेंट है. हाँ ये इम्पोर्टेंट है, कल सुबह 9 बजे आना,
1: तब सोचेंगे.
0: यस एंड इट इज सो परफेक्ट, वो कल सुबह 9 बजे आपको थॉट आ जाएगा.
1: अच्छा इट लाइक हियर यू,
0: या इट इज लिसनिंग. व्हाट इज इट? इट इज प्रोग्रामिंग. एक इंस्ट्रक्शन फीड हो रही है. कंप्यूटर में भी रिमाइंडर फीड करते हैं ना, टुमारो मॉर्निंग 9 o'clock रिमाइंडर, और वो एग्जैक्ट 9 o'clock आ जाएगा. सेम टू द माइंड.
1: गुड, इट्स लाइक अ गुड एक्चुअली, वी कैन ऑलवेज ट्राई इट आउट.
0: लेट्स ट्राई करेंगे, वो प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी एंड इट विल हैपन. एक बार अगर सपोज उसने आपकी बात नहीं मानी, फिर आ गया, आपको कहा ना कल सुबह 9 बजे, फिर आ गया, क्या कहा था आपको कल सुबह 9 बजे, बस थोड़ा सा फिर इट्स डन.
1: ओके That's nice.
0: It's very simple. It's very simple.
1: So okay.
0: But yeah, the thought should be, ये मेरी काम की चीज़ है ही नहीं. So stop. Why am I wasting my energy? Full stop. फिर आएगा thought, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है. It's wastage of energy. Stop. दो बार, तीन बार, finished. नहीं, अगर नहीं stop किया,
1: तो आता रहेगा और वो कन्वर्ट करेगा फिर डेस्टिनी में.
0: सिर्फ एक नहीं आएगा, इतनी चेन आती है फिर उस थॉट्स के. इसलिए जहां अगर बीच बीच में रुकते हैं ना, तो थोड़ी सी भी क्वालिटी अगर दूसरी साइड पर जा रही है, तो हम उसको जल्दी से
1: वापस ले
0: आते हैं, तो पूरा दिन वेस्ट नहीं होता. कई बार हम अपनी चेकिंग करते हैं लेकिन दिन के एंड पे, बट बाय देन द डे इज ओवर.
1: सो लाइक इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस. इट्स एक्चुअली यू नो लाइक इट्स अ टिप.
0: बीच बीच में थोड़ा सा क्वाइट हो जाए और अपने मन को देखे. दूसरी चीज जो बहुत सिंपल हमें करनी पड़ेगी, अटैचमेंट्स जो हमने देखी थी, लेट गो. लेट गो करना पड़ेगा.
1: नाउ लेट गो टू द अटैचमेंट बेसिकली,
0: टू द अटैचमेंट.
1: सो दैट इज लाइक विल हैव टू गो डाउन, यू नो, लाइक जो हमने पूरा प्रोसेस देखा कि जहां हमने ईगो की बात की, वो ऐसा बिहेवियर जो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमारे ईगो को जनरेट कर रहा है. बिकॉज अभी ये मिथ भी तो लेके जी रहे थे हम कि सेंसिटिविटी होना या हर्ट होना तो
0: Absolutely.
1: हमारी स्ट्रेंथ है, यू नो, लाइक, और हम अपनी ईगो को कहीं अपनी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रहे थे. तो वो जैसे रियलाइज हुआ, देन वी गो बैक टू द प्रोसेस.
0: सो वी हैव टू लेट गो. इवन ऑब्जेक्ट्स जो हम यूज करते हैं, लोग जिनके साथ हम रहते हैं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे अभी भी, वही चीज यूज करेंगे, वही फोन यूज करेंगे, लेकिन डिटैच्ड. ये मेरा है, यूज करने के लिए आया है, एक दिन ये फिनिश हो जाएगा. बट लेट गो, डोंट होल्ड ऑन टू इट. और बहुत चीज़ें जो हम बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, पास्ट और फ्यूचर, उसको लेट गो करना
1: कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, या पास्ट में जो था वो इतना अच्छा था, वो कहाँ चला गया पास्ट.
0: दैट्स
1: वेरी डिफिकल्ट.
0: अच्छा या नेगेटिव पे,
1: हाँ,
0: नेगेटिव को भी पकड़ के रखते हैं.
1: बहुत खराब था, मैंने कैसे जिंदगी गुजारी,
0: उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किसी ने कुछ एक सेंटेंस कह दिया, उसको कितने साल पकड़ के रख सकते हैं. Who will let it go? कौन था? आप खुद ही देखो, आप किसी को भी इस समय याद कर लीजिए जिसका आपका कोई बिटर मेमोरी आपके अंदर बैठी हुई है,
1: वो लिंगर है, अभी भी लिंगर है, इसका मतलब
0: अभी भी
1: कभी भी चाहूं रिवाइव कर सकती हूं.
0: और जितनी बार आप उसको रिवाइव करेंगे, आप अपने आप को कष्ट देते हैं.
1: Because we go through the same pain,
0: same pain, thought, feeling, attitude, everything.
1: And that chemical thing, I still remember that, you know, because pain is something which people at times do start enjoying.
0: और आपको पता है, कई बार जब शरीर को वो केमिकल नहीं मिला होता बहुत देर के लिए, और कोई आ भी नहीं रहा आसपास जो मुझे हर्ट कर रहा है, आई जस्ट पिक अप समथिंग फ्रॉम द पास्ट.
1: पुराना कुछ नहीं, तभी मैं स्टोर करता रहता हूँ, करती रहती
0: हूँ. इतना सारा अक्यूमुलेटेड है कि फ्रेश टॉक अगर नहीं भी मिला आज सारा दिन में, कि किसी ने कुछ आकर नहीं ऐसा कहा जिससे मुझे बुरा लगे, तो पास्ट का कितना सारा पड़ा. कोई भी एक इंसिडेंट उठा लीजिए, just one second is needed. आपने वो incident उठाया and that's it.
1: You get
0: that same pain and everything all over again. And then you're like, हाँ, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है. वो जो self victimization, self sympathy, फिर वो शुरू हो गई.
1: We want to change them. Yeah. And especially, you know, when we fall in love, when we care for the other person, or maybe, you know, like now, so I feel that all our belief systems have been actually wrong, maybe, you know, like standing on wrong aspects. It's like we feel that we are in love with that person, so that person has to become what we expect.
0: Want him to be. So, hum sara din jisko hum kehte hain, hum dusron ki script likhne ki koshish karte hain. Aapko aisa karna chahiye, aapko aise uthna chahiye, aise baithna chahiye, aise bolna chahiye, aise kaam karna chahiye. We are writing the script. Jitna hum dusre ko control karne ki koshish karenge, yahan pressure hai. Kyunki aap waise banenge nahi jaise main chahti hu. To wo sara din meri inner jo कॉन्शियस उसको डिस्टर्ब कर रहा है, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हैं. आप देखो, करके देखना, एक दिन का ये

0: जो भी अटैचमेंट्स हैं एंड लेट पीपल बी, वो जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं. ये एक थॉट भी, ये जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, आई सी यू इन अ डिफरेंट लाइट. लेकिन इफ आई से नहीं आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, आई सी यू इन अ डिफरेंट लाइट. तो इट इज़ एक्सेप्टेंस. तो ये एक्सेप्टेंस भी हमारी इनर स्टेबिलिटी को बहुत अच्छा मेंटेन करके रख सकती है. जैसे ही हम ये तीन चीज़ें करना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि लेट गो और लेट बी जब कर लिया, इनर जो सारा जो सूत बहुत मूंझा हुआ है ना, वो सारा स्ट्रेटन आउट हो जाएगा. हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके बाद. यहाँ एकदम क्लैरिटी आने लगेगी, और जैसे ही वो आने लगेगी, फिर जो आपने कहा ना अंदर की आवाज़, वो सुनाई देने लगेगी. अंदर की आवाज मतलब जब दूसरों के बारे में सोचना बंद करेंगे, दूसरों को कंट्रोल करना बंद करेंगे, तब तो कहीं अपना कोई प्रोसेस दिखाई देना शुरू कर रहा होगा. एंड इसको हम कहते हैं इंट्यूशन. अपनी सॉल्यूशंस खुद से. अभी पहले क्या था, इधर इतना कंफ्यूजन था तो दूसरों से पूछना पड़ता था, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए.
1: हाँ, बिल्कुल.
0: लेकिन सॉल्यूशन तो मेरे पास है, आपको तो मेरी प्रॉब्लम पता ही नहीं है. तो लेकिन यहाँ जब ये सब हट जाएगा तो क्लीन, Now I can see my own solution. एकदम स्पष्ट दिखाई देगा. तो we will be able to start listening. अंदर वो जो हमारी intuition है, वो हमारे से बात करना शुरू कर देती है. And then we really wake up. क्योंकि we are awake कि क्या हो रहा है. मतलब फिर क्या हो जाएगा, जो हमने शुरू में कहा कि सब कुछ करते हुए, लोगों से बात करते हुए, एक awareness क्या चल रहा है अंदर. अभी क्या होता है, हम गुस्सा कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, हर्ट हो जाते हैं, फिर जाके कहीं लगता है शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था. लेकिन जब एक अवेयरनेस में चलेंगे, गलती होगी, अभी भी बात करते करते मुझे आप पे गुस्सा आ जाए, लेकिन करते करते दे विल बी एन अवेयरनेस. ओके, नो दिस इज रॉन्ग, स्टॉप, चेक, चेंज. Fast.
1: जैसे कहा जाता था कि भाई गुस्सा आ रहा हो तो आप 10 तक गिन लीजिए, या पानी पी लीजिए. लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल, वो हो ही नहीं पाता था,
0: वो हो नहीं पाता
1: था, क्योंकि जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा.
0: और फिर वो एक बाह्य पुरुषार्थ था ना, आप बाहर से पानी पी रहे थे, बट द आइडिया वाज यही कि गिव योरसेल्फ अ लिटिल गैप टू सी. लेकिन अब क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा क्लीन अंदर से चल रहे हैं, आप अवेयर हो जाते हैं कि हाँ नहीं, गाड़ी रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है, स्टॉप, राइट लेन पर उसको लेके जाना है. And it will go. So you wake up. You wake up to the process that's going on inside. आप continuously aware हो जाएंगे. जैसे किसी को criticize किया, तुरंत awareness होगी. क्या डर था मुझे? किसलिए मैंने इनको criticize किया? अच्छा, मुझे ये डर था.
1: तो process शुरू हो जाएगा अंदर तलाशने.
0: मुझे किस बात का डर था? नहीं, छोड़ दिया. तो फिर criticism बंद. तो बाह्य लेवल से हम नहीं कर सकते क्रिटिसाइज नहीं करना, क्रिटिसाइज वो नहीं होगा अनलेस माय दैट इनर प्रोसेस गेट सिंप्लीफाइड. तो अब अवेयरनेस आएगी, अब आउटर बिहेवियर और इनर प्रोसेस
1: के बीच का जो
0: हार्मनी. अभी क्या हो रहा था, इनर प्रोसेस चल रहा था, लेकिन इतना ऊपर कंफ्यूजन था, कुछ समझ में नहीं आता था, दिखाई नहीं देता था, आउटर बिहेवियर में वो सिर्फ आता जाता था. क्वाइट हो गए, साइलेंट कर दिया, अब दिखाई देता है. एंड देन वी वेक अप. एंड सबसे पहली चीज, जब हम वेक अप करते हैं तो हमें पता चलता है कि वी हैव अ चॉइस एट एवरी स्टेप. वी हैव अ चॉइस कि हमें कैसे बिहेव करना, हमें क्या बोलना है. एंड ये इतनी डीप रियलाइजेशन होती है कि हमें पता चलता है कि एक्चुअली कोई हैबिट्स एक्चुअली होती ही नहीं है. हम जो कहते हैं ना जी, ये तो मेरी आदत है, हमें एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, आपने इस तरह से क्यों बोला, जी मेरी आवाज ही ऐसी है, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा, ये तो मेरी आदत है. आदत मतलब ऑटोमेटिक. अब हम ऑटोमेटिक नहीं है, आदत क्या होगा, कोई चॉइस नहीं है. लेकिन अब तो हमारे पास चॉइस है, हर स्टेप पे चॉइस है. तो देयर विल बी नो हैबिट्स, एवरी टाइम यू विल बी
1: अ न्यू पर्सन. Wow, that's nice actually.
0: Yeah. Even you will not know कि आपका क्या response अब. You will be surprised at your own response. आप खुद हैरान होंगे कि इन्होंने इतना कुछ कह दिया. अच्छा, मैंने गुस्सा नहीं किया. How come? पहले तो मैं गुस्सा कर देती थी, but you didn't realize that time you were sleeping. अब आप उठ गए हैं. तो आदतें खत्म हो जाएंगी and I'll be a new person every time. That's a very important thing. तो ये चार बातें भी अगर हम ठीक से कर लें, let go, let be quiet, start listening, wake up, and know yourself. जो हमने पहले भी देखा कि सबसे important अपने आप को जानना, कि ये कौन कर रहा है, ये किसका process है, कौन अंदर काम कर रहा है. और सारा दिन याद रखना, मैं कौन.

0: जब हम क्वाइट भी हो जाते हैं, क्वाइट होना मतलब यही संकल्प, मैं कौन जो ये कर रहा, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, उसने इन्होंने आकर ऐसा कुछ कह दिया, लेकिन मैं कौन, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, वो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते, changed. At every step we will be able to do it then.
1: There's a whole process actually, but then अगर हम steps की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर से कुछ आकर होगा, it is within us, you know. सबसे पहले आपने बात यही कही कि quiet, शांति, एक चुप रहकर सुनने की जरूरत है,
0: अंदर से चुप. कई बार हम बाहर बहुत शोर में हो सकते हैं लेकिन अंदर चुप. You know, नहीं तो लोग बोलेंगे जी क्या करें, हमेशा ही आवाज है चारों तरफ, but it's not that noise, it's internal.
1: Internally, you know, like हम और सुनने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है मेरे अंदर. And then you said कि detachment, let go. And third is let be, let people the way they are.
0: Right.
1: So in things,
0: बहुत life easy हो जाएगी if we let people be the way they are. सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वहीं पर आ रही है.
1: बिल्कुल,
0: बहुत ज्यादा.
1: ये किस तरह से इसको एहसास करना है, ये पूरा प्रोसेस है, बट देन इट डस टेक टाइम एक्चुअली.
0: यू बिगिन, आप शुरू कीजिए कोई भी चीज, आपने शुरू कर दी, इट्स बिगन. इट्स लाइक हमें उठने में तो टाइम लगेगा लेकिन जब नींद खुली, इट्स बिगन.
1: लेकिन मुझे दिन भर में बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे ये करना है.
0: थोड़ा सा अटेंशन तो रखना पड़ेगा. थोड़े टाइम के बाद इट्स नेचुरल. आप बार बार अपने को याद नहीं दिलाते मुझे पानी पीना. आप बार बार अपने को याद नहीं दिलाते मुझे आराम करना है. करना ही है, नहीं तो शरीर नहीं चलेगा. इसी तरह मुझे मन को बीच बीच में आराम देना है, दैट इज बी क्वाइट, नहीं तो वो थक जाएगा. थोड़े टाइम के बाद नेचुरल.
1: बिल्कुल, ये जो हमने पूरी एक यात्रा तय की है और जागने तक के प्रोसेस पर आए हैं, ये एक बात समझ में आती है कि ये जिंदगी की शुरुआत में ही अगर समझ ले जाए तो हम इतना लंबा सोते हुए वक्त नहीं गुजार देंगे. तो सिस्टर शिवानी, बहुत अच्छा लगा ये जो पूरी हमारी बातचीत रही, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू.
1: आज हमने ये समझा कि हम जाग सकते हैं, इतनी आसानी से जागा जा सकता है. सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कुछ क्षणों की चुप्पी बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है, सुनना अपने अंदर कि क्या हमारे अंदर चल रहा है, क्या हम कह रहे हैं या जो भी हमारे थॉट आ रहे हैं, और उसके बाद लेट द वे पीपल आर, लेट बी, जिस तरह से हैं उन्हें वैसे ही रहने दें और हम भी लेट गो कर दें, यानी जिसके साथ हम अटैच हो जाते हैं उन्हें हम जाने दें. शायद एक बात एक और कहना चाहेंगे सिस्टर शिवानी कि कहा जाता है कि जो अपना है वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा.
0: They will come back.
1: और जो कभी था नहीं आपका, उसको आप कितना भी रोक लीजिए,
0: तो ये सब फिलोसॉफिकली हमें पता होता है लेकिन प्रैक्टिकल में
1: बहुत मुश्किल है. नमस्कार.

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।